0: वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हूँ। विनीता बोली, तेज शरीर का बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से शेष केवल दो ही पुत्र मुझे प्राप्त हैं। कश्यप जी ने एवं अस्ति कहा, दोनों प्रसन्न हो गए। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप ऋषि वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। दासी ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विनीता के 2 बच्चे नहीं निकले। विनीता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, माता तूने लोभवश मुझे अधूरे शरीर को ही निकाल दिया है, फिर तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, उसे दाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग ना किया तो वही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो मेरा दूसरा बालक बलवान हो और धैर्य के साथ 500 वर्ष तक प्रतीक्षा कर। उस प्रकार श्राप देकर बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसकी झलक थी और उसका बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ घूम रही थी, उन्हें पास ही उच्च श्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। यह घोड़ा अश्व रत्न अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ था। असमस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य और सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में वर्णन करने लगी, देवताओं के अमृत मंथन ने किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्च श्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उच्च श्रवा महर्षि शौनक आदि का प्रश्न सुन के उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवता से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। ये पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतने से ही नीचे धसा हुआ था। जब सब देवता पूरी शक्ति लगाकर उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेष नाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेष नाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के समान यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसवा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध सुवर्ण में मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत ही निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं, समुद्र को शुद्ध कर दें। भगवान जी इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मचने लगे, सारा समुद्र शुद्ध हो गया। उसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वन का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वन का उच्च सवा घोरा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि कल्पवृक्ष कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी सुरा चंद्रमा उच्च सवा ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। के बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों ने ये मेरा है मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया। तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर जी ने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर विरोध और फूट हो गया। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का पैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के घरावने अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसको। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शक्रु दल ने घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस सहस अस्त्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुँचा दिया गया।
1: जी तो श्रोताओं बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागले कदासी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागले कदासी जी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं। जी
0: उच्च सवा घोड़े को देखकर कद्रु ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। वनिता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहने आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्रु ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सभा की पूछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा ना मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जलने दे के सर्प अग्नि जलकर भस्म हो जाओगे। कद्रु अभिनेता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। उसे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कि चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दी। ऐसा निश्चय करके उसे शवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली जान करने लगी। वे कद्रु और नीता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुँच कर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूंछ काली है। ये देखकर अनीता उदास हो गई। कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उससे बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे अब वे भयभीत न हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्रु ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। और वनिता ने कद्रु को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभी स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रु ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर वन आदि उधर देखकर यथेष्ट उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रु की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोग का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। नीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की बस्ती है, इसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुँह में आ गया जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है, यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूँ। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह इतने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, जा तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ से जा पहुंचे। वहां सुवर्णगिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। गरुड़ को देखते हुए भय से कांपने लगे और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उठते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो, जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसने नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। इस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं सहसा साहस का काम न करना, घर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्ले ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्ले ऋषियों से प्रार्थना की। तपोधनों, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्ले ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वटवृक्ष की शाखा छोड़ दिया, तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महात्मा बालखिल्ले ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत पीने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षा रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पाओ। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और वे धूल से ढककर मूर से मन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए, वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया, चारों ओर उजाला हो गया। देवता उनका प्रहार करने लगे। धूल में उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैलिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं ने शस्त्रों के प्रहार से गरुड़ प्रणी भी विचलित हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोटों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े, उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटे उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धरती भी आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है, उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया, चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी दृष्टि से विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी, चूचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांग लो। गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा, ऐसे ही होगा, और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी, उन्होंने गरुड़ को अमृत की जाते देखकर क्रोध में भरकर बदल चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम कभी अंत नहीं पा सकूंगी, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं हुई। प्रभु ने अपना एक पंख गिरा दिया, उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। संध्या का जिसका यह पंख है

0: किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ उससे मुंह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए, वही उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सर्पों से कहा, ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने गए, तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्य से लौट कर सर्पों ने देखा, अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझ कर अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर कथा हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने, ये भी हमने जाना और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड फील लाइव।
2: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, अब परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा, अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षु, अब बताइए इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्तऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी, कैसे ये कथा बढ़ती है, क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच, तात प्राज्ञ बदेद इदानीम सप्तर्षिषु गतेषु च किम आकर्षीद धर्मगिरि तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। कहते हैं, हे प्राज्ञ, उन सात मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो अब वो लोग जब चले गए तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं, गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षीद ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की, हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री लिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए, उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधु जो भी बनने वाले हैं भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते, इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधु से विवाह हो सके, इसलिए।
0: जैसे लीना जी, आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। चलो, मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी मान के कहीं भी निर्जन स्थान में कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारी लग्न पत्रिका है या पहले से उनके नक्षत्र लग्न सब दिखवाए जाते हैं, तो और वो जो सारा का सब पत्रिका, उनकी जन्म पत्रिकाएँ मिलवाई जाती हैं, गुण मिलवाए जाते हैं, वो उनका महत्व फिर क्या, मतलब क्या रह जाता है उन सब के लिए?
1: बिल्कुल महत्व तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है। अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हमारे, हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं। और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियाँ है, हम नहीं जान पाएंगे। और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए। हाँ। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए। हाँ। और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है तो फिर मिलान नहीं होगा।
0: हाँ।
1: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
0: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लग्न पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधू ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
1: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
0: हाँ।
1: दंपति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है, और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को, लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
0: नहीं।
1: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है।
0: हाँ।
1: चाहे वो ससुर हो ननद हो सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियाँ जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और जैसे भी हो आदर करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चियां चाहेंगी कि हम अपने मायके जाएं तो 10 बातें बताई जाती हैं कि अभी क्या करोगी, अभी तो आई थी, अभी तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ना ही लड़की की तरफ से होना चाहिए कि हर समय मायके मायके मायके करते रहें और मोबाइल फोन से चिपके रहें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा विवेक से काम लेना होता है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही आप वापस भी दीजिए, तो दोनों के हृदय का मिलन होगा। हृदय से हृदय का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हृदय से हृदय का स्पंदन नहीं होगा और उसमें पुलकन नहीं उठेगी। जब पुलकन नहीं उठेगी, रोम रोम पुलकित ही नहीं होंगे, तो घर में आनंद कैसे होगा? तो इसलिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, प्रेम हृदय का, हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो जब शिव और पार्वती की हम लोग बातें कर रहे हैं तो शिव और पार्वती में हृदय का हृदय से प्रेम है, और ऐसा प्रेम अद्वितीय प्रेम है जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि पार्वती ही हम लोगों के हृदय में बसी हुई है, शिव ही हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। तो शिव और पार्वती का जो प्रेम है वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, और ये एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम भी पार्वती बत प्रेम करें, हम भी शिव बत प्रेम करें। लेकिन जब प्रेम नहीं मिलता है एक दूसरे से तो फिर हम
0: संबंध नहीं बन पाते,
1: अच्छे संबंध नहीं बना पाते। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि लग्न पत्री बना करके शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्न चित्त होकर अनेक प्रकार के फल पकवान तथा मिठाइयाँ भी भिजवाई, तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उन सब का यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अब कौन लौट आए? जो सप्त मुनि थे वो लौट आए। और दूसरी बात कि हिमालय ने अपने पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित किया था और गर्गाचार्य से जनपत्री लिखवा कर उसे भिजवाया था अपने पुत्रों से। तो फिर वो सब दिए वहां जाकर के और शिव जी ने उन्हें ग्रहण किया। अब देखिए क्या होता है कि अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया, ये बड़ी बात है। यह जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधुजनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह करवाया, क्योंकि शादी ब्याह में तो समय लगता ही है और बहुत सारी चीजें देनी होती हैं। तो उसने संग्रह करवाया, हिमालय ने चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए, उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए, दूध दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। देखिए बावड़ी बना डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह था तो पूरे संसार से लोग आने वाले थे, तो अब किसी को वो मना तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने बावड़ी बना दी। जौ गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया, लड्डुओं पूड़ियों स्वस्तिकों चीनी के ढेर लगा दिए, अमृत तथा ईख के रसों से बावरियां भर गईं, मक्खन आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वादयुक्त रसों के ढेर लग गए, अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरम्भ कर दिया और पर्वत की स्त्रियाँ पार्वती का श्रृंगार करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और इसमें अतिशयोक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि युग पुरुष का युग स्त्री से विवाह हो रहा था, काल पुरुष का काल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो होगा तो ऐसा ही। विवाह कोई साधारण मनुष्य का तो था नहीं, साधारण नर और नारी का था नहीं, ये प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग था। और प्रकृति यानी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण माया के साथ, सौंदर्य के साथ विराजमान थी और उन माया के मायापति उनसे मिलन के लिए आ रहे थे। उनका विवाह होने वाला था, प्रकृति का पुरुष से परमेश्वर से विवाह होने वाला था, तो ऐसा अचंभा, ऐसा अद्वितीय तो होना ही था। कहते हैं कि मंगलम कर्तुम आरभे गिरिर्मंगल कृद्दिने संस्कारम कार्यामासु पार्वत्या पर्वत स्त्रिय ता मंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषण स्वयं पुरद्विज स्त्रियो हृष्टा लोकाचारम प्रचक्रिरे सोत्सवम विविधम तत्र सुमंगल पुरः सरम हिमालयो अपि हृष्टात्मा कृत्वाचारम सुमंगलम। अब कहते हैं मंगल ही मंगल था हर तरफ, क्योंकि मंगल पुरुष का मंगल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो फिर मंगल ही मंगल क्यों नहीं होता। अब देखिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित हुई। वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुओं के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो, मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। देखिए अब पहाड़ों की चर्चा है। कवि जो है कौन है, लेखक इसके वेद व्यास है। वेद व्यास जो व्यास यानी कि व्यापक और व्यापक रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और पुराण का वर्णन कब किया गया है वेद व्यास के द्वारा, जब वो महाभारत लिख करके बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध की चर्चा थी और रक्तपात की चर्चा थी, हत्या मारकाट की चर्चा थी, तो वे बड़े उद्विग्न हो गए थे। तो उन उद्विग्न वेद व्यास को नारद जी ने कहा कि आप भक्ति का की गंगा बहाइए तो आपको आनंद आएगा। तो भक्ति की गंगा बहाने में भक्त को भी उतना ही आनंद आता है जितना कि पाठकों को श्रोताओं को आनंद आता है। जैसे कि हमको आपको आनंद आ रहा है भक्ति रस में अवगाहन करने पर, अब श्रोता गण सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। हम भाव विभोर होकर के इसे पढ़ रहे हैं, भाव विभोर होकर के इसे सुन भी रहे हैं और हमें लग रहा है कि वास्तव में शिव पुराण है तो क्या।
0: लीना जी, यह जो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है पार्वती और शिव के विवाह का और तैयारियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं और सामने ये सारा कुछ हो रहा है, सारा विवाह का वर्णन हो रहा है, विवाह की तैयारियां हो रही हैं और सारे सीन ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी शामिल हो रहे हैं। तो वो जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि हर व्यक्ति, हर श्रोता उस आनंद को महसूस करे, क्योंकि यह
1: अपूर्व दृश्य है,
0: अपूर्व दृश्य,
1: अभूतपूर्व दृश्य है, रोमांचक दृश्य है।
0: जी जी,
1: तो इस दृश्य का वर्णन वेदव्यास जी किस तरह से भाव विभोर होकर कर रहे हैं, यह हमें सुनना चाहिए। अब देखिए, पर्वतों के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कितने पर्वत का नाम जानते हैं, हिमालय है, अरावली है, सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल, अरावली के पर्वत है,
0: देखा तो सबने एक दो को ही,
1: आल्प्स है,
0: नाम है,
1: तो बहुत सारे पर्वत
0: बहुत सारे
1: अगर
0: पर्वत।
1: हम नाम लेना चाहें तो बस गिन करके 10-15 पर्वत के नाम लेंगे। अब यहाँ वेदव्यास जी कितने पर्वतों का नाम ले रहे हैं, और हर पर्वत एक से एक बढ़कर, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उस समय ये पर्वत तो अवश्य होंगे, तभी उन्होंने नाम लिया है। अब देखते हैं किन किन पर्वतों का इन्होंने नाम लिया है। वो कहते हैं वेदव्यास जी कि आजगमु स स्त्रियो हृष्टा स सुता स परिच्छदा तदेव शृणु देवर्षे गिरिया गमन आद्रिता वर्णयामि समासेन शिव प्रीति विवृधये देवालय गृढ़यो ही दिव्य रूप धरो महान। अब वो देवालय पर्वत के विषय में बताते हैं। हाँ। हिमालय तो है ही।
0: हाँ।
1: अब देवालय पर्वत है।
0: हाँ।
1: कहते हैं देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। अब देवालय पर्वत का वर्णन करने के बाद वो किसका वर्णन कर रहे हैं, मंदराचल, जिनका नाम हमने हमेशा सुना है मंदराचल। वो कहते हैं कि सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छद नाना मणि महारत्न सारन आदा यत्नत सुवेशालंकृत श्रीमान जगाम च हिमालयम मंदर सर्वसौभाड्य स नारी तनयो गिरो। अब वो कहते हैं कि श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए।

0: वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुँचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। अब आम व्यक्ति में जिज्ञासा हो सकती है कि ये पर्वत थे तो आए कैसे, सुंदर वेश धारण कर कैसे आए, तो ये जिज्ञासा भी यही शांत हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सभी आत्मावान थे, वो जो चाहे रूप धारण कर सकते थे। अब जैसे अगस्त मुनि की पत्नी है लोपामुद्रा, आज वो नदी के रूप में है दक्षिण भारत में, तो नदी क्यों बनी, क्योंकि उस जगह पानी नहीं था, कहीं भी पानी नहीं था, और अगस्त मुनि बड़े परोपकारी थे, मुनि थे, ऋषि थे, बहुत परोपकारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को नदी बना दिया। गंगा नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, कोशी नदी बन गई,
1: आज भी ली नदी इनको माता की, गंगा माता, यमुना मैया, माँ कहकर ही पुकारते हैं इनको।
0: जी, जी।
1: तो और ये जब हमारा महाभारत हम देखते हैं तो भीष्म अपने माँ गंगा को सामने ही जब प्रार्थना करते थे वो आती थी,
0: बिल्कुल,
1: तो साक्षात अभी भी अगर कोई बिल्कुल सात्विक मन से माँ गंगा को पुकारे, माँ यमुना को पुकारे, वो अपना उसी रूप में दर्शन देती हैं। तो यह सत्य ही है कि पर्वत राज भी उस समय अपने अपने रूप में सब पधारे होंगे,
0: पधारे
1: जी।
0: तो सबसे पहले उन्होंने देवालय का वर्णन किया, फिर मंदराचल का वर्णन किया। अब कहते हैं कि दिव्यात्मा तथा बुद्धि वाले, उदार बुद्धि वाले, अस्ताचल भी एक पर्वत है, देवालय, मंदराचल, अस्ताचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहाँ गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल, देखिए हमें नाम भी याद हो रहा है कि उदयाचल, अस्ताचल, देवालय, मंदराचल, तो प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। मलय पर्वत का तो नाम सभी जानते हैं, क्योंकि वहाँ से मलयालिन यानी कि मलय पर्वत से जो हवा, सुगंधित हवा बहती है, वो कहा जाता है कि मलय पर्वत से आई होगी। तो सुगंधित, क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों से टकरा करके जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं मलय पर्वत भी आए, भली भांति सजधज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्न चित दर्दुन नामक पर्वत शीघ्र वहां आए। मंदरा चलाए, अस्ता चलाए, उदया चलाए, देवालय आए, मलय पर्वत आए, दर्दुन आए। फिर हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्न चित विशद पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंधमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। कहते हैं महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालयम सगण ससुत स्त्री को बहु शोभा समन्वित परियात्रो ही हृष्टात्मा मणि रत्ना करैर युतः सगण सपरिवार आययो हिम भूधरम क्रौंच पर्वतराजो ही महाबल परिच्छद आजगाम गिरिश्रेष्ठ समुपायन आदृत। अब देखिए अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों को तथा मणि रत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पारयात्र भी आए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार, सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र, पुत्री, स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुख, गोकामुख कहा गया भारतवर्ष में स्थित ये एक विशेष पर्वत है, तो गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंच गए। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी, कैलाश जहां शिवजी वास करते हैं, क्योंकि शिवजी तो उस समय हिमालय पर वास कर रहे थे, तो गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहां आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। अभी तो पर्वतों का वर्णन चल रहा है और कितने पर्वतों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ये सारे पर्वत आए और जिन पर्वतों का वर्णन नहीं किया है वो भी हिमालय के घर आए। कैसे? कहते हैं कि दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहां आए। अब यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार मैं गई थी यहाँ केदारनाथ। केदारनाथ से लौटते हुए एक जगह पड़ी जहां पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था।
2: अच्छा।
0: सतयुग में विवाह हुआ था उनका, लेकिन आज तक वहां अग्नि जल रही है ऐसा उन लोगों का कहना है।
2: अच्छा।
0: और अग्नि जल रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था और उसमें जो भी जाते हैं एक लकड़ी डाल करके आते हैं, तो हम लोगों ने भी डाला एक एक लकड़ी और वो सच में अग्नि वहाँ जल ही रही है। क्या सच है नहीं है ये तो जो ज्योतिषी हैं वो सब
2: वो
0: बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग भक्त भक्ति करते हैं,
2: देख रहे हैं वो
0: तो जो देख रहे हैं वही सत्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शंकराचार्य आदि ने वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि जब सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे और पता भी नहीं था, और ये बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव अपने देश में था और वैदिक धर्म बिल्कुल ही समाप्त प्राय सा हो गया था, तो उस समय शंकराचार्य ने सब कुछ पुनर्जीवित किया, पुनरोद्धार किया। उसी पुनरोद्धार प्रकरण में उन्होंने देखा जहाँ महिष मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था वो जगह भी उन्होंने देखी अपने ज्ञान चक्षु से और फिर उसका भी पुनरोद्धार किया। तो केदारनाथ से नीचे आने पर बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनका शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने, और उसी में ये मंदिर भी पड़ा था रास्ते में जहाँ पर हम लोगों ने भी यज्ञ किया।
2: ये भी हमारे श्रोताओं को ज्ञान मिल गया। तो लीना जी, क्योंकि एपिसोड्स को समाप्त होने का समय हो चला है, तो दोस्तों हम सब अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लीना जी का धन्यवाद करती हूँ। तो लीना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद
2: आपने इतना अमूल्य रत्नों से अमूल्य ज्ञान से हम सबको कृतार्थ किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में पुनः हम लीना जी के साथ यहीं पर मिलेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
0: बिन बुलाए मेहमान।
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें

0: दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं, शांति के रूप में अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूँ तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, ये होता है
0: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
0: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है, और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है, और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं, ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल, और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहां मेरा मेंटल फाइट है, जहां द्वंद है, जहां मैं कंफ्यूज हूं, जहां डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना, ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है, जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
3: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके, निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं
0: उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें

संतुष्ट हो जाता है, वो स्थिर प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थिर प्रज्ञ होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राफ्ट ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देखो देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट कि अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने

0: निर्णय भी दिया। उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा कि आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे
0: जी,
1: आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसी ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी। माना, अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना, कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिस उसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हों, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।
3: गुड मॉर्निंग, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज है सैटरडे का दिन, मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज लेकर के आ जाती हूँ। और देखिए, मैं आपको बता दूँ, सावन और भादों का महीना आते ही ना हमारे त्योहारों की जो लड़ी है ना वो लग जाती है। तीज है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, और ये त्यौहार जो है लाइन से अब चलते ही रहेंगे। एक लंबा एक जो है टाइम पीरियड जो है त्यौहारों के बीच, ये तो फेस्टिव सीजन है, ये बड़ा प्यारा लगता है। नवरात्रि है, या अब देखिए आगे आगे कितने सारे दिवाली जो है ये सब आनी है, और कितना ज़्यादा मज़ा जो है ये आने वाला है। त्योहारों पर अगर हलवाई की दुकान से देसी घी और रबड़ी की खुशबू ना आए तो त्यौहार जो है वो पूरा नहीं लगता है। और आज मैं आपसे ना एक ऐसी टेस्टी रेसिपी के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि हमारे घर में अभी तो रखे हुए हैं और आना शुरू हो गया है। और ये जो त्योहार में अगर आपके घर में घेवर ना आए तो त्योहार पूरा कहाँ है, है ना। चलिए अब देखिए, रक्षाबंधन ना ये आने वाली, अगले हफ्ते रक्षाबंधन है, और आज मैं आपको घर पर घेवर बनाना सिखाऊंगी। कैसे, अब इतना इजी है तो हम आसानी से बना लेंगे। अब कई बार देखिए, हम आजकल देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, घर पर लोग जो है वो बना रहे हैं और हमें लगता है कि बड़ा कठिन होगा, नहीं बन पाएगी, लेकिन बड़ा आसान है घेवर बनाना घर पर, बहुत अच्छे से क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ आपको मिलेगा। तो चलिए आप मेरे साथ बस जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम घेवर की बातें करने वाले हैं, कैसे बनना है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताऊंगी घेवर की। फिलहाल कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव 7.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ घेवर की मैं लेकर के आ गई हूँ बातें, क्योंकि आज ना हम घेवर बनाने वाले हैं बड़ा टेस्टी गाज। इमेजिन कीजिए, रिम झिम बारिश हो रही है और गली के मंदिरों के जो भजन है उसकी आवाज़ आ रही है, और अचानक से किचन या हलवाई की दुकान से ना देसी घी और केसर की चाशनी की शाही खुशबू दिमाग में ना घुल जाती है। सच बताऊं, दिमाग की बत्ती ना बिल्कुल जल जाती है, साथ ही साथ दिल जो है वो झूमने लगता है। राखी का मौसम है तो मजा तो आ ही गई, और राखी के मौसम में घेवर ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, मजा तो घेवर से ही आता है। तो घेवर की बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैसे बनना है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि घेवर आया कहाँ से है, इसका जो जन्म है ये कहाँ हुआ। तो घेवर का जो जन्म है ये जो अगर शुरुआत जो है हुई थी राजस्थान की रॉयल जो किचन होती है, रसोई होती है, वहाँ से, खासकर जयपुर और जोधपुर के शाही दरबारों में यहाँ पर जो है वो शुरू हुई थी। यहाँ से जो दरबार जो है वहाँ से शुरू हुई थी, और बहुत ही टेस्टी जो घेवर आज हम खा रहे हैं ना वो शुरुआत राजस्थान से हुई थी। तो पहले के ज़माने में ना राजपूताना महल्स में जो होते थे, वहाँ के जो महल होते थे उनमें तीज और जो घंघोर है वो त्यौहार जो है वो रानी के लिए ये खास मिठाई जो है बनाई जाती थी घेवर। और देखिए, घेवर शब्द संस्कृत के जो घृतपुरा है इससे इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब होता है घी से भरा हुआ। और इसका जो हनीकॉम्ब यानी कि जो मधुमक्खी का जो छत्ते की तरह एक जाली जो है वो तैयार की जाती है, डिज़ाइन की जाती है, और उसके ऊपर जो मलाई है, जो मिठाई है वो लगाई जाती है। और ये जो एक टेस्ट है ना, ये कंबाइन इतना कमाल लगता है, इतना यूनिक है ये कि मज़ा ही आ जाता है। और इसी मौसम में आपको ये मिलेगा, वैसे तो आप किसी भी मौसम में से बना सकते हैं, लेकिन जहाँ जब जिस चीज़ की देखिए मन जो रह जाता है ना कि आप मार्केट गए वहाँ पर देखिए हर जगह घेवर घेवर, स्पेशल घेवर, तो वही मज़ा आ जाता है। और इस मौसम में तो खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए आज आपको बताऊंगी घेवर आप कैसे घर पे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही खास रेसिपी के बारे में। आज हम घेवर बना रहे हैं। घेवर सिर्फ सावन और मानसून के सीज़न में नहीं भाई, ऐसा जो है वैसे तो कभी भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन इसी टाइम पर क्यों बनता है ना, सबसे पहला ये सवाल आता है। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी साइंस है। घेवर का जो बैटर है ये बनता है बर्फ यानी कि आइस से, घी और मैदे से। मानसून के दिनों में हवा में जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो घेवर की जाली को परफेक्ट क्रिस्पी बनाए रखने में मदद करती है। गर्मियों में ड्राई जो है हवा की वजह से घेवर टूट जाता है और सर्दी में घी जो है वो जम जाता है, और इसीलिए ये मौसम घेवर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। स्वाद के साथ साथ साइंस का भी कितना बेहतरीन मेल है ना ये, तो इसीलिए अब आप मुझसे ना ये मत पूछेगा कि साक्षी इसी मौसम में क्यों, इसी मौसम में क्यों, बता दिया मैंने आपको इस मौसम में क्यों। चलिए घेवर आपको बनाना आज बता रही हूँ। और देखिए हरियाणा और हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में ना तीज और राखी पर एक बहुत ही प्यारी जो ट्रेडिशन है ना वे होता है, और सिंजारा इसे कहते हैं। बेटियों और बुआओं के ससुराल या मायके से कपड़े, मेहंदी और मिठाइयाँ जो है वो आती हैं, और उस टोकरी में सबसे ऊपर शान से बैठा होता है हमारा मलाई घेवर। ये जो है उनके घर जाती हैं बेटियों, घर जाती हैं और साथ ही जो बुआओं हैं उनके घर जाती हैं, और त्यौहार पर भाई बहन के प्रेम का प्रतीक और मीठी यादों का जो भंडार है ये होता है। तो देखिए तीज पर जो मिठाइयाँ वहाँ जाती है ना, तो फिर जब बहन राखी बांधने आती है ना तो ये मिठाइयाँ लेकर के आती हैं, और बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा ना ये मेल जो है ना, कि कितना अच्छा आप देखिए कि मीठा दे रहे हैं, मीठा आ रहा है वापस, और मिठाइयाँ घर में जब आती है ना तो खुशी होती है। तो खुशियाँ जब आती हैं तो मिठाइयों की बात होती है, और मिठाइयों की जब बात हो तो घेवर की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। चलिए और भी बहुत सारी बातें करूंगी, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 7.8 FM। Feel good, feel right.

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं लेकर के आई हूं आज का प्रोग्राम स्पेशली घेवर कैसे बनता है। तो देखिए, घेवर की बात मैं करूँ तो वैसे अगर ना बचपन याद आ जाता है, घेवर को हम याद करते हैं ना। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बचपन में जब पापा हलवाई या देखिए हलवाई की दुकान से लेकर के आए घेवर का डब्बा जैसी लाते हैं, तो हम सभी ना मतलब सबसे पहले उसके ऊपर की जो मावा होता है, जो पिस्ता होता है ना, वो चम्मच से ना एकदम से चुरा जाते हैं। वो मलाई के लिए ना भाई बहन का जो एक नोकझोंक होती है, एक लड़ाई जो हो जाती है, और बाद में दादी के कहने पर अरे पूरा टुकड़ा तोड़ो और उसके बाद खाओ। वो दिन कितने प्यारे थे ना, वो यादें हमारे दिल में ना आज भी बहुत ज़्यादा करीब है। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी यादें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं घेवर से रिलेटेड, तो ज़रूर बताइएगा। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। और इसी के साथ आपको बता दो कि इस रॉयल रेसिपी के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। और आज एक और सवाल हमारे पास आया है, और ये सवाल आया है हमारे पास हमारे लिसनर मधु जी की ओर से। और इन्होंने लिखा है फरीदाबाद से, ये पूछती हैं साक्षी, घर पर जब भी घेवर बनाने की कोशिश करते हैं वो जालीदार नहीं बनता है, एक हैवी रोटी या पूरे जो पुआ होता है उस जैसा बन जाता है, क्या बिना किसी स्पेशल मोल्ड के घर के पतीले में हलवाई जैसा घेवर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है मधु जी, मैं बिल्कुल ये बात ज़रूर ही कहूँगी आपसे, बिल्कुल आप बना सकते हैं। मैंने खुद भी ये ट्राई किया है, और जब मैं कुछ चीज़ ट्राई करती हूँ ना और वो बन जाए तो मैं ज़रूर आपके पास लेकर के आती हूँ। और आप जालीदार हलवाई स्टाइल शाही मलाई घेवर घर पर बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत कमाल बनेगा। तो बताऊंगी कैसे बनता है, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनेवर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। इसी के साथ मलाई घेवर की हम बात करें, जालीदार शाही मलाई घेवर हम कैसे घर पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए शाही दरबार में तो ये बनता था, राजस्थान के वहां महलों में बना करता था। और आज देखिए, आज भी ये जो देखिए घेवर है ना, ये आज भी हमारे सुबह पर ना राज कर रहा है। और इस मौसम में घेवर ना खाया तो क्या ही खाया फिर आपने। तो चलिए मैं बताती हूँ इस घेवर को आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। देसी घी लेना है आपको 1/4 कप, और ये बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इसके साथ बर्फ के टुकड़े लेने आपको 4 से 5, मैदा लेनी आपको 1 कप, ठंडा दूध लेना है 1/4 कप आपको जो है ठंडा दूध लेना है, और साथ ही आपको जो है आइस कोल्ड वाटर लेना है, बिल्कुल चिल्ड पानी होना चाहिए 3 से 4 कप। इस बात का ध्यान रखिए हर चीज़ बहुत ठंडी है, ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ इतनी ठंडी है, बर्फ का इस्तेमाल हो रहा है तो कुछ बेहतरीन ही बनेगा। क्योंकि जाली तभी बनेगी जब आपकी जो आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें वो एकदम चिल्ड होगी, तभी जाली बनेगी। तो चलिए ये आपको लेना है। इसके बाद बेसन लेना है आपको 1 टेबल स्पून, ये क्रंच के लिए होगा और कलर के लिए थोड़ा जो गोल्डन कलर आता है उसके लिए। नींबू का रस लेना है 1 टीस्पून, और जाली को क्रिस्प रखने के लिए नींबू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देसी घी या ऑयल फ्राई करने के लिए मैं कहूँगी देसी घी लीजिए, क्योंकि जो शाही टेस्ट है वो देसी घी से ही आएगा। ये रहे इंग्रेडिएंट्स, अब इसी के साथ बताऊंगी रेसिपी बनेगी कैसे। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज है सैटरडे का दिन, सुबह सुबह आज साक्षी आपके पास आ गई है आपको बताने के लिए घेवर कैसे बनेगा। तो घेवर बना रहे हैं अगर आप, तो घेवर बनाने के लिए देखिए मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें लगेंगी, लेकिन इसके साथ देखिए जो ऊपर की मलाई है वो भी तो हम बनाएंगे ना। तो देखिए घेवर के साथ साथ है, क्योंकि घेवर थोड़ा सा उसमें मिठास जो है वो आती है उसकी चीनी चाशनी से। 1 कप आपको जो है वो चीनी लेनी है, पानी लेना है 1/2 कप, इलायची पाउडर लेनी है 1/2 टीस्पून, और केसर के धागे लेने हैं आपको 8 से 10, और 1 तार की चाशनी जो है इसके लिए आपको ये सब लेनी है चीज़ें, और इसी का हम बनाएंगे घेवर जो बनाएंगे। इसी के साथ फुल क्रीम दूध लेना है 1 लीटर, और साथ ही चीनी लेनी है इसमें 2 टेबलस्पून, केसर और इलायची लेनी है, और इससे हम गाढ़ी रबड़ी जो है ये तैयार करेंगे। गार्निश करने के लिए आपको पिस्ता बादाम के जो लच्छे हैं वो तैयार करने हैं, और अगर चांदी वर्क मार्केट से आपको मिल जाए जो एटेबल होता है वो आप ले लीजिए। तो चलिए आप बनाते हैं और इसकी विधि आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, फटाफट से आती हूँ, और फिलहाल गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और मैं आपके लिए बड़ी टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूं, और ये जो रेसिपी है ये है घेवर की। देखिए आप बताती हूँ घेवर बनेगा कैसे, इंग्रेडिएंट्स आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो घेवर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बड़े बोल में आपको जो हमने 1/4 कप जो है वो देसी घी आपको डालना है, और उसमें आपको 4 से 5 आइस क्यूब डाल देने हैं, और हाथ से इसको विस्क करना है। जैसे आप विस्क करेंगे तेजी से 4 से 5 मिनट तक, जैसे आप तेजी से आप इसे मिलाते हैं, घी बर्फ के कॉन्टैक्ट में आकर जम कर एकदम से सफेद मक्खन जो है ये होने लगेगा। जैसे ये सफेद मक्खन बन जाए आइस क्यूब को आप निकाल लीजिए, उसको हटा दीजिए, फेंक दीजिए। अब बैटर यहीं से बनेगा, शुरू होगा बनना। अब इसमें आपको क्रीमी घी जो है, क्योंकि हमारे पास मक्खन है, थोड़ा थोड़ा इसमें मैदा जो है वो ऐड

करना है और एक टेबलस्पून आपको इसमें बेसन डालना है। साथ में ठंडा दूध और आइस कोल्ड वाटर भी आपको इसमें मिलाते रहना है। बिल्कुल पतला रनिंग कंसिस्टेंसी जो है ये होनी चाहिए, जैसे एक छाछ की होती है वैसी होना चाहिए, बटर मिल्क जो होता है उसकी होती है। और इसमें जो है लम्स यानी कि जितना कुछ भी जो है वो नहीं होने चाहिए, गांठें जो है वो नहीं पड़नी चाहिए। इसको आप छान लीजिए, अगर आपको लग रहा है गांठें हैं तो इसे छान लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अंत में एक टेबलस्पून नींबू का रस आपको मिलाना है। बैटर को ये जो है वो हमेशा ठंडा रखने के लिए बोल को आपको बर्फ के पानी के ऊपर ही रखना है। ध्यान रहे कि आपका जो बैटर है वो बिल्कुल आइस कोल्ड एकदम चिल्ड ठंडा जो है ये होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए बैटर हमारा तैयार हो गई है, तो बैटर हमने बना लिया है, अब इसे आगे कैसे करना है, ये जो हनीकॉम इसका में जो जाली बनती है कैसे बननी है ये बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग ऑनर्स। रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें सैटरडे का दिन है और आपके लिए घेवर की कमाल टेस्टी रेसिपी लेकर के आपके पास आ गई हूँ। अच्छा, मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे इसका बैटर बनाएंगे घेवर का, अब बात करते हैं कि ये बनाना कैसे है। देखिए, एक छोटा चम्मच या बॉटल से आपको बैटर जो है, जैसे जो सॉस जो बॉटल होती है, सॉस बॉटल में आप इसे भर लीजिए, सॉस को निकाल दीजिए और साफ कर लीजिए, उसके बाद इसमें बैटर आप भर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक पतीले के बिल्कुल बीच में 7 से 8 इंच की ऊंचाई से आपको धीमे धीमे करके ये बैटर डालना है। तेज झाग जो है, बबल्स जो हैं वो आएंगे, जब झाग बैठ जाए तब आपको दूसरा चम्मच यानी कि दोबारा से वो डालना है। ऐसे आपको 15 से 20 बार आपको जो है ये बैटर को जो है वो डालना होगा। और एक जो लंबा सरिया होता है या फिर बेलन होता है, इससे के बीच में आपको एक छोटा सा होल बनाते रहना है, ताकि उसी होल में आपको जो है ये बैटर डालते रहना है। इस तरह से आप बनाए रखेंगे। जब किनारे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपको क्या करना है, जो भी आप जैसे उठाएंगे, जो चम्मच है या फिर जो हल्के हाथ से आपको इसे उठाना है, प्रेस करके देखिए घी जो है डूबे उसमें अच्छे से डूब जाएगा। और उसके बाद आप इसे अच्छे से जो है घेवर को जो है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दीजिए। जैसी हो जाए आप इसको निकाल लीजिए और छलनी पर इसे रख दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा घी जो है वो निकल जाए। अब ठंडे घेवर पर आपको गुनगुनी एक तार की जो चाशनी है वो डालनी है, ऊपर से ढेर सारी जो केसर वाली जो रबड़ी है जो वो है वो आपको डालनी है। तो शाही घेवर जो है बनके रेडी हो जाएगा। और जो मलाई बनाएंगे ना अब, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, दूध जो है वो लेना है थोड़ा सा, और उसमें जो मलाई आपने, क्योंकि फुल क्रीम दूध है, इसको आप चलाते रहिए, गाढ़ा होते होते इसमें थोड़े से आप चीनी डाल दीजिए, चलाते रहिए, आप देखेंगे उसमें रबड़ी जो है वो तैयार होने लगेंगी, आसपास के किनारों पे जो मलाई वो आने लगेगी, उसे मिलाते रहिए। इसके बाद उसमें इलायची डाल दीजिए, और इलायची डालने के बाद आप इसमें क्या कीजिए, केसर के धागों को दूध में भिगो के रखिएगा, और उसके बाद वो जब अच्छे से भीग जाए तो उसमें डाल दीजिए, अच्छे से चलाइए। ये जो ऊपर की शाही क्रीमी है ना आपकी लेयर, ये बन के तैयार हो गई है। घेवर को इस घेवर के ऊपर ये डाल दीजिए, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर से आप इसमें पिस्ता और जितने भी जो चीज़ें हैं, जो आपको शाही पिस्ता बादाम डालना है उससे सजा दीजिए, और चांदी वर्क अगर आपके पास है तो उसको आप टैप करके लगा दीजिए। बस हो गया टेस्टी, जो मार्केट वाला हलवाई स्टाइल शाही रॉयल घेवर है, ये बिल्कुल बनके घर पर तैयार हो गया है। कुछ ज़्यादा थोड़ी किया हमने, कितना ईजी है ना, बस स्टेप बाय स्टेप। और ध्यान रहे, ठंडा होना चाहिए जो बैटर होगा, और जो घी होगा वो अच्छे से गर्म होगा, और बस यही जाली जो है ये आराम से बन जाएगी। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आपके पास लेकर के आई हूं घेवर कैसे बनाना है ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया रेसिपी। अब कुछ कुकिंग टिप्स की बात हो जाए तो देखिए, बैटर जो है जैसे कि मैंने कहा एकदम आइस कोल्ड बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। फ्राइंग घी का जो सुपर हॉट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही घी में जाते ही बैटर जो है ये फटकर हनीकॉम जो जाली है ये बनती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर का ही खेल है जितना है सारा का सारा जो घेवर में होता है। इसी के साथ अगर हाथ से घी को आपको मक्खन बनाने में थोड़ा सा थकान हो रही है तो घी आपको क्या करना है, घी और आइस क्यूब को सीधा मिक्सर ग्राइंडर में डालकर 30 सेकेंड्स जो है इसको आपको चला देना है, 30 सेकेंड प्लस मोड पर चला देना है। इंस्टेंट क्रीमी वाइट घी जो है ये बन जाता है, ज़्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं आती है। इसके साथ साथ घी जो है देसी घी बॉडी को जो है ये देखिए मॉनसून सीजन में थोड़ा सा जॉइंट लुब्रिकेशन देता है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, मिठास मूड को अपलिफ्ट करता है। तो अगर ज़्यादा मीठा मत कीजिएगा तो ठीक रहेगा आपके लिए भी। और

सेहत के लिए भी अच्छा है। ठंडी रबड़ी वाले मलाई घेवर को आपको मिट्टी की प्लेटर्स पे आपको जो है वो देना है। ऊपर से आप थोड़े गुलाब की पंखुड़ियां भी लगा सकते हैं, ऐसे सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत कमाल लगता है। तो आपको कैसा लगा आज का हमारा ये घेवर, ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रेस्ट्रॉन 7.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ बता दूं आपको, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको अपना एंड्रॉइड या मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स मिल रहा है रेडियो मानव रचना, जिसके बाद ढेर सारे पॉडकास्ट एक्सपर्ट के एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी। और ज्यादा एंटरटेनमेंट और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, रेडियो मानव रचना के नाम से आप जो है हमें खोज सकते हैं। चलिए लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़ रही और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मारे वरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का। आज हमने करी है बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए क्योंकि रेडियो मारे वरचना आपके लिए ढेर सारे प्रोग्राम्स बहुत सारी बातें लेकर के आता है। तो बस मुझे दीजिए इजाजत और मुलाकात होगी आपसे कुछ ही देर बाद, क्योंकि लेकर के आ रही हूँ प्रोग्राम सफरनामा जिसमें आपको कहीं घूमने लेकर के जाती हूँ। तो चलिए अब मुलाकात होगी आपसे 11 बजे 11 से 1 प्रोग्राम सफरनामा लेकर के आऊंगी मैं यानी कि आरजे साक्षी। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइव। बाय बाय टेक केयर।
1: लागा गोरी गुजरिया से

0: थई थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झाक।
1: आंख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जो करता है आपकी पृथ्वी की रक्षा, आपको देता है बहुत सारी जानकारियां पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी, और जीवन के बहुत सारे और भी कार्य जो हम करते हैं दिन भर में वो पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक होते हैं और उनको ठीक करके आप अपने इस एनवायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, इन विषयों पर करते हैं हम हर हफ्ते बातें अपने एक्सपर्ट्स के साथ। कार्यक्रम का नाम है ग्रीन ग्रह, जिसको आपके बीच लेकर आए हैं डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, इको क्लब, पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड, और बहुत सारी बातें इस कार्यक्रम में आज भी हम करने वाले हैं। लेकिन आज हम जिनसे आपको रूबरू कराएंगे, बेसिकली उनको स्टूडियो में लाकर आपसे रूबरू कराने का मकसद ये है कि ये जो कार्यक्रम है ग्रीन ग्रह, जिसमें हम अलग अलग एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं, ये कार्यक्रम आखिर है क्यों, इसका पर्पस क्या है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कौन इस कार्यक्रम को पूरे तरीके से चला रहा है, क्योंकि ये सिर्फ रेडियो पर नहीं आता, ये फरीदाबाद के अलग अलग कोनों में जाता है। ये कार्यक्रम केवल एक रेडियो प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत बहुत से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण और वेस्ट सेग्रीगेशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये धरती हमारे पास सिर्फ एक लौता प्लैनेट है जिस पे हम जीवित रह सकते हैं, कोई और प्लैनेट नहीं है, देयर इज नो प्लैनेट बी। सो इसीलिए इस प्लैनेट का ख्याल रखने के लिए भी हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। आज तक जो हम गलतियां करते आए हैं, चाहे वो ढेर सारा प्रदूषण फैला कर हो, चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, चाहे वो इंडस्ट्री से निकलता हुआ धुआं या बहता हुआ खराब पानी हो, या घर में यूज होने वाले बहुत सारे डिटर्जेंट्स या अलग अलग केमिकल्स हों, या फिर हमारे रोजमर्रा की शॉपिंग जिससे आप ढेर सारा प्लास्टिक जो है इधर से उधर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जनरेशन्स को नुकसान पहुंचा रही हैं, और इसका नेगेटिव असर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी से ही टेम्परेचर का अचानक से इतना बढ़ जाना, अलग अलग शहरों में बाढ़ का आ जाना, बहुत सारे ऐसे देश जहां पर बहुत गर्मी हुआ करती थी वहां पर बाढ़ आ जाना, या फिर उन देशों में जहां पर बहुत ठंड हुआ करती थी वहां का टेम्परेचर अलग से राइज कर जाना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के संदेश हैं जिनको अब हमें समझना चाहिए। सो आज हमारे साथ दोस्तों स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन से प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर वैशाली माथुर, जो बहुत से अलग अलग कार्यक्रमों को जो डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन द्वारा किए जाते हैं उनको देखती हैं, उसकी प्लानिंग करती हैं अपनी टीम के साथ और उनको आप तक लेकर आती हैं। सो वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू दीक्षा मैम, मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया।
0: वैशाली जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन एक ऐसा एनजीओ है, एक ऐसा फाउंडेशन है जो सिर्फ और सिर्फ एक मानव रचना के संस्थान तक सीमित नहीं है, उनके फाउंडर डॉक्टर ओपी भल्ला जी की जो सोच थी उसको आगे लेकर चला है और पूरे शहर में ही नहीं पूरे एनसीआर में अपने अलग अलग कार्य कर रहा है।
1: हाँ जी मैम।
0: लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे लिसनर्स ऐसे हैं जिनको इस संस्था के बारे में, डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है इनके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है, तो मैं चाहूँगी पहले आप हमें ये बताएं फिर हम उसके बाद बात करें ग्रीन ग्रह के बारे में।
1: तो डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन 2014 में शुरू हुआ था हमारे फाउंडर डॉक्टर ओपी भल्ला जी की याद में, और कम्युनिटी वेलफेयर हमारा टारगेट है, हमारा पर्पस है कि जितना हम कर सकते हैं कम्युनिटी की भलाई के लिए वो हम करें, और हर फील्ड में करें। हम एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं, हम बच्चों को स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप्स के थ्रू फीस में पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, उसके अलावा हम हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स, हेल्थ कैंप्स, अनीमिया पे काम कर रहे हैं, मैमोग्राफी कैंप्स लगाते हैं, फ्री चेकअप्स करते हैं, उसके अलावा जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से कि एक है जहां हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करते हैं, 1,00,000 से ऊपर हम सैनिटरी नैपकिन्स बांट चुके हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, और कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम एनवायरनमेंट की भलाई रिसाइकलिंग से कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एक इनिशिएटिव है रद्दी, जिसमें हम पेपर को रिसाइकिल करके नोटबुक्स बना लेते हैं और फिर हम उन नीडी बच्चों को दे देते हैं। तो एक चीज जो कूड़ा बन सकती थी वो किसी के काम आ रही है, उसकी एजुकेशन को सपोर्ट कर रही है। इसी तरह से एक हमारा प्रोजेक्ट है जहां हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंचेस क्रिएट करवा लेते हैं और वो बेंचेस कम्युनिटी में लगाते हैं। ग्रीन ग्रह जिसके भी आपने बात करी वो वन ऑफ अवर इनिशिएटिव्स है, जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ग्रीन ग्रह नाम हमारा कॉपीराइट है, जो हमारे ही इंटर्न्स जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने शुरू किया और उन्होंने इसका कॉपीराइट भी लिया, और इस प्रोजेक्ट में हम बात करते हैं हर घर से जीरो वेस्ट की।
0: Okay.
1: अगर किसी घर से कूड़ा ही नहीं निकलेगा किसी भी तरह से, तो वो कूड़े के जो लैंडफिल्स हैं वो नहीं बनेंगे.
0: बिल्कुल.
1: और दिस इज व्हाट हमारा विजन यही है, हम दिस इज व्हाट वी टारगेट कि ग्रेजुअली स्लोली एंड एज एंड व्हेन पॉसिबल हम पूरे शहर को जीरो वेस्ट कर दें, ना कूड़ा होगा, ना कूड़ा दिखेगा और ना ही बीमारियां फैलेंगी.
0: बिल्कुल, आपकी तो ये कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन शहर में जो हाल हम देखते हैं सड़कों पर जब हम निकलते हैं, तो वाकई अफसोस होता है कि ये वो शहर है जिस पर इतना पैसा लगाकर बड़ी सड़कें बनाई गई हैं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, स्मार्ट सिटी जिसको कुछ साल पहले नाम दिया गया था और प्लानिंग भी की गई थी, लेकिन एक कमी वो ये है कि कूड़ा सड़कों पर फैला हुआ है.
1: बहुत अफसोस होता है मैम ये देख के कि एक ऐसा शहर जो बहुत कुछ कर सकता है वो कूड़े के नीचे दब रहा है.
0: बिल्कुल. और बनवाड़ी का जो हाल रहा है
1: वो धीरे धीरे फरीदाबाद में भी बनता दिख रहा है.
0: जी बिल्कुल.
1: और जो ग्रीन ग्रह प्रोजेक्ट जो हमने सेक्टर 30-33 में शुरू किया है उसका टारगेट यही है कि कहीं से तो शुरुआत हो कि कूड़ा लैंडफिल्स में ना जाए, कूड़े के चट्टे ना लगे. तो इस प्रोजेक्ट में हमने पहले घरों घर घर जाके लोगों की काउंसलिंग करी कि आप और इको क्लब सोसाइटी हमारे साथ जुड़े और इन लोगों को, घर के लोगों को, हर एज ग्रुप के, नॉट जस्ट लेडीज, बच्चों को भी, जेंट्स को भी, सबको समझाया कि अगर वो अपने घर में कूड़े को डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो कैसे उनके कूड़े का यूटिलाइजेशन हो सकता है. फिर हमने इसी कॉलोनी में एरोबिन्स लगाए. IPCA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, उनके साथ मिलके उन्होंने हमें एरोबिन्स दिए जो हमने वहाँ पे लगाए. और जिन घरों से सेग्रीगेशन शुरू हुआ वो वेट वेस्ट जो कि किचन वेस्ट होती है वो हमने उन एरोबिन्स में डालना शुरू किया और कंपोस्ट बननी शुरू हुई, विच वॉज हेल्दी रिसाइकलिंग कि आपने कूड़ा दिया उसकी कंपोस्ट बनी, उससे आपके पौधों में खाद चली गई. साथ में जो उनके यहाँ से ड्राई वेस्ट निकला जैसे कि पेपर और प्लास्टिक, उसको जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं के अंतर्गत हमने उनको रिसाइकिल करना शुरू किया. नोटबुक्स रिसाइकिल करके बनाई जो उनके ही आसपास के गवर्नमेंट स्कूल में बांट दी. और जो प्लास्टिक रिसाइकिल हो रहा है उसको हम बेंचेस के फॉर्म में उसी कॉलोनी में लगाते जा रहे हैं, विच इज़ अ मोटिवेशन फॉर दीज पीपल कि जो उनके घर का कूड़ा है वो कैसे यूटिलिटी की चीज़ बन सकता है. और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने बहुत सारे सेशंस लिए, नॉट घरों में जाके, फिर हमने इवेंट्स करे जहाँ हमने बच्चों के साथ गेम्स, जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात करी, लेडीज़ के साथ उस तरह की एक्टिविटीज़, कम्युनिटी के जनरली लोगों के साथ एक्टिविटीज़, वो सब करी. और हमने हर घर में दो दो डस्टबिन, एक ग्रीन और एक ब्लू, खुद से बांटा ताकि जो लोगों को एक, अगर उनको ये क्वेश्चन रहता है कि हम कहाँ रखें सेग्रीगेट करके, ऑल्दो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लोग खुद भी कर सकते हैं, बट दिस वॉज जस्ट मोटिवेशन फ्रॉम आवर साइड
0: कि हम आपको स्टार्ट करिए.
1: जी हम आपको डस्टबिन दे रहे हैं, आप इनमें कूड़े को डिस्ट्रीब्यूट करके सेग्रीगेट करके रखिए. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड वी आर होपिंग कि वी अचीव अवर गोल्स. हम ई वेस्ट भी वहाँ पे कलेक्ट करते हैं जिसको हम ई वेस्ट रिसाइकलर को दे देते हैं ताकि वो सिक्योरली इसको प्रोसेस कर दें. और कपड़ा जो लोगों के घर से निकलता है, देर बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो हम रोज़मर्रा में रियलाइज़ नहीं करते कि हमने डोनेशन दे दिया. हम डोनेशन देते हैं उस कपड़े का जो अब हम पहनते नहीं, बट उस कपड़े का क्या जिसको हमने डस्टर की तरह यूज़ किया.
0: बिल्कुल.
1: या पोछे की तरह यूज़
0: किया, हम कूड़े में,
1: उनको हम कूड़े में फेंकते हैं और वो बहुत मुश्किल से गलता है, यानी कि वो लैंडफिल्स में इकट्ठा होता रहता है. तो हमने वो कपड़ा भी इकट्ठा किया लोगों से और उनको भी हम रिसाइकिल कर देंगे ताकि उनसे नए जूट बैग्स या ब्लैंकेट्स, इस तरह की चीजें बन जाए,
0: कुछ भी रिसाइकिल,
1: किसी के काम आ जाए.
0: बिल्कुल बिल्कुल. और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप पहले लोगों को ये गाइड करें कि कूड़ा होना ही नहीं चाहिए.
1: जी
0: मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके घरों से बहुत कम कूड़ा निकलता है क्योंकि वो पहले ही उसको सेग्रीगेट कर देते हैं. जो चीज़ घर में नहीं रखी जा सकती या नहीं रिसाइकिल हो सकती वो बेसिकली उसको फेंकते हैं. तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही बड़ा सा बैग लेते हैं, उसी में चाय की पत्ती भी जा रही है, उसी में सब्जी फल के छिलके भी जा रहे हैं और उसी में ही कोरियर के पैकेट भी जा रहे हैं.
1: बिल्कुल, वो ही बंद करना है.
0: जी
1: द मोमेंट वी स्टार्ट डूइंग दैट, जब हमारे घर से कूड़ा निकलना बंद हो जाएगा या अगर निकल रहा है तो सेग्रीगेट होके निकल रहा है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमें शहर को देख के शर्म आती है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी.
0: बिल्कुल बिल्कुल. ये एक बहुत बड़ा धब्बा जैसा लगता है कि आपका शहर कभी मैनचेस्टर ऑफ हरियाणा या इंडिया कहलाया जाता था. बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स की बात होती थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई थी, लेकिन आज जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो सरकार ने सड़कें बना दी हैं, ग्रेटर फरीदाबाद में बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बन गई हैं, मॉल्स भी अच्छे बन गए हैं, सब कुछ बढ़िया, हाईवे बहुत अच्छा, एक्सप्रेसवेज निकल रहे हैं, लेकिन उसके साइड में एक सड़क जा रही होती है, सड़क के साइड में जो खाली जगह होती है वहां पर कूड़े के ढेर होते हैं
1: और वो उड़ के सड़क पे भी,
0: वो सड़क पे भी आते हैं।
1: और मैम मुझे ऐसा लगता है, और एज डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन भी हम यही मानते हैं कि हर चीज़ किसी और की जिम्मेदारी बनाने की जगह अगर हम अपनी खुद की जिम्मेदारी समझें तो हम हर टारगेट अचीव कर सकते हैं। हमारे सिटीजन्स अगर ये अपनी जिम्मेदारी समझें कि वो कूड़ा फैलाएंगे ही नहीं, कूड़ा देंगे ही नहीं, वो कूड़ा खुद ही सेग्रीगेट करके रिसाइकिल कर देंगे, तो अपने आप ही शहर साफ हो जाएगा। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अथॉरिटीज़ वो कूड़ा जो आपने फैलाया है वो साफ़ करें। वो एक बार साफ़ कर भी दें तो उसको आप एज अ सिटीज़न मेंटेन करिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ग्रीन ग्रह में हम इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमने कूड़ा जनरेट किया है तो उसको कहीं ना कहीं डिस्कार्ड करना, उसका सही यूज़ करना, उसको सही जगह पर पहुंचाना, वो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हम नहीं निभा रहे हैं बखूबी, तभी शायद आपको इस पूरे कैंपेन की ज़रूरत पड़ी। बहुत सारी और भी आप इनिशिएटिव्स ले रही हैं, मैं रिसाइकलिंग के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। जो प्लास्टिक होता है, हर चीज़ प्लास्टिक में आ रही है
1: जी।
0: अब ये जो प्लास्टिक है हम कैसे कलेक्ट करें, हम आप तक कैसे पहुंचाएं, बहुत सारे लोग हमको सुन रहे हैं और वो शायद ये नहीं जानते कि ये प्लास्टिक, ये थैलियाँ, ये लिफाफे जो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जब आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं तो हर चीज़ प्लास्टिक में बंद है, हर चीज़। एक दिन मैं स्पेशली 5 मिनट यही ऑब्जर्व करती रही दुकान पर खड़ी होकर, और एक बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, बहुत छोटी दुकान थी जो गलियों में होती है, और उस दुकान पे यही देखा, बिस्किट के पैकेट से ले के एक छोटे से साबुन के रैपर में भी, एक शैम्पू का पाउच भी, एक केचप का पाउच भी, ऑल इज प्लास्टिक।
1: मैम बहुत सारे लोग जब हम उनसे कहते हैं कि आप प्लास्टिक मत यूज़ करिए या प्लास्टिक हमें दीजिए, तो वो ये कहते हैं कि जी हम तो प्लास्टिक यूज़ ही नहीं करते। तो मेरा पहला सवाल उनसे यही होता है कि जब आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले जब आप ब्रश करते हैं
0: तो
1: चाहे आप वो बैम्बू का टूथब्रश ले आइए, पर
0: टूथपेस्ट तो उसके प्लास्टिक के होते हैं, और
1: टूथपेस्ट आपका प्लास्टिक का है, आप नहाते हैं, आपका सोप एक प्लास्टिक रैपर में है, आपके बॉडी वॉश एक प्लास्टिक बॉटल में है, आपका कॉम्ब एक प्लास्टिक का है, हर चीज प्लास्टिक है, वो सब आप इकट्ठे करते रहिए। और हमारा ऑफिस BG06 मानव रचना कैंपस, कभी भी जब आपको लगे कि आपको इस इनिशिएटिव का पार्ट बनना है, आप इस को इकट्ठा करिए प्लास्टिक को, हमारे को दे दीजिए, अगर आप हमारे आसपास हैं तो हम आपके घर से पिक भी कर लेंगे, हमें कोई उसमें परेशानी नहीं है, और हमारा मोटो आपके सहयोग से ही पॉसिबल होगा, अनलेस एवरीबडी जॉइंस इन शहर साफ नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, शहर साफ करना है तो सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, जो जो शहर में रह रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है नगर निगम का
1: जी।
0: नगर निगम, अब बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हम तो कूड़ा सेग्रीगेट करके देते हैं, गाड़ी आती है वो मिला के चली जाती है
1: जी,
0: वो जो कूड़ा एकत्रित करते हैं, जो भी इकट्ठा करते हैं गाड़ी में, वो मिक्स कर देते हैं उसमें, हालांकि कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक तरफ होता है गीला कूड़ा, एक तरफ होता है सूखा कूड़ा। सो क्या कहना चाहेंगे आप, अब ये कैसे ठीक करा जाए?
1: मैम ये बहुत हद तक लोगों की शिकायत सही भी है, मगर नगर निगम के पास अभी ऑथोराइज्ड वेंडर नहीं है, तो जब तक वो ऑथोराइज वेंडर नहीं आता, नगर निगम के हाथ भी कुछ हद तक बंधे हुए हैं। पर हम एज सिटीजन, जो मैंने अभी भी बोला कि हम एज सिटीजन अगर कूड़ा दें ही नहीं, हम वेट वेस्ट ही दें उसको, आप सारा ड्राई वेस्ट अपने पास रोक लीजिए और हफ्ते के हफ्ते 10 दिन में एक बार हमें दे दीजिए, तो वो वेट वेस्ट जब केवल एक ही तरह का कूड़ा लेगा तो मिक्स क्या करेगा?
0: बिल्कुल।
1: और वेट वेस्ट से इतना हार्मफुल नहीं होता, अगर वो कहीं पे उसको डंप करेगा तो उसे कंपोस्ट बन जाएगी ग्रेजुअली। सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है ड्राई वेस्ट, जो कि आपका कपड़ा, पेपर,
0: कभी खत्म ही नहीं होता,
1: प्लास्टिक जो कभी नहीं खत्म होगा,
0: पड़ा ही रहता।
1: तो डोंट गिव दैट, आप दीजिए ही नहीं तो मिक्स क्या करेगा?
0: और ये जो हैबिट होती है ये बहुत कम लोग जो है वो मैनेज कर पाते हैं, उनको लगता है घर को साफ कर दें, फटाफट से निकाल दें सारा कूड़ा।
1: घर में भी तो कंपोस्टिंग की जा सकती है, आप अपने घर में एक छोटा सा कंपोस्टर रख लीजिए और खुद कंपोस्टिंग करिए, आप अपने पौधों में उससे कंपोस्ट डालिए, आपके पौधे भी खूब बढ़िया खिलेंगे
0: जी। जी बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहता है किसी भी कार्य के लिए तो कैसे जुड़ सकता है?
1: मैम हमारी वेबसाइट पे हमारा नंबर है, हमें कांटेक्ट कर लीजिए, और वी आर ऑलवेज अवेलेबल, आपको जब टाइम मिले हमें कॉल करिए, और हमारे पास, हम BG06 मानव रचना कैंपस में हैं, वहाँ आ जाइए
0: जी।
1: हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 888-202-553 पे, और नॉट ओनली वेस्ट सेग्रीगेशन, हम और भी जितने इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं, किसी से भी रिलेटेड आपको कुछ हमसे पूछना है या हमारे साथ जुड़ना है, हेल्थ कैंप लगवाना है अपनी कम्युनिटी में, मैमोग्राफी कैंप करवाना है या किसी भी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए, आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए और हम वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट।
0: बिल्कुल डॉक्टर वैशाली, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, समाज सेवा की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा काम जो हर साल किया जाता है वो है मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का
1: जी।
0: और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेशन के रिचुअल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, हर 3-4 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करने जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जाते, जिन्होंने शायद आज तक 1 या 2 बार ब्लड डोनेट किया होगा। तो मैं चाहूँगी कि आप ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में भी लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें।
1: ब्लड डोनेशन एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके बॉडी में नया ब्लड जो बनता है वो आपके ही भला करता है, और इसके साथ आप किसी और का भी भला कर लेते हैं। एंड यू कैन ऑलवेज कम इन अवर ब्लड डोनेशन कैंप्स जो हर साल 16 सितंबर को हमारे कैंपस में होता है, तो अगर आप आसपास हैं, आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारे पास आइए, यहाँ पे ब्लड डोनेट करिए। इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर, एक ब्लड डोनेशन से आप 3 लाइव्स बचा सकते हैं और इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता है, हम बहुत सेफ प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं।
0: डॉक्टर वैशाली, एक हर साल मानव रचना कैंपस में एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है जो डॉक्टर ओपी भल्ला जी की पुण्यतिथि के मौके पर होता है 16 सितंबर को, और 16 सितंबर आने ही वाली है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा लोग कैसे बन सकते हैं, क्या जो लोग मानव रचना का भाग नहीं है वो भी आ सकते हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में?
1: जी मैम, कोई भी आ सकता है, जो भी कम्युनिटी में किसी का भला करना चाहता है वो आ सकता है। वो हमें 888-202-5553 पे कांटेक्ट करें और दे आर मोस्ट वेलकम, वो हमारे मानव रचना कैंपस में आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
0: हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग जुड़ते हैं कार्यक्रम ग्रीन ग्रह के जरिए, जो कि पर्यावरण के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से, अपने जीवन में से समय निकाल रहे हैं, सिर्फ देख कर अनदेखा नहीं कर रहे, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी ढूंढ रहे हैं। और आज हम इसी कड़ी में बात करने वाले हैं इको क्लब की फाउंडर मेंबर नीता गुप्ता जी से, जो कि आज हमें बताने वाली हैं ग्रीन ग्रह के बारे में। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
2: थैंक यू सो मच मैम।
0: सो नीता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ग्रीन ग्रह क्या है, क्योंकि हम एक प्रोग्राम सीरीज इसके अंडर लेकर आ रहे हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में प्रोजेक्ट है क्या, क्या काम करना है इस प्रोजेक्ट का?
2: ग्रीन ग्रह, जैसा नाम है कि ग्रीन, ग्रीन मतलब जैसे कि ये लोग सस्टेनेबिलिटी पे ये प्रोजेक्ट है, सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम है जो पी भल्ला फाउंडेशन का इन एसोसिएशन विद पीटीसी इंडिया फाइनेंस सर्विसेज, जैसा कि आपने भी कहा
0: जी।
2: तो जो ये प्रोजेक्ट है, इसका मेन फोकस है वेस्ट सेग्रीगेशन पे, रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग, मतलब जो वेस्ट है उसको प्रॉपर चैनल से विद द कॉपरेशन ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ कम्युनिटी।
0: जी जी
2: जी। तो हम लोग ओपी भल्ला फाउंडेशन से पिछले 8 साल से एसोसिएशन है हमारी, लेकिन ये प्रोजेक्ट, जैसा कि इको क्लब हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हम 2014 से रन कर रहे हैं, और वी आर वर्किंग ऑन अवेयरनेस, क्योंकि और कोई सोर्स, जैसे इनिशियली हम वेस्ट एग्रीगेशन पे काम, मतलब हम बात कर सकते थे, लेकिन उसका प्रोसेस, उसके वो हमें भी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बट विद टाइम हम समझ सके कि कैसे हम वेस्ट को कंपोस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और ड्राई वेस्ट को भी रिसाइकलिंग में दे सकते हैं। तो वी हैड अ सॉल्यूशन फॉर रिसाइकलिंग ओवर टाइम, और पर्सनली अपने लेवल पे कंपोस्टिंग कर रहे थे, लेकिन वो बहुत बड़ा रिमार्केबल कोई, मतलब अचीवमेंट नहीं हो पा रहा था कंपोस्टिंग के लिए। तो अल्टीमेटली आफ्टर 10 इयर्स हमें ओपी भल्ला फाउंडेशन से एक ग्रीन ग्रह प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया, एंड वी एक्सेप्टेड इट, कि उनका एक प्रोग्राम था जिसमें वो सेग्रीगेशन करके, और उसके लिए उनके पास आगे का पूरा रोड मैप था कि दे हाउ टू कंपोस्ट आवर कम्युनिटी वेस्ट। तो वी हैड अ मीटिंग विद MCF, उन्होंने हमें IPCA से इंट्रोड्यूस करा, दे IPCA इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ गिविंग एरोबिन्स, एरोबिन्स इज़ अ यूनिट जो हमारे किचन वेस्ट दैट वी कॉल एज वेट वेस्ट, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देती है. वी डोंट नीड एनी इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक कोकोपीट मिक्स करना पड़ता है. वो ब्राउन्स हमेशा ही आपको कंपोस्ट बनाने के लिए हमेशा ब्राउन्स ऐड करने ही है.
0: अच्छा,
2: तो वही सेम प्रोसेस उस यूनिट में भी हो रहा है.
0: जी,
2: वही
0: जी.
2: सेम प्रोसेस
0: जी, यानी ग्रीन ग्रह में भी वही कोशिश चल रही है. हाँ, जो आप इको क्लब के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं. बस ये है कि अप्रोच थोड़ी बड़ी हो जाती है.
2: बड़ी, हाँ जी. तो हमें कम्युनिटी लेवल का जब हमें मिला तो वी वर वेरी मच हैप्पी कि जो हमारा सपना था, हमारा विजन था, उसे अब हम इनके साथ चल के पूरा
0: कर सकते हैं. बिल्कुल. ग्रीन ग्रह से जब आपका इको क्लब जुड़ा, तो इको क्लब ने फिर लोगों को, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप सिर्फ वेस्ट सेग्रीगेशन पे काम नहीं करते हैं, आप प्लांटेशन पे भी काम करते हैं, आप प्लास्टिक हटाओ पे भी काम करते हैं, सो किस तरीके से और किन किन एरियाज में जाके ग्रीन ग्रह जो है वो काम कर रहा है?
2: ग्रीन ग्रह का अपना एरिया बहुत बड़ा है. वो लोग इसके, उनका मतलब ग्रीन ग्रह से तो उनका वेस्ट सेग्रीगेशन से ही रिलेटेड प्रोजेक्ट है, रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग, और उससे रिलेटेड वो मतलब लोगों को फैसिलिटेट करते हैं अपने मतलब गिफ्ट्स वगैरह से, जैसे रिसाइकल पेपर से नोटबुक्स बनवाते हैं तो वो स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, अपने मतलब अपने स्टाफ के जो मतलब जितना भी स्टाफ है ओपी भल्ला फाउंडेशन का, उनको मतलब एक मोटिवेशन के तौर पे, जैसे यदि आप अपना ड्राइवेस देते हो तो हम नंबर ऑफ कॉपीज आपको देंगे.
0: अच्छा.
2: वो रिसाइकल्ड पेपर की हैं,
0: यानी जो पेपर हम ऐसे ही फेंक देते हैं.
2: हाँ.
0: पुरानी कॉपी हो गई, किताबें हो गई, या फिर छोटे छोटे लिफाफे हो गए जो हम अक्सर लाते हैं, या कवर्स हो गए, न्यूज पेपर्स हो गए, ये सबको रिसाइकल किया जाता है.
2: हाँ जी.
0: और इनसे कॉपीज बनाई जाती हैं.
2: हाँ बिल्कुल, उससे रिसाइकल होके इतनी अच्छी कॉपीज बनाई हैं, पेपर क्वालिटी इज सो मच गुड कि मतलब जो लेता है वो भी बहुत हैप्पी होता है. मतलब आप देखो ना कि आप अपने वेस्ट से, यदि आप वेस्ट दे रहे हो तो उसके बदले वो नोटबुक्स दे रहे हैं ग्रीन ग्रह प्रोजेक्ट के अंडर. और बहुत नोटबुक्स स्कूल्स में भी दिए हैं. हम लोग भी जाते हैं, मतलब हर स्कूल में अवेयरनेस सेशन होता है, देयर आफ्टर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है नोटबुक्स का,
0: मतलब सब बच्चों को वो कॉपीज बांटी जाते हैं. ओके. थोड़ी सी बात हम बेंचेस की भी करना चाहेंगे, क्योंकि बेंच मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मानव रचना के कैंपस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, पार्क्स में ये बेंचेस रखे गए हैं. जनरली हम लोहे के बेंच देखते हैं रखे हुए पार्क्स वगैरह में, लेकिन ये प्लास्टिक के बेंच हैं और ये रिसाइकल्ड हैं और इतने खूबसूरत और कलरफुल हैं कि आपको लगता है कि पता नहीं कौन सा फर्नीचर है जो बड़ा महंगा बनाया गया होगा. तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए.
2: ये बेंचेस जो हैं वो नॉन वैल्यूएबल प्लास्टिक के हैं. नॉन वैल्यूएबल मींस कि जो प्लास्टिक को आप सेल नहीं कर सकते, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका एंड पॉइंट लैंडफिल ही है.
0: अच्छा.
2: जो उस पे ही डंप यार्ड पे ही जाएगा और आपके लैंड को पोल्यूटेड करेगा, एयर को पोल्यूट करेगा, इन वन और द अदर फॉर्म वो पोल्यूशन का ही क्रिएटर होता है.
0: जी.
2: तो उसको यदि आपने रिसोर्स की तरह यूज कर लिया उसको, तो आपके बड़े ही प्यारे बेंचेस जो दीक्षा जी आप कह रहे हो, रियली दे आर सो मच गुड क्वालिटी. इतने हैवी वो बेंच है कि कोई चाहे तो उन्हें हिला नहीं सकता. और द शेप ऑफ द बेंच वो आपके बॉडी के आर्क के हिसाब से इतनी कंफर्टेबल है कि हमारे अपने पार्क्स में दो बेंचेस हमने इंस्टॉल करवाए, तो जो एल्डरली थे वो वहां जाके बैठे तो उनको वो, उन्होंने क्यूरियोसिटी मतलब हुए कि व्हाई, हाउ दे आर हेयर, मतलब ऐसे बेंच हमने कभी कहीं नहीं देखे, तो ये कैसे आए. तो दे केम टू नो कि ये इको क्लब ने इंस्टॉल करवाए हैं. तो उसके बाद जब उन्हें पता चला कि ये वेस्ट से जनरेट, मतलब आपके रिसाइकल्ड प्रोडक्ट है ये.
0: जी जी.
2: तो वो सब आंटियां जो हैं वो रिसाइकलिंग के लिए वो प्लास्टिक इकट्ठी करने लगी
0: कि हमें और बेंचेस चाहिए.
2: हाँ, हमें और बेंचेस चाहिए, मतलब हमारे कूड़े से इतना अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया है. तो दे वर ऑल वेरी मच एंकरेज्ड फ्रॉम इट. और हमारा उस टाइम ड्राई वेस्ट कलेक्शन जस्ट डबल हुआ.
0: अच्छा.
2: वो बेंचेस ने हमारे को इतना
0: मोटिवेट कर दिया,
2: इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि सभी हमारे रेजिडेंट एल्डरली स्पेशली जो जल्दी कन्विंस नहीं होते किसी से, वो आंटियां इतनी कन्विंस हुई और उन्होंने वेस्ट लाना शुरू किया 21. अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगी कि हम 21 डेज में अपनी ड्राई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव करते हैं. ये जो कूड़ा
0: हर 21 दिन में.
2: हाँ, हर 21 दिन में.
0: आप अपनी कॉलोनी में करते हैं या कहीं और भी?
2: नहीं, हम अपने जो हमारा सोशल मीडिया है उससे सर्कुलेट कर देते हैं, यदि बाहर से भी आता है तो वो भी रिसीव करते हैं, बट ये स्पेशली हम अपनी कॉलोनी में ही, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी सेक्टर 32 जो है वो हमारा स्पेशली वर्किंग एरिया है, तो उसी में करते हैं, बट बाहर का भी हम एक्सेप्ट करते हैं. तो सेक्टर 28, सेक्टर 31, इवन सेक्टर 19 तक से भी लोग हमें कूड़ा देने आते हैं और रेगुलर बेसिस पे आते हैं 21 डेज.
0: जी देखिए, जो आपके लिए कूड़ा है वो आगे जाकर कितना काम कर सकता है. आपने तो पॉलिथीन फेंक दी होती हैं, लेकिन अगर आप उनको इकट्ठा करते हैं और हर 21 दिन में आप इको क्लब को दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी थोड़ी सी कोशिश है कि आपने सिर्फ पॉलिथीन और जो भी कुछ आपका प्लास्टिक का वेस्ट है जो भी है वो सारा अगर आप इनको दे देते हैं, तो एक बढ़िया सा खूबसूरत सा बेंच जो है वो आपको मिलेगा पार्क में लगा हुआ, जिसपे आप कभी भी जाके बैठ सकते हैं. और अगर आप अपने RWA या किसी भी संस्था के साथ आप जुड़े हों और आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं ग्रीन ग्रह के माध्यम से, इस पूरे प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं ईजिली. और इस तरीके का विजन अगर आपके पास भी है तो वो आपको भी सपोर्ट करेंगे.
2: अभी पीछे हम लोगों ने रेजिडेंट्स को भी डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट करे हैं ग्रीन ग्रह के ही थ्रू.
0: अच्छा.
2: ओपी भल्ला फाउंडेशन के सौजन्य से तो हर घर में दो ग्रीन बिन एंड ब्लू, दो कलर बिन हर रेजिडेंट को प्रोवाइड करे गए हैं, तो ये भी उनका इनिशिएटिव है.
0: यानी गीला या सूखा वो सेपरेटली डालें कूड़ा, जो
2: क्योंकि
0: भी...
2: कुछ लोगों को ये वाला वो आता है कि भाई हम दो बिन क्यों लाएं, हम तो पहले एक ही बिन यूज कर रहे थे, हम पहले एक ही बिन है हमारे पास, हम दूसरा बिन क्यों खरीदें.
0: कितना मुश्किल होता है कन्विंस करना लोगों को कि भाई बेसिक सी चीज़ है, कूड़ा अलग अलग डालो, कितना मुश्किल होता है.
2: देखिए चैलेंजिंग तो है ही, लोगों को लगता है कि क्यों कूड़े के साथ माथा लगा रहे हो, क्या जरूरत है कूड़े जैसी चीज पे इतने टाइम इन्वेस्ट, मनी इन्वेस्ट करने की. बट स्टिल जब कन्विंस हो जाते हैं और उन्हें लगता है, एक्चुअली क्या है कि लोग डरते दो ही चीज से है, या उनके बच्चों का नुकसान हो या उन्हें फाइनेंशियल नुकसान हो. फैमिली एंड फाइनेंस दो ही चीज है जो हमें अफेक्ट करती हैं. तो जब उनको ये कहा जाए कि आपके बच्चों के लिए बैड फ्यूचर है, पोल्यूशन को सब समझ ही रहे हैं, कैंसर जगह जगह देख ही रहे हैं,
0: बिल्कुल
2: तो उससे शायद कन्विंस होते हैं. अभी थोड़ा उतना प्रॉब्लम नहीं है. हाँ कुछ लोग तो होते हैं वो स्टबर्न होते हैं, उन्हें कुछ करना ही नहीं है, वो मतलब अपने घर के कम्फर्ट से ही खुश हैं, तो उनसे ज्यादा हम जिद करते भी नहीं है. लेकिन जो आपको लगता है कि हाँ शायद आपके साथ जुड़ जाए, उनके साथ मल्टीपल अप्रोच करते हैं, जो मुझसे नहीं हुई तो शायद उसके और किसी फ्रेंड से हो जाएगी, किसी और मेंबर से. तो
0: कोशिश तो आपकी
2: जारी है. जो हमने ग्रीन और ब्लू डस्टबिन जो डिस्ट्रीब्यूट करे हैं आईपी कॉलोनी में, वो हमारे 1200 पेयर्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन डस्टबिन,
0: यानी आपने 1200 सेट एक ब्लू और एक ग्रीन डिस्ट्रीब्यूट किया है. जी
2: 2400 डस्टबिन
0: जी. और ये हर परिवार को एक दिया है आपने?
2: हाँ जी, पूरी फैमिली RWA ऑफिस में आके लोगों को कलेक्ट करने थे. एक पॉइंट था तो लोग आए अपना, हमने एक स्लिप बनाई थी जिसके अंदर डाला होता कि वो प्लेज लें कि दे विल सेग्रीगेट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स.
0: तो यानी हर परिवार को दो डस्टबिन मिले, एक ग्रीन और एक ब्लू, ताकि कूड़ा सेग्रीगेट हो सके. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया आपने, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन
2: फ्री ऑफ कॉस्ट.
0: क्या बात है. मैं नीता जी आपसे जानना चाहूंगी अब चलते चलते कि अगर ग्रीन ग्रह प्रोजेक्ट में कोई RWA हमें सुन रही है या कोई भी संस्था हमें सुन रही है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल हमें सुन रहा है और वो जुड़ना चाहते हैं, वो भी ऐसी कोशिश करना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं?
2: तो इनिशियली तो वो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मैं नीता गुप्ता, मेरा नंबर है 9811908950. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो फेसबुक पे एनवायरनमेंट लवर्स के नाम से और इको क्लब के नाम से दो हमारे पेजेस हैं, उस पे को विज़िट ज़रूर करिए. हमारा पूरा काम जो 2014 से हम कर रहे हैं वहाँ उस पेज पे मिलेगा आपको. और इसके अलावा आप जा सकते हैं ओपी भल्ला फाउंडेशन वेबसाइट पे और वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ग्रीन ग्रह की भी, और आप उनसे कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, उनकी हेल्प आप कैसे ले सकते हैं, वहाँ आप विजिट कीजिए.
0: जी तो बहुत बहुत शुक्रिया नीता जी, आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, PTC फाइनेंस सर्विसेज और साथ ही इको क्लब ग्रीन ग्रह को लेकर कोशिश कर रहा है. और उम्मीद है कि ये जो ग्रीनरी की बात हम कर रहे हैं, जो पर्यावरण को अच्छा बनाने की बात हम कर रहे हैं, ये डेफिनेटली जल्दी से जल्दी वापस हो सकेगा, और बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ तो एटलीस्ट हो ही सकेगा। और इनका जो मोटो है, वी बिल्ड अ क्लीनर ग्रीनर एंड मोर सस्टेबल आईपी कॉलोनी, जो आपने बताया है वो हम कोशिश करेंगे। आप आईपी कॉलोनी से बाहर भी और भी बहुत कुछ करें, ये आप एक कदम उठा रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है। और जब महिलाएं कोई कदम उठाती हैं तो वो कदम बहुत मजबूत होता है, क्योंकि घर की नींव होती है एक महिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
2: थैंक यू सो मच।
0: तो प्रोग्राम ग्रीन ग्रह में हमने ग्रीन ग्रह के बारे में ही जाना, यानी इस प्रोजेक्ट के बारे में जाना। आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में, एक और ऐसे पर्यावरणविद व्यक्ति के साथ, एक ऐसे शख्स के साथ जो पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर रहे हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में कुछ बेहतर कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के साथ साथ हम कुछ सॉल्यूशंस भी आपको बताएं, जो हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से बताते ही आए हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। नंबर बहुत आसान है, 8010781078। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। हम इस कार्यक्रम में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन का, इको क्लब का, और साथ ही पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड का। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: यार हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर।
2: रेडियो सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया, आपका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हर हॉस्पिटल में एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है और ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर उन जटिल प्रक्रियाओं को पेशेंट्स के लिए और उनके फैमिली और रिलेटिव्स के लिए बहुत आसान बना देता है। वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है और जो जटिल प्रक्रियाएं हैं उनको सरल लहजे में समझाने का प्रयास करता है, ताकि पेशेंट्स को कम से कम परेशानियां उठानी पड़े। वो डॉक्टर्स से जुड़ी सारी चीजें और लॉ से जुड़ी सारी चीजें इम्प्लीमेंट करता है किसी हॉस्पिटल में, सारे पेपर्स तैयार करवाता है पेशेंट्स और डॉक्टर्स को ऑपरेशन के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए। सो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर से बात करने जा रहे हैं जो इन प्रक्रियाओं को बहुत सरल बना देता है। आज हमारे साथ हैं ज्योति जी, जो कि अपोलो हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हैं और वो बहुत से ऐसे केसेस देख चुकी हैं जिनमें उन्होंने सफल ऑर्गन डोनेशन करवाया है। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताएं कि आपका रोल क्या होता है, आपका जो मेन फोकस है वो किन चीजों पर रहता है।
3: आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं पिछले 2 साल से अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में एज अ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूं और मेरा मेन काम लिविंग और डिसीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट को कोऑर्डिनेट करना होता है, जिसमें मैं अगर डिसीज डोनेशन की बात करूं तो रोज आईसीयू के राउंड्स लेती हूं और सभी मरीज की केस हिस्ट्री को स्टडी करती हूं, और अगर कोई केस हो जो कि ब्रेन डेथ की और लीड कर रहा हो या सस्पेक्टेड हो तो उस केस के बारे में डॉक्टर्स से डिस्कस करती हूँ जो उनका इलाज कर रहे होते हैं, यानी कि ट्रीटिंग फिजिशियन और न्यूरो फिजिशियन, उनको इन्फॉर्म करती हूँ और अगर डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं तो मरीज की फैमिली की काउंसलिंग करती हूँ और उन्हें ये समझाती हूँ कि ब्रेन डेथ क्या होता है और इसके बाद आपके पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें कि ऑर्गन डोनेशन भी एक विकल्प है जिससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इसके अलावा लाइव ऑर्गन ट्रांसप्लांट में डोनर और रेसिपिएंट की फाइल प्रिपेयर करना, उन्हें ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया समझाना और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना भी शामिल है। इसके अलावा अवेयरनेस जनरेट करना भी मेरा एक काम है, जिसमें हॉस्पिटल के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ या जो नया स्टाफ है उनको अंगदान के बारे में बताना और हॉस्पिटल के बाहर जाके ऑफिसेज में या और कम्युनिटी में अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल होता है।
2: मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि जब हम ये बात करते हैं कि हम अपने जाने के बाद किसी को अंगदान करेंगे तो कितने लोगों की हम जिंदगियाँ बचा सकते हैं या कितने लोगों की जिंदगियाँ हम बेहतर बना सकते हैं, कि हम 9 वाइटल ऑर्गन्स डोनेट करके 9 लोगों की जिंदगियाँ बचा सकते हैं और 50 से ज्यादा टिश्यूज डोनेट करके इतने सारे लोगों की जिंदगियाँ बेहतर भी बना सकते हैं। ये वाइटल ऑर्गन्स जो है वो है 2 लंग्स, 2 किडनी, 1 लिवर, लेकिन इसको हम 2 अलग अलग लोगों में आधा आधा काट के लगा सकते हैं, 1 हार्ट, एक पैनक्रियास और एक इंटेस्टाइन। इसके अलावा जो मुख्य टिश्यूज हैं वो हैं कॉर्निया, स्किन, हार्ट वॉल्व्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेजेस। ये सारे टिश्यूज भी हम अपने जाने के बाद डोनेट कर सकते हैं। ज्योति जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जीते जी एक व्यक्ति अपनी एक किडनी या फिर लिवर का हिस्सा ही डोनेट कर सकता है, इस लिविंग ऑर्गन डोनेशन के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे।
3: जैसे कि आपने बताया कि लिविंग ऑर्गन डोनेशन में हम किडनी या लिवर का कुछ पार्ट किसी दूसरे व्यक्ति से ले सकते हैं, पर इसकी पहली शर्त ये होती है कि जो डोनर है वो हमारी फैमिली में से ही होना चाहिए। थोआ एक्ट के अकॉर्डिंग ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि कोई नियर रिलेटिव भी अपनी एक किडनी या लिवर का पार्ट डोनेट कर सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर से बात करनी चाहिए। बिना किसी दबाव के अगर वो अपनी सहमति से अंग का दान करना चाहते हैं तो डॉक्टर्स उनका पूरा चेकअप करेंगे और कंपेटिबिलिटी के लिए टेस्ट करेंगे, जैसे कि ब्लड ग्रुप मैचिंग, HLA मैचिंग, क्रॉस मैचिंग, इसके अलावा DNA मैचिंग और अदर टेस्ट भी होंगे जो प्रूव करने के लिए कि सही में ये उनके नियर रिलेटिव हैं। इस प्रक्रिया के बाद कमिटी के सामने इंटरव्यूज भी होंगे ये जानने के लिए कि डोनर पर कोई प्रेशर तो नहीं है। इसके अंतर्गत अगर सब कुछ सही रहा तो कमिटी इसको प्रूव करेगी और ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैं यहाँ ये जरूर और ऐड करना चाहूँगी कि कानून में नियर रिलेटिव्स में 6 रिलेशनशिप को बताया गया है, जो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी या नाना नानी, पेरेंट्स यानी कि आपके माता पिता, सिबलिंग्स यानी कि आपके भाई बहन, स्पाउस यानी कि आपकी पति और पत्नी, चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि आपके बच्चे या पोता पोती या नाता नाती शामिल हैं। इसके अलावा सभी रिलेटिव्स अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट में आते हैं। अगर किसी की फैमिली में से कोई डोनर नहीं है तो आपके दोस्त या आपके साथ काम करने वाले लोग इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और आपको ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अनरिलेटेड लिविंग ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है क्योंकि इसमें आपको ये प्रूव करना होता है कि डोनर और रेसिपिएंट के बीच में किसी तरीके का लेन देन तो नहीं हो रहा है, डोनर के ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, डोनर को कोई लालच तो नहीं दिया जा रहा है। इसमें आपको अपने डोनर के साथ फॉर्म भर के अपनी एप्लीकेशन हॉस्पिटल में सबमिट करनी होती है जिसमें आपकी और आपके डोनर से जुड़ी जानकारी होती है। हॉस्पिटल इस एप्लीकेशन को स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भेजेगा, वो इसकी जांच करेंगे। इस तरह के ट्रांसप्लांट में आपको जो भी डोनर होता है उसके और आपके किस तरीके के रिलेशनशिप हैं, क्यों वो आपको अंगदान देने जा रहा है, इन सभी के बारे में कमेटी पता लगाती है। डोनर और रेसिपिएंट का अलग अलग इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही जो कमेटी है वो डिसीजन लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत से केसेस में लोग जाली सर्टिफिकेट, जाली रिकॉर्ड बना कर लाते हैं और ट्रांसप्लांट करवाने की कोशिश करते हैं और बहुत से अपराधी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और ये पूरा अंग व्यापार चलता है। इसी को रोकने के लिए ये सभी नियम बनाए गए हैं और ये प्रक्रिया जटिल बनाई गई है ताकि अंग व्यापार को कम से कम किया जा सके और पूरी तरह से खत्म किया जा सके।
2: और अगर परिवार में कोई डोनर ना हो तो डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन की क्या प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें विस्तार से बताएं।
3: कैडेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट या डिसीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब जो हम किसी मृत व्यक्ति के ऑर्गन्स लेते हैं। इस तरह के ट्रांसप्लांट में व्यक्ति ब्रेन डेड होता है और उसकी फैमिली डिसीजन लेती है कि उसके अंगों को दान करना है। उन अंगों को उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो काफी समय से वेटिंग लिस्ट में होते हैं और जिनसे ऑर्गन मैच होता है। हॉस्पिटल तुरंत उन पेशेंट्स को संपर्क करता है और हॉस्पिटल आने के लिए बोलता है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि ये अंगों का एलोकेशन हॉस्पिटल खुद नहीं करता। जब भी किसी हॉस्पिटल में कोई अंगदान हो रहा होता है तो उस हॉस्पिटल को स्टेट की एजेंसी को ये बताना होता है और उस स्टेट की गवर्नमेंट एजेंसी जिसे हम SOTO स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो सभी हॉस्पिटल्स की कॉमन वेटिंग लिस्ट में से ये डिसाइड करती है कि ये अंग किसे दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट में नाम रजिस्टर करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एक ID प्रूफ चाहिए होता है जिससे कि आपको उस समय संपर्क किया जा सके। इसके अलावा फॉलोअप में रहने के लिए आपकी लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स भी चाहिए होती हैं जो कि टाइम टू टाइम आपको हॉस्पिटल में अपडेट करनी होती हैं।
2: ज्योति जी, आपके पास कैसे कैसे केसेस आते हैं, अगर कोई केस आपको याद हो जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
3: जी, मैं लिविंग ट्रांसप्लांट का एक केस आपसे शेयर करना चाहूंगी, जिसमें जो पेशेंट थे उनको कंबाइंड ट्रांसप्लांट यानी कि लिवर और किडनी दोनों की जरूरत थी। तो उनकी बेटियों ने, जो कि 18 साल और 21 साल

0: कहा कि जब भी हम कभी ऐसी लिविंग ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, एक लीवर या किडनी देने की बात करते हैं, तो लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी होती हैं इससे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मन में आता है वो ये आता है कि मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरी हेल्थ का क्या होगा, क्या एक किडनी मेरे लिए सफिशियंट है, क्या मैं किसी बीमारी से तो ग्रसित नहीं हो जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एक किडनी से हम अपनी पूरी लाइफ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको ये जान के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हर 20 में से एक बच्चा दुनिया में ऐसा पैदा होता है जिसकी जन्म से ही एक किडनी होती है, और अगर उसकी सोनोग्राफी या उसकी कोई जांच नहीं करवाई जाए तो उसको जिंदगी भर पता नहीं चलता कि वो एक किडनी के साथ पैदा हुआ है। सो हम एक किडनी से अपनी लाइफ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी से कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही लिवर के केस में है कि लिवर हमारी बॉडी में एक लौता ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट होता है। जैसे छिपकली की पूंछ कटने के बाद दोबारा बढ़ जाती है, वैसे ही लिवर को हम आधा काट के डोनेट कर सकते हैं अपने जिंदा रहते हुए। 3 से 4 महीनों के अंदर वो लिवर दोबारा बढ़ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि वो दोनों बच्चियां बहुत स्वस्थ होंगी, उनके पिताजी बहुत स्वस्थ होंगे। उन्होंने जो डिसीजन लिया अपने पिता की जान बचाने का, वो बहुत ही सराहनीय है। ज्योति जी, डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी हमसे कोई केस डिस्कस करें।
1: दूसरा केस मैं शेयर करना चाहूंगी डिसीज ट्रांसप्लांट का, जिसमें जो मृत व्यक्ति थे वो 26 साल के युवक, उनका एक्सीडेंट हुआ था और दिमाग पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी ब्रेन डेथ हो गई थी। डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट और ऑपरेशन भी किया, उसके बाद भी उनकी जिंदगी हम नहीं बचा पाए। फैमिली की काउंसलिंग की गई, जिसमें उनके माता पिता और उनकी बहन थे। उनको समझाया गया ब्रेन डेथ के बारे में और बताया गया कि आप किसी और की जिंदगी बचा सकते हो अपने बेटे के अंगदान करके। उसके बाद उनकी माता ने डिसीजन लिया और बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा किसी और में जिंदा रहे, और उन्होंने अंगदान करने का फैसला लिया और सहमति दी।
0: दोस्तों, ये बहुत ही टफ टाइम होता है कि जब किसी फैमिली के कोई प्रियजन की मृत्यु हो गई हो, वो ब्रेन डेड हो गया हो और उनसे अंगदान की बात कही जा रही हो। ये बहुत ही असहज सी स्थिति होती है, लेकिन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर इस काम को बहुत ही नम्रता से करता है। वो उस फैमिली से किसी दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए बात करता है, उसको समझाता है कि उनके एक हाँ कहने से कितने सारे लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं और कितने सारे लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाई जा सकती हैं। अंत में ज्योति जी, आप हमारे सभी लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं सभी श्रोताओं से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इंडिया नीड्स यू। भारत में अंगदान करने वाले लोग बहुत कम हैं और पेशेंट्स की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। प्लीज आप सभी अपने अंगदान करने का संकल्प जरूर करें, और ये करने के लिए आप ऑर्गन इंडिया के थ्रू www.organindia.org पे भी प्लेज फॉर्म भर सकते हैं और अपना डोनर कार्ड हासिल कर सकते हैं।
0: धन्यवाद ज्योति जी, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं अब जाने माने और सुप्रसिद्ध लेखक जावेद अख्तर जी के अंगदान पर विचार।
2: दोस्तों, मैंने ऑर्गन डोनेशन करने का फैसला कर लिया है और मैं कर रहा हूँ अभी। ये ऑर्गन डोनेशन क्या होता है? ये है कि कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसा वाकया होता है जिसकी वजह से आदमी का ब्रेन जो है वो डेड हो जाता है, बाकी जो बॉडी है वो जिंदा रहती है, दिल धड़क रहा है, बाकी जिस्म के जो हिस्से हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन डेड हो चुका है। अब जब ब्रेन ही डेड हो चुका है तो हम तो हैं नहीं, इसलिए कि हम जो कुछ हैं वो अपनी थिंकिंग है, अपने विचार हैं, अपनी सोच है, अपनी याद है, अपना ख्याल है। जब वो सब खत्म हो गया तो एक दिल है जो धड़क रहा है, कुछ आते हैं जो काम कर रही है, किडनी काम कर रही है, लिवर काम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं हैं, इसलिए हम तो यहाँ थे, रहे ही नहीं। तो अगर ऐसी हालत है तो क्या अच्छा हो कि ये जो बाकी ऑर्गन ठीक काम कर रहे हैं ये किसी ऐसे इंसान को दे दिए जाएं जो उसके काम आए। किसी आदमी के पास किडनी नहीं है, बाकी हेल्दी है, ठीक है, उसका तो ब्रेन भी काम कर रहा है, लेकिन किडनी ख़राब है, तो ये किडनी उसे दे दी जाए। किसी को लिवर का प्रॉब्लम है, कोई हार्ट ट्रांसप्लांट चाहता है, बीमार है, उसे आपका दिल मिल जाए और वो जिंदगी पा ले इससे। तो हम तो सच पूछो उस वक्त ख़त्म हो गए जिस दिन ब्रेन ख़त्म हो गया। अब ये जो जिस्म चल रहा है, कुछ दिनों बाद शायद इसकी धड़कन बंद हो जाएगी, सांस बंद हो जाएगी, और फिर इसे या तो जला दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा, किस काम का? अगर ये

0: जिंदा ऑर्गन है हम किसी को दे सके, और ये हम कब दे रहे हैं जब हम नहीं रहे। हम एक तरह से सोचिए तो जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, गुजर गए, तो क्या हर्ज है। और यही सोच के मैंने ये तय किया कि मैं ऑर्गन डोनेशन कर दूं, ये प्लेच कर दूं। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये मॉरली ठीक है कि नहीं, और ये रिलीजियसली ख़राब है या सही है, या लोग क्या कहेंगे, ये काम गलत है कि सही है। कोई काम जो दूसरों के काम आने का हो, कोई काम जिससे बहुत से लोगों की ज़िंदगी बच सके, वो बुरा काम कैसे हो सकता है? ये मेरी अक्ल तो नहीं मानती। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बारे में सोचें और अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, ख़ानदान से डिस्कस करें, दोस्तों से डिस्कस करें इसमें कितना सही है कितना गलत है। लेकिन जब बहुत ऑब्जेक्टिवली और ईमानदारी से, सच्चाई से आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये काम तो अच्छा है और करना चाहिए।
1: मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं, या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं, या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
2: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna, 107.8 FM.
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने सपनों को सिर्फ सपने तक ही रहने नहीं दिया बल्कि अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से और डेडिकेशन से उन्हें रियलिटी में बदल दिया है। और आज फिर से लेकर आ गई हूँ मैं एक और ऐसी ही कहानी जिसमें है ड्रीम्स, जिसमें है स्ट्रगल्स, रिस्क, फेलियर्स और सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेस। जी हाँ, हर इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए और वो सक्सेस के लिए सारे काम करता है जिससे वो अपनी लाइफ में अपना नाम बना सके और जमीन से आसमान तक की जो ऊंचाई छूने तक का जो सफर है ना उसे हासिल कर सके। तो बस इसी के साथ मेरे पास ना आपके लिए छोटा सा सवाल भी है कि आप में से कितने लोगों के पास बोट का ईयरफोन है या फिर हेडफोन है या फिर स्मार्ट वॉच है। हो सकता है आप इस वक्त मेरी आवाज़ भी अपने ईयरफोन्स में सुन रहे हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रांड को आज हम इतनी इजीली अपनी डेली लाइफ का पार्ट समझते हैं उसकी जर्नी शुरू कैसे हुई होगी? सोचिए सोचिए। तो आज का सक्सेस मंत्रा वही है। जी हाँ, आज के सक्सेस मंत्रा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने इंडियन यूथ की चॉइस को समझा, एक सिंपल आइडिया पर काम किया और उस आइडिया को एक पॉपुलर लाइफस्टाइल ब्रांड में बदल दिया। जी हाँ, उनका नाम है अमन गुप्ता। अमन गुप्ता, इनका नाम आपने सुना होगा, ये सोशल मीडिया पर भी स्टैम्प पे जब हम एक प्रोग्राम आता है वो आप मुझे बताइएगा, उस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि आपने इन्हें ना देखा होगा। और दोस्तों, अमन गुप्ता बोट के को फाउंडर है, लेकिन उनकी स्टोरी सिर्फ एक सक्सेसफुल कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है मार्केट को समझने की, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने की, रिस्क लेने की और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक ऑर्डिनरी आइडिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांड में कन्वर्ट करने की। आज जब हम हेडफोन्स, ईयरफोन्स या फिर स्मार्ट वॉचेस को खरीदने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बोट ने अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है। स्टाइलिश प्रोडक्ट्स हैं, अफोर्डेबल प्राइसिंग है और यंग जनरेशन से डायरेक्टली कनेक्ट भी करता हुआ है ये ब्रांड, और यही चीज अमन गुप्ता की जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेसफुल ब्रांड की स्टार्टिंग में एक स्टोरी होती है, एक पॉइंट होता है जहां किसी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या मैं सेफ ऑप्शन चूज करूं या फिर अपने आइडिया पर ट्रस्ट करके एक बार रिस्क ले ही लो। अमन गुप्ता की जर्नी में भी एक ऐसा ही मोमेंट आया, एक तरफ था एक स्टेब्लिश्ड करियर और दूसरी तरफ था एंटरप्रेन्योरशिप का अनसर्टेन पाथ, और उन्होंने क्या चूज किया होगा बताइए। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। तो आज के एपिसोड में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि बोट जो प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है, वो इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सक्सेस के पीछे कौन सा डिसीजन था, कौन से चैलेंजेस थे और क्या लेसन उसके पीछे छुपे हुए थे जिसे हम भी अपनी लाइफ में अपनाकर हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं यार। क्योंकि सक्सेस मंत्रा का मकसद सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि इस प्रोग्राम का मकसद है उनकी जर्नी से आपके लिए एक छोटा सा मैसेज आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी अपना कुछ स्टार्ट करने का ड्रीम देखते हैं, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है या फिर आप अपने करियर में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आज का सक्सेस मंत्रा आपके लिए है। चलिए अब थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं, उस वक्त जब अमन गुप्ता सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही नहीं थे बल्कि एक यंग प्रोफेशनल थे जो अपने करियर जर्नी में नए पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे आज पूरी डिटेल में इनकी जर्नी को, पर उससे पहले अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं अमन गुप्ता की जर्नी के साथ, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने ना बहुत कम एज में ना बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़े ब्रांड को इतना बड़ा नाम दे दिया, इतनी बड़ी कामयाबी तक पहुंचा दिया। दोस्तों अभी हमने बात शुरू की थी कि एक ऐसे ब्रांड की जो आज के बहुत यंग इंडियंस की डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है और उसका नाम है बोट। लेकिन हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है और किसी भी एंटरप्रेन्योर की कहानी को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस जाएं। तो चलिए आज के हीरो यानी कि अमन गुप्ता की जर्नी को थोड़ा और क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं। अमन गुप्ता का बैकग्राउंड बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ा रहा। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए की फील्ड में अपना करियर बनाया। उनका प्रोफेशनल जर्नी यही नहीं रुका, उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया और फाइनेंस और बिजनेस की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप भी किया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फाइनेंस बैकग्राउंड वाला पर्सन हेडफोन्स और ईयरफोन्स की कंपनी तक कैसे पहुंच गया। बस यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है स्टोरी का। दोस्तों लाइफ में ना कभी कभी हम जिस फील्ड में काम कर रहे होते हैं ना, जरूरी नहीं कि वही हमारी लाइफ की फाइनल डेस्टिनेशन बन जाती है। कभी एक जॉब हमें एक्सपीरियंस देती है तो कभी कोई फेलियर, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कभी कोई प्रॉब्लम हमें एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ लेकर जाती है। अमन गुप्ता के केस में भी उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आगे चलकर एंटरप्रेन्योरशिप में काफी यूजफुल रहा। बिजनेस को समझना, नंबर्स को समझना, मार्केट को एनालाइज करना और डिसीजन लेना, ये सब स्किल्स उनके अंदर इसी काम की जर्नी के दौरान ही आया। लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना कोई सिंपल डिसीजन नहीं होता है। जॉब में एक सर्टेन स्टेबिलिटी होती है, मंथली इनकम भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियर होती है, लेकिन बिजनेस में आपको खुद डिसीजन लेना पड़ता है। कभी रिजल्ट्स मिलते हैं तो कभी नहीं मिलते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और कभी रिस्क भी लेना पड़ता है। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है कि सक्सेस के लिए सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं होता, बल्कि कभी कभी ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत भी होनी चाहिए आपके अंदर, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो, आपके माइंड में कोई आइडिया हो, कोई सपना हो, लेकिन हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन अगर हम हर बार फेलियर के फियर्स की वजह से अगर रुक जाएंगे ना, तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम एक्चुअली में कितना कर सकते थे और कितना हमने खो दिया उसे ना करके। अमन गुप्ता की जर्नी भी हमें यही रिमाइंडर देती है कि करियर में एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जब हमें डिसीजन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा सेव ओपिनियन या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी, इन दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा हमें। और अमन गुप्ता ने एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चूज किया, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होने वाला था। एक आइडिया को कंपनी में कन्वर्ट करना, मार्केट में जगह बनाना और कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट तक पहुंचाना, ये काम बिल्कुल इजी नहीं था। तो कैसे हुई इसकी शुरुआत, करेंगे इसके बारे में भी बात, लेकिन अभी लूंगी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं अर्जित स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके मेहनत से, हिम्मत से उस ऊंचाई को छुआ है, अपना नाम को बनाया है और आज दुनिया में वो इतने फेमस हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, सब लोग उनके बारे में जानते हैं, जो कहते थे कि कल को शायद आप कुछ नहीं कर पाओगे पर आज वो खुद कहते हैं कि क्या काम करा है तुमने। दोस्तों बस ऐसा ही लाइफ में ना आपको भी मोटिवेट होना है और सबसे पहले तो आपको कुछ करके ना उन लोगों को दिखाना है जो शायद आपको डीमोटिवेट करते हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए करिए, हिम्मत जुटाइए और बस आगे बढ़ते जाइए। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अमन गुप्ता की जर्नी के बारे में। अभी तक हम अमन गुप्ता की जर्नी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां पर एक आइडिया ने धीरे धीरे एक बड़े ब्रांड का शेप लेना शुरू किया था। अब तक हमने जाना कि अमन गुप्ता का बैकग्राउंड फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ा था, उन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम किया, एक्सपीरियंस गेन किया और फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव किया। लेकिन अब सवाल ये है कि बोट का आइडिया आया कहाँ से। दोस्तों सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया अक्सर हवा में से नहीं आते, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम, नीड या फिर किसी गैप को ऑब्जर्व करने से आते हैं। और अमन गुप्ता और उनके बिजनेस पार्टनर समीर मेहता ने भी मार्केट में एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी को नोटिस किया। उस टाइम इंडिया में हेडफोन्स, ईयरफोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज का मार्केट ग्रो कर रहा था अभी, लेकिन कंज्यूमर्स के सामने एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। एक तरफ इंटरनेशनल ब्रांड्स थे जिनके प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव हो सकते थे और दूसरी तरफ था अफोर्डेबल ऑप्शंस, लेकिन उनमें डिजाइंस और ब्रांड अपील्स हर कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। यहीं से एक सिंपल थॉट सामने आया कि क्या इंडियन कंज्यूमर को ऐसा प्रोडक्ट दिया जा सकता है जो अफोर्डेबल भी हो, स्टाइलिश भी हो और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज भी ना करे। और इसी थॉट ने बोट की फाउंडेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 2016 में अमन गुप्ता ने और समीर मेहता ने बोट की शुरुआत की, लेकिन उनका फोकस सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बनाने पर नहीं था। उन्होंने समझा कि आज के यंग कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो एक्सपीरियंस, डिजाइन और आइडेंटिटी भी देखते हैं। आप खुद सोचिए, जब आप कोई ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स खरीदते हैं तो क्या आप सिर्फ ये देखते हैं कि उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है? नहीं ना, हम उसका डिजाइन देखते हैं, प्राइस देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, रिव्यूज भी चेक करते हैं और ये भी देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है या नहीं। बोट ने इसी कंज्यूमर माइंडसेट को समझने की कोशिश की। उन्होंने प्रोडक्ट्स को यंग जनरेशन की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग पोजीशन किया, ऐसे प्रोडक्ट्स जो म्यूजिक सुनने के साथ साथ स्टाइल स्टेटमेंट भी बन सके। और यहाँ से हमें सक्सेस मंत्रा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटी वही होती है जहाँ आप दूसरों से पहले कंज्यूमर की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। दोस्तों कभी कभी हम भी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नोटिस कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर वही प्रॉब्लम देखकर सोचता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और बस यहीं से एक आम लोग में और एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में डिफरेंस पता चल जाता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है और यही डिफरेंस एक नॉर्मल आइडिया और बिजनेस आइडिया के बीच होता है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम अमन गुप्ता की जर्नी के साथ चल रहे हैं और अब तक हमने जाना कि बोट के आइडिया किस तरह मार्केट की नीड को समझने से निकला। अमन गुप्ता और समीर मेहता ने एक सिंपल थॉट के साथ जर्नी को स्टार्ट किया, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अफोर्डेबल हो, स्टाइलिश हो और यंग कंज्यूमर की नीड को समझे। लेकिन दोस्तों, एक प्रोडक्ट बनाना और एक ब्रांड बनना दोनों अलग चीजें होती है। अब बोट की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी यही है। सोचिए, मार्केट में हेडफोन्स और ईयरफोन्स पहले से अवेलेबल थे, कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन की कमी नहीं थी, तो फिर बोट ने अपनी अलग जगह कैसे बनाई? इसका आंसर है ब्रांडिंग। जी हाँ, बोट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमारे ईयरफोन्स खरीदो, उन्होंने यंग ऑडियंस की लाइफस्टाइल को समझना और अपनी कम्युनिकेशन को उसी के अराउंड बिल्ड किया। जी हाँ, म्यूजिक, फिटनेस, ट्रेवल, गेमिंग, कॉलेज लाइफ, ये सब यंग जनरेशन की डेली लाइफ का पार्ट है। बोट ने अपने प्रोडक्ट्स को इन्हीं एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट किया और यहीं से बोट एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से धीरे धीरे यूथ लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में आइडेंटिफाई होने लगा। दोस्तों, ब्रांडिंग का सिंपल मतलब सिर्फ एक लोगो या फिर एक अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, बल्कि ब्रांडिंग का मतलब होता है जब कंज्यूमर अपना नाम सुनते ही एक पर्टिकुलर फीलिंग या फिर इमेज को इमेजिन करने लगे। जैसे बोट का नाम आते ही लोगों के माइंड में यंग, स्टाइलिश और ट्रेंडी इलेक्ट्रॉनिक्स की इमेज आ जाती है। इसके लिए कंपनी ने सोशल मीडिया को भी इफेक्टिवली यूज किया है। यंग ऑडियंस जहां एक्टिव थी, ब्रांड भी वहीं प्रेजेंट रहा। सेलिब्रिटीज, एथलीट्स, इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन ने भी ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ाने में रोल प्ले किया। और अब यहां एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन लोग उसके बारे में जानते नहीं है, तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है? मुश्किल है ना, क्योंकि जब लोग जानेंगे ही नहीं तो उसे खरीदेंगे कहाँ से। इसलिए बिजनेस में प्रोडक्ट के साथ प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बोट ने इसी चीज को सीरियसली लिया। उन्होंने प्रोडक्ट्स को सिर्फ टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं बल्कि लाइफस्टाइल के पार्ट के रूप में प्रेजेंट किया। आपने नोटिस किया होगा कि आज यंग कंज्यूमर्स के लिए ईयरफोन सिर्फ म्यूजिक सुनने का डिवाइस नहीं है, वो वर्कआउट के टाइम भी उसे यूज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में भी यूज होता है, ऑनलाइन क्लासेस और मीटिंग में भी उसे यूज करते हैं और कभी कभी फैशन एक्सेसरीज की तरह भी कैरी किया जाता है। बोट ने इसी चेंजिंग लाइफस्टाइल को अपने फेवर में यूज किया। और यहाँ से हमारे आज के सक्सेस मंत्रा का एक और इम्पोर्टेंट लेसन निकलता है कि अच्छा प्रोडक्ट आपको मार्केट में एंट्री दे सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रांड आपको मार्केट में आइडेंटिटी देता है। वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए सक्सेस जर्नीज, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं उनकी जर्नी से और आप भी सोचते हैं कि यार अगर ये इंसान कर सकता है, अगर इसके पास कुछ नहीं था इसने फिर भी कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों हम आज चल रहे हैं जिस जर्नी के साथ, उनका नाम है अमन गुप्ता। जी हाँ, अमन गुप्ता एक एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाया। और दोस्तों अब तक हमने अमन गुप्ता और बोर्ड की जर्नी के कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखे हैं। हमने जाना कि एक मार्केट नीड से आइडिया कैसे निकला और फिर एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को यूथ फोकस ब्रांड बनाने पर फोकस कैसे किया गया। लेकिन दोस्तों एक बात हमें अक्सर सक्सेसफुल पीपल की स्टोरीज में भूल जाते हैं कि हम उनकी सक्सेस देखते हैं, स्ट्रगल नहीं। आज बोट एक वेल नोन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, लेकिन जब कोई कंपनी शुरू होती है तब उसके पास आज जैसी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती, मार्केट में अपनी जगह बनानी पड़ती है, कंज्यूमर के ट्रस्ट को जीतना पड़ता है और हर स्टेप पर कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता है। अमन गुप्ता और समीर मेहता के सामने भी ये चैलेंजेस थे। मार्केट में ऑलरेडी कई एस्टेब्लिश्ड ब्रांड मौजूद थे, ऑलरेडी कंज्यूमर्स के पास मल्टीपल चॉइसेस भी थी। ऐसे में एक न्यू ब्रांड के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि कंज्यूमर हमें क्यों चूज करेगा, और इसका आंसर सिर्फ एक लो प्राइस नहीं हो सकता। अगर आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो कंज्यूमर को वैल्यू देनी पड़ती है। बोट ने अफोर्डेबिलिटी के साथ डिजाइन, फीचर और यूथ फोकस ब्रांडिंग पर भी फोकस किया, मतलब कंज्यूमर को ये फील हो सके कि उसे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है बल्कि उसकी नीड और लाइफस्टाइल को समझने वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बिजनेस में हर डिसीजन परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी तो प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कभी कभी तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करती, और कभी कॉम्पिटिशन टफ हो जाता है, और कभी ग्रोथ के साथ प्रेशर भी बढ़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि प्रॉब्लम्स आने के बाद भी सॉल्यूशन को ढूंढना, और यही थॉट हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं, क्या स्टोरी खत्म हो गई? नहीं ना। आप जॉब में किसी अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, क्या आपका करियर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या आपका ड्रीम खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। फेलियर एक रिजल्ट हो सकता है, लेकिन फेलियर को फाइनल डेस्टिनेशन बनाना जरूरी नहीं है। दोस्तों अमन गुप्ता की जर्नी से हम ये समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट चेंज होता है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस चेंज होती है, और टेक्नोलॉजी भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर को भी कंटिन्यूसली लर्न और अडेप्ट करना पड़ता है। और शायद इसी वजह से किसी भी सक्सेसफुल जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं होता कि आप कितनी बार जीते, बल्कि ये होता है कि आप कितनी बार गिरे और कितनी बार गिरने के बाद आप दोबारा खड़े हुए। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट रहा जब आपको लगा कि अब मुश्किल है लेकिन आपने फिर भी गिव अप नहीं किया? अगर आप रेडियो के थ्रू हमारे साथ जुड़े हैं तो आप अपने आंसर को ना दिल में जरूर याद कीजिए। और कभी कभी हमारी अपनी जर्नी भी किसी और के लिए सक्सेस मंत्रा बन सकती है, और आप इसे हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। हम इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, तो हमारा नंबर बहुत ही आसान है 8010781078 पर। इस पर हमें मैसेज करके या कॉल करके हमें अपनी जर्नी बताइएगा, कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपके साथ भी ऐसा हुआ हो पर आपने कभी हार नहीं मानी, तो हमें अपनी जर्नी को शेयर कीजिएगा, हम भी इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ अर्जित स्नेहा आपके साथ। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा, और अब हम अपनी कहानी के ऑलमोस्ट लास्ट फेस में पहुंच चुके हैं। अब तक हमने अमन गुप्ता की जर्नी, बोर्ड की आइडिया, ब्रांडिंग और बिजनेस चैलेंजेस के बारे में बात की। लेकिन दोस्तों, कभी भी सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उनका माइंडसेट। जी हाँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत लोगों को दिखती है, लेकिन हर कोई उस अपॉर्चुनिटी पर काम नहीं करता। अमन गुप्ता की इस जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि कस्टमर को समझने की कोशिश करिए। बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्या बनना है, बिजनेस का मतलब ये है कि कंज्यूमर को एक्चुअली क्या चाहिए। बोर्ड के केस में यंग कंज्यूमर्स की लाइफस्टाइल को समझना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा, जैसे कि म्यूजिक, फिटनेस, ट्रेवल, गेमिंग और एवरीडे लाइफस्टाइल।

इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट और ब्रांडिंग को पोजीशन किया गया, यानी पहले कस्टमर को समझो फिर प्रोडक्ट के बारे में सोचो। दोस्तों ये लेसन हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले ये समझने की कोशिश करिए कि एग्जाम एक्चुअली डिमांड क्या करता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो अपनी ऑडियंस को समझिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझिए। जब आप प्रॉब्लम को क्लियरली समझ लेते हैं सॉल्यूशन ढूंढना इजियर हो जाता है। अमन गुप्ता की जर्नी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन। आज के टाइम में सिर्फ अच्छा काम करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है बल्कि अपने काम को सही तरह से कम्युनिकेट करना भी इम्पोर्टेंट है। और अमन गुप्ता को हमने शार्क टैंक इंडिया के थ्रू भी देखा है। जी हाँ, शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसे आपने देखा है, आप इन्हें जानते हैं, टेलीविजन पर आपने इन्हें देख रखा है। एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक इंडिया जिसमें आपने इन्हें देखा है, जहाँ पर ये एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चंस फेस करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं। इससे एक सिंपल लेसन मिलता है कि अपने आइडिया पर कॉन्फिडेंस रखिए लेकिन क्वेश्चन से डरिए मत, क्योंकि क्वेश्चन हमें अपनी वीकनेस समझने का चांस भी देते हैं। और दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हमेशा परफेक्ट डिसीजन लेना नहीं होता है, बल्कि कभी डिसीजन आपका सही होगा और कभी गलत होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमने अपने डिसीजन से क्या सीखा है और नेक्स्ट स्टेप हम उससे सीख कर क्या बेटर बनाने वाले हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप क्या सेल करना चाहेंगे? फूड, फैशन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या कोई ऐसी सर्विस जो लोगों की डेली लाइफ को इजी बना सकें? एक मिनट के लिए सीरियसली सोचिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करना चाहेंगे। नंबर बहुत ही आसान है हमारा 8010781078 पर। और फिर अपने आप से एक सवाल पूछेगा कि मेरा आइडिया लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, जो भी आप करना चाहते हैं। बस यहीं से एंटरप्रेन्योरशिप की थिंकिंग आपके दिमाग में ना खुद आने लगेगी, आप खुद उसे सोचना शुरू कर देंगे। अमन गुप्ता और बोर्ड की जर्नी हमें ये भी बताती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है, उसके पीछे ऑब्जर्वेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, पेशेंस और कंटिन्यूस लर्निंग होती है। तो आज के इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्र है, आइडिया सबके पास हो सकता है लेकिन उस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए एक्शन जरूरी है। और अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और अब हम अपने सफर के आखिरी सेगमेंट में पहुंच गए हैं। पिछले सेगमेंट्स में हमने अमन गुप्ता की जर्नी को अलग अलग एंगल से समझा, एक फाइनेंस प्रोफेशनल से एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन, बोट का आइडिया, यंग कंज्यूमर्स को समझना, ब्रांडिंग, कॉम्पिटिशन और चैलेंजेस। हमने इस जर्नी के कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखे हैं, लेकिन अब सवाल है कि इस पूरी कहानी से हम अपने लिए क्या सीखते हैं। तो चलिए अमन गुप्ता और बोट की जर्नी से मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्रास को याद कर लेते हैं एक बार फिर से। पहला मंत्र है अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए। जी हाँ, बोट की जर्नी हमें बताती है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी तब भी हो सकती है जब ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हो, बस उसे पहचानने की जरूरत है। दूसरा मंत्र है रिस्क लेने से मत डरिए। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, जब तक गिरेंगे नहीं, तब तक सीखेंगे कैसे। तो इसलिए जब कुछ आए ना दिमाग में, उस पर काम करना और सोचना शुरू करिए और उस पर एक्शन लेना शुरू करिए, देखिए जरूर होगा। तीसरा मंत्र है कस्टमर को समझिए। जी हाँ, जब तक आप कस्टमर की नीड को नहीं समझेंगे ना, जब तक आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो आप सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे। चाहे आप बिजनेस करें या फिर अपने करियर में ग्रो करें, सामने वाले की नीड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा मंत्र है सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि आइडेंटिटी को बिल्ड करिए। जी हाँ, प्रोडक्ट ऐसी चीज है जो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जो ब्रांड होता है, जो आइडेंटिटी होती है, वो आपको कुछ ही चीजों की मिलेगी। क्योंकि हम किसी भी चीज को ना उसके ब्रांड से, उसके इमेज से ही याद रखते हैं कि वो क्या चीज है, क्या करता है और उसकी क्या जरूरत है हमें। तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करिए। पांचवा मंत्र है कि फेलियर से सीखिए। जी हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि फेलियर आ जाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके बोलते हैं कि अब नहीं हो पाएगा। पर नहीं, फेलियर आएंगे और वो शायद आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए आपको ना आगे बढ़ते रहना है, कभी उससे डरना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। एक दिन का मोटिवेशन आपको शायद स्टार्ट करा सकता है, लेकिन रेगुलर एफर्ट्स आपको डेस्टिनेशन तक लेकर जा सकता है। तो दोस्तों, इसलिए हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ना उसके ऊपर काम करिए, आप देखिए वो चीज आपको जरूर मिलेगी जो भी आप करना चाहते हैं। छोटा स्टार्ट कीजिए, उससे सीखिए, गलती कीजिए, इम्प्रूव कीजिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रांग माइंडसेट, कंसिस्टेंट एफर्ट और अपने आइडिया पर बिलीव आपको बहुत आगे ले जा सकता है। इसी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजी स्नेहा और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें अब मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगी कि सपना चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे रियलिटी बनाने की पहली स्टेप जो होती है वो हमेशा आपको ही लेनी होती है। तो इसलिए उस स्टेप को लीजिए और लाइफ में कुछ करिए, आगे बढ़िए। तो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए खुद पर ना भरोसा करिए, पॉजिटिव रहिए और अपने सपनों के लिए एक स्टेप जरूर लीजिए। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, पर आप जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।
1: गुड मॉर्निंग, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज ये प्रोग्राम लेकर के आई हूँ, शनिवार का आज दिन है और बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं। आज आपको बहुत ही खूबसूरत एक जगह लेकर के चल रही हूँ, अलग अलग जगहों पर इस प्रोग्राम के दौरान आपको घुमाने लेकर के जाती हूँ। हम एक्सप्लोर करते हैं, कभी हम भाई वेस्ट बंगाल एक्सप्लोर कर रहे हैं, कभी गुजरात कर रहे हैं, कभी जयपुर कर रहे हैं, कभी राजस्थान, कभी हम कश्मीर कर रहे हैं, लद्दाख कर रहे हैं। अलग अलग जगहों को हम देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, सुनते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर क्या खास बात है वहाँ की, वो सारी बातें हम जानते हैं। इसी के साथ आज भी ये प्रोग्राम लेकर के आई हूँ और आज आपको बताने वाली हूँ इस प्रोग्राम में ना, मैं एक ऐसी जगह के बारे में बात मैं करने वाली हूँ जो आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, इतनी खूबसूरत जगह। तो चलिए, इस प्रोग्राम में ना आज मैं बात करने वाली हूँ कन्याकुमारी की। अब कन्याकुमारी की बात हुई है और साथ ही प्यारे प्यारे गाने भी लेकर के आई हूँ, तो जरा आप गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए। मैं बस यूं गई और यूं आई। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती है बातें। आज मैं लेकर के आई हूँ आपको तमिलनाडु के एक बहुत ही खूबसूरत से जगह, मैं आपको लेकर के आई हूँ कन्याकुमारी। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है, जहाँ तीनों समुद्र एक दूसरे के गले मिलते हैं, वहाँ धरती का अंत नहीं, एक हसीन शुरुआत होती है। और देखिए, आज का ये जो प्रोग्राम है सफरनामा, 2 घंटे का हमारा प्रोग्राम, जिसमें मैं बहुत सारी बातें जो है वो करने वाली हूँ। और देखिए, आज हमारे नक्शे की अगर बात करें ना, तो जहाँ पर हमारा नक्शा जो है वो ख़त्म होता है और एक अनंत नीला आसमां शुरू होता है, और आज हम चल रहे हैं कन्याकुमारी। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी चट्टान पर खड़े हैं जहां आपके लेफ्ट में बे ऑफ बंगाल है और राइट में अरेबियन सी है, और सामने विशाल जो इंडियन ओशियन है, महासागर है, वो सामने है। तीनों समुद्र का पानी जब एक साथ टकराता है तो जो रंग बिखरता है उसे देखकर आप अपने सांसें रोक लेंगे, बहुत सुकून मिलता है, जैसे वक्त थम जाता है। जब आप पहली बार यहाँ जाएंगे, इस मिट्टी में कदम रखेंगे, तो हवा में एक खुशबू जो है वो अलग होगी और कानों में तीनों समुद्र का मिलन का एक विशाल संगीत होगा। आज के इस प्रोग्राम में ना, इसी जगह की मैं बात करने वाली हूँ, मैं बात करने वाली हूँ कन्याकुमारी के उन पवित्र गलियों में आज आपको ले जाने वाली हूँ, वहाँ के सनराइजेस और सनसेट्स का जादू आपको बताने वाली हूँ, और इस जगह की रूहानियत का भी आपको जो है अंदाज़ा एक थोड़ा देने वाली हूँ, मतलब मज़ा ही आने वाला है। तो आप कहीं मत जाइए इस प्रोग्राम में, आप बस मेरे साथ यानी कि आरजे साक्षी के साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel light.

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दिन.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

0: है बुलबुल
1: सच है बिल्कुल यू आर वंडरफुल
0: लग जा गले ए लग जा गले दुनिया चले छम छम छम छम छम छम छम ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है रोज

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती है बातें। आज का ये जो प्रोग्राम है लेकर के आई हूँ आपके पास, और आज हम घूमने के लिए आए हैं कन्याकुमारी। देखिए, आस्था जब सदियों पुरानी मिट्टी से जुड़ती है तो हर कंकड़ में एक पवित्र दास्तान उगती है। कन्याकुमारी का नाम सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, इसका इतिहास माता पार्वती का एक जो उनका रूप है उससे जुड़ा है। कहते हैं कि माता कन्याकुमारी ने बानासुरा नाम का एक राक्षस का वध करने के लिए इसी जगह पर एक पैर पर खड़े होकर बहुत ही कठिन तपस्या की थी। उनकी शादी भगवान शिव से होने वाली थी, पर कुछ ऐसी वजह हुई कि शादी नहीं हो पाई और माता हमेशा के लिए कुमारी रही। जब आप 3000 साल पुराने भगवती अमन टेंपल के अंदर जाते हैं तो आपके देखिए आपको अंदर से एक अलग एनर्जी महसूस होगी, और मंदिर के अंदर माता की मूर्ति के नाक में एक बहुत ही चमकता हुआ हीरा है, और उस नाक में जो हीरा लगा है कहते हैं कि पुराने जमाने में उस हीरे की चमक इतनी तेज थी कि समुद्र में चलने वाले जो शिप्स थे उसे लाइट हाउस समझने पर भाई मजबूर हो जाते थे और समझकर वो पत्थरों से टकरा जाते थे, और इसी वजह से मंदिर का समुद्र वाला जो दरवाजा है वो हमेशा के लिए बंद रखा जाता है। यहाँ आकर आपको समझ आएगा कि कन्याकुमारी की हवाओं में आज भी उस तपस्या की शक्ति बसी हुई है। चलिए अभी एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती हैं बातें। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में बात करूंगी। समुद्र के बीच खड़ा वो पत्थर बताता है कि तूफान के बीच भी शांति कैसे ढूंढी जाती है। समुद्र के किनारे से लगभग 500 मीटर दूर पानी के बीचों बीच दो बड़ी चट्टानें खड़ी हैं। उन्हीं में से एक पर स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक बड़ी जो बोट है उसमें बैठना होगा। कहते हैं कि 1892 में स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे और उन्होंने इसी चट्टान पर 3 दिन तक लगातार मेडिटेशन की थी, जहाँ उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिला। जब आप उस मेमोरियल के ध्यान जो मंदिर में अंदर जाते हैं तो वहाँ एकदम अंधेरा होता है और सिर्फ एक ओम का जो निशान है वो चमकता है। बाहर निकलते ही जब आप चारों तरफ देखते हैं तो सिर्फ गहरा नीला जो पानी है वो आपको दिखेगा और ऊंची लहरें चट्टानों से टकरा रही होंगी। वहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप पूरी दुनिया से अलग होकर कुदरत के बिल्कुल पास आ गए हैं और आपको बहुत सुकून महसूस होगा। चलिए इसी के साथ अभी एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगी, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ. बहुत सारी होती है बातें. इसी के साथ आज शनिवार का दिन है और आपके पास एक खास प्रोग्राम लेकर के आई हूँ जिसमें एक बड़ी खूबसूरत ये जगह जो है हम आज आए हैं. आज मैं आपको लेकर के आई हूँ कन्याकुमारी अपने प्रोग्राम सफरनामा में. और यहाँ पर जो चट्टान है यानी कि विवेकानंद रॉक के बिल्कुल पास दूसरी चट्टान पर खड़ी एक विशाल 133 फुट ऊंची ये मूर्ति है, थिरुवल्लुवार स्टैचू. ये महान तमिल संत और पोएट थिरुवल्लुवार की स्टैचू जो मूर्ति है ये वहां पर खड़ी है. इसी के साथ साथ देखिए, अगर आप इस मूर्ति तक जाना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर बोट करनी होगी. जब आप बोट से इसके पास से गुजरते हैं तो ये मूर्ति समुद्र के बीच के एक जो रक्षक जैसी आपको जो है वो खड़ी नजर आने वाली है, जो हर तूफान और हर लहर का डटकर सामना करती है. ये स्टैचू जो है हमें सिखाता है कि जो इंसान है भले ही चला जाए पर उनके अच्छे विचार और उनकी जो कला है वो हमेशा अमर रहती है. इसी के साथ साथ कुछ और भी बातें करूंगी आपसे, लेकिन अभी लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड,

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ. बहुत सारी होती हैं बातें आज लेकर के आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम, जिसमें मैं बात कर रही हूँ कन्याकुमारी की. जी हाँ, देखिए एक तरफ सूरज का ढलना और दूसरी तरफ चांद का निकलना, कुदरत का इसे हसीन रंगमंच और कोई हो ही नहीं सकता है. कन्याकुमारी पूरे इंडिया में ऐसी एकमात्र जगह है जहां आप एक ही स्पॉट पर खड़े होकर सूरज को डूबते हुए यानी कि सनसेट होते हुए और चांद को निकलते हुए यानी कि मून राइज एक साथ देख सकते हैं. खासकर चित्रा जो पूर्णामी जो है इस दिन पर जो है आप दोनों जो बिल्कुल आमने सामने एक लेवल पर जो है वो दिखाई देते हैं. जब आप यहाँ जाएंगे तो शाम को व्यू टावर पर खड़े होकर ये नज़ारा आप देख सकते हैं. एक तरफ आसमां एकदम नारंगी लाल हो रखा था और क्योंकि सूरज पानी में डूब रहा था और इसीलिए वो लाल हो जाता है, और बिल्कुल पीछे अगर आप घूमते हैं तो सफेद चमकता हुआ चांद ऊपर आ रहा होता है. पूरा शहर उस 10 मिनट के लिए शांत हो जाता है, लोग सिर्फ आसमान के इस जादुई खेल को देखते हैं. ये नज़ारा देखकर आपको एहसास होगा कि ये यूनिवर्स कितना परफेक्ट और हसीन है. चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से एक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपके लिए खास प्रोग्राम में मैं आज आपको घुमाने लेकर के आई हूँ कन्याकुमारी। इसकी बातें हम कर रहे हैं, कन्याकुमारी के बारे में हम जान रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप कन्याकुमारी आए ही हैं तो भाई यहाँ के स्वाद तो चख कर ही जाएंगे। स्वाद वही जो पेट भरे, पर मिठास वही जो हर बाइट में समुद्र की ताजगी दिखा दे। अब थोड़ी पेट पूजा की बात हो जाए तो देखिए कन्याकुमारी का जो खाना है वो एकदम फ्रेश और मजेदार है, क्योंकि इसमें तमिलनाडु और केरला दोनों का मिक्स टच आपको मिलता है। सुबह का नाश्ता यहाँ गरम गरम अप्पम और कोकोनट मिल्क या फिर मसालेदार कोथू परौठा से होता है। लेकिन अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो कन्याकुमारी के सी फूड का कोई मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। शाम को बीच के पास छोटी छोटी दुकानों पर ताजी जो मछलियां हैं, फिश है या प्रॉन्स है वो मिलते हैं, जिसे वो लोकल कोकोनट बेस्ड मसाला लगाकर फ्राई करते हैं। और जब आप यहाँ जाएंगे तो एक लोकल देखिए लोगों से आप जरूर बात करिएगा, उनसे आप जरूर चीजें खरीदिएगा, स्ट्रीट स्टाइल फूड आप ट्राई कीजिएगा। फिश करी और राइस जरूर खाइएगा, जिसमें जो कैरी होती है यानी कि जो कच्चा आम होता है और कोकोनट का जो ब्लेंड था बहुत आपको अच्छा लगेगा। स्वाद आज भी जब आप देखिए अगर आप चखते हैं तो देखिए हमेशा कोई मैच ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको दिल्ली में वो स्वाद, फरीदाबाद में वो स्वाद या कहीं और वो स्वाद मिल जाए, वो स्वाद आपको कन्याकुमारी में ही मिलेगा। वो जो क्योंकि सिर्फ बात स्वाद की नहीं, बात है उस जगह की, बात है उस खुशबू की उस जगह की, तो वो सब भी मिलकर वो डिश को और ज़्यादा कमाल बना देती है। खाना देखिए यहाँ पर सिंपल आपको ज़रूर मिलेगा पर स्पाइसेस से भरा होता है, जो आपको एक असली कोस्टल एक्सपीरियंस हमेशा देगा। चलिए इसी के साथ आपको बता दूं, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और उसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा. और सफरनामा प्रोग्राम में ये लेकर के आती हूं अलग अलग जगहों के बारे में हम बात करते हैं. हर शनिवार 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूं. आज भी ये प्रोग्राम लेकर के आई हूं जिसमें बहुत सारी बातें कर रही हूं. अच्छा, मैं बात कर रही हूं अब एक बहुत ही खास जगह की, और ये जगह और कोई नहीं बल्कि है कन्याकुमारी. अब कन्याकुमारी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, अपना एंड्रॉइड या मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, और जैसी आप ऐप डाउनलोड करते हैं ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी. तो बस देर किस बात की, जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप और कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. Feel good, feel life.

वेलकम बैक रेडियो मैंने वरिष्ठा 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूं हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूं। बहुत सारी होती हैं बातें आज के इस प्रोग्राम में ना, मैं आपको ढेर सारी बातें जो है आपको बताने वाली हूँ और बता रही हूँ। देखिए सफरनामा में आज हम आए कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी का जो मेन बीच है वो बहुत यूनिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ की रेत जो है एक रंग की नहीं है, बल्कि इसमें 3-4 अलग अलग रंग जो है वो दिखते हैं। कहीं यह हल्की लाल, कहीं हल्की काली, तो कहीं ये सुनहरी जो है वो दिखाई देती है। कहते हैं कि तीनों समुद्र के पानी के अलग अलग फ्लो की वजह से मिट्टी का जो ये रंग है इसी वजह से कलरफुल बन गया है। बीच पर घूमते हुए आपको बहुत सारी दुकानें दिखेंगी जहां समुद्र से निकलने वाली जो शेल्स है इससे बनी चीजें आपको मिलती हैं, जैसे रिंग्स, नेकलेस और नेम प्लेट्स। और मैं आपको बता दूं कि जब आप वहां जाएंगे तो एक देखिए शंख जरूर खरीदिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है आपको शंख जरूर मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा मिलेगा, जो अच्छे से बजता हो, अच्छा सा जो साउंड करता हो। तो देखिए उसमें लहरों की आवाज़ भी आती है, अगर आप ध्यान से उसमें कान लगाएंगे तो आपको लहरों की आवाज़ भी आएगी। तो बस देखिए शंख जरूर लीजिएगा, कोस्टल एरिया जाते हैं तो शंख जरूर लीजिएगा। इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज लेकर के आई हूँ आपको कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से लगभग 35 किलोमीटर दूर पहाड़ों के नीचे बसा है एक जो है ऐतिहासिक अजूबा पद्मनाभपुरम। ये पैलेस है और भले ही ये महल तमिलनाडु में है, पर ये केरला के जो किंग है वहाँ के जो थे उन्होंने जो है वो बनवाया था, पुराना महल था उनका। और इसका जो आर्किटेक्चर है एकदम ट्रेडिशनल केरला स्टाइल का है, और ये पूरा जो महल है लकड़ी और देखिए इसमें जो रोजवुड है और साथ ही और टीक वुड है इससे बना हुआ है। जब आप इसे देखिए इसके ठंडे वुडन फ्लोर्स पर आप नंगे पैर चलते हैं तो आपको उनकी रॉयल लाइफस्टाइल का अंदाजा हो जाएगा। महल के अंदर एक किंग्स काउंसिल चेंबर है जहां लकड़ी पर इतनी बारीक जो है वो कार्विंग्स की गई हैं कि देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और वहां का जो फ्लोर है कहते हैं कि वो चाकोल, एग वाइट और कोकोनट शेल के लाइम के साथ जो बना है, इन सब के लाइम के साथ जो है, शेल के लाइम के साथ जो है वो बना है, जो आज भी कांच जैसा चमकता है। और ये महल हमें बताता है कि पुराने जमाने में लोग बिना सीमेंट के कभी इतनी देखिए मजबूत कैसे वो बना पाते थे, कैसे वो इमारतें खड़ी कर पाते थे, तो यही रीजन है। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है अब एक छोटे से ब्रेक लेने का, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में हम बातें तो कर ही रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी घूमने की जगहें हैं लेकर के आई हूँ आज आपको। कन्याकुमारी गांधी मेमोरियल मंडपम, जहाँ पिंक टावर ऑफ यूनिटी जो है ये भी है, और कन्याकुमारी के बीच के पास एक बहुत ही यूनिक पिंक रंग की बिल्डिंग है जिसे कहते हैं महात्मा गांधी मेमोरियल मंडपम। ये वही पवित्र जगह है जहां पर 1948 में बापू के निधन के बाद उनकी अस्थियों को जो है वो समुद्र में बहाने से पहले जनता के दर्शन के लिए रखा गया था। इस मंडपम की अगर बात करें तो आर्किटेक्चर बहुत ही ध्यान से और दिमाग से बनाया गया है। इसका जो सेंटर टावर है उसकी हाइट एग्जैक्टली 79 फीट है, क्योंकि बापू की आयु 79 इयर्स थी। और इसकी सीलिंग में एक छोटा सा होल है, इस तरह बनाया गया है कि हर सेकेंड अक्टूबर के दिन ठीक दोपहर 12 बजे सूरज की जो पहली किरण है वो बिल्कुल उसी जगह पर पड़ती है जहां बापू की अस्थियां रखी गई थी। जब आप ये सुनेंगे जानेंगे तो देखिए आप हमारे जो भारत के इंजीनियर्स हैं उन पर आपको गर्व महसूस होगा। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। अरे सफरनामा, ये जो प्रोग्राम लेकर के आती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ आपको बता दूं मैं कि आज हम घूमने के लिए आए हैं कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जहाँ पर आपको अलग अलग बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वाटरफॉल की बात की जाए, फोर्ट की बात की जाए, बहुत ही देखिए यहाँ पर खूबसूरत जगहें हैं। और कन्याकुमारी शहर से थोड़ा दूर यहाँ पर एक जो है बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल है, और यहाँ का जो वाटरफॉल है थिरुपरप्पु इसका नाम है, और ये झरना लगभग 50 फुट की ऊंचाई से एक स्टेप लाइक जो कैसेड होता है, यानी कि सीढ़ियों के शेप में जो है वो नीचे गिरता है। और इस वाटरफॉल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि लोग इसके पानी के नीचे आराम से जो है वो नहाते हैं और मस्ती करते हैं। वाटरफॉल के पास एक छोटा सा लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव का मंदिर है जो सदियों पुराना है। जब आप यहाँ जाएंगे तो पानी के पास थोड़ा वक्त ज़रूर बैठिएगा। चारों तरफ घने पेड़ और जो माहौल है वो एकदम रिफ्रेशिंग आपको महसूस होगा, और आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। और ये कन्याकुमारी का वो फेस है जहाँ आपको समुद्र से हटकर एक हसीन रिवर साइड वाटरफॉल का मजा जरूर मिलेगा। आज लेकर के आई आपको मैं कन्याकुमारी, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पर मंदिर है, बीचेस है, यहाँ पर वाटरफॉल है, क्या नहीं है। और देखिए आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आपको सुकून महसूस हो, और कन्याकुमारी कैसी ही जगह है। और यहाँ आने के लिए

इजाजत, मुलाकात आपसे होती रहेंगी, तो कहीं मन जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में और मैं हूं प्रांका आपके साथ और ये प्रोग्राम जहां मैं आप लोगों के पास रहती हूं 1 बजे से 3 बजे तक जी हाँ और ये वक्त होता है जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं और आज आपके लिए भाई बहुत कुछ लेकर के आई हूँ क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आपको हैरानी भी होगी लेकिन कई सारे काम आपके आसान भी हो जाएंगे। अब वो कैसे और क्या लाई हूँ ये आपको मैं बताऊँगी थोड़ी सी देर में। फिलहाल आप मुझे बताइए कैसे हैं आप, क्या हालचाल, और मैसेज आप कीजिए हमें 8010781078 हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई मैसेज आप बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या कोई गाना आपको सुनना है, कोई सॉन्ग आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक गाना इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको बताऊँगी कि आज के प्रोग्राम में क्या है खास। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ. और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स एंड फैक्ट्स. जी हाँ, जिसको सुनकर आपको मज़ा भी बहुत आएगा और साथ ही आपके कामों में हेल्प आपको मिल जाएगी. जी हाँ, क्योंकि आजकल हम हैक्स से काफ़ी हैक्स होते हैं जिनको हम अपने घर में ट्राई करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ट्राई करते हैं, अपने काम की जगह पर ट्राई करते हैं, जिस वजह से काम हमारा काफ़ी आसान हो जाता है. और आप सभी जानते हैं कि मैं ये आप लोगों के लिए बड़े चुन चुन कर हैक्स को लेकर के आती हूँ, फैक्ट्स को आपको बताती हूँ. तो चलिए, आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं. और उससे पहले आपका मैं दोबारा चाहूँगी कि साथ जो है वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब हमें मैसेज करते हो, अपनी बातें जब हम तक पहुँचाते हो, तो एक तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और दूसरा ये कहूँगी कि आपकी बातें कई बार बहुत ज़्यादा एक आइडिया या मोटिवेशन दे जाती हैं और ये बहुत अच्छा लगता है हमें देख करके. और कितने मैसेज ऐसे होते हैं जो हम बाकी लोगों को भी आपके मैसेज बताते हैं. तो बस यही साथ आप बनाए रखें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए, हैक्स तो आपको बताऊँगी, लेकिन अभी क्योंकि वक्त हो गया है एक और बहुत ही छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो आपको सुनाती हूँ दो बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और चलिए मैं आपको बताती हूं कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स। अच्छा, आजकल ना घबराहट हमें ज़्यादा होने लगती है ना, क्योंकि इतना काम का प्रेशर और उस प्रेशर के चलते जब हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं आता कि इस काम को फिक्स कैसे करना है या उसे हैंडल कैसे करना है, तो अक्सर घबराहट का सामना हमें करना पड़ता है ना। और घबराहट किसी भी काम में हो सकती है। कई बार हमें किसी की बात नहीं अच्छी लगी, हमें घबराहट शुरू हो गई, या कोई काम हम उसे कर सकते हैं, कैपेबल है, बट इतना काम के प्रेशर के चलते अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तब घबराहट हो जाती है, या कोई हमें कुछ कह दे तब घबराहट हो जाती है। घबराहट का कोई एक रीज़न नहीं है, कई सारी चीज़ों पर हम रिएक्ट कर जाते हैं और उस वजह से एक घबराहट का हमें सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ में होता है जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, हाँ हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, या और भी बहुत कुछ। ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, उनके साथ घबराहट का जो ये मामला है वो और ज़्यादा देखने में आता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि घबरा करके आप अपना काम खुद खराब कर रहे हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप डाउन समझ रहे हैं, इस वजह से घबरा रहे हैं। नहीं, आप घबराहट का रीज़न खुद को समझिए ही नहीं, आप बल्कि ये सोचिए कि इस काम को मैं कर सकती हूँ, और बोलने के बजाय इस काम को आप करके दिखाइए। तो देखिए, किसी भी तरह से घबराहट हो सकती है, लेकिन अब अगर आप चाहकर भी, मतलब बहुत चाहते हो कि घबराहट ना हो या कम हो जाए, उसके बाद भी अगर घबराहट कम नहीं हो पाती है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिससे आपकी जो घबराहट है ना उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, किसी काम को करने से आपको घबराहट हो रही है तो उस काम को करते वक्त च्युइंगम चबाए, जी हाँ, घबराहट कम हो जाएगी। और पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम घबरा रहे होते हैं या किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं और अचानक से हमारा ध्यान भटक जाए, यानी किसी दूसरे काम में लग जाए, तो हमारा पूरा ध्यान उस दूसरे काम पर चला जाता है ना। और यही चीज़ इस केस में आपको लागू करनी है कि आपको अपना ध्यान च्युइंगम चबाने में भटकाना है, और जब आप ऐसे करोगे तो घबराहट जो है वो चली जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको आप करके देखिएगा, आप च्युइंगम अपने पास में रखिए और ये जब भी आप करें उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, आप क्या फील कर रहे हैं, या अगर आप नर्वस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो कितना हो रहे हैं, कितना परसेंट आप फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप मुझसे ज़रूर बात करना इस पर। और नंबर हमारा है 8010781078। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब आपको कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगी और साथ के साथ सुना रही हूँ गाने, तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

0: मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग हैक्स बता रही हूं जिसका काम जो है जब हम कहीं फंसे होते हैं ना तब बड़ा देखने में आता है. और आज मैं खुद को मजबूत कैसे बनाना है खुद के लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं बता रही हूँ आपको. उसके लिए हो सकता है आप सोचें कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं भाई. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज़ पर बात कर रही हूँ. बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को मजबूत नहीं समझते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करना वो नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं आता है. और घबराहट, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि घबराहट लोगों को ज़्यादा होने लगती है, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं जो ये करते करते थक चुके हैं, बहुत सारे जिसने जैसा बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो, आप वही चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मतलब आप जैसे पहले घबराते थे, जैसे पहले अपने आप को आप बिलीव नहीं कर पाते थे, ऐसे ही आज भी अगर आपके साथ में चल रहा है तो मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे और अपने आप पर बिलीव कर पाएंगे. और सच में इस चीज़ पर आप बिलीव करो, ये वाकई में काम करती है. तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है. आपको शीशे के सामने खड़े हो जाना है और खड़े होकर खुद से बात करनी है. जितना हो सकता है आप बात कीजिए कुछ अच्छी चीज़ों पर, और जो कमियां हैं उसको आप अपने से शेयर करें, मतलब आप बोलें, लेकिन उसको फिक्स मत कीजिए. उसको ठीक कैसे करना है उस पर बात करें, यानी कि अपने आप से अच्छी बातें करनी है. अपने अंदर किसी भी तरह की कोई कमी मत निकालिए, ना ही ढूंढने की कोशिश कीजिए. बट हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मुझे लगता है ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो भी आईने के सामने रखिए. मतलब आप ही समझ लीजिए आईने के उस तरफ भी आप हैं और इस तरफ भी आप हैं, और इस तरफ जो है जिसमें काफ़ी सारी कमियाँ भी हैं, लेकिन उस तरफ जो खड़ा है जो आप ही हैं और आप बहुत स्ट्रांग हैं. पता है आप ये रोज़ करोगे ना, आप यकीन मानिए कि आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे, वो मजबूत आप हो पाएंगे. और फिर एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो बहुत ऑसम होती है. आपको लोग ना केवल पसंद करेंगे बल्कि बात करना चाहेंगे. और इस बारे में तो मैं अक्सर बात करती भी हूँ आपसे कि शीशे के सामने खड़े होकर बात कीजिए, आईने को अपना बनाइए, आप शीशे से प्यार कीजिए क्योंकि वही आपको मजबूत बनाएगा. तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. जी हाँ, तो ये आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा. तो ये जब भी आप करें और कोई अगर चेंज आया है आपकी लाइफ में तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप सुनाती हूँ आपको एक गाना जो कि आईना से ही जुड़ा है. तो आइए इंजॉय करते हैं उस गाने को. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.
1: में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रेशमा 107.8 एफएम पर. प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और आज के प्रोग्राम में ना केवल आपको हैक्स बता रही हूँ बल्कि फैक्ट्स पर भी आज बात कर रही हूँ. और अगला जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ ना ये आप वाकिफ होंगे. अच्छा कभी ऐसे होता है कि आपको सिर्फ जागने का मन करता है और आप मन ही मन खुश हैं, आप जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी. पता है ये सच्ची में होता है. जब हम खुश होते हैं ना तो नींद कम हो जाती है, यानी कि कम नींद में भी काम चल जाता है. और अगर आप मन से खुश हो, मान लीजिए कोई चीज़ हुई या फिर आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिली या कुछ ऐसा जिसका आप बहुत टाइम से बहुत सालों से वेट कर रहे थे और वो आपकी लाइफ में हो गया. अब देखो खुशियों के तो कई सारे ज़रिए हो सकते हैं ना, तो हर किसी के लाइफ में एक ना एक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, राइट. तो ऐसा जब होता है ना तो कम नींद आती है और जब उसके बाद उठते हैं सो करके तब भी हम बहुत रिफ्रेश होते हैं. इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशियां देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये खुशियां आपको एक तो लंबा जीवन देगी और दूसरा आप ताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप अच्छे गुड लुकिंग दिखाई देंगे. क्योंकि जिसका चेहरा खिलखिलाता हुआ होता है या बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति खुश होता है ना तो उसका चेहरा ही बता देता है कि अंदर से कितना खुश है. इसलिए खुशियाँ आप बाहर मत ढूंढिए बल्कि अंदर खुशियाँ ढूंढिए. और अगर खुश होना है तो बाहर लोगों को देख करके या उनकी बातों से खुश मत होइए बल्कि अंदर की जो खुशी है उसको महसूस कीजिए. तो इसलिए आप ये भूल जाइए कि अगर कोई मेरी तारीफ़ करेगा तो मैं खुश होंगी, अगर कोई मेरे को अच्छा बोलेगा तो मैं खुश होंगी. नहीं, अंदर जो हमारे खुशियां हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी करते हैं और उसको हम मानते हैं तो उस चीज़ से ही आप आगे बढ़ें और उसको लेकर के खुश रहें, ना कि दूसरों की बातों से, राइट. तो ये वाली चीज़ जो कि वाकई में बड़ी काम की, और ये तो हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हाँ ऐसा होता है. तो अगर आप भी इसे फील करना चाहते हो ना तो फील करने के लिए आप पहले खुद को फील करना सीखें, आप अपनी खुशियों को फील करना सीखें, फिर देखें क्या कमाल लगेगा आपको. और मैं तो कहूँगी कि ये दिन आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए. तो बस आप फील कीजिए, खुश रहिए, रेडियो मानव रचना को सुनिए, गानों को एंजॉय कीजिए और हाँ मैसेज करना ना भूलिएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज मैं आपको कुछ हैक्स बता रही हूं, कुछ फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूं जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल कह रही हूं कि आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो बात क्या है। देखो, हम जब क्रेविंग को शांत करने की कोशिश करते हैं तो क्रेविंग उतनी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो आपको पिज्ज़ा खाने का मन है और आप अपने आप को शांत करो कि नहीं, मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज है और ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है। बट जितना आप खुद को रोकोगे उतनी ही क्रेविंग बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आता है जब एकदम से बस मिल जाए तो बस हम इंजॉय कर लें उसे, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको फ़ोन नहीं लेना है, क्योंकि फ़ोन आप लेंगे तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप ज़रूर अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए फ़ोन को आप अपने पास नहीं रखेंगे। अब आप जाइए किचन में, और कुछ बनाना नहीं है बल्कि आपको पीना है 2 गिलास पानी। जी हाँ, पानी पिए और अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करें और अपने आप से ये कहें कि पानी पीने के 10 मिनट बाद मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मुझे पिज्ज़ा खाना है या नहीं। पता है क्या होगा इससे? इससे आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी। जी हाँ, और ये बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप कितने सारे ऐसे अनहेल्दी खाने से बच जाएंगे। पता है क्या होता है, कई बार ना ये जो भूख होती है ये खाने की नहीं पानी की भी होती है। इस वजह से और ज़्यादातर लोग जो हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, जो यही सोच रहे होंगे कि हाँ पानी तो हम भी ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, लेकिन खाना जो है वो हम टाइम टू टाइम लेते हैं, बट बॉडी को पानी भी तो चाहिए होता है ना। तो उसकी नीड जब उसे जो होती है तो हम पानी की भूख को खाने की भूख समझ लेते हैं और बहुत सारा खाना हम खा लेते हैं, तो पेट तो भर जाता है लेकिन पानी की कमी तो हम पूरी कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमने पानी ही नहीं पिया उतना, है ना। और फिर हम खाने के ऊपर से पानी पी करके अपने पेट को कर लेते हैं ख़राब। तो ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है, बल्कि जब भी आपको कुछ बाहर का उल्टा सीधा या कुछ ऐसा खाने का मन करे तो आप पहले अपने आप से पूछो कि ठीक है, अगर मैं पहले पानी पीता हूँ या पीती हूँ, उसके 10 मिनट बाद भी अगर मुझे क्रेविंग होती है देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये आप करोगे ना, पता है इसका एक फ़ायदा क्या होगा, 10 मिनट बाद आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे पिज्ज़ा खाना है या नहीं, क्योंकि आपको क्रेविंग होगी ही नहीं, आपका पेट पूरी तरह से फुल हो चुका होगा और सिर्फ 2 गिलास पानी आपको पीना है, जो मीडियम साइज़ के गिलास होते हैं वो आपको पीना है। तो ये बहुत इफेक्टिव, आप इसे एक्सरसाइज कह लो या आप अपने माइंड को मैसेज देना कह लो, जो भी आप कहें, जो भी इसको आप नाम दें, लेकिन हाँ ये एक सच बात है कि इसका फ़ायदा हर एक एक को मिलेगा। तो ये करके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो,
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ. और ये गाना आपने सुना ऐसे ही और बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने जो मैं आपको इस प्रोग्राम में सुना रही हूं. तो आपका कोई पसंदीदा गाना है जिसे आप सुनना चाहते हैं रेडियो पर तो आप मैसेज कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं. आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, कुछ हैक्स पर हम बात कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी. जी हाँ, आपकी स्किन जो है बहुत ही चमकदार और खूबसूरत दिखने वाली है. अच्छा, एलोवेरा जेल जो है वो मुझे लगता है कि सभी के घर में मौजूद होगा ना. अब जिनके पेड़ हैं, जिन्होंने पेड़ लगा रखे एलोवेरा के, भाई वो तो बहुत ही कमाल है. क्योंकि जितना ताज़ा एलोवेरा आप इस्तेमाल करोगे उतना ही फ़ायदा हमें मिलता है. लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ नहीं है, उसका पौधा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से ले लीजिए. बस ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा जेल अच्छी कंपनी का होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होना चाहिए, राइट. तो आप, मैं यहाँ एलोवेरा की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ हैक, वो इसी से ही जुड़ा है. अच्छा, हफ्ते में दो बार हम, जैसे क्या होता है एलोवेरा जेल को यूं ही हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, है ना. और लगा करके कुछ लोग पूरी रात लगे रहने देते हैं, तो कुछ लोग एक घंटा लगाए और उसके बाद में वॉश कर लेते हैं. लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ये शायद आपको ना पता हो. हफ्ते में दो बार अगर गर्म पानी आप करते हैं और उसमें एलोवेरा जेल डालकर चेहरे पर भाप लेते हैं तो स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है और चेहरे के दाग धब्बे भी धीरे धीरे जाने लगते हैं. जी हाँ, है ना कितना इंटरेस्टिंग. क्या आपको पता था इससे पहले कि इस तरह से अगर भाप लेते हैं तो स्किन में निखार आता है? अगर नहीं पता था तो ये कई सारे लोगों को वाकई में नहीं पता था, क्योंकि ये तरीका जो है हम लोग नहीं जानते हैं. हम एलोवेरा जेल को सीधा अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, है ना. लेकिन आप इस तरह से करके देखें और गर्म पानी में आपको एलोवेरा डालना है और उसके बाद में आप भाप लीजिए और फिर जो असर है वो मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में दिखाई दे जाएगा. तो ये जब भी आप इसको अप्लाई करें या जब भी आप इसको यूज़ करें तो उसका फीडबैक, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब कोई फीडबैक देता है ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये देख करके सुन करके. तो आप ज़रूर बताना कि कैसा लगाइए. नंबर हमारा है 8010781078. मैं हूँ प्रियंका, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। कुछ फैक्ट्स कुछ हैक्स आपको बता रही हूँ आज के प्रोग्राम में। अच्छा, कई बार ना बिजी होना काफ़ी अच्छा भी लगता है। कभी ऐसा महसूस किया आपने, कभी ये चीज़ फील की है? वैसे तो हम सब परेशान रहते कि इतना काम है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, और इस काम के चलते हम तो समय ही नहीं निकाल पाते हैं बात करने का या फिर समय स्पेंड करने का, है ना। देखिए, अगर ऐसी वाली चीज़ है तो कभी कभी तो आपको वक्त निकालना ही चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिज़ी होना भी एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए? जी हाँ, दरअसल जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो उन लोगों के मुकाबले जो कम बिज़ी होते हैं उससे ज़्यादा खुश होते हैं। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये लोग जब काम में बिज़ी होते हैं तो जो भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है कि इसने हमें ऐसे बोला, मेरे साथ एक साल पहले ऐसे किसी ने मुझे गलत बोला था और मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसने मेरे से माफ़ी क्यों नहीं मांगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आई या हमारे कहीं ना कहीं वो खिलाफ थी चीज़ें, वो चाहे जितनी पुरानी हो बट हमें याद आता रहता है। और जो लोग ज़्यादा बिज़ी होते हैं उनको ये सब सोचने की ज़रूरत, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता है कि वो ये सारी चीज़ें सोच भी पाए। एक के बाद एक काम जो है वो उसमें बिज़ी होते हैं, इसीलिए वो लोग अपने प्रेजेंट में जीते हैं और ज़्यादा सोच नहीं पाते क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना कि जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं उन लोगों के, जो लोग ज़्यादा बिज़ी नहीं होते हैं क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों को सोच ही नहीं पाते हैं और उनके पास टाइम ही नहीं होता है सब सोचने का। इसलिए कहते हैं कि काम करते रहो, कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में आप करते रहो जिससे आप बिज़ी रहो। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लाइफ में एनी टाइम बिज़ी रहो कि आप अपनों को या अपने ख़ास रिश्तों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे चीज़ें कमज़ोर होती हैं, रिश्ते कमज़ोर होते हैं। हाँ, समय ज़रूर दीजिए, लेकिन जब बात अपनी आती है तो अपने आप को नेगेटिव विचारों को सोचने से बचाने के लिए हमेशा बिज़ी आप रहें, तो इससे आप प्रेजेंट को जिएंगे, प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, और जो काम करता है वो अपने लक्ष्य को पा पाता है, है ना। तो बस ये आप करके आगे बढ़िए और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए अब इंजॉय करते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये गाना आपने सुना और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना. मैं हूँ प्रांका और मेरे चलने का वक्त हो गया है. तो आज का प्रोग्राम यहीं तक. प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं. बताने के लिए आप मैसेज कीजिए. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को इन्जॉय कीजिए और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रांका और फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय.

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया।
1: सच?
0: प्यार हो गया क्या करें?
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और मैं हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी दोस्त चांदना। जी हाँ दोस्तों, लेके आ गई हूँ आपके लिए फिर से ये खास प्रोग्राम, ये खास एपिसोड जिसमें मैं आपको सुनाऊंगी बेहतरीन गाने। लेकिन उस गानों के पीछे, मतलब जब हमने उन गानों को देखा तो प्लेबैक सिंगिंग तो ऑफकोर्स सुनी, लेकिन वो किस पर फिल्माया गया, आज मैं एक अभिनेत्री के बारे में बात करने वाली हूँ। आई एम श्योर जो हमारे जेंजीज हैं, इन लोगों ने ये नाम शायद कम सुना होगा, लेकिन जो थोड़े से पहले के हमारे लोग हैं वो इस नाम से भली भांति वाकिफ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस अभिनेत्री के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, जिस कलाकारा के जीवन पर आज हम प्रकाश डालेंगे, जिनके बारे में मैं आपको आज दूंगी ढेर सारी जानकारी, दोस्तों वो है नंदा जी। बहुत एक फेमस ये एक्ट्रेस रही और बहुत सुपर हिट फिल्म्स इन्होंने बॉलीवुड को दी। हम सभी इनके बहुत बड़े फैन थे और आज भी हैं। तो दोस्तों, आज का सफर नंदा जी के नाम। नंदा जी अब हमारे बीच में नहीं है। 2014 में ये इनका शरीर शांत हुआ, लेकिन अपने काम के माध्यम से, अपने एक्टिंग के माध्यम से, अपने करियर के माध्यम से ये हमारे दिलों में हमेशा हमेशा बसी रहेंगी। तो दोस्तों, आज का सफर नंदा जी के नाम। यहाँ ले रही हूँ मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज का ये सफर एक खूबसूरत सी अभिनेत्री के नाम। जी हाँ, वो अभिनेत्री जो कि बहुत समय तक बॉलीवुड में छाई रही। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ नंदा जी की। नंदा जी जिनका पूरा नाम था नंदिनी कर्नाटकी और ये भारतीय फिल्म की अभिनेत्री है, ये तो हम सब जानते ही हैं। भारतीय से मेरा कहने का मतलब है कि हिंदी फिल्मों में तो हमने देखा ही है, लेकिन ये मराठी फिल्मों में भी दिखाई दी और हमारे भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्रियों में से दोस्तों नंदा जी का नाम लिस्ट में काफ़ी ऊपर आता है। ऑलमोस्ट 30 साल तक ये बॉलीवुड में छाई रही। छोटी बहन, धूल का फूल, भाभी, काला बाजार, कानून, हम दोनों, ये बहुत बहुत अच्छी पिक्चर थी ये। जब जब फूल खिले, गुमनाम, इत्तेफाक, द ट्रेन, प्रेम रोग, इन सभी में इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया। फिल्म्स इनकी बहुत आई, लेकिन जो मैंने अभी ये नाम गिनाए ये मतलब बहुत एक सिलेक्टेड मूवीज थी। तो दोस्तों नंदा जी के बारे में मैं आपसे करूंगी बहुत सारी बातें, क्योंकि नंदा जी की ज़िंदगी बहुत हमें मोटिवेट भी करती है और एक इनका नेचर ये भी था कि बहुत हेल्पिंग थी। इन्होंने कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के करियर शुरुआत करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। तो करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, फिलहाल ये रही छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM में। दोस्तों आप सुन रहे प्रोग्राम कैफे क्लासिक्स और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री नंदा जी की, जिनको हम नंदा जी प्यार से कहते थे या फिर हम ये मान लें कि नंदा नाम इनका फिल्मी करियर का था, इनका असली नाम था नंदिनी कर्नाटकी। एक

जनवरी 1939 को इनका जन्म हुआ और महाराष्ट्रियन शो बिजनेस परिवार में मतलब से ताल्लुक रखती हैं। इनके पिताजी विनायक दामोदर कर्नाटकी के घर में इनका जन्म हुआ और सफल मराठी अभिनेता और निर्माता निर्देश थे इनके पिताजी। तो मतलब ये जो काम है इनको ये एकदम से इनको सडन नहीं मिला, ये इनके ब्लड में ही था। और मास्टर विनायक भारतीय फिल्म उद्योग में कई हस्तियों से उनके कनेक्शंस थे। और जो उनके भाई थे यानी कि इनके चाचा वासुदेव कर्नाटकी, वो एक छायाकार थे। जबकि प्रसिद्ध फिल्म हस्तियां बाबूराव पिंडारकर, भालजी पिंडारकर, ये सब जो है ये भी इनके फैमिली का ही हिस्सा हैं। महान फिल्म निर्देशक वी शांताराम से भी ये रिलेटेड थी क्योंकि वो इनके मामा हैं। और मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के अच्छे दोस्त थे और उन्होंने लता मंगेशकर को पहली मंगला गौर फिल्म उद्योग में भी पेश किया था। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि नंदा जी का जो फैमिली बैकग्राउंड था बहुत स्ट्रांगली वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। और आप समझ लीजिए कि ये जो सारे उनके अंदर ये टैलेंट जो था वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया था। और 1947 में इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई, तब नंदा जी मात्र 7 साल की थी और परिवार को बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ा क्योंकि जो एक ब्रेडविनर थे वो ही नहीं रहे। तो लिहाजन ये बाल कलाकार बन गई, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम किया। और 1950 के दशक की शुरुआत की फिल्मों में इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर अपने परिवार की मदद करी। और फिल्मों में क्योंकि जब इन्होंने काम शुरू किया तो हालांकि मतलब जाहिर सी बात है कि पढ़ाई पे तो असर हुआ ही, तो थोड़ा पढ़ाई से भी ये दूरी इनकी बन गई। बट ये है कि क्योंकि ये स्कूल नहीं जा पाते थी तो कुछ टीचर्स ने इनको घर पर आकर ही इनको पढ़ाया और इनकी पढ़ाई जो है उस हिसाब से फिर चलती रही। और फिल्मों में करियर बनाकर इन्होंने अपने 6 भाई बहनों का मतलब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करी और उनको एजुकेशन भी इन्होंने दिलवाई। सो हैट्स ऑफ टू यू नंदा जी, आपने अपना करियर भी बनाया और अपने भाई बहनों का भी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम ऐसे ही किसी की ज़िंदगी को हम जब खंगालते हैं। हम लोग को शोबिज में जब हम देखते हैं हमको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन देखिए जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो किस इंसान ने, किस कलाकार ने कितनी मेहनत करी है ये हमें पता चलता है। तो यहाँ बातें हो गई ढेर सारी, आइए लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी, करेंगे और ढेर सारी बातें नंदा जी के बारे में। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स, मैं हूँ उस शो की होस्ट और आप सबकी प्यारी प्यारी दोस्त। और आज के प्रोग्राम में मैं बात कर रही हूँ मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी की, जिनका जन्म जो है वो 1939 का है और बहुत ही छोटी उम्र में जिन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों नंदा जी ने 1948 में मंदिर से अपनी शुरुआत करी। सिल्वर स्क्रीन पर जब उन्होंने पहली बार बेबी नंदा के रूप में काम किया तो लोगों ने उनको बहुत सराहा भी, बहुत पहचान उनको मिली। मंदिर, जग्गू और अंगारे जैसी फिल्मों में उन्होंने 1948 से लेकर 56 तक, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो गुड 8 ईयर्स इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। और नंदा जी के जो चाचा थे, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो एक बहुत अच्छे निर्माता निर्देशक थे। शांताराम जी भी इनके रिलेटिव हैं। तो इन सब के वजह से इनको, मतलब थोड़ा सा ये तो कह सकते हैं कि थोड़ा इनको काम मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। और इनको एक बड़ा ब्रेक मिला तूफ़ान और दिया मूवी में, जो कि आई 1956 में। ये जो तूफ़ान और दिया है, ये एक स्टोरी थी अनाथ भाई बहन की, जो दुखद असफलताओं की वजह से त्रस्त हो जाते हैं, जिसमें वो लड़की अपनी आईसाइट तक खो देती है। तो इसमें इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी रही। और उसके बाद 1957 में आई मूवी भाभी, जिसमें इन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड भी इनको मिला। और वो इनका, मतलब इनका पहला नामांकन था और बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया। 1960 में आई काला बाजार, और उसके बाद में शांताराम द्वारा निर्देशित एक और मूवी आई थी कुछ, मतलब मराठी मूवीज़ में, जिसमें राजा परांजपे और कुलदेवत ऐसे करके जो मूवीज़ आई, इसमें इन्होंने काम किया। और इन्होंने एक मराठी पिक्चर में एक बहन की भूमिका के लिए नंदा जी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी सम्मानित किया गया। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि काम बहुत किया, मेहनत बहुत की। थोड़ा सा पॉजिटिव इनका पास ये चीज़ थी कि फिल्म किसे जुड़े हुए थे इनके परिवार के बहुत सारे लोग, लेकिन जैसे कि हमने इनकी कहानी जब खंगाली तो पता चला कि पिताजी जो है वो बहुत जल्दी चले गए, तो काफ़ी जल्दी इन पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ गया। लेकिन जो इनको उससे एक्सपीरियंस मिला ना, मतलब एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 8 साल काम करना, फिर आगे आई तो फिर और अच्छे अच्छे काम करे, तो वो सब इनका जो इनका एक शेपिंग ऑफ इनका फिल्म एक्ट्रेस एज ए, मतलब करियर उनका बहुत अच्छा शेप हुआ और ये काफ़ी एक सफल अभिनेत्री रहीं। नंदा जी के बारे में हम करेंगे और ढेर सारी बातें। फिलहाल ले रही हूँ आप एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद दोस्तों मैं जल्दी से आ जाऊँगी, आप भी जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और दोस्तों, आज का ये हमारा शो हमने समर्पित किया है मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी को। दोस्तों, नंदा जी का जो फिल्मी करियर है वो काफ़ी बड़ा रहा। ऑलमोस्ट 30 साल तक उन्होंने काम किया, जिसमें 8 साल तो उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी नंदा के नाम से उन्होंने काम किया। हिंदी ही नहीं, मराठी फिल्म जगत में भी इन्होंने काफ़ी अपना नाम बनाया, खुद भी काम किया, अपने परिवार वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी। और एक जो इनकी बहुत अच्छी बात थी दोस्तों, ये नए लोगों को बहुत एनकरेजमेंट देती थी। यहाँ तक कहा जाता है कि शशि कपूर जी, हालांकि शशि कपूर जी तो खुद ही राज कपूर से वो संबंध रखते थे, उनके ब्रदर थे, तो उनको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पहचान की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि शशि कपूर जी की शुरुआती पिक्चरें नहीं चल रही थी, तो उस ज़माने में, उस टाइम पर नंदा जी ने उनके साथ फिल्में साइन करी। हालाँकि शुरू की दो पिक्चरें, चार दीवारी और मेहंदी लगी मेरे हाथ, ये दोनों पिक्चरें नहीं चली, लेकिन उसके बाद की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सफल रहीं। और अपने शुरुआती करियर में जब उन्होंने एकल मुख्य नायक के रूप में उन्होंने जब काम किया, तो सभी फिल्में उनकी फ्लॉप रहीं, लेकिन उसके बाद वो चल निकले। और उसके बाद में उन्होंने, शशि कपूर जी ने हॉलीवुड में भी काम किया, कई मूवीज़ में काम किया, जिसमें कुछ मूवीज़ जो हैं उनकी बहुत अच्छी चली। और जब जब फूल खिले जो 1965 में आई, उसमें नंदा जी ने पहली बार पश्चिमी भूमिका निभाई और इससे उनकी छवि को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, बूस्टअप मिला। और 65 से लेकर 70 की अवधि में शशि नंदा जी की जोड़ी बहुत ज़्यादा सफल रही। और फिल्मों में मोहब्बत इन्हें कहते हैं, जब जब फूल खिले, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, राजा साहब, रूठा ना करो। 1970 के दशक के शुरुआत में नंदा जी ने द ट्रेन और ऐसी कई मूवीज़ करी और ये सभी मूवीज़ बहुत ज़्यादा सफल रही। तो दोस्तों, करियर इनका बहुत लंबा है। थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ कि इनके एक और जो इनकी हिट फिल्म आई वो थी गुमनाम, आपको याद होगा।

ये हाँ जी, एक ये बहुत ही मल्टी स्टारर मूवी थी गुमनाम, जिसमें नंदा जी भी थी और ये पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा चली। इन्होंने धर्मेंद्र के साथ भी बहुत काम किया, जिस मूवीज़ में जो इनका मेजरली काम मेरा कसूर क्या है और आकाश थी, और कानून मूवी आई, फिर छोटी बहन इनकी मूवी आई, राजेश खन्ना जी के साथ इन्होंने थ्रिलर इत्तेफाक में इन्होंने साइन करी और इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और इसके बाद जो है, इस मूवी के बाद राजेश खन्ना जी सुपरस्टार बन गए और उनके साथ इन्होंने कुछ और हिट फिल्में भी करी, जैसे परिवार, धरती कहे पुकार। संजय खान के साथ भी इन्होंने काम किया, उन्होंने बेटी अभिलाषा जैसी हिट फिल्में दी और तीन फिल्में इत्तेफाक, द ट्रेन और जोरू का गुलाम। ये मूवीज़ जो हैं इसमें शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, देवानंद और संजीव कुमार के साथ उनकी पिछली हिट फिल्मों से अधिक कमाई इन पिक्चरों ने करी। अगर मैं इन सबको रैप अप करूं तो एक बात ये समझ में आती ही है कि बहुत ही सुपरहिट करियर नंदा जी का रहा और बॉलीवुड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और लाइफ से तो इतना कुछ हमें सीखने को मिल ही रहा है कि अपने को भी सेटल करना, दूसरों को इनकरेज भी करना, कभी किसी के खिलाफ कोई जेलेसी की भावना ना रखना, ये सबसे बड़ा इंसान का गुण होता है और ये गुण हमें देखने को मिला नंदा जी की लाइफ में। तो दोस्तों बहुत हो गई ढेर सारी बातें, चलिए यहाँ पे लेते छोटा सा म्यूजिक का ब्रेक। ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: रेडियो 107.8 एफएम पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
1: हाँ तो नैनों में
2: बिंदिया है,
1: माथे पे
2: बिंदिया है,
1: तो बालों में
2: गजरा है,
1: आँखों में
2: गजरा है।
1: ओहो।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज का सफर हमारा समर्पित है मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी को, जिनका असली नाम नंदिनी कर्नाटकी था। बहुत ही सफल फिल्मी करियर इनका रहा 30 साल तक। और आइए थोड़ा सा आप झांकते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन पर। कहा जाता है कि 1965 में कश्मीर में जब जब फूल खिले की शूटिंग हो रही थी, उस शूटिंग के दौरान निर्देशक सूरज प्रकाश ने बताया कि एक महाराष्ट्रियन लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा पर मोहित हो गए और उन्होंने उनके आगे शादी का प्रस्ताव रखा और उनकी माँ तक पहुँचाने के लिए कहा, लेकिन अंत में हुआ कुछ नहीं। नंदा के भाई उनके लिए कई लड़के लेकर घर आए, लेकिन सभी को नंदा जी ने ठुकरा दिया। और 1992 में अधेड़ उम्र में नंदा जी ने वहीदा रहमान के आग्रह पर निर्देशक मनमोहन देसाई के साथ सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही गिरगांव में अपने किराए के फ्लैट की छत से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और ठीक एक साल बाद उनकी मां की भी कैंसर से मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि जिस रेलिंग पर वह झुके हुए थे वह गिर गई और नंदा जी अविवाहित ही रह गई। और नंदा मुंबई में रहती थी जब इनकी डेथ हुई और परिवार में अपने लास्ट ईयर्स में, क्योंकि 2014 में इनकी डेथ हुई है, तो बहुत कम लोगों से ही मिला करती थी और करीबी लोगों से ही मिलती थी। और फिल्म उद्योगों में उनके जो करीब फ्रेंड्स थे, जो उनके साथ रहे, वहीदा जी, नरगिस जी, आशा पारेख जी, हेलेन, सायरा, बानो जी, माला सिन्हा, साधना, शकीला, ये सब इनके जो है फ्रेंड सर्कल में थे, क्योंकि प्रोबेबली ये सब एक ही टाइम के सब एक्ट्रेसेस, तो इनकी फ्रेंडशिप सबकी बहुत अच्छी थी, तो इनके साथ ये काफ़ी टाइम तक ये कनेक्टेड रहीं। और लंबे अंतराल के बाद 2010 में इन्होंने एक मराठी फिल्म नटरंग की स्क्रीनिंग के लिए रहमान के साथ सार्वजनिक रूप में इन्होंने अपना मतलब प्रस्तुति लोगों को मतलब ये दिखाई दी, लेकिन काम फिर इन्होंने बहुत कम ही कर दिया। और नंदा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन काम जो है इनका वो आज भी, जब हम गुमनाम जैसे फिल्म देखते हैं या फिर जब जब फूल खिले देखते हैं, तो कितनी नज़ाकत है उनमें, कितनी नज़ाकत उनके काम में है, वो तो देख के ही पता चलेगा। तो यहाँ ले रही हूँ मैं छोटा सा एक म्यूज़िकल ब्रेक। सफ़र हमारा जो है अपने अंतिम चरण पर है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव एंड आई विल बी राइट बैक।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज का हमारा ये सफर समर्पित रहा मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी को। 230 साल का करियर और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने दी हमको। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया बहुत सारी, फिर ऑलमोस्ट उस टाइम के हर हीरो के साथ इन्होंने काम किया। जिस हीरो का काम अच्छा नहीं चल रहा था इनके साथ काम करके उनका भी करियर निखर गया। तो नंदा जी ने खुद भी काम किया और सबको एनकरेज करा। सबसे अच्छी बात यह है बहुत ही ये हेल्पिंग नेचर की थी। और कहा जाता है कि 25 मार्च 2014 को जब दिल का दौरा पड़ा इनको तो इनकी उम्र थी 75 वर्ष की। मुंबई में वर्सोवा में इनका फ्लैट था जहाँ पर इनका निधन हो गया। और इनके परिवार में इनके भतीजे स्वास्थ्य कर्नाटकी और इनके ग्रेट ग्रैंडसन जो इनके थे, मतलब इनके नहीं इनके ब्रदर के थे, तो उन सब ने मिलकर जो है इनको अंतिम टाइम पे वो उनके साथ रहे। और ये लोग मुंबई में आज भी निर्देशक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो नंदा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने काम की वजह से, जो गाने उन पर फिल्माए गए उनकी वजह से आज भी वो हम सब के दिल में बसती हैं। रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से मैं नंदा जी को हाँ बार बार सलाम करती हूँ, उनको भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। और जो वो काम हम सब के लिए कर गई हैं तो उन कामों को हम बार बार देखें भी, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी उस चीज़ को दिखाएं कि पुराने लोग भी बहुत अच्छा काम कर गए हैं। तो दोस्तों जाने का टाइम हो गया है, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में कुछ नई बातें और कुछ नए आर्टिस्ट की कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा एंड आई एम साइनिंग आउट, बट यू रिमेन ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: अरे अरे, अरे भैया आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: वेल हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। ये शो हमारा बहुत स्पेशल इनिशिएटिव होता है, रीजन बीइंग कि यहाँ पर हम अलग अलग एक्ट्स को कवर करते हैं। वी टॉक अबाउट ऑल द लीगल फ्रेमवर्क दैट फॉल्स इन इंडिया, और उसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर बुलाते हैं हर बार एक बहुत ही खास मेहमान जो एक्सपर्ट होते हैं इस डोमेन के। आज हमारे साथ हैं मिस सिमरन सिंह। सिमरन मैम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट स्कूल ऑफ लॉ, मानव रत्न यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में जो स्मोकिंग को लेकर आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। अगर आपने सिगरेट के पैकेट्स देखे हैं तो उसके ऊपर कुछ कुछ आपको विजुअल्स नजर आते हैं। क्या है इंडिया का इतिहास स्मोकिंग के साथ? क्यों इंडिया में हम स्मोकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको एडवर्टाइज नहीं कर सकते? भारत सरकार क्या बोलती है, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो कानून के पास क्या प्रावधान है स्मोकिंग को लेकर? विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लेकिन सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा सिमरन मैम का। हाई मैम, वेलकम टू आवर शो।
4: थैंक यू सागर, हाउ आर यू?
3: आई एम गुड, हाउ आर यू?
4: गुड।
3: पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे, इंडिया में स्मोकिंग और टोबैको की जो हिस्ट्री है, थोड़ा सा मैं उसको समझना चाहता हूँ कि कितनी पुरानी है, क्या ऑब्स्टिकल्स रहे हैं उसमें।
4: सो इंडिया में स्मोकिंग प्रैक्टिस बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। सो अगर हम बात करें सन 1200 BC की लगभग, सो अथर्व वेदा में इसका जिक्र मिलता है। आयुर्वेदा में भी इसके अलग अलग फॉर्म्स और प्रैक्टिसेस हमने देखे हैं, जैसे धूप होम में जैसे हम धूप वगैरह जलाते हैं, इस तरीके से भी स्मोकिंग के कुछ यूजेस थे जो हमने देखे हैं हिस्ट्री में। एंड मोस्टली एक मिथ था कि स्मोकिंग को हम यूज़ करते हैं मेडिकल पर्पसेस के लिए, जो कि अब इसके ऊपर डिबेट तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्लियर है कि स्मोकिंग जो है हर वे में ही इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। एंड अगर हम बात करें टबैको की, सो इंडिया में लगभग 17th century में टबैको यूजेज काफ़ी बढ़ा था। सो ऐसा नहीं है उससे पहले टबैको यूज़ नहीं होता था इंडिया में। प्योर फॉर्म जो टबैको जो हम आज देख रहे हैं वो 17th century से स्टार्ट हुआ है। एंड अगर हम बात करें आज की, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स, और लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे सर्वेज हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग 15 साल और उससे ऊपर के लोग जो हैं, लगभग 29% अडल्ट ऑफ इंडिया टबैको यूज़ करते हैं। एंड काफ़ी सारे सर्वेज WHO ने भी कंडक्ट किए हैं, जिसमें ये पाया गया है कि इंडियन स्मोकर्स लगभग 12% हैं आउट ऑफ द टोटल स्मोकर्स इन द वर्ल्ड। सो हमारा शेयर हर साल बढ़ता जा रहा है, एंड टबैको यूजेज के अलग अलग फॉर्म्स भी हम देख रहे हैं अब।
3: ऑलराइट, बट हमें लॉज बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
4: मेजरली हमें लॉज बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता गया और हमने ये देखा कि टबैको यूजेज के फ़ायदों से ज़्यादा नुकसान है, स्पेसिफिकली जब हमारी साइंस ने, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल आप कह सकते हैं रिसर्चेस जब हुई और उसमें पता लगा कि टबैको के ज़्यादातर नुकसान ही है, स्पेसिफिक एक नुकसान है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है टिल डेट, दैट इज़ इसकी आदत लग जाना। सो टबैको जो है उसकी जो यूजेज है, अगर वो काफ़ी कंटिन्यूस है, पॉसिबिलिटी है कि आपको उसकी आदत लग चुकी है। इस रीज़न से हमने कुछ लॉज बनाए। सो इनिशियली मोटिव ये था कि हमें टबैको की यूजेज को कट डाउन करना है। इवेंचुअली हमने ये भी रियलाइज़ किया कि पैसिव स्मोकिंग इज़ आल्सो इंजूरियस। पैसिव स्मोकिंग मींस इफ समवन इज स्मोकिंग नियर यू, पॉसिबिलिटी है कि आप स्मोक नहीं कर रहे हैं फिर भी आपके लिए वो चीज़ उतनी ही हार्मफुल है क्योंकि आप वहीं पर हैं, सेम एयर, सेम रूम में आप, सेम स्पेस में बैठे हैं, तो आपके लिए भी उतना ही हार्मफुल है। जब ये रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सारे जो टबैको रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हैं वो उनमें भी आ रहे हैं जो लोग एक्चुअली स्मोक नहीं करते बल्कि पैसिव स्मोकर्स हैं, उनके आसपास के लोग जो हैं वो स्मोकर्स हैं और उसकी वजह से उनकी भी हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। उस टाइम पर गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि वी एक्चुअली नीड लॉज टू प्रोटेक्ट किड्स, टू प्रोटेक्ट एल्डरली पीपल, टू प्रोटेक्ट एवरीवन एल्स हु इज़ एक्चुअली नॉट स्मोकिंग, इंक्लूडिंग द पीपल हु आर स्मोकिंग।
3: ऑलराइट, ऑलराइट। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि किस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हिस्ट्री रही है हमारी, कहाँ से हम लोग इतिहास को देखते हैं, क्यों हमने लॉज बनाए। आगे फर्दर डिस्कस करेंगे हम कि एक्ट है इसको लेकर के, कॉटपा एक्ट उसका नाम है, ऑफिशियल जो उसका नाम है उसके बारे में बात करेंगे, एग्जैक्टली क्या है वो, उसका मेन काम क्या है, विल टॉक अबाउट इट। बट फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड विद अस, मैं हूं आरजे सागर, शो चल रहा है सत्यमेव जयते।

0: वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो सत्यमेव जयते, रेडियो 107.8 एफएम का बहुत स्पेशल एक वर्टिकल जहां पर हम लोग बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क की, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्ट पैक्ट। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इसी एक एक्ट के बारे में। कॉर्ट पैक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग, कॉर्ट पैक्ट इज सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। भारत में एक एक्ट है जो ऑपरेट करता है, फंक्शनल है। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या है ये।
1: 2003 में ये एक्ट आया था एंड मेजरली इस एक्ट के कुछ मोटिव्स थे। पहला मोटिव था कि हमें सबसे पहले एडवर्टिजमेंट को प्रोहिबिट करना है। जो भी एडवर्टिजमेंट टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स की होती है, चाहे वो ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रमोशनल एडवर्टिजमेंट्स हैं, हमें उनको रोकना है। स्पेसिफिकली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एक रेजोल्यूशन आया था, उसके बाद ये लगभग हर एक मेंबर स्टेट का मैंडेट बन गया था कि नॉन स्मोकर्स को, सेकेंड हैंड स्मोकर्स को हमें स्मोक से बचाना है और स्पेसिफिकली बच्चों को एडिक्शन से दूर रखना है। तो इसके लिए पहले सिर्फ जो भी हमारे पास लॉज थे उसमें मोस्टली सिगरेट्स को कवर किया जाता था, लेकिन हमने देखा कि इंडिया में सिगरेट्स के अलावा भी बहुत सारे टबैको के यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल बीड़ी एंड स्मोकलेस टबैको, जिसको हम कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, जैसे गुटखा, खैनी, पान मसाला, ये सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पे कवर करनी थी, जिसके लिए हमने ये एक्ट बनाया था, कॉटपा एक्ट 2003। एंड काफ़ी सारी मेजर चीज़ें जो हैं वो इस एक्ट में कवर हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग बैन होना वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ दिस एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडवर्टिजमेंट या प्रमोशन या कोई भी स्पॉन्सरशिप को हर तरीके से बैन कर दिया गया था इफ़ द प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू टबैको। 18 साल से कम के उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए सेल ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही बैन कर दिया गया था। अलॉन्ग विद दैट, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके 100 यार्ड के एरिया में टबैको सेल करना कम्प्लीटली बैंड है, पनिशेबल है। एक और चीज़ है जो हमने इस एक्ट के साथ नई देखी, पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग्स। सो हम देखते हैं कि जो भी टबैको प्रोडक्ट्स आते हैं उनके साथ पिक्टोरियल वार्निंग्स आती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कोई एक बहुत ही पिक्चर है जो कि बहुत अनईजी लग सकती है कुछ लोगों को, जिसमें ये दिखाने की कोशिश करी जाती है कि अगर आप टोबैको के कंज्यूमर हैं और आप लॉन्ग टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, व्हाट ऑल हेल्थ इफ़ेक्ट्स यू कैन फेस। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कॉटपा एक्ट ने इम्प्लीमेंट करी इंडिया में आफ्टर 2003।
0: ओके ओके, सो अमेजिंग। अगर कोई इंसान पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग कर रहा है तो क्या कॉर्ट पैक्ट में इसको एक वायलेशन माना जाएगा, और अगर माना जाएगा तो क्या होगा उस केस में?
1: ओके, इस एक्ट में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग बैंड है। हमने देखा है कि काफ़ी लोग हमें आसपास दिखते हैं जो पब्लिक प्लेसेस पे स्मोक कर रहे हैं। इस एक्ट की एक प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि हम शायद इसकी इम्प्लीमेंटेशन उतने अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो अगर मैं आपको लीगली बताऊं, तो अगर कोई भी इंसान स्मोकिंग करता हुआ पकड़ा जाता है पब्लिक एरिया में, तो उसको फाइन कर सकती है पुलिस ऑन द स्पॉट। एंड अगर आप कंटिन्यूस डिफॉल्टर्स हैं तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है और काफ़ी हैवी पेनल्टी लगाई जा सकती है। बट हाँ, इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज है, क्योंकि शायद एज अ कम्युनिटी हम एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आसपास कोई स्मोक कर रहा तो शायद हम ही वहाँ से चले जाते हैं, रादर देन रेजिंग द इशू कि शायद जो स्मोक कर रहा है उसको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज इलीगल।
0: ऑलराइट, ओके, लेट्स से इट कि पान की दुकान है जहाँ पर सिगरेट्स बेची जाती हैं, अब वहाँ पर 17 साल का एक लड़का आता है जो कि माइनर कंसिडर किया जाएगा एज पर लॉ, ओके, वो उसको सिगरेट बेच देता है। अब यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि पकड़ा गया अगर ये केस, तो किसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? शॉपकीपर के पास एक वैलिड डिफेंस होगा कि मुझे उसकी एज नहीं पता थी. इस केस में क्या होगा?
1: इंडिया में ही नहीं, काफ़ी सारी कंट्रीज में एक रूल है, एक लॉ है जो कि हम इंडिया में भी फॉलो करते हैं. अगर कोई भी सेलर, रिटेलर, कोई भी छोटी मोटी शॉप, पान शॉप, अगर ये कोई भी टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ये इनकी फर्स्ट ड्यूटी है दैट इफ़ दे हैव एनी रीजनेबल डाउट रिगार्डिंग द एज ऑफ अ पर्सन, तो उन लोगों को पूरा अधिकार है कि वो डिनाई कर सकते हैं इफ़ द पर्सन इज नॉट प्रेजेंटिंग अ वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ टू प्रूव देयर एज. सो अगर कोई भी शॉपकीपर है, पान शॉप्स हैं, उनके पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो पूछ सकते हैं अगर उनको लगता है कि नहीं जो भी परचेजर आया है ये बच्चा हो सकता है, अंडर 18 हो सकता है. तो ये पहली ड्यूटी उनकी बनती है कि अगर उनको 1% भी डाउट है तो वो गवर्नमेंट आईडी मांगे और पूछे कि क्या आप अबव 18 हैं या नहीं. पर ऐसा होता नहीं है एंड इसी रीज़न से देखा जाता है कि काफ़ी सारे अंडर 18 बच्चे होते हैं जो स्मोकिंग शायद सिर्फ ट्राई करने के लिए करते हैं और देन दे गेट अडिक्टेड टू द प्रोडक्ट. इसमें लाइबिलिटी, फर्स्ट लाइबिलिटी तो ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो शॉपकीपर की ही बनती है, क्योंकि अगर कोई बिलो 18 है, एनी हाउ वी आर लॉ डजंट जनरली पनिशेज अ पर्सन हु इज़ बिलो 18. हम उन्हें जुवेनाइल्स बोलते हैं इफ दे हैव कमिटेड एनी क्राइम. तो पहली लाइबिलिटी बनती है शॉपकीपर्स की. पर प्रॉब्लम यही है, क्या हमारे शॉपकीपर्स या जो लोग टबैको बेचते हैं, क्या उनको इस चीज़ की इतनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या उनको इतनी नॉलेज है कि उनको ये चीज़ भी करनी है या वो कर सकते हैं? दैट इज़ अ प्रॉब्लम.
0: सो अमेजिंग. एंड द आयरनी इज़ कि हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को समझा कि एग्जैक्टली आप टोबैको प्रोडक्ट्स की किसी भी तरीके से मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो. एंड द आयरनी इज़ कि यही सेम कंपनीज अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, कोई इलायची बेचता है, कोई कुछ और बेचता है, और ब्रांड नेम को इतना ज़्यादा फेमस कर देते हैं कि आप बाय डिफॉल्ट वहाँ से समझ जाएंगे कि ये खैनी बेच रहा है, ये पान मसाला बेच रहा है, बट इन इलायची वेरिएंट, सिमिलर टू दैट पार्ट की मैन विल बी मैन, आपने ये स्लोगन सुना होगा. ओके, सो दैट कंपनी डील्स इन एल्कोहल, लेकिन वो क्या बेच रहे हैं? म्यूजिक सीडीज या पानी जो है उसकी ऐड की जाती है. बट बॉटम लाइन ये है कि इनको अपना नाम आपकी ज़ुबान पर चढ़ाना होता है, दैट इज़ अ मेन गेम. सो आई वुड से दिस इज़ अ बिट डर्टी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग. ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे. मिस सिमरन हमारे साथ हैं और यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा आगे समझेंगे कि बॉलीवुड का क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर, एग्जैक्टली क्या हुआ है हमारे साथ. विल टॉक अबाउट इट, बट फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ. फील गुड, फील लाइव.

सुबह पे जिस तरह शाम का

0: जस्ट होपिंग आपको मजा आ रहा होगा, शो को आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए या सिमरन के लिए तो 8010781078 इस कॉन्टैक्ट नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइए। रिक्वेस्ट करूंगा व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचाइएगा। फिलहाल अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। सिमरन हमारे साथ है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉट पैक की, एक्ट को हमने समझ लिया है, स्मोकिंग की हिस्ट्री हमने समझ ली है, एक ओवरव्यू हमें मिल गया है, कुछ कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हमने समझी है कि अगर किसी माइनर को सिगरेट बेची जाए तो क्या होगा, कैसे किसको लायबल ठहराया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉलीवुड पार्ट। मैं जानना चाहूंगा कि बॉलीवुड ने कैसे इन्फ्लुएंस किया है हमें स्मोक करने के लिए।
1: एक्चुअली मैं बॉलीवुड का काफ़ी ही बड़ा रोल रहा है टू प्रमोट स्मोकिंग। सो अगर हम देखें जो हमारी 90s की मूवीज़ होती थी उसमें मोस्टली हम देखते थे जो विलन्स होते थे वो सिगार या सिगरेट्स स्मोक करते हुए दिखते थे। सो एक हमारा परसेप्शन था कि अच्छा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एक्चुअल में हीरो नहीं करता, ये विलन्स करते हैं। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ मे बी इन 2000s हमने नोटिस करना शुरू किया कि अब विलन्स के साथ साथ हीरोज भी जो हैं वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल नाउडेज। सो इससे लोगों का परसेप्शन भी चेंज हुआ बिकॉज वी सी कि बॉलीवुड में कोई भी चीज़ अगर ट्रेंड करती है तो हम कोशिश करते हैं एटलीस्ट व्हाट वी कॉल ससेप्टेबल पीपल, जैसे हमारे बच्चे हैं या फिर जो आजकल की जेनरेशन है स्पेसिफिकली जेन जी जेन एल्फा, जो कोशिश करते हैं कि जो उन्हें दिख रहा है इफ़ दे आर लाइकिंग इट दे स्टार्ट फॉलोइंग द ट्रेंड। सो व्हेन दे स्टार्ट फॉलो द ट्रेंड तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि दे आर टेकिंग अप हैबिट्स जिनका क्या इफ़ेक्ट होगा वो उन्हें नहीं पता। सो क्योंकि हम अभी स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, सिगरेट्स की बात कर रहे हैं, तो एक केस भी हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि स्मोकिंग को एक्चुअल में मूवीज़ में दिखाना ही नहीं चाहिए। वी शुड नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले जहाँ पर हीरो हो या विलन हो वो स्मोक कर रहा है। एंड देन दिस केस वॉज डिसाइडेड ऑन द ग्राउंड्स कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है अगर हम एक्चुअल में स्मोकिंग को बैन कर देते हैं, क्योंकि स्मोकिंग एज अ होल इज़ नॉट बैंड इन इंडिया। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहता है कि हम अपने मन की बात एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो सैडली ऐसा नहीं हुआ, मूवीज से हम गायब नहीं कर पाए स्मोकिंग को या फिर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल को। सो वी डू सी इट नाउडेज। हाँ, हम उसके साथ एक वार्निंग ज़रूर देखते हैं, हम गवर्नमेंट ने मैंडेट बना दिया है, नीचे एक छोटी सी वार्निंग आती है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। बट आई थिंक डिपिक्शन ऑफ स्मोकिंग इन बॉलीवुड हैज़ बीन द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ओवर किड्स ओवर टीनेजर्स टू टेक अप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग।
0: एंड नॉट जस्ट बॉलीवुड, हॉलीवुड में भी सिमिलर गेम आपको नजर में आएगा। वहाँ पर लोग कंपनीज जो है पैसे पे करती हैं बाकायदा डायरेक्टर्स को प्रोड्यूसर्स को कि आपको स्मोकिंग कैसे दिखाना है। हैव यू एवर नोटिस कि स्मोकिंग जब बॉलीवुड में या हॉलीवुड में आपको दिखाई जाती है तो अलग से एक प्रॉपर मूवमेंट होता है स्मोकिंग का कि वो उसको जलाएगा, फिर वो बहुत एस्थेटिक तरीके से आपको जलती हुई दिखाई देगी और एक साउंड आएगा ऐसा अजीब सा जो लाइफ में कभी आप किसी को स्मोक करते देखोगे तो आपको जीवन में वो साउंड कभी आपके कानों तक तो नहीं पहुंच पाएगा, बट यू विल गेट दैट साउंड इन द मूवी जस्ट टू मेक इट लार्जर देन लाइफ। एंड द आयरनी इज कि 60s-70s में कंपनीज ने क्या करना शुरू किया था कि डॉक्टर्स के कॉस्ट्यूम पहना करके मॉडल्स को खड़े करते थे और उनके हाथ में सिगरेट होती थी और उसके पोस्टर्स बड़े बड़े आपको दिखाई देते थे। ये बहुत सारी मैगजीन्स में न्यूज़पेपर्स अगर आप उठाएंगे 70s के आपको नजर आएंगी। तो इट शोज कि उन्होंने डॉक्टर्स से एसोसिएट कर दिया कि इट्स अ साइन ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। दर उसके बाद उस टाइम पर सिर्फ मेल्स पीते थे तो फीमेल्स को उन्होंने टारगेट करना था तो उन्होंने फीमेल मॉडल्स हायर करनी शुरू कर दी एंड दे मेड स्मोकिंग अगेन अ सिंबल ऑफ बोल्डनेस। If you are smoking, you are bold girl. So that is the dirty game और ये अब से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, but fortunately इतना हो गया है कि अब आप उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। बट आई थिंक जो भी हमारे पास ये चीज़ें हैं जिस तरीके से भी आपको दिखाई दे रहा है इनडायरेक्ट वे में जितना सटल इंटीग्रेशन किया जाता है आई थिंक उसके ऊपर भी काम हो सकता है एंड वी आर ऑन दैट वे ऑन दैट जर्नी। ओके, अगला पॉइंट मेरा आपसे रहेगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क इज कॉट पैक्ट में अगर कोई पैसिव स्मोकर है या माइनर है उनको लेकर के क्या प्रावधान है।
1: ओके, सो इस एक्ट में दो तरीके की प्रोटेक्शन है माइनर्स के लिए. पहली प्रोटेक्शन ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम की उम्र का है तो हम उसे किसी भी तरीके का टबैको प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, चाहे वो गुटखा हो, खैनी हो, सिगरेट्स हो, बीड़ी हो, ये सब कुछ नहीं बेचा जा सकता. दूसरा जो हमने एक प्रोविज़न देखा है इस एक्ट में वो ये है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के 100 yard के रेडियस में टबैको सेल कम्प्लीटली बैंड है. इनफैक्ट ये बोर्ड लगाना भी ज़रूरी है कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए, कि यहाँ पे इस एरिया से अगर हम 100 yard का एक रेडियस बनाएं तो उस रेडियस के अंदर अंदर हमें किसी भी तरीके का टबैको प्रोडक्ट सेल नहीं करना. सो कोशिश करी गई है कि पैसिव स्मोकर्स को भी कम किया जाए. जब 100 yards के रेडियस में कोई स्मोक नहीं करेगा, जब किसी माइनर को टबैको प्रोडक्ट सेल नहीं करे जाएंगे, सो पॉसिबिलिटी है कि बच्चों को बचाया जा सकता है स्मोकिंग से और पैसिव स्मोकिंग दोनों से.
0: ऑलराइट, सो अमेजिंग. आई एम डन विद माय क्वेश्चंस. इज देयर एनीथिंग जो मैंने पूछ पाया और आप कहना चाहते हो तो प्लीज़ फील फ्री.
1: आई वुड जस्ट से कि हम लोग शायद कोशिश बहुत कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ें अपनाएं जिससे हम स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सारे इन्फ्लुएंस स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम स्मोकर्स में कम कर पाएँ. क्योंकि फर्स्ट टाइम स्मोकर्स जो होते हैं, अगर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो समहाउ इन फ्यूचर स्मोकिंग पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी. तो अगर आपके आसपास बच्चे हैं तो हमें उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं ये ठीक नहीं है, एंड यू शुड नेवर एसोसिएट देम विद एनी सॉर्ट ऑफ ऑरा जो हम मूवीज़ में देख लेते हैं या फिर किसी को रेस्टोरेंट्स में देख लेते हैं ये चीज़ें करते हुए. तो हमें उसे अट्रैक्ट नहीं होना है. वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट दैट ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हमें नहीं करनी है.
0: सो वंडरफुल, सो अमेजिंग. और इसका एक बहुत इजी तरीका ये भी हो सकता है कि द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज आस्क दिस वन क्वेश्चन कि एक फ़ायदा बता दो सिगरेट का, क्यों पीते हैं? जस्ट वन बेनिफिट, दिस नो सिंगल बेनिफिट. सेकेंड इंपॉर्टेंट कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है, अगर वो ध्यान से अपने आप को ऑब्जर्व करे, अगर वो थर्ड पर्सपेक्टिव से खुद को देख पाता है तो आपको समझ में आएगा कि आपके हाथों में स्मेल रहती है, आपके दांतों का शेड जो है वो येलो हो जाता है, आपके लिप्स जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, आपकी ओरल हाइजीन की धज्जियाँ उड़ चुकी होती हैं, आपके कपड़ों में स्मेल आती है, इवन व्हेन यू आर वर्किंग आउट तो आपका जो स्वेट होता है उसमें भी आपको एक स्टिंकी स्मेल आपको जो है नजर आएगी. तो आसपास के लोगों को वो शायद बोल ना पाए आपको, बट वो फील होता है, स्पेशली टू ऑल द नॉन स्मोकर्स. एंड मोर ओवर दैट इज समथिंग जो आपके ब्रेन को हाईजैक करता है. इट बिकम्स अ रिवॉर्ड सिस्टम कि आप स्मोक करते हो, आपको काम से पहले स्मोकिंग चाहिए, काम के बाद आपको स्मोकिंग चाहिए. सो बेसिकली यू आर नॉट फ्री एट ऑल. एंड आई थिंक जो जिंदगी आपको मिली है, ये आज़ाद जिंदगी मिली है, इसको आज़ादी से जीना ही एक सबसे सही विकल्प जो है माना जाता है. फिलहाल उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितनी हमने बातें आपको बताई हैं आपको समझ आई हैं. सो जस्ट क्विट स्मोकिंग, प्लीज डू इट. इट इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ एंड लिटरली इट इज क्रिएटिंग सो मैनी डिजीजेज जो शायद मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता हूँ आपको, इतनी लंबी लिस्ट है. Just take care of yourself and choose a healthy lifestyle. All right, thank you so much, ma'am. हमारे साथ जुड़ने के लिए, it means a lot to us.
1: Thank you.
0: All right, दोस्तों, वक्त है अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का. आशा करता हूँ पसंद आया होगा. कोई फीडबैक है तो मेरे लिए या सिमरन के लिए तो 8010781078 इस नंबर तक पहुँचाइएगा. फिलहाल चलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए. दिस इज आरजे सागर.

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इसमें जब हम महिलाओं से बात करवाते हैं, उनके सशक्तिकरण की जो पूरी की पूरी जर्नी है वो आपको सुनाते हैं, तो ये कार्यक्रम और भी खूबसूरत हो जाता है। देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हमेशा से इसलिए की जाती है क्योंकि महिलाओं में शक्ति तो हमेशा से थी। महिला या नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है, लेकिन परेशानी ये है कि कहीं ना कहीं उसकी ये शक्ति छीनी हुई है और इसीलिए उससे सशक्तिकरण की जरूरत है। सो आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डायनेमिक महिला है। जी हाँ, हरमीत सहगल जी। हरमीत सहगल जी डायरेक्टर हैं हरमीत सहगल की और साथ के साथ डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर हैं इनाविल डिस्ट्रिक्ट 301 की, लेकिन ये प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब दिल्ली सैनिक फार्म्स की भी। यानी आप सोचिए कितना सारा कार्यभार इन्होंने संभाला हुआ है और ये सब कुछ इतनी आसानी से ये कर पा रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो करते हैं इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
1: थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर और आपके स्टूडियो में आना और बात करना आपसे, इट्स अ बिग ऑनर, थैंक यू।
0: हरमीत जी, इस कार्यक्रम का, इस प्रोग्राम का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम है हमारे रेडियो स्टेशन का, और इस कार्यक्रम में मैं जितनी भी महिलाओं से मिलती हूँ उनकी कहानी लोगों तक पहुँचाती हूँ, एक सवाल जो मैं हर महिला से पूछती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट। देखिए, महिला एम्पावर्ड है तो हम सबको पता है, हम महिलाएं हैं, लेकिन परेशानी है कि इसकी जो डेफिनेशन है ना वो हर महिला के लिए अलग है। किसी के लिए एम्पावरमेंट पैसा है तो किसी के लिए डेजिग्नेशन, किसी के लिए छोटा सा फ्रीडम तो किसी के लिए अपनी मर्जी की चीज कर लेना एम्पावरमेंट है। आपसे मैं अगर पूछूं तो हरमीत जी आपको क्या लगता है, आप कैसे डिफाइन करेंगी विमेन एम्पावरमेंट इसको?
1: वेल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से कोई या हाई पोजिशन से कोई भी एम्पावर्ड कम्प्लीटली एम्पावर्ड नहीं होता। देर इज मच मोर टू इट, और असली एम्पावरमेंट तब होती है जब महिला को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से मतलब चलाने की सक्षमता होती है
0: एक्चुअली,
1: एंड अपने फैसले खुद लेने की, और छोटी छोटी चीज़ों में जैसे आज़ादी अपने डिसीशंस लेने की।
0: लेकिन अगर मैं बात करूँ, देखिए हम ये हमेशा कहते हैं एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण का सही परिभाषा या उसकी सही डेफिनेशन है कि महिलाओं को वो अधिकार भी मिले और महिलाओं के पास ये फ्रीडम हो कि वो जैसी जिंदगी जीना चाहती हैं अपनी शर्तों पे अपने नजरिए से जिए। लेकिन अगर आप एक महिला का एक पूरा दिन देखें, यानी 24 घंटे जो उसे मिले हैं वो देखें, सो उस 24 घंटे में से मुझे ऐसा लगता है मात्र 5 मिनट या 10 मिनट भी वो अपने लिए तो नहीं बिताती है, और बाकी के पूरा समय या तो वो समाज के बारे में सोच रही है, परिवार के बारे में सोच रही है, बच्चों के बारे में सोच रही है, भविष्य के बारे में सोच रही है, पुरुषों के बारे में यानी उनके परिवार के जितने भी लोग हैं मेल मेंबर्स या भाई है पति है उनके बारे में सोच रही है, या घर के बुजुर्गों के बारे में सोच रही है। आज अगर किसी की बर्थडे पार्टी है तो एक महिला को सोचना है कि उसे क्या करना है, गिफ्ट क्या लेके आना है, तैयारी क्या करनी है, यहाँ तक कि बच्चे और पति कपड़े क्या पहनेंगे ये भी एक महिला की जिम्मेदारी होती है। सो आपको नहीं लगता है कि सशक्तिकरण तो है लेकिन इस सशक्तिकरण को प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिल पाता है महिलाओं को?
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक स्टेज आती है लाइफ में जब आपके पास टाइम ही टाइम है अपने लिए।
0: जी,
1: जैसे अब मैं उस एज फैक्टर में हूँ जो मेरी जिम्मेदारियाँ मोस्टली ख़त्म हो चुकी हैं, बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, सो ऐसी भी बात नहीं है। अब ये टाइम जो है भगवान ने मुझे दिया है, इट्स ऑल फॉर माई सेल्फ। सो मुझे लगता है कि अब तो ये जो बोनस टाइम है और मैं अपनी मर्जी से ये सब कर सकती हूँ। इनरवील में मेरे को 20 साल हो गए हैं, लेकिन जो मैं पहले मेरी वो नहीं थी कि मैंने लीडरशिप की पोजीशन लेनी है, एंड ये सिर्फ कोविड के बाद मुझे लगा कि अब मेरे पास मेरी मेन जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं लाइफ में, एंड आई शुड चैनलाइज माय एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। तो इसीलिए मैंने ये डिसीशन लिया कि मैंने डिस्ट्रिक्ट को एंटर करना है और लीडरशिप की पोजीशन लेनी है। और एम्पावरमेंट में लेडीज़ को अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी और इक्वालिटी भी मिलती है
0: वाकई।
1: सो इट इज़ मैं तो वैसे भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं नॉर्थ ईस्ट की हूँ।
0: जी।
1: सो मेरी पैदाइश असम की है एंड मेरी शादी मणिपुर में हुई थी।
0: जी।
1: सो वहाँ थोड़ा सा वुमेन की रिस्पेक्ट ज्यादा है।
0: ऑब्वियसली मातृ प्रधान प्रदेश है वो तो हमारा, और मैं ये कहूंगी कि बाकी अगर हम जैसे हमारे देश में बाकी जितने प्रदेश हैं जनरली अगर हम साउथ को छोड़ दें तो पुरुष प्रधान है, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, डाउन साउथ की बात करें, तो वो आज भी मातृ प्रधान है। वहां पर एक महिला को उसकी इनहेरिटेंस मिलती है, उसके पास ये अधिकार होता है। तो वाकई
1: सो और मैं डीपली कनेक्टेड हूँ टू द नॉर्थ ईस्ट आज तक, और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई थिंक अबाउट, आई लिव इन दिल्ली नो डाउट, बट मुझे एक डीप लव एंड कनेक्ट है विद द कल्चर देयर। और उसमें मतलब मैंने शुरू से देखा है कि जितनी भी मेरी फॉर एग्जांपल क्लासमेट्स हैं स्कूल की
0: जी,
1: उस सब ने काम किया है। इनफैक्ट मैं तो बिजनेस फैमिली से हूँ, सो मैंने शादी के बाद ऐसा कोई जॉब नहीं किया या ये सब नहीं किया, लेकिन सारी मेरी फ्रेंड्स ने गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स जो भी दे हैव ऑल डन आई मीन वर्क
0: ऑन
1: देयर ओन एंड अर्नड फॉर देयर
0: लाइवलीहुड।
1: सो आई मीन इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग बिकॉज आज जब मतलब आई एम टोटली कनेक्टेड टू देम एंड इट्स इट्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड।
0: यस, आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। सही मायने में सशक्तिकरण यही होता है। yes. और देखिए हरमीत जी ने ना एक बड़ी अच्छी बात कही है, डिग्निटी क्वालिटी और साथ के साथ रिस्पेक्ट, अगर हम इनकी बात करें, तीन चीज महिला की जिंदगी में भी उतने ही जरूरी होते हैं, लेकिन ये आपको तभी मिल सकता है जब आप अपने सशक्तिकरण को प्रैक्टिस कर पाएं, अपनी एम्पावरमेंट को प्रैक्टिस कर पाएं। फिलहाल वक्त एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानवृष्टा 107.8 FM के साथ। आई नो ये गाना आपको बहुत पसंद आएगा, लेकिन वापस आ जाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, feel like

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। और आज के एपिसोड में हम बैठे हैं हरमीत सहगल जी के साथ। शी इज द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर इन अरविल डिस्ट्रिक्ट 301, प्रेजिडेंट एंड रोटरी क्लब डेली सैनिक फार्म्स की, और डायरेक्टर हैं हरमीत सहगल, एक बहुत ही खास फर्म है। अब बात करते हैं आज के ज़माने की महिलाओं के चैलेंज की। भाई मैं तो ये मानती हूँ कि महिलाएं और चैलेंज हमेशा साथ होता है। सो हरमीत जी, हर युग में, हर एरा में, अलग अलग एरियाज में आप देखें महिलाओं को अलग अलग किस्म के चैलेंज हैं। कहीं फ्रीडम नहीं है, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर हम देखें, एक टाइम ऐसा था जब महिलाएं यानी बच्चियां पैदा नहीं हो पाती थी, कन्या भ्रूण हत्या इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। चलिए कुछ रूल्स बनाए गए, फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं बच्चियां पैदा हो रही हैं, उनकी पहली लोहड़ी मनाने से लेकर उनका नामकरण और उनका वेलकम किया जा रहा है। अब परिवार का इनहेरिटेंस भी मिल रहा है। अगर मैं आज के ज़माने की बात करूं, जहां पर बच्चियों के पास एजुकेशन का मौका है, अपनी पसंद की शादी करने का मौका है, अपनी पसंद की पढ़ाई करने का मौका है, सो ऐसे टाइम पर क्या चैलेंज है महिलाओं को?
1: उनको डबल चैलेंज है, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो घर की भी जिम्मेदारी करें और बाहर भी काम करें।
0: वाकई
1: सो एक्चुअली उनके लिए डबल जिम्मेवारी है आज, और हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। इट वॉज वी वर वेरी लकी। आई वॉज फ्रॉम अ फैमिली जिसमें हम लोग को एजुकेशन की पूरी अपॉर्चुनिटी मिली, जो मेरे भाइयों को मिली वो सेम मेरे को भी मिली
0: जी।
1: एंड हम लोग को बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन मिली, और हमने अपनी मर्जी से काम किया नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। शादी हो गई, हम उस माहौल में एडजस्ट हो गए, लेकिन आज की वुमन को बहुत इट इज़ challenge because she has to juggle between yes. managing the house and also अपना काम ठीक से करने का, and expectations तो बहुत हैं औरतों से, और उनसे मतलब उम्मीद की जाती है कि करियर में भी एक्सेलेंट है और घर की भी। सो नॉट ओनली दैट, देर इज अ लॉट ऑफ जेंडर बायस, सेल्फ डाउट, और सेफ्टी ऑल्सो फॉर वुमेन।
0: सो
1: ये सब चीज़ों में प्रोग्रेस रुकावट बनती है उनकी, और हमेशा ऐसी एनवायरनमेंट बनाना चाहिए हम लोगों को, हमारे देश को, जिसमें सिर्फ उनकी कैपेबिलिटी के बेसिस पर उनको देखा जाए, नॉट ओनली दैट शी इज अ वुमन।
0: यस, बड़ा ज़रूरी है। आप देखिए ना, मतलब आई टोटली अग्री कि वर्क लाइफ बैलेंस तो है ही नहीं। आप महिलाओं की ज़िंदगी में देखिए, मैं हमेशा कोट करती हूँ इंदिरा

नुई जी को, मतलब आप सोचिए कि जिनके पास इतने बड़े स्टाफ, इतना बड़ा ऑप्शन, वो भी ये कहती हैं भाई घर के डिसीजंस, घर का खाना क्या बनना है और क्या होना है, ये आज भी मेरे ऊपर ही है। मतलब आप डिस्पाइट कि आप कितनी ही हाउस हेल्प्स रख लें, एक जिम्मेदारी जो महिला के नाम पर आ जाती है ना, वो हमेशा महिला ही करती है। सो ये जो आज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शिफ्ट हो पाई है, ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। हम चाहे ऊंची उड़ान उड़ लें, लेकिन परेशानी ये है कि उस ऊंची उड़ान में उड़ने से पहले और वापस उड़ान के बाद हमें अपनी सिक्योरिटी का डर लगा रहता है, और ये महिलाओं के लिए वाकई आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है। हम पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंधा समानता का नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। सो ये कुछ आज भी चैलेंज है, और हम मिलकर इन चैलेंजेस को कम कर सकते हैं। सो क्या करेंगे उसके लिए जरूर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आप जुड़े रहेंगे मेरे यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आरजे भावना के साथ कार्यक्रम वी यानी फीमेल एम्पावरमेंट में। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन 107.8 एफएम। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के खास कार्यक्रम में आज हम हरमीत सहगल जी के साथ हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर हैं इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 301। बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है। इनरव्हील एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं के बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे काम कर रही है और समाज के बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे काम करती है, और इस पूरे डिस्ट्रिक्ट 301 के डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर हैं हरमीत जी। इसके साथ साथ ये कार्यभार निभा रही हैं प्रेसिडेंट का रोटरी क्लब दिल्ली सैनिक फॉर्म्स। तो आप सोचिए इनके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी है, लेकिन वहीं पर इनकी अपनी फॉर्म उसका भी ये ख्याल रख रही हैं। तो इसे कहते हैं सही मायने में सशक्त यानी डायनेमिक महिला यानी एम्पावर्ड महिला। हरमीत जी, आपकी जर्नी की बात करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के पन्नों को पलट कर देखें, कोई एक ऐसा डिसीशन जो आपने एम्पावरमेंट भरा लिया हो, चाहे उसमें आपको किसी से रिबेल करना पड़ा हो या नहीं करना पड़ा हो, बट आज आप रिग्रेट नहीं करती हैं कि मैंने ये डिसीशन लिया, एंड यू आर हैप्पी कि ये डिसीशन मैंने अपनी लाइफ के लिए लिया।
1: आई हैव टू गो बैक मेनी इयर्स
0: वाओ
1: उसके लिए। एक्चुअली जब मैं मैंने स्कूल ख़त्म किया था, तो मेरा मन नहीं था कि मैं गुवाहाटी में आगे अपनी फर्दर एजुकेशन करूँ। तो मैंने फैमिली को बोला कि मेरे को हॉस्टल जाना है और चंडीगढ़ में पढ़ना है। तो देर वॉज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम द एल्डर्स, नॉट फ्रॉम ऑल, आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑल्सो, ऐसी बात नहीं है। बट क्योंकि मेरे फादर नहीं थे उस टाइम तक, वो गुजर चुके थे, एंड मैं सबसे छोटी थी घर में, तो मेरे को अपने चाचों के से परमिशन लेनी पड़ी। सो वन ऑफ देम ही वॉज सो सपोर्टिव, उन्होंने बोला कि नहीं, इसका मन है, और मेरी भाभी ने बोला कि इसको हम भेजेंगे ही भेजेंगे जो इसका मन है। तो ये एक रिबेलियन था कि मैंने जाना है। जाके मुझे पहले महीना से, एक महीने से ज़्यादा लगा एडजस्ट होने में। मैं तो इतनी पैम्पर्ड थी, घर में यूज्ड टू थी कि स्टाफ, घर वाले सब पैम्पर करते थे। तो वहाँ जाके जब अपने आप सब कुछ करना पड़ा हॉस्टल में, और न्यू पीपल में एडजस्ट होने, मेरी एक भी कोई पहले से फ्रेंड नहीं थी, क्योंकि मैं चंडीगढ़ गई थी पढ़ने असम से, और उस जमाने में आफ्टर द 10th 1978 की बात है, कोई भी वहाँ से मेरी स्कूल से या मेरे शहर से नहीं था। सो इट वॉज़ अ वेरी बिग एडजस्टमेंट। बाथरूम में जाके रोती थी, लेकिन मैंने एक मन में ठान लिया था कि मेरे को एडजस्ट होना है, और आई विल नॉट गिव अप। मैं तो स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी अगर मैं असम में पढ़ती तो, लेकिन मैंने बोला नहीं, आई हैव, मतलब घर से लड़ के आई हूँ, सबसे मतलब वो करके आई हूँ कि मैंने यहाँ पढ़ना है। तो एंड देन आई फेल इन लव विद इट, बट इट टुक मी अ वाइल, इट टुक मी 2-3 मंथ्स। एंड थैंक गॉड उस जमाने में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, और हमारा चिट्ठियों का सिस्टम होता था, जो माँ को लिखते थे हम 2 हफ्ते में एक बार, और टाइम लगता था, और उनको पता ही नहीं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या मेरे को, मतलब मैं होम सिक हूँ। और 2-3 मंथ्स पास्ट, लाइक इट वॉज सो गुड। तो जब मैं फर्स्ट हॉलीडेज में गई, मैं ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी थी सिस्टम में, एंड इट वॉज अमेजिंग, एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट कि मैं, मेरे पास इतनी रेजिलियंस थी कि मैं रुक सकी। एंड अगर मोबाइल फ़ोन होता उस ज़माने में, या ये जो आजकल के एक्सेस होता है अपने यू नो बच्चों के पास, अपने इंटरनेट, मैं आई डोंट थिंक सो आई वुड हैव एडजस्टेड।
0: सच अ ब्यूटिफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द एम्पावरमेंट। वाकई बड़ा मुश्किल होता है, फिर सच्ची बताऊं, करियर के डिसीशंस, मैं तो मतलब अगर ये 1978 की बात करें, सोच कर देखिए हम आज 2024-25-26 की बात करें, तो भी ये डिसीशंस लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस समय पर इन्होंने सोचा, और आज सोचिए कि इन्होंने अपनी जिद से वहाँ पर अपना नाम कमाया जहाँ ये करना चाहती थी, वहाँ पर पढ़ाई की जहाँ ये करना चाहती थी। सो देखिए, शी डिड नॉट चूज द ईजी वे, बट शी चोज द वे विच शी फेल्ट वॉज मोर एम्पावर्ड। सो ऐसी ही बहुत सारे लोगों की जर्नी है, और मैं तो बहुत सारी महिलाएं जो सुन रही हैं उन्हें कहना चाहूंगी कि कितनी सारी चीज़ों में आपने ये सोच के मन मार लिया कि कहूंगी तो पता नहीं क्या होगा, लोग नाराज तो नहीं होंगे। प्लीज जाइए, कहिए, और उसे पूरा कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। उतनी ही प्यारी और उतनी ही खूबसूरत सी हरमीत सहगल जी हमारे साथ बैठी हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर आर एन अवील डिस्ट्रिक्ट 301 और प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब दिल्ली सैनिक फार्म्स की। हरमीत जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, बहुत लंबा जर्नी जो थी, बहुत लंबी जर्नी थी जो हमने अब तक अचीव कर ली है, और अगर हम देखें तो हमें कई जगह ऐसा लगता है कि हम पुरुषों के साथ इक्वल हैं एज ए जेंडर, यू नो, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हमें लगता है वी आर नॉट एन इक्वल जेंडर। क्या कहेंगी, मतलब अगर ये जो पूरा का पूरा हमारा पाथ है जो हमने अचीव किया, देखिए मैं ज़रूर थैंक करना चाहती हूँ हमेशा और करती भी हूँ उन सभी महिलाओं को जिन्होंने हमें आज इस स्टेज और स्टेटस तक पहुँचाया जहाँ हम अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर पा रहे हैं, आवाज़ तक उठा पा रहे हैं, बट एक जमाना था जब ये भी पॉसिबल नहीं था। सो क्या लगता है ये जो जेंडर इक्वालिटी है, इसे अटेन करने में अभी तो और भी टाइम लगेगा, लेकिन कहाँ लैक कर रहे हैं हम, कहाँ है ये गैप?
1: सी, माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है, एंड सबसे पहले तो मैं अपने वाहिगुरु को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को थैंक्स करना चाहती हूँ कि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, एंड अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को जिन्होंने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया और मुझे उड़ान करने दी जो मेरा मन था
0: जी।
1: सो आई हैव टू फर्स्ट थैंक वाहिगुरु एंड आई हैव टू थैंक माई फैमिली, माई हस्बैंड, एंड सेकेंडली दिस जो आप कह रहे हैं इट इज़ 100% ट्रू कि देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ये नहीं कि एक दिन में ये अचीव हो जाएगा, और इक्वालिटी आज भी मतलब नहीं है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, देर इज़ अ गैप।
0: यस,
1: बट दैट इज़ बिकॉज लोगों का माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू ब्रिंग अबाउट। द जेंडर इक्वालिटी सिर्फ महिलाओं का इश्यू नहीं है, पूरे समाज का इश्यू है।
0: वाकई।
1: सो जब बचपन से लड़की और लड़का को बराबर रिस्पेक्ट मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, तभी असली बदलाव आता है। और इक्वालिटी का मतलब कॉम्पिटिशन नहीं है।
0: यस,
1: इट इज़ पार्टनरशिप एंड देर इज प्यार, सत्कार, एतबार, सब कुछ इन्वॉल्व्ड है।
0: बिल्कुल।
1: सो ये मतलब एक समाज की प्रॉब्लम है, एंड आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ इंडिया को कन्फाइंड है, किस कई हद तक पूरे वर्ल्ड में है, बिकॉज वी आर द वीकर जेंडर बट वी आर नॉट वीक, वी आर रेजिलियंट एंड वी कैन मल्टीटास्क फैब्यूलसली। सो आई मीन वुमेन आर वुमेन, दे आर ग्रेट, बट it takes time and it's the acceptance takes time. So ये ना ये एक वो बना हुआ है कि दुनिया में दूसरी countries में women are very progressive and उनको मतलब उनके they are सक्षम, but they are not. It is if you go deep into the thing, वो नहीं है. It's a worldwide issue. आस्ते आस्ते gap is closing, but we should handle it in the correct way. Do not think के लड़के और वो सब करके हम लोगों को मिलेगा। You have to, equality is a different thing, and you know that independence जो है women की, it matters a lot, but also you have to work with the man in partnership. We are incomplete without our men also.
0: Yes, ये बिल्कुल सच कहा आपने, और कई बार पुरुषों को ये लगता है कि जब हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो हम शायद फेमिनिज्म का नारा लगा रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं अकेली महिलाओं के लिए समाज बन जाए, ऐसा कहीं भी नहीं है। दरअसल परेशानी ये है कि जहाँ पर पुरुष और महिला एक साथ हैं, वहाँ पर महिला का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी नीचे हो जाता है, और यही ज़रूरत है कि ये माइंडसेट हमारे घरों से शुरू हो, ये डिफरेंस जो है हमारे घरों में खत्म हो। मान लीजिए कि आपके घर में एक गेस्ट आया है और आपके घर की महिला जो है वो सोफे पे बैठी है, वो उन्हें रिसीव करे, घर का पुरुष, घर का बच्चा अगर पानी का ग्लास लाकर उन्हें दे दे, और ये बिल्कुल ओके वाली कंडीशन है, किसी की आईलिड भी ना उठे और कोई आईब्रो रेज ना हो, अरे इस घर में ऐसा होता है, जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा ना, तब समझ लीजिएगा कि माइंडसेट बदल रहा है। कोई भी आश्चर्य नहीं

रहा है कि अरे महिला काम नहीं कर रही है लेकिन पुरुष कर रहा है। होता क्या है ना, महिला काम नहीं कर रही है दैट इज ओके, लेकिन वो या तो वो बीमार है या उसको कोई परेशानी है तभी। लेकिन अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक है तो फिर घर के पुरुष बैठे रहेंगे या घर के जो मर्द है वो बैठे रहेंगे एंड देन शी इज वर्किंग। ये सारी जो चीज माइंडसेट्स हैं, सिमिलरली रात के 12 बजे या 1 बजे कोई काम है और महिला को बाहर जाना पड़ रहा है तो शी हैज टू टेक अलोंग सम मैन, मतलब सिक्योरिटी के लिए। पर क्यों ना हम एक ऐसा ही समाज बना दें जहाँ पुरुषों को साथ जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई पुरुष महिला को तंग ही नहीं कर रहा है तो फिर परेशानी कहाँ आ रही है। सो समवेयर डाउन द लाइन ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है। वेल, इसके लिए हम निरंतर कोशिश करते रहेंगे और आज जैसे हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एक समय आएगा जब मैं इसी प्रोग्राम में बैठकर ये कह रही होंगी कि जमाना बदल गया है। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: करो।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। हरमीत सहगल जी आज हमारे साथ हैं और आज हम इनसे ढेर सारी बातें करें। हरमीत जी, एक चीज बड़ी मुश्किल होती है, जहां आपने भी कहा कि महिलाओं को बहुत सारी जिम्मेदारियां होने के कारण वो बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। जब आप पहली बार इनर व्हील में गई या फिर आपने रोटरी ज्वाइन किया, आपके पास अपना काम तो था ही एज अ डायरेक्टर, बट जब आप घर से निकली तो घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं और जिम्मेदारियों से ज्यादा एक एक्सपेक्टेशन का लेवल हो जाता है, चाहे बच्चे हैं, घर के पुरुष हैं या फिर समाज है या रिश्तेदार हैं। सबको ये शायद पता होगा कि एक फ़ोन करेंगे और हरमीत हमारा ये काम कर देगी, लेकिन अब हरमीत शायद किसी मीटिंग में बैठी है, शायद वो क्लब की एक बड़ी लीडर है या फिर वो बहुत सारे डिसीजन ले रही है, आज वो किसी इवेंट में आज स्टेज पर बैठी है और वो फ़ोन नहीं उठाएंगी ना वो ये काम कर पाएंगी आपका। सो ये जो टाइम आया, कैसे बैलेंस किया दोनों चीज़ों को और क्या ये स्मूथ था या लगे जर्क्स कि लगा परिवार को समझाना मुश्किल था या लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है?
2: नो, आई वॉज वेरी लकी कि मुझे इतना कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। आई कैन इमेजिन कि प्रॉब्लम क्या पता होती अगर मैं मच यंगर होती उस टाइम
1: जी,
2: लेकिन मैंने मतलब काफ़ी एज में ज्वाइन किया, सो मेरे को ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई
1: जी।
2: और पहले मैंने बड़ी सॉफ्ट कंफर्टेबल पोस्ट ली थी इनर व्हील में। मैंने ठीक है, प्रेसिडेंट थी 3 बारी क्लब की, सो दैट वाज अ इजी थिंग। बाय द टाइम मैंने डिसाइड किया कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट में जाना है, मैं बच्चों की शादियां हो चुकी थी, ग्रैंड चिल्ड्रन हो चुके थे, सो इट वॉज अ वेरी कम्फर्टेबल टाइम टू ज्वाइन। सो मैं मानती हूँ, बट ये बात गलत है कि सबको इतना टाइम वेट करना चाहिए। नो, जब मन करे उस टाइम करो। अगर आप मच यंगर भी हो तो आप ज़रूर स्टेप इन करो लीडरशिप पोस्ट के लिए एंड अपना डिवोशन दो, एंड आई थिंक सब मैनेज हो जाता है।
1: हाउ नाइस।
2: यू नो, वो एक माइंडसेट होता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, सब कुछ हो जाता है। इट इज़ डिसीजन लेने की बात होती है।
1: हरमीत जी, एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जब कभी भी हम महिलाओं के करियर की बात करते हैं तो उनके करियर में ना जिंदगी में 2 बार ब्रेक आते हैं। पहला ब्रेक तब होता है जब उनकी शादी होती है, और वो ब्रेक इसलिए आता है कि मान लीजिए आप एक्स वाई जेड सिटी में हैं या फिर एक्स वाई जेड कंट्री में हैं और फिर आपकी शादी दूसरी जगह हो जाती है, तो वो ब्रेक तो आएगा ही। सो हालांकि वो ब्रेक शायद 2 महीने 4 महीने 10 महीने या सालों का भी हो सकता है। दूसरा ब्रेक आता है जब उनकी मैटरनिटी यानी आप परिवार एक्सटेंड करते हैं। अब होता क्या है कि इन दोनों के बीच में कभी भी लड़की से उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती है। कोई ये नहीं पूछता है कि भाई तुम्हारे करियर का क्या होगा जब हम तुम्हारी शादी करेंगे। पूरा परिवार, पूरा समाज, हर अनमैरिड लड़की से सिर्फ ये पूछता है तुम शादी कब करने जा रही हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आजकल तो एक और नई टर्मिनोलॉजी है, बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रहा है, तो आपको सही समय पर शादी कर लेनी चाहिए। दूसरा सवाल, जैसे शादी होती है बच्चे कब करने वाले, और जब बच्चे होते हैं या परिवार की जरूरत होती है तो एक महिला को कन्वीनियंटली ये कहा जाता है कि तुम अपना करियर छोड़ दो, व्हाट इज द बिग नीड, कोई बात नहीं, परिवार है और घर देख लिया जाएगा, आप अपने करियर को सैक्रिफाइस करें। अब देखिए, कुछ भी कहिए, जब एक महिला ने आत्मनिर्भरता दिखा ली है और शी इज फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, कहीं ना कहीं डीप डाउन हर हार्ट, आप कितनी भी महिलाओं से पूछे, सबको बुरा तो लगता ही है, भाई आज आप घर पर हैं, आप अपने टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है या परिवार की जिम्मेदारियां कम हो जाती है, तब आपको लगता है आप बहुत पीछे छूट गए। ऐसे में ये गैप को कैसे फिल किया जाए, क्या बैलेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि रिबेल करेंगे तो फिर जिम्मेदारी महिला की है?
2: नहीं, बैलेंस तो बनाया जा सकता है, बट उसमें फैमिली की पूरी सपोर्ट चाहिए होती है
1: जी।
2: जब आपकी आपका परिवार आपके साथ अच्छी तरह मतलब बिहेव करे और पूरी संभाल, मतलब वो आपके साथ व्हाट डू यू कॉल इट,
1: खड़े हो जाए
2: आपको सपोर्ट करें, तो ये पॉसिबल है विदाउट अ प्रॉब्लम। बट अदरवाइज तो ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज द वुमेन जो मैनेज करती हैं बच्चों की जिम्मेवारी, सब कुछ, एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाना, उनको स्कूल ड्रॉप करना, लेना, ये सब बेसिकली तो वुमेन की ही जिम्मेदारी है। बिकॉज
1: और जबकि
2: तो
1: कहीं डिफाइन नहीं किया गया है,
2: डिफाइन नहीं किया है, बट ये चाहे जितनी, चाहे वो आप एफ्लुएंट फैमिली से हैं, चाहे आप लोअर तबके से हैं, ये औरतों का ही एक मेन काम है। बट मैंने नॉर्थ ईस्ट में देखा है
1: जी,
2: मेरी स्कूल में मेरी फ्रेंड्स के फादर्स आते होते थे कई बार, तो ये डिफरेंस मैंने वहाँ देखा था. रेस्ट ऑफ द कंट्री का आई डोंट नो, बट वहाँ काफी था कि मेन भी इक्वल ड्यूटी जिम्मेवारी लेते थे. बट नॉर्थ इंडिया में तो आई थिंक इट्स द वुमेन.
1: बिल्कुल यस. देखिए ना, कई बार मैं खुद ही ये सोचती हूँ कि एक महिला ये सोच रही होगी कि काश थोड़ा सा, मतलब जो लोड है वो अगर दूसरों पे भी चला जाए, यानी परिवार के दूसरे सदस्यों पे चला जाए, यानी नॉट वुमेन बट पुरुषों पे चला जाए, तो बहुत हद तक वो भी अपनी जीवन की उड़ान को उड़ पाएगी. लेकिन अक्सर, मतलब आज भी मैं अगर बात करूँ तो 90% वुमेन आर सैक्रिफाइसिंग. सही मायने में दो वर्ड्स सिखाए जाते हैं बचपन से ही, एडजस्टमेंट एंड सैक्रिफाइस. अगर आप ये दोनों चीज़ों को करती हैं तो आप जिंदगी की सबसे अच्छी महिला हैं. और इसी चक्कर में ना पूरी जिंदगी वो सिर्फ सैक्रिफाइस करती रहती है, और वो ये मान लेती है कि जितना सैक्रिफाइस करेगी ना उतनी महान और उतनी अप टू द मार्क महिला वो कहलाएगी. दरअसल जिंदगी के अंत तक आते आते आपको समझ में आता है सैक्रिफाइस का कोई मतलब था नहीं. सो आज के ज़माने में तो इन टर्मिनोलॉजीज को हम सुन पा रहे हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बट पहले तो ये भी नहीं होता था. पहले की महिलाओं को तो पता ही नहीं होता था ये भी कोई चीज़ होती है. आज तो हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. बट डेफिनेटली ये जो दो स्टेजेस हैं महिला की लाइफ की, एक डिफाइनिंग हो जाती हैं. सो हम कोशिश कर सकते हैं कि समाज थोड़ा सा एडजस्टिंग हो तो इसे भी बदला जा सकता है. जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लाइव.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजी भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आज हमारे साथ उतनी ही प्यारी हरमीत सहगल जी हैं। हरमीत सहगल जी से आज हमने ढेर सारी बातें की। हरमीत जी जो कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर है इनविल डिस्ट्रिक्ट 301 और प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब दिल्ली सैनिक फार्म्स, आज हमारे साथ थी और कीमती समय देकर उन्होंने अपने जीवन की पूरी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। तहे दिल से धन्यवाद हरमीत जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। लेकिन जाते जाते क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
1: एक तो महिलाओं को अपनी हेल्थ का और अपनी आइडेंटिटी का दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इट इज़ मेनी टाइम्स वुमेन निगलेक्ट देयर हेल्थ बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उनको अपना ध्यान देना चाहिए और अपनी आइडेंटिटी को कभी भी लो नहीं करना चाहिए। एंड दूसरी बात वो उनकी मेहनत और खुद पर विश्वास रखना चाहिए उनको, क्योंकि मेहनती तो हैं औरतें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो उनको आत्मविश्वास अपना रखना चाहिए। एंड आज के समय में बेटियों को सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि डिसीशन लेने की कॉन्फिडेंस भी देनी चाहिए। जब हम महिला को सशक्त बनाते हैं तब हम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी परिवार पूरे समाज को मजबूत बनाते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दे आर द पिलर्स ऑफ सोसाइटी एंड देयर सक्सेस इज द सक्सेस फॉर द होल कंट्री फॉर द होल सोसाइटी।
0: देखिए ना, जब कभी भी एक महिला सक्सेसफुल होती है तो आप मान लीजिए कि वो पूरा परिवार सक्सेसफुल हो गया, समाज एंड समाज से पूरा देश और देश से विश्व। सो कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम आज भी जहां कहीं जो भी लैक्यूना है उसको जरूर फिल करें और कोशिश करें कि हम महिलाओं को भी एक अच्छा खूबसूरत समाज और जिंदगी दे पाए। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का और आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर रही हूँ अगले हफ्ते मैं आऊंगी आपके पास। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपके जीवन से, और हमारा प्रयास रहता है कि हम उस मुद्दे पर बेहतर तरीके से तलाश सकें, नई सोच के साथ नई दिशाएं जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं और हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। और वो मुद्दे होते हैं हमारे आपके जीवन से जुड़े हुए और कहीं ना कहीं हमारे आसपास होते हुए भी हम उन मुद्दों की उन बातों की अनदेखी कर जाते हैं, या जाने अनजाने हमसे वो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। ऐसा ही एक मुद्दा आज हम लेकर के आए हैं आपके बीच इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। दोस्तों, हर इंसान एक सपना लेकर के बड़ा होता है। किसी को गाना पसंद होता है, किसी को पढ़ाना, किसी को खेलना, तो किसी को दुनिया बदलने का सपना देखना। और वो दुनिया बदलने का जो सपना देखना है वो उसका स्वयं का अपना सपना होता है, या गाना गाने की हम बात करते हैं, या पढ़ाने की या खेलने की बात करते हैं, तो वो उस व्यक्ति का अपना एक सपना होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है, या बचपन से हम किशोर अवस्था में कदम रखते हैं, अपनी युवावस्था में पहुँचते हैं, या हम एक सेटल जीवन की तरफ जब चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल हमारे आसपास खड़ा हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है इस बात की कि हम अपने सपनों को जमाने के सपनों की नज़र से देखने लगते हैं, तो फिर शुरू हो जाती है सपनों और समाज के बीच की एक खामोश लड़ाई, जिसमें कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारे जीवन की इसी बात से, यानी सपने अपने या समाज के। बड़ी अपने आप में ज्वलंत समस्या है इस बात की कि जीवन हम जीते अपने लिए हैं, अपने हिसाब से जीने के लिए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस समाज के बीच में रहना और इसकी परवाह करनी शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दबाव हमारे ऊपर आ जाता है कि समाज के जो देखने का नज़रिया है वो हावी हो जाता है हमारे अपने नज़रिए के ऊपर, यानी हम वो बनने की कोशिश करने लगते हैं जो दुनिया हमसे बनवाना चाहती है, ना कि हम वो बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं। तो आज का मुद्दा इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, और हम जानेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी परिस्थितियों में हमें करना क्या चाहिए, या जब कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में उलझा हुआ होता है तो उसके पास अपने जीवन को और बेहतर तरीके से अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और तलाशेंगे नई सोच के साथ नई दिशाएं। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई सोच नई दिशाएं और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, यानी सपने अपने या समाज के। और कमोबेश ये बात यदि हम अपने जीवन की सारी अवस्थाओं पर अप्लाई करें तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जिसके मन में कोई ना कोई चाहत ना रहती हो। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, जिम्मेदारियां बदलती हैं, समाज में उसके आसपास का वातावरण बदलता है, तो ये जो सपने हैं, जो ये सोच है, वो परिवर्तित होने लगती है और एक प्रकार का दबाव भी कहीं ना कहीं ऊपर आने लगता है। दोस्तों, जब हम छोटे थे, या आपको भी याद होगा बचपन का वो समय कि जब सपनों में कोई डर नहीं था, यानी आप कुछ भी सोचते थे तो उसमें भय का कहीं भी कोई स्थान था ही नहीं। कोई बच्चा कहता था कि मैं पायलट बनूंगा, या कोई कहता था मैं डांसर बनूंगी, तो किसी को क्रिकेट भी पसंद था, किसी को पेंटिंग करना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सपनों पर प्रैक्टिकल होने का दबाव भी बढ़ने लगता है। जैसे मैंने बात की पायलट बनूंगा, एक सोच किसी बच्चे के मन में आई कि वो पायलट बनना चाहता है, लेकिन उस समय उसको इस बात को कहते समय किसी प्रकार का भय नहीं था, उसको नहीं पता था कि पायलट बनने के लिए आखिर करना क्या होता है। तो वो एक बड़ी स्वतंत्र इच्छा होती थी, एक सपना होता था जिसको वो बड़े खुले मन से सबके सामने बोल देता था। लेकिन जैसे जैसे सपनों पर प्रैक्टिकल होने का दबाव बढ़ने लगता है तो एक सोच डेवलप होने लगती है समाज की, समाज के आसपास के लोगों की, कि इसमें स्कोप नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, या इतनी पढ़ाई करके भी यही करोगे। जिस प्रकार से मैंने कहा कि किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो एक समाज की सोच, समाज का एक दबाव बन जाता है कि यदि आपने स्टडी बहुत अच्छे से कर ली है, आप एक अच्छे इंजीनियर बन गए हो, तो आप क्या क्रिकेट खेलोगे। या फिर कंपैरिजन, तुलना होने लगती है आसपास के कि फलाने के बच्चे को देखो, फलाने के बेटे को देखो, उसने ये किया। तो इस प्रकार का जब वातावरण हमारे आसपास बन जाता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग अपने सपनों से दूर चले जाते हैं। यानी जो इच्छा उनके बचपन में मन में जागृत हुई, उन्होंने एक सपना देखा बिना किसी भय के, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा बीता, एक उम्र हुई, युवावस्था आई, तो प्रैक्टिकल होने का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं ले जाता है हमें अपने सपनों से दूर। और एक बड़ी ही एक दुविधा वाली स्थिति हमारे सामने आ जाती है कि हम ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का गला घोटने पर या उनको मार देने पर या दबा कर उनको समाप्त करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो एक बड़ी सोचने वाली बात है कि यदि हम आज के समय की एक प्रैक्टिकल बात देखें तो एक बात जो बड़ी तय है कि ख्वाहिशों को अक्सर समझौते पहनाने पड़ते हैं, घर की उम्मीदों में खुद को छुपाना पड़ता है। हर कोई जी तो रहा है यहाँ, पर हर किसी को अपना सपना नहीं मिलता। एक बड़ी ही विषम परिस्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है हमारे जीवन में जब हम इस बात को कहने पर, एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। यानी आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं समाज के, जो आसपास के वातावरण का जो दबाव है, वो मजबूर कर देता है आपको अपने सपनों से दूर जाने के लिए। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। और आज हम चर्चा लेकर के आए हैं सपने अपने या समाज के, इस मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे समाज के सभी बच्चों से, बड़ों से और बुजुर्गों से। हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कि जो थॉट हमारे दिमाग में हमारे जीवन, अपने करियर या अपने भविष्य को लेकर के चलते हैं, वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं समय के साथ साथ। और उस परिवर्तन का सबसे बड़ा जो बदलाव का दौर शुरू होता है, वो होता है जब जब हम अपने करियर और कंपैरिजन की प्रेशर में आने लगते हैं। यानी आज के समय में यदि हम बात करें, करियर सिर्फ एक करियर नहीं रह गया, जिस प्रकार से हम अपने प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं, वो अपने आप में बन चुका है एक स्टेटस सिंबल। यानी आप क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, किस जॉब पर हैं, क्या व्यापार कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल एक आजीविका या पैसा कमाने का साधन नहीं रह गया, बल्कि उसका समाज में एक स्थान हो गया है स्टेटस सिंबल का। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र चुन लेते हैं जिसमें उनका मन नहीं होता, लेकिन वो चुनते इसलिए हैं क्योंकि समाज में उस क्षेत्र को चुनना या उस क्षेत्र में, उस प्रोफेशन में जाना एक सफलता का सूचक माना जाता है। यानी कि सोसाइटी जिस चीज़ को सफलता के मानकों से तोलती है, उससे तुलना करती है और उसको एक्सेप्ट करती है, वो युवा मजबूर हो जाते हैं उस क्षेत्र को अपनाने के लिए, उस प्रोफेशन को अपनाने के लिए, चाहे उनका मन किसी और काम को करने में क्यों ना हो। इंजीनियरिंग हो गया, चाहे मेडिकल, सरकारी नौकरी, इनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल ये है क्या वो जो सपना है इंजीनियर बनने का या मेडिकल का या सरकारी नौकरी का, क्या वो सपना आपका अपना है? क्योंकि अगर मंजिल अपनी नहीं होगी तो सफलता भी कहीं ना कहीं आपको अधूरी ही लगेगी। ये एक बड़ा ही कड़वा सच है हमारे जीवन का, जिसे हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप अपने पास तैयार रखिए और हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे से, जो जुड़ा होता है हमारे सबके अपने सपनों से, यानी सपने आपके या समाज के। तो जैसा कि हमने कहा कि जिस प्रकार से बचपन से लेकर किशोर अवस्था, युवा अवस्था या वृद्धावस्था की हम बात करें, तो जैसे जैसे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होने का दबाव बढ़ जाता है और हम अपने आप को मजबूर पाते हैं अपने ही जीवन के सोचे हुए सपनों से दूर जाने के लिए। तो ये जो अवस्था है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका कारण ये है कि समाज के अंदर हमने जो तुलना का और लोग क्या कहेंगे इस चीज़ का जो एक वातावरण पैदा कर दिया है, वो हमारे दिमाग पर एक तरह का दबाव बना लेता है कि हम वो कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसका हमारा चाहे मन नहीं होता, लेकिन क्योंकि समाज के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि आमतौर पर अगर हम बात करें कॉलेज के, आप छात्रों को कई बार आप जाकर के आपने बात करते हुए सुना होगा कि उन्हें म्यूजिक पसंद था, लेकिन घर वालों ने कहा कि इसमें स्कोप नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है। बच्चे पढ़ते तो जरूर हैं वो, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। और जबकि उनके पेरेंट्स की इच्छा यही रहती है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई उनको जीवन में खुशी प्रदान करे, आने वाले समय में उनका जब करियर बने तो वो खुशी दे। लेकिन कहीं ना कहीं उसी खुशी की, उसी हैप्पीनेस की बलि इनडायरेक्टली वो उस पढ़ाई को करते हुए दे रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी चॉइस नहीं थी। वो केवल इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके घर वालों ने कहा कि इसमें फ्यूचर नहीं है, म्यूजिक में फ्यूचर नहीं है या क्रिकेट में फ्यूचर नहीं है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये कोई किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। बहुत सारे युवा आज के हमारे जो जैन जी की हम बात करते हैं, वो इसी उलझन में रहते हैं कि आखिरकार हमारी चॉइस को हम एक्सेप्ट, या हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको हम कैसे अमली जामा पहनाएं बिना किसी सामाजिक दबाव के। यानी कि उनको कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर एक विरोधाभास पैदा करना पड़ता है, ताकि वो यदि अपनी सोच को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, या वो अपने सपनों के हिसाब से अपना करियर चुनना चाहते हैं, या अपने जीवन में वो सब करना चाहते हैं जो उनको खुशी दे, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक विरोध का सामना करना पड़ता है और उस विरोध को झेलने के लिए उनको तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि सपनों का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि बिना मन के जीवन जीना भी आसान नहीं होता। दोस्तों, साथ ही साथ हम पेरेंट्स की अगर बात करते हैं, तो नॉर्मली हर पेरेंट्स की एक इच्छा रहती है कि जब कभी भी हम इस तरह की बात बोलते हैं कि वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, या आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, या आप हमारी इच्छा के हिसाब से आप ये करो, तो एक थॉट उसमें कहीं, एक जो अगर हम बात करें कि पेरेंट्स की तरफ से जब इस तरह के थॉट आते हैं, तो वो एक थॉट एक दूसरे थॉट के साथ आता है। जब वो अपनी इस बात को कहते हैं बच्चों से, तो उनके मन में एक थॉट होता है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। मतलब पेरेंट्स की हमेशा से इच्छा रहती है कि उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन एक बेहतर जीवन बने, सफल जीवन बने, और हर माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा और भविष्य ही चाहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि कभी कभी जो सुरक्षा है, जो फ्यूचर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, उसमें और बच्चों के थॉट्स पे कंट्रोलिंग करने के बीच में बहुत ही महीन सी एक रेखा होती है। कभी कभी हम जाने अनजाने उस बेहतरी को तलाशते हुए कहीं ना कहीं उस रेखा को पार कर जाते हैं, और एक तरह का जो पेरेंट्स जो वातावरण पैदा कर देते हैं परिवार में, वो बच्चों के ऊपर नियंत्रण वाली स्थिति में आ जाते हैं। यानी एक बड़ी समझने वाली बात है कि जब कभी भी हम किसी बच्चे के करियर को लेकर के, उसकी सुरक्षा को लेकर के, फ्यूचर की सुरक्षा को लेकर के कुछ सलाह देते हैं, या उसको समझाते हैं कि इस चीज़ में स्कोप नहीं है, क्योंकि वो पेरेंट्स का अनुभव उनको बता रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके कब हम उस रेखा को पार कर जाते हैं और हम एक कंट्रोलिंग वाली स्थिति में आ जाते हैं, वो हमें खुद को नहीं पता चलता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब कभी भी आप बच्चों को, जो पेरेंट्स अगर कोई सलाह कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो जितना समय आप उनको अपनी बात बोलते हैं, उतना ही समय उनको भी दीजिए उनको अपनी बात आपसे कहने का। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता और आपसी जो अपनी समझ वाला जो सुलह और समझ वाला जो रास्ता है, वो हमें अपनाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये बात अब माननी पड़ेगी कि बच्चे यदि अपनी खुशी के हिसाब से कोई भी काम करते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलना है, चाहे म्यूजिक करना है, पेंटिंग, कुछ भी है, आप यकीन मानिए यदि वो खुश मन से उस काम को करते हैं, तो वो उस काम से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे जिसको वो बिना मन के कर रहे हैं। यानी हमें समझना पड़ेगा कि जिस काम को करने में बच्चों को खुशी मिलती है, उसमें वो बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, ना कि उन चीज़ों को करने में जिनको में
उनको करने में खुशी नहीं मिलती। तो ये बात आज के पेरेंट्स को भी समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों अभी लेते हैं छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं लेकर के आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में सपने अपने या समाज के, यानी बहुत सिंपल सा शीर्षक है। यदि हम इस टाइटल को सीधे से समझें तो कितना हकदार है समाज हमारे सपनों को डिसाइड करने का, उसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने बात की कि जैसे जैसे समय बदलता है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी का जो दबाव है वो हमें हमारे सपनों से दूर ले जाता है। जब हम देखने लगते हैं कि इस चीज़ में कितना पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, कितना समय इन्वेस्ट होने वाला है, और हमारी खुशी से ज़्यादा इस प्रोफेशन की या इस जो भी करियर की हम बात कर रहे हैं उसकी सफलता के कितना स्कोप है, यानी खुशी हमें मिलती है ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि समाज के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होने वाली है या ये बहुत ज़्यादा सफलता वाला एक मानक नहीं है, तो हम अपने आप को दूर करने लगते हैं उन्हीं सपनों से। तो यानी कहीं ना कहीं हमारे अपने जो सपने हैं वो हमारे अपने सपने ना रह करके बल्कि हम केंद्रित हो जाते हैं समाज के दिखाए हुए

समाज के द्वारा जो दिखाए जा रहे हैं बताए हुए प्रैक्टिकल सपनों की ओर। तो दोस्तों, समाज हमें दिशा दे सकता है लेकिन पहचान नहीं। अगर हर इंसान सिर्फ वही करे जो लोग सही मानते हैं, यानी हम समाज की अगर हम बात करते हैं, यदि हर व्यक्ति केवल वही करने लगे कि जो और लोगों को सही लगेगा, तो यकीन मानिए दुनिया में कोई कलाकार, लेखक, खिलाड़ी या वैज्ञानिक ही नहीं होता। ये एक बड़ा कटु सत्य है हमारे समाज का। जितने भी लोगों ने अपने अपने इन क्षेत्रों में, चाहे वो लेखन की या कलाकारी की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें या बहुत अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कभी भी केवल और केवल समाज की मान करके उस क्षेत्र में मुकाम हासिल नहीं किए, जबकि उनकी अंदर से एक आत्म इच्छा थी, उनका एक सपना था, तभी वो इन क्षेत्रों में मुकाम हासिल कर पाए। ये हर क्षेत्र के जो भी वरिष्ठ स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी आप किसी की भी कहानी आप पढ़ सकते हैं, आपको यही पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों, नई सोच केवल जब आती है जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करता है। यानी जब आप डिफरेंट सोचोगे नहीं, तब तक आप डिफरेंट करोगे नहीं। और जो डिफरेंट करने वाली चीजें होती हैं, वही समाज में आपको एक उच्चतम स्तर पर लेकर के जाती हैं, आपकी एक पहचान अलग से बनाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं, यदि हम प्रैक्टिकल बात करें, तो आपने बहुत सारे एग्जांपल हमारी सोसाइटी में ऐसे देखे होंगे कि जो जिनको इनिशियली अगर स्टार्टिंग में बोलें तो उनको अनसक्सेसफुल, फेल्ड और अलग अलग नामों से पुकारा गया, लेकिन आने वाले समय के साथ जब उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और समाज की परवाह नहीं की, तब एक दिन वही लोग सबके लिए प्रेरणा भी बन गए। यानी जिनको हमने फेल्ड और असफल लोगों की गिनती में गिना था, वही लोग समाज में पूजे जाने लगे, समाज उसको फॉलो करने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास किया था, समाज की आवाज पर नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत समझने वाली हमें बात है कि अपने सपनों को किसी भी सूरत में छोड़ देना अपने आप में कोई हल नहीं है। हमें बहुत बेहतर प्रयास करके अपने आप को सिद्ध भी करना चाहिए। केवल सपना देखना काफ़ी नहीं होता, यदि हमें समाज की सोच के अगेंस्ट जा करके अपने आप को प्रूव करना है, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन सपनों पर अपनी मेहनत भी उतनी करें, ताकि हम ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल सेट कर पाएं कि हमारी जो सोच थी वो सही दिशा में थी और इस सोच के साथ हमारा सेटिस्फेक्शन ही नहीं बल्कि समाज के अंदर आने वाला परिवर्तन भी छिपा हुआ था। तो दोस्तों, चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं सपने अपने या समाज के, यानी हमारे सपनों पर अधिकार हमारा ज़्यादा है या समाज का, या किस प्रकार से सामाजिक परिस्थितियां जो सपनों को प्रैक्टिकलिटी की तरफ जब हम ले जाते हैं तो किस प्रकार से समाज का जो दबाव है वो हमें कहीं ना कहीं दूर कर देता है। आखिर इस सारी समस्या का जो भी हमने अभी तक चर्चा की उसका आखिर समाधान है क्या, यानी कोई अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें, किसी समाधान की दिशा की हम बात करें, तो आखिर वो हल है क्या? क्या समाज का ऐसा सोचना गलत है? नहीं दोस्तों, समाज का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स की गाइडेंस भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन यानी संवाद। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा था कि बच्चों के अपने एक थॉट्स होते हैं, अपनी सोच होती है, उसको अमली जामा पहनाने की उनकी तरफ से हमेशा प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वहीं पेरेंट्स की सलाह, उनका अनुभव और उनकी जो गाइडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके सक्सेस होने में। तो यहाँ पर यदि कम्युनिकेशन गैप नहीं है और आपस में आप कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलता है जिसमें आपके सपने भी अपने ही रहते हैं और साथ ही साथ आप जीवन में सफलता भी समाज के हिसाब से ही पाते हैं, यानी आप समाज को अपने आप को एक सफल स्थिति में दिखाने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो उस संवाद की आखिर है क्या बात? बच्चों को समझना, उनकी इंटरेस्ट को सुनना, यानी बच्चे जिस बात में रुचि से इंटरेस्ट से बात करना चाहते हैं उसको सुनना और उसको एक्सेप्ट भी करना कि समाज के द्वारा बताए गए जो सफलता के मानक है, जो स्टैंडर्ड सोसाइटी में सेट हैं, चाहे किसी का इंजीनियर बन जाना, वकील बन जाना या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना या किसी भी प्रकार के अन्य किसी प्रोफेशन की हम बात करें, तो जो समाज ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं वो स्टैंडर्ड्स ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं होते हैं, ये बात भी पेरेंट्स को समझनी चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले कई दशकों से हम इस माहौल को देख रहे हैं कि अब तो कोई क्षेत्र अछूता रहा ही नहीं। आज आप ऑनलाइन अवेलेबिलिटी देखिए, गाना गाने वाले बच्चों ने कमाल किया हुआ है कि अपने अपने फील्ड में अलग से एक्सपर्टीज ले रखी है। कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देता है केवल और केवल अपने इंटरेस्ट के आइडिया के हिसाब से, चाहे वो पेंटिंग का है या हैंडीक्राफ्ट्स का या कुछ भी, उसमें कहीं भी किसी समाज की सोच आड़े नहीं आती। यानी जिस प्रकार से समाज में एक चर्चा रहती है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, तो वो सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। अब जमाना बदल चुका है और इस आधुनिक ज़माने में, इस जो मॉडर्नाइज युग, डिजिटल युग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अलग तरह का एक स्पेस तैयार हो गया है उन सब लोगों के लिए जिनके मन में अपने कोई सपने चलते हैं, अपने कोई विचार चलते हैं, और उन विचारों को एक मूर्त रूप वो दे सकते हैं और उन विचारों की एक्सेप्टेबिलिटी भी इसी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट जगहों पर बैठे हुए लोग कर पाते हैं। वो समय और था जब हमारी पहुंच एक लिमिटेड क्षेत्र तक थी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारी जो थॉट है, उसकी एक्सेप्टेंस उस क्षेत्र में नहीं होती थी, तो हमें कहीं ना कहीं लगता था कि हम गलत हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डिजिटल युग आया है, इंटरनेट के माध्यम से जब हमारी सोच, हमारे आइडियाज बहुत दूर दूर तक, दूर देशों तक पहुंच जाते हैं, तब हम लाइक माइंडेड लोगों को आकर्षित करते हैं अपने उस थॉट्स के प्रति, तो निश्चित रूप से आपको अपने सपनों के साथ साथ सफलता भी मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें समझने की बात है कि अगर हम इसको दो लाइनों में समेटें इस बात को, तो हर सुरक्षित रास्ता खुशी तक नहीं जाता और साथ ही साथ हर मुश्किल रास्ता गलत नहीं होता। तो इस मुद्दे पर हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हमारे पेरेंट्स का, समाज के बुजुर्गों का या बड़े लोगों का या जो गाइड करते हैं लोग, उनका अनुभव और साथ में हमारे सपने, उनके बीच में यदि संवाद से कोई एक रास्ता, एक कम्युनिकेशन से कोई रास्ता बीच का निकल पाता है, तो आपकी सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी और आपके सपने भी आपके अपने ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे और अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप सुनिए ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

जो हमने एक मुद्दा आज नई सोच नई दिशाएं में आपके सामने रखा, उसमें हमने सारे सेगमेंट्स पे चर्चा की। और कंक्लूडिंग अगर हम एक इसका नटशेल में कोई बात निकालें तो वो ये कि जो समाज का, जो हमारे पेरेंट्स का जो अनुभव है, जो हमारे उनकी गाइडेंस है, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। समाज हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर सपने हैं, जो उनके थॉट्स हैं, यदि हम उनको केवल इस कसौटी पर तय करेंगे कि सफलता का क्या कारण होना चाहिए, एक सफलता मिलती कैसे है, या जो हमने डिसाइड किया हुआ है केवल वही सफलता है, तो आप यकीन मानिए हमारे समाज के अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जिस प्रकार से हमने भी कहा कि अच्छे लेखक, खिलाड़ी, वैज्ञानिक या कुछ भी, जो एक नए तरह का जो परिवर्तन समाज में आता है, वो बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि हम केवल पुराने विषयों पर ही चर्चा करते रहेंगे, उन्हीं को हम स्टैंडर्ड सेट मान लेंगे। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि आपस का जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बेहतर स्थिति में ले जाता है जब हम इस तरह की चर्चाओं को आपस में करते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो बच्चों की सुरक्षा और भविष्य चाहते हैं, लेकिन जैसा हमने कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कहा था कि बच्चों के भविष्य की सुरक्षा और उनके थॉट्स पर नियंत्रण करना, इसके बीच एक बहुत बारीक सा डिस्टेंस होता है। तो पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भविष्य की सुरक्षा की चिंता करते हुए कहीं उनके सपनों पर या उनके ऊपर नियंत्रण ही ना करने लगे। और साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के सभी युवाओं से भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो सपने देखना है, समाज के किसी भी प्रकार के दबाव को ना महसूस करें, अपने ऊपर हावी ना होने दें। और जो वो सपने हैं, केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं होता, जैसा कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो इसका भावार्थ ये रहता है दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ का सपना देखते हो तो केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने में आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास भी उतने ही सीरियस होने चाहिए। और साथ ही साथ किसी भी मोड़ पर यदि हम बात करते हैं कि जो आपके प्रयास हैं, वो कोशिशें भी आपकी इतनी होनी चाहिए कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको ये ना कहना पड़े कि काश मैंने अपने दिल की सुनी होती। तो आपको समझना चाहिए कि जो थॉट भी आपके दिमाग में आते हैं, यदि आप उनको कोई अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो चूँकि वो सपने आपके हैं और उनको अमली जामा पहनाना, उनको सफलता की ओर लेके जाना भी आपकी ही ड्यूटी बनती है, तो आपको पूरे प्रयास भी उस दिशा में करने की आवश्यकता होती है, ना केवल एक चीज़ के बारे में सोच लेना पर्याप्त होता है। तो यानी यदि आप बदलाव चाहते हैं, अपने थॉट्स के साथ अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा शिद्दत से करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और सपने अपने या समाज के इस मुद्दे पर जिस प्रकार की चर्चाएं हमने की, उससे निश्चित रूप से आपको जरूर कोई ना कोई नई सोच के साथ एक नई दिशा मिली होगी और आपको लेकर के जाएगी वो एक बेहतर भविष्य की ओर। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। नमस्कार।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे। संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
2: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा? ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने, खुदा झूठ ना बुलवाए, तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है, इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है, इसलिए ये जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावल पिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावल पिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसके दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। वो उसकी तलाश में अंबाला आया जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अंबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसके सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपये में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में। यहाँ क्या धरा है भाई? होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कराओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास

0: खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदाबख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी, उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदाबख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया, फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ, चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है, सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गए, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता, सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना? शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूं। तो मैं भी झक मारता हूं। तो आओ झक मारे। मैं हाजिर हूं, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है। कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई। तुम ही बताओ क्या होगा, यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हीला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया। और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनोन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस न हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया, जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तो मुझे 100 दफा बुला सकती हो, और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें मंजूर हैं।
1: कैसी शर्तें?
0: सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
1: निकाह और शादी कैसी?
0: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
1: बोलो, क्या बात करूं?
0: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
1: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
0: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
1: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
0: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ, तो कहो क्या इरादा है।
1: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
0: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना?
1: हाँ, सुल्ताना ही है।
0: शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा, मेरा नाम शंकर है।
1: ये नाम भी ऊटपटांग होते हैं।
0: चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई।
1: तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई हो?
0: सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा,
1: बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है।
0: शंकर ने यह सुनकर कहा,
1: तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको?
0: नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो।
1: मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी।
0: लो बस, अब खुश हो गई।
1: सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकते हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी, बोलो देती हो?
0: ले लो।
1: ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देखकर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई, बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी, ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
2: रेडियो मानव रचना, रेडियो मानव रचना।
3: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8। और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर।
2: रेडियो सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया, आपका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हर हॉस्पिटल में एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है और ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर उन जटिल प्रक्रियाओं को पेशेंट्स के लिए और उनके फैमिली और रिलेटिव्स के लिए बहुत आसान बना देता है। वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है और जो जटिल प्रक्रियाएं हैं उनको सरल लहजे में समझाने का प्रयास करता है, ताकि पेशेंट्स को कम से कम परेशानियां उठानी पड़े। वो डॉक्टर्स से जुड़ी सारी चीजें और लॉ से जुड़ी सारी चीजें इम्प्लीमेंट करता है किसी हॉस्पिटल में, सारे पेपर्स तैयार करवाता है पेशेंट्स और डॉक्टर्स को ऑपरेशन के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए। सो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर से बात करने जा रहे हैं जो इन प्रक्रियाओं को बहुत सरल बना देता है। आज हमारे साथ हैं ज्योति जी, जो कि अपोलो हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हैं और वो बहुत से ऐसे केसेस देख चुकी हैं जिनमें उन्होंने सफल ऑर्गन डोनेशन करवाया है। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताएं कि आपका रोल क्या होता है, आपका जो मेन फोकस है वो किन चीजों पर रहता है।
3: आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं पिछले 2 साल से अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में एज अ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूं और मेरा मेन काम लिविंग और डिसीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट को कोऑर्डिनेट करना होता है, जिसमें मैं अगर डिसीज डोनेशन की बात करूं तो रोज ICU के राउंड्स लेती हूं और सभी मरीज की केस हिस्ट्री को स्टडी करती हूं, और अगर कोई केस हो जो कि ब्रेन डेथ की ओर लीड कर रहा हो या सस्पेक्टेड हो तो उस केस के बारे में डॉक्टर्स से डिस्कस करती हूँ जो उनका इलाज कर रहे होते हैं, यानी कि ट्रीटिंग फिजिशियन और न्यूरो फिजिशियन, उनको इन्फॉर्म करती हूँ और अगर डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं तो मरीज की फैमिली की काउंसलिंग करती हूँ और उन्हें ये समझाती हूँ कि ब्रेन डेथ क्या होता है और इसके बाद आपके पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें कि ऑर्गन डोनेशन भी एक विकल्प है जिससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इसके अलावा लाइव ऑर्गन ट्रांसप्लांट में डोनर और रेसिपिएंट की फाइल प्रिपेयर करना, उन्हें ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया समझाना और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना भी शामिल है। इसके अलावा अवेयरनेस जनरेट करना भी मेरा एक काम है, जिसमें हॉस्पिटल के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ या जो नया स्टाफ है उनको अंगदान के बारे में बताना और हॉस्पिटल के बाहर जाके ऑफिस में या और कम्युनिटी में अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल होता है।
2: मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि जब हम ये बात करते हैं कि हम अपने जाने के बाद किसी को अंगदान करेंगे तो कितने लोगों की हम जिंदगियां बचा सकते हैं या कितने लोगों की जिंदगियां हम बेहतर बना सकते हैं, कि हम 9 वाइटल ऑर्गन्स डोनेट करके 9 लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं और 50 से ज्यादा टिश्यूज डोनेट करके इतने सारे लोगों की जिंदगियां बेहतर भी बना सकते हैं। ये वाइटल ऑर्गन्स जो है वो है 2 लंग्स, 2 किडनी, 1 लीवर, लेकिन इसको हम 2 अलग अलग लोगों में आधा आधा काट के लगा सकते हैं, 1 हार्ट, 1 पैनक्रियास और 1 इंटेस्टाइन। इसके अलावा जो मुख्य टिश्यूज हैं वो हैं कॉर्निया, स्किन, हार्ट वॉल्व्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेजेस, ये सारे टिश्यूज भी हम अपने जाने के बाद डोनेट कर सकते हैं। ज्योति जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जीते जी एक व्यक्ति अपनी एक किडनी या फिर लिवर का हिस्सा ही डोनेट कर सकता है, इस लिविंग ऑर्गन डोनेशन के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे?
3: जैसे कि आपने बताया कि लिविंग ऑर्गन डोनेशन में हम किडनी या लिवर का कुछ पार्ट किसी दूसरे व्यक्ति से ले सकते हैं, पर इसकी पहली शर्त ये होती है कि जो डोनर है वो हमारी फैमिली में से ही होना चाहिए। थोआ एक्ट के अकॉर्डिंग ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि कोई नियर रिलेटिव भी अपनी एक किडनी या लिवर का पार्ट डोनेट कर सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर से बात करनी चाहिए। बिना किसी दबाव के अगर वो अपनी सहमति से अंग का दान करना चाहते हैं तो डॉक्टर्स उनका पूरा चेकअप करेंगे और कंपेटिबिलिटी के लिए टेस्ट करेंगे, जैसे कि ब्लड ग्रुप मैचिंग, HLA मैचिंग, क्रॉस मैचिंग, इसके अलावा DNA मैचिंग और अदर टेस्ट भी होंगे जो प्रूव करने के लिए कि सही में ये उनके नियर रिलेटिव हैं। इस प्रक्रिया के बाद कमिटी के सामने इंटरव्यूज भी होंगे ये जानने के लिए कि डोनर पर कोई प्रेशर तो नहीं है। इसके अंतर्गत अगर सब कुछ सही रहा तो कमिटी इसको प्रूव करेगी और ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैं यहाँ ये जरूर और ऐड करना चाहूंगी कि कानून में नियर रिलेटिव्स में 6 रिलेशनशिप को बताया गया है, जो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी या नाना नानी, पेरेंट्स यानी कि आपके माता पिता, सिबलिंग्स यानी कि आपके भाई बहन, पाउज यानी कि आपकी पति और पत्नी, चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि आपके बच्चे या पोता पोती या नाता नाती शामिल हैं। इसके अलावा सभी रिलेटिव्स अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट में आते हैं। अगर किसी की फैमिली में से कोई डोनर नहीं है तो आपके दोस्त या आपके साथ काम करने वाले लोग इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और आपको ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अनरिलेटेड लिविंग ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है क्योंकि इसमें आपको ये प्रूव करना होता है कि डोनर और रेसिपिएंट के बीच में किसी तरीके का लेन देन तो नहीं हो रहा है, डोनर के ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, डोनर को कोई लालच तो नहीं दिया जा रहा है। इसमें आपको अपने डोनर के साथ फॉर्म भर के अपनी एप्लीकेशन हॉस्पिटल में सबमिट करनी होती है, जिसमें आपकी और आपके डोनर से जुड़ी जानकारी होती है। हॉस्पिटल इस एप्लीकेशन को स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भेजेगा, वो इसकी जांच करेंगे। इस तरह के ट्रांसप्लांट में आपको जो भी डोनर होता है उसके और आपके किस तरीके के रिलेशनशिप हैं, क्यों वो आपको अंगदान देने जा रहा है, इन सभी के बारे में कमेटी पता लगाती है। डोनर और रेसिपिएंट का अलग अलग इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही जो कमेटी है वो डिसीजन लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत से केसेस में लोग जाली सर्टिफिकेट, जाली रिकॉर्ड बनाकर लाते हैं और ट्रांसप्लांट करवाने की कोशिश करते हैं और बहुत से अपराधी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और ये पूरा अंग व्यापार चलता है। इसी को रोकने के लिए ये सभी नियम बनाए गए हैं और ये प्रक्रिया जटिल बनाई गई है ताकि अंग व्यापार को कम से कम किया जा सके और पूरी तरह से खत्म किया जा सके।
2: और अगर परिवार में कोई डोनर ना हो तो डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन की क्या प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें विस्तार से बताएं।
3: कैडेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट या डिसीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब जब हम किसी मृत व्यक्ति के ऑर्गन्स लेते हैं। इस तरह के ट्रांसप्लांट में व्यक्ति ब्रेन डेड होता है और उसकी फैमिली डिसीजन लेती है कि उसके अंगों को दान करना है। उन अंगों को उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो काफी समय से वेटिंग लिस्ट में होते हैं और जिनसे ऑर्गन मैच होता है। हॉस्पिटल तुरंत उन पेशेंट्स को संपर्क करता है और हॉस्पिटल आने के लिए बोलता है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि ये अंगों का एलोकेशन हॉस्पिटल खुद नहीं करता। जब भी किसी हॉस्पिटल में कोई अंगदान हो रहा होता है तो उस हॉस्पिटल को स्टेट की एजेंसी को ये बताना होता है और उस स्टेट की गवर्नमेंट एजेंसी जिसे हम SOTO स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो सभी हॉस्पिटल्स की कॉमन वेटिंग लिस्ट में से ये डिसाइड करती है कि ये अंग किसे दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट में नाम रजिस्टर करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एक ID प्रूफ चाहिए होता है जिससे कि आपको उस समय संपर्क किया जा सके। इसके अलावा फॉलोअप में रहने के लिए आपकी लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स भी चाहिए होती हैं जो कि टाइम टू टाइम आपको हॉस्पिटल में अपडेट करनी होती हैं।
2: ज्योति जी, आपके पास कैसे कैसे केसेस आते हैं, अगर कोई केस आपको याद हो जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
3: जी, मैं लिविंग ट्रांसप्लांट का एक केस आपसे शेयर करना चाहूंगी जिसमें जो पेशेंट थे उनको कंबाइंड ट्रांसप्लांट यानी कि लिवर और किडनी दोनों की जरूरत थी, तो उनकी बेटियों ने जो कि 18 साल और 21 साल की हैं अपना अंग दान करने का संकल्प लिया। उनको काफ़ी लोगों ने डिस्करेज भी किया कि आपकी शादी नहीं होगी, आपकी उम्र ही नहीं है डोनेट करने की, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया और अपनी बात पर अड़ी रही कि नहीं, हमें अपने पिता की जान बचानी है। और उनको उनकी बड़ी बेटी ने पार्ट ऑफ लिवर डोनेट किया और छोटी बेटी ने किडनी डोनेट की।
2: ज्योति, यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया लिविंग ऑर्गन डोनेशन का, जब उन दोनों बच्चियों ने अपने पिता की जान बचाई ड्यूल ऑर्गन्स डोनेट करके। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि जब भी हम कभी ऐसी लिविंग ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, एक लीवर या किडनी देने की बात करते हैं, तो लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी होती हैं इससे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मन में आता है वो ये आता है कि मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरी हेल्थ का क्या होगा, क्या एक किडनी मेरे लिए सफिशिएंट है, क्या मैं किसी बीमारी से तो ग्रसित नहीं हो जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एक किडनी से हम अपनी पूरी लाइफ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको ये जान के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हर 20 में से एक बच्चा दुनिया में ऐसा पैदा होता है जिसकी जन्म से ही एक किडनी होती है, और अगर उसकी सोनोग्राफी या उसकी कोई जांच नहीं करवाई जाए तो उसको जिंदगी भर पता नहीं चलता कि वो एक किडनी के साथ पैदा हुआ है। सो हम एक किडनी से अपनी लाइफ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी से कंप्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही लीवर के केस में है कि लीवर हमारी बॉडी में एक लौता ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट होता है, जैसे छिपकली की पूंछ कटने के बाद दोबारा बढ़ जाती है, वैसे ही लीवर को हम आधा काट के डोनेट कर सकते हैं अपने जिंदा रहते हुए। 3 से 4 महीनों के अंदर वो लीवर दोबारा बढ़ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि वो दोनों बच्चियां बहुत स्वस्थ होंगी, उनके पिताजी बहुत स्वस्थ होंगे, उन्होंने जो डिसीजन लिया अपने पिता की जान बचाने का वो बहुत ही सराहनीय है। ज्योति जी, डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी हमसे कोई केस डिस्कस करें।
3: दूसरा केस मैं शेयर करना चाहूंगी डिसीज्ड ट्रांसप्लांट का, जिसमें जो मृत व्यक्ति थे वो 26 साल के युवक, उनका एक्सीडेंट हुआ था और दिमाग पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी ब्रेन डेथ हो गई थी। डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट और ऑपरेशन भी किया, उसके बाद भी उनकी जिंदगी हम नहीं बचा पाए। फैमिली की काउंसलिंग की गई, जिसमें उनके माता पिता और उनकी बहन थे, उनको समझाया गया ब्रेन डेथ के बारे में और बताया गया कि आप किसी और की जिंदगी बचा सकते हो अपने बेटे के अंगदान करके। उसके बाद उनकी माता ने डिसीजन लिया और बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा किसी और में जिंदा रहे, और उन्होंने अंगदान करने का फैसला लिया और सहमति दी।
2: दोस्तों, ये बहुत ही टफ टाइम होता है कि जब किसी फैमिली के कोई प्रियजन की मृत्यु हो गई हो, वो ब्रेन डेड हो गया हो और उनसे अंगदान की बात कही जा रही हो। ये बहुत ही

0: और पेशेंट्स की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। प्लीज आप सभी अपने अंगदान करने का संकल्प जरूर करें, और ये करने के लिए आप ऑर्गन इंडिया के थ्रू www.organindia.org पे भी प्लेज फॉर्म भर सकते हैं और अपना डोनर कार्ड हासिल कर सकते हैं।
1: धन्यवाद ज्योति जी, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं अब जाने माने और सुप्रसिद्ध लेखक जावेद अख्तर जी के अंगदान पर विचार।
2: दोस्तों, मैंने ऑर्गन डोनेशन करने का फैसला कर लिया है और मैं कर रहा हूँ अभी। ये ऑर्गन डोनेशन क्या होता है? ये है कि कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसा वाकया होता है जिसकी वजह से आदमी का ब्रेन जो है वो डेड हो जाता है, बाकी जो बॉडी है वो जिंदा रहती है, दिल धड़क रहा है, बाकी जिस्म के जो हिस्से हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन डेड हो चुका है। अब जब ब्रेन ही डेड हो चुका है तो हम तो हैं नहीं, इसलिए कि हम जो कुछ हैं वो अपनी थिंकिंग है, अपने विचार हैं, अपनी सोच है, अपनी याद है, अपना ख्याल है। जब वो सब ख़त्म हो गया तो एक दिल है जो धड़क रहा है, कुछ आते हैं जो काम कर रही है, किडनी काम कर रही है, लिवर काम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं हैं, इसलिए हम तो यहाँ थे, रहे ही नहीं। तो अगर ऐसी हालत है तो क्या अच्छा हो कि ये जो बाकी ऑर्गन ठीक काम कर रहे हैं ये किसी ऐसे इंसान को दे दिए जाएं जो उसके काम आए। किसी आदमी के पास किडनी नहीं है, बाकी हेल्दी है, ठीक है, उसका तो ब्रेन भी काम कर रहा है लेकिन किडनी ख़राब है, तो ये किडनी उसे दे दी जाए। किसी को लिवर का प्रॉब्लम है, कोई हार्ट ट्रांसप्लांट चाहता है, बीमार है, उसे आपका दिल मिल जाए और वो जिंदगी पा ले इससे। तो हम तो सच पूछो उस वक्त ख़त्म हो गए जिस दिन ब्रेन ख़त्म हो गया। अब ये जो जिस्म चल रहा है, कुछ दिनों बाद शायद इसकी धड़कन बंद हो जाएगी, सांस बंद हो जाएगी, और फिर इसे या तो जला दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा, किस काम का? अगर ये जो जिंदा ऑर्गन है हम किसी को दे सकें, और ये हम कब दे रहे हैं? जब हम नहीं रहे। हम एक तरह से सोचिए तो जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, गुजर गए, तो क्या हर्ज है? और यही सोच के मैंने ये तय किया कि मैं ऑर्गन डोनेशन कर दूँ, ये प्लेच कर दूँ। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये मॉरली ठीक है कि नहीं, और ये रिलीजियसली ख़राब है या सही है, या लोग क्या कहेंगे, ये काम गलत है कि सही है। कोई काम जो दूसरों के काम आने का हो, कोई काम जिससे बहुत से लोगों की ज़िंदगी बच सके, वो बुरा काम कैसे हो सकता है? ये मेरी अक्ल तो नहीं मानती। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बारे में सोचें और अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, ख़ानदान से डिस्कस करें, दोस्तों से डिस्कस करें इसमें कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन जब बहुत ऑब्जेक्टिवली और ईमानदारी से, सच्चाई से आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये काम तो अच्छा है और करना चाहिए।
3: मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं, या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं, या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
4: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मानव रचना 107.8 पर श्रोताओं हाजिर हूं मैं सरिता आपके साथ और लेकर आ गई हूं कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती, जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। और दोस्तों, ये वो सदाबहार नगमे हैं हम इस कार्यक्रम में जो लेकर आते हैं, जिनकी चमक कभी कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनके जो लिरिक्स होते थे या इनका जो म्यूजिक होता था या जो बहुत ही प्यारे गायक इन्हें गाते थे, तो ये गाने अलग ही लेवल के गाने हैं जिन्हें आज भी सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, सुकून सा मिलता है। और हर तरीके के गाने हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं और एक थीम, एक टॉपिक होता है जिस पर वो गाने आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने आपसे वादा किया था कि लेकर आऊंगी सेम टॉपिक, यानी कि पिछले हफ्ते अगर आपने हमारा कार्यक्रम सुना हो तो हमारा टॉपिक था दूर दूरी दूरियां, और बहुत सारे गाने छूट गए थे। तो आज यही सिलसिला हम शुरू करेंगे इसी टॉपिक के साथ, और जो गाने हमने आपको पिछले हफ्ते नहीं सुनाए थे वो हम आज आपको सुनाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में आप अपने रिक्वेस्ट भी ज़रूर शामिल करिए, हमें कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करके। नंबर है हमारा 8010781078। तो चलिए बिना देर की आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। उससे पहले स्वागत करूंगी अपने कम्युनिटी मेंबर्स का जो हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं प्रदीप गर्ग पराग जी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू सरता जी, नमस्कार दोस्तों
1: जी। और मेरे साथ हैं शैलेंद्र नांगे जी भी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: थैंक यू सरता जी, और सभी सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी। तो दोस्तों, चलिए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं बहुत ही प्यारे गाने के साथ, और रियल रेट्रो गाने जिन्हें मैं कहती हूँ, ये वो गाना है। और ये गाना कौन सा है, फिल्म कौन सी है, पूरी जानकारी दे रहे हैं प्रदीप जी।
2: जी, आज के कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं 77 ईयर ओल्ड फिल्म से, बड़ी बहन से। 1949 की ये फिल्म है, सुरैया पर पिक्चराइज्ड है, सुरैया ने ही गाया भी है, सुरैया रहमान की जोड़ी है फिल्म में, कमर जलालाबादी के बोल हैं और हुसन लाल भगत राम का मधुर संगीत है। हिट सॉन्ग है अपने टाइम का वो।

0: बहुत खूब
1: गुड वन प्रदीप जी,
2: थैंक यू जी, थैंक यू
0: जी। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा गाना, जैसे कि बताया प्रदीप जी ने 1949 की फिल्म से गाना लिया गया बड़ी बहन। और दोस्तों आप इस गाने को एंजॉय कीजिए सुरैया जी की आवाज़ में, और अपनी रिक्वेस्ट भी जल्दी से भेज दीजिए अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं जिसके मुखड़े में दूर दूरी दूरियां ऐसा कोई शब्द आया है। तो नंबर है हमारा 8010781078। फिलहाल बड़ी बहन फिल्म से, वो पास रहें या दूर, आप इसे एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती। फील गुड,
2: फील लाइक।

0: स्वागत है इस बहुत ही बेहतरीन नगमे के बाद। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन नगमे आपके लिए लेकर आए हैं और अब जिस गाने को हम आपको सुनाने वाले हैं वो वाक्य में ही मोती नुमा गाना है, लेकिन ये फिल्म कौन सी है, गाना कौन सा है, जानकारी दे रहे हैं शैलेंद्र जी।
1: जी गाना लिया है हमने फिल्म आनंद 1971 की। इस फिल्म में जोड़ी आई राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की, साथ में नजर आए सुमित्रा सन्याल, सीमा देओ, रमेश देओ, जॉनी वॉकर व अन्य कलाकार। मुकेश की आवाज में ये गीत है, योगेश के बोल हैं और सलील चौधरी का मधुर संगीत है।
0: जी

0: बहुत खूब, बहुत अच्छे से पेश किया आपने गीत,
1: धन्यवाद सर
2: जी। दोस्तों बहुत ही प्यारी फिल्म, आनंद, बहुत ही मोटिवेशनल, इसमें एक मैसेज था जो हम सभी जानते हैं। आई होप आप सब ने देखी है, और अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। आनंद फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गाना, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, आप इसे एंजॉय कीजिए। ओरिजिनल ट्रैक पर मुकेश जी की बहुत ही बेहतरीन आवाज़ में, और इसी तरह और भी बेहतरीन नगमे हैं जो आपको सुनाएंगे इस कार्यक्रम में। और अपनी रिक्वेस्ट भी आप जल्दी से भेज दीजिए, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं दूर दूरी दूरियां पर, तो हमारा नंबर वही है 8010781078। फिलहाल ये गाना आनंद फिल्म से आप सभी के लिए, फील गुड,
0: फील लाइक।
3: कहीं दूर

0: स्वागत है इस बहुत ही प्यारे गाने के बाद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ, और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। और दोस्तों बहुत ही प्यारे गाने आपके लिए लेकर आए हैं, और अब हम चलते हैं अपने अगले गाने की तरफ जो हम ले रहे हैं फिल्म झबक से। तो ये गाना कौन सा है और इसकी बाकी जानकारी हमें दे रहे हैं प्रदीप जी।
1: जी, ये फिल्म है 1961 की और झबक फिल्म के कलाकार हैं महीपाल और श्यामा, उन पर पिक्चराइज ये सॉन्ग है। लता और रफ़ी के द्वारा गाया हुआ युगल गीत है ये, प्रेम धवन के बोल हैं, चित्रगुप्त का मधुर संगीत है, और ये डुएट सॉन्ग है, तो सरिता जी इसमें मेरा साथ देंगी।
0: जी

0: सरिता जी दोनों ने मिलके बड़े अच्छे से गीत को पेश किया।
1: जी दोस्तों, आपने ये गाने जरूर कहीं ना कहीं सुने होंगे, लेकिन जब मैं इन गानों को सुनती हूँ तो मुझे वाकई में ही लगता है कि ये वो गाने हैं जो सदाबहार नगमे हैं और आज भी सुनकर बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह आप भी कोई रिक्वेस्ट हमें भेजना चाहते हैं तो हमें भेज दीजिए 8010781078 पर। आज के टॉपिक दूर दूरी दूरियाँ के साथ फील गुड
2: फील लाइफ।

0: जी सरिता जी, इसी से मिलता जुलता एक गीत मेरी लिस्ट में भी है। आप कहें तो मैं अपने श्रोताओं के लिए दो लाइनें पेश कर देता हूँ।
1: जी जी।
0: फिल्म है पवित्र पापी, 1970, पर्दे पर हैं तनुजा के साथ परीक्षित साहनी और किशोर दा की आवाज में ये गीत है, तेरी दुनिया से।

0: जी, वाकई में ही ये गाना भी बहुत ही प्यारा है जो हमने अभी नांगे जी से सुना। लेकिन दोस्तों, जो ओरिजिनल ट्रैक पर हम आपको गाना सुनाएंगे वो इससे भी सुपरहिट गाना है। तो गाना कौन सा है, फिल्म कौन सी है, जानकारी दे रहे हैं नांगे जी।
1: जी, इस बार हमने फिल्म ली है अदालत। ये फिल्म आई 1977 में। पर्दे पर अमिताभ बच्चन ने दो रोल निभाए और साथ में हैं वहीदा रहमान, नीतू सिंह, अनवर हुसैन, कादर खान, सुजीत कुमार व अन्य कलाकार। लता और रफ़ी की मधुर आवाज़ में ये गीत है, गुलशन बावरा के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत है।
0: जी
1: तो सरिता जी, तैयार हैं आप?
0: जी बिल्कुल।
1: ओह

0: बहुत ही प्यारा गीत आप दोनों ने बड़ी मधुरता से गाया
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर
2: जी। बहुत ही प्यारा गाना दोस्तों, हम तो जब स्टूडियो में गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो हमें तो बहुत आनंद आता है। और आप इसे ओरिजिनल ट्रैक पर जरूर एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। आज का टॉपिक है दूर दूरी दूरियां। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप भी कोई ऐसा टॉपिक जो चाहते हैं जिस पर हम गाने लेकर आएँ, तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं, हम अगली बार वही टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। तो नंबर हमारा वही है 8010781078। फिलहाल अदालत फिल्म से ये गाना आप सभी के लिए। फील गुड,
1: फील लाइफ।

0: स्वागत है दोस्तों इस बहुत ही प्यारे गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत चुबन गए मोती। और दोस्तों बहुत ही प्यारे गानों का सफर तय कर रहे हैं, आज टॉपिक है दूर दूरी दूरियां। तो चलिए अब बिना देर के आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा रियल रेट्रो गाना आपको सुनाते हैं जिसकी जानकारी हमें दे रहे हैं प्रदीप जी।
1: फिल्म है तुमसा नहीं देखा, 1957 की फिल्म है, शम्मी कपूर अमिता की जोड़ी है, डुएट सॉन्ग है रफ़ी और आशा जी का गाया हुआ, मधुरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, ओपी नैयर का मधुर संगीत है। सरिता जी भी इसमें मेरा साथ देंगी।
0: जी बिल्कुल। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है के रात है।
1: तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डा।

0: कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है।
1: तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
0: आए हैं दूर से।
2: क्या बात है प्रदीप जी, सरिता जी, क्या बात है, वाकई आपने बहुत ही चुलबुला गीत पेश किया।
3: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: तुम सा नहीं देखा 1957, तो दोस्तों बहुत ही प्यारा गाना, आप इसे देखेगा भी तो भी आपको बहुत आनंद आएगा। इसकी जो पिक्चराइजेशन है बहुत ही अच्छी है, तो फिलहाल ये गाना आप इंजॉय कीजिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर। आज है टॉपिक दूर, दूरी, दूरियां, फील गुड।

0: और साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती में। टॉपिक चल रहा है दूर दूरी दूरियां, और अभी जो आपने एक चुलबुला गीत सुना शम्मी कपूर और अमिता के साथ, अब एक और चुलबुला गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं। इस बारी फिल्म है दो चोर 1972। पर्दे पर हैं धर्मेंद्र के साथ तनुजा, के एन सिंह, सज्जन, धूमल, जलाल आगा, मोहन चोटी, मुराद व अन्य कलाकार। लता और किशोर की आवाज़ में ये गीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का मधुर संगीत है। तो सरिता जी तैयार हैं आप?
1: जी बिल्कुल।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर इस बहुत ही बेहतरीन नगमे के बाद रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती में आज टॉपिक है दूर दूरी दूरियां। बहुत ही प्यारे गानों का सफर तय कर रहे हैं और जैसे कि मैंने कहा कि श्याम सुंदर जी का मैसेज आया है, सुनना चाहते हैं गाना दूर दूर तुम रहे पुकारते हम रहे चलते चलते फिल्म से गाना, तो बाकी की जानकारी दे रहे हैं हमें प्रदीप जी।
1: जी ये फिल्म है चलते चलते, 1976 की फिल्म है, सिमी ग्रेवाल और विशाल आनंद की जोड़ी है, लता जी का गाया हुआ गीत है, अमित खन्ना के बोल हैं, बप्पी लहरी का मधुर संगीत है, सिमी ग्रेवाल पर पिक्चराइज्ड है ये रोमांटिक सॉन्ग
0: जी।
1: दूर

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती। और आज का टॉपिक दूर दूरी दूरियां पार्ट 2 हम लेकर आए आपके लिए। और दोस्तों अब जो हम गाना लेने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन नगमा है और बहुत ही अच्छी फिल्म थी, गाने भी सभी सुपर डुपर हिट थे। लेकिन आज के टॉपिक के साथ सुना रहे हैं आपको गाना नांगिया जी।
1: जी आज के टॉपिक के साथ मिलता जुलता गीत जो है ये लिया है फिल्म चोर मचाए शोर से। 1974 में ये फिल्म आई, पर्दे पर जोड़ी नजर आई शशि कपूर के साथ मुमताज की, और अन्य कलाकार फिल्म में नजर आए असरानी, डैनी डेंजोंगपा, कमल कपूर, मदन पुरी, असित सेन व अन्य कलाकार। रफी साहब और लता दी की आवाज में ये गीत है, इंद्रजीत सिंह तुलसी के बोल हैं और रविंद्र जैन का मधुर संगीत
0: जी।
1: और इसमें मेरा साथ दे रही हैं सरिता जी।
0: जी बिल्कुल।

0: एक डाल पर मैना, दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना, बोलो है ना, बोलो है ना, बोलो।
1: एक डाल

0: बिन बतलाए समझो साजन, आज नहीं कुछ कहना बोलो, है ना, है ना, है ना।
1: एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना।
2: बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही खूबसूरती से गाया आप दोनों ने इसको।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: जी दोस्तों बहुत ही प्यारा गाना, आप इस गाने को जरूर एंजॉय करिए और लौट कर आइए, एक अंतिम गाना आपको और सुनाएंगे और ओरिजिनल ट्रैक पर और फिर लेंगे आपसे विदा। लेकिन फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए, फील गुड,
2: फील लाइक।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती। और दोस्तों आज बहुत ही प्यारे गानों का सफर हमने तय किया, दूर दूरी दूरियां टॉपिक के साथ। और जाते जाते एक अंतिम गाना आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ गाने हैं जो हम आपको इस कार्यक्रम में नहीं सुना पाए ओरिजिनल ट्रैक पर, लेकिन उनकी याद ज़रूर हम आपको दिलाना चाहेंगे। और ये गाने कौन से हैं ये हमें बता रहे हैं प्रदीप जी।
1: जी मैं दो गाने आपको बताऊंगा, एक इश्क पर जोर नहीं से लता जी का गाया हुआ है, साधना पर पिक्चराइज्ड, और एक एक रात फिल्म से है, 1968 की फिल्म, मुकेश का गाया हुआ गीत। तो पहले इश्क पर जोर नहीं फिल्म से, 1970 की फिल्म है ये। तुम

0: नैया खेते जाओ रे।
1: जी बहुत खूब, तीनों ही गाने बहुत ही अच्छे और जिनकी हमें याद दिलाई। लेकिन अब जाने का समय होने ही वाला है, तो एक अंतिम गाना जो आपको हम सुनाने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन नगमा जिसे हम ले रहे हैं दूसरा आदमी फिल्म से। और इस गाने की रिक्वेस्ट भी आई थी मेरे पास, मैसेज किया मुझे नितिन जी ने, और नितिन जी गाना सुनना चाहते हैं चल कहीं दूर निकल जाएं, क्या मौसम है, ऐसे ये गाना स्टार्ट होता है। और बाकी जानकारी हमें दे रहे हैं नांगिया जी।
0: जी साथियों, हम ले रहे हैं गीत फिल्म दूसरा आदमी से। ये फिल्म आई 1977 में, मल्टी स्टारर फिल्म। पर्दे पर हैं ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, देवेन वर्मा, परीक्षित साहनी, शशि कपूर व अन्य कलाकार। किशोर, लता और रफी की आवाज़ में ये गीत है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और राजेश रोशन का मधुर संगीत है। और इसमें मेरा साथ दे रही हैं सरिता जी।
1: जी

0: खूबसूरत वादियों में चल कहीं दूर निकल जाएं। बहुत ही खूबसूरती से इस गाने का फिल्मांकन भी हुआ था और आप दोनों ने गाया भी बखूबी है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: जी तो श्रोताओं, इस गाने से आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और आप जरूर सुनिएगा इसे, बहुत ही प्यारा गाना है, रोमांटिक गाना है। और दोस्तों, अगले हफ्ते फिर से आएंगे लेकर एक नया थीम, एक नया टॉपिक और बहुत ही बेहतरीन नग में आपको सुनाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नागी जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: जी दोस्तों, आपसे विदा लेने से पहले दो लाइनों का एक कोट। ख्वाहिशों के काफिले भी बहुत अजीब होते हैं, ये वहीं से गुजरते हैं जहाँ रास्ते नहीं होते। तो सुनते रहें, बने रहें हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आपके लिए एक से एक मधुर कार्यक्रम लेकर हम आते रहेंगे। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए फील गुड फील लाइव।
0: आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं अपनी सहयोगी टीम का, आरजे सरिता जी का और श्रोताओं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
2: जी तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे ये जो बन गए मोती कार्यक्रम, शनिवार ठीक 8 बजे एक नए थीम, एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल आप आने वाले कार्यक्रमों को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड
0: फील लाइव।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने सपनों को सिर्फ सपने तक ही रहने नहीं दिया बल्कि अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से और डेडिकेशन से उन्हें रियलिटी में बदल दिया है। और आज फिर से लेकर आ गई हूँ मैं एक और ऐसी ही कहानी जिसमें है ड्रीम्स, जिसमें है स्ट्रगल्स, रिस्क, फेलियर्स और सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेस। जी हाँ, हर इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए और वो सक्सेस के लिए सारे काम करता है जिससे वो अपनी लाइफ में ना अपना नाम बना सके और जमीन से आसमान तक की जो ऊंचाई छूने तक का जो सफर है ना उसे हासिल कर सके। तो बस इसी के साथ मेरे पास ना आपके लिए छोटा सा सवाल भी है कि आप में से कितने लोगों के पास बोट का ईयरफोन है या फिर हेडफोन है या फिर स्मार्ट वॉच है। हो सकता है आप इस वक्त मेरी आवाज़ भी अपने ईयरफोन्स में सुन रहे हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रांड को आज हम इतने इजीली अपनी डेली लाइफ का पार्ट समझते हैं उसकी जर्नी शुरू कैसे हुई होगी? सोची सोची। तो आज का सक्सेस मंत्रा वही है। जी हाँ, आज के सक्सेस मंत्रा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने इंडियन यूथ की चॉइस को समझा, एक सिंपल आइडिया पर काम किया और उस आइडिया को एक पॉपुलर लाइफस्टाइल ब्रांड में बदल दिया। जी हाँ, उनका नाम है अमन गुप्ता। अमन गुप्ता, इनका नाम आपने सुना होगा, ये सोशल मीडिया पर भी स्टैम्प पे जब हम एक प्रोग्राम आता है वो आप मुझे बताइएगा, उस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि आपने इन्हें ना देखा होगा। और दोस्तों, अमन गुप्ता बोट के को फाउंडर है, लेकिन उनकी स्टोरी सिर्फ एक सक्सेसफुल कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है मार्केट को समझने की, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने की, रिस्क लेने की और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक ऑर्डिनरी आइडिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांड में कन्वर्ट करने की। आज जब हम हेडफोन्स, ईयरफोन्स या फिर स्मार्ट वॉचेस को खरीदने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बोट ने अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है। स्टाइलिश प्रोडक्ट्स हैं, अफोर्डेबल प्राइसिंग है और यंग जनरेशन से डायरेक्टली कनेक्ट भी करता हुआ है ये ब्रांड, और यही चीज़ अमन गुप्ता की जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेसफुल ब्रांड की स्टार्टिंग में एक स्टोरी होती है, एक पॉइंट होता है जहां किसी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या मैं सेफ ऑप्शन चूज करूँ या फिर अपने आइडिया पर ट्रस्ट करके एक बार रिस्क ले ही लूँ। अमन गुप्ता की जर्नी में भी एक ऐसा ही मोमेंट आया, एक तरफ था एक स्टेबलिश्ड करियर और दूसरी तरफ था एंटरप्रेन्योरशिप का अनसर्टेन पाथ, और उन्होंने क्या चूज किया होगा बताइए। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। तो आज के एपिसोड में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि बोट जो प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है, वो इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सक्सेस के पीछे कौन सा डिसीजन था, कौन से चैलेंजेस थे और क्या लेसन उसके पीछे छुपे हुए थे जिसे हम भी अपनी लाइफ में अपना कर हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं यार। क्योंकि सक्सेस मंत्रा का मकसद सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि इस प्रोग्राम का मकसद है उनकी जर्नी से आपके लिए एक छोटा सा मैसेज आप तक पहुँचाना। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी अपना कुछ स्टार्ट करने का ड्रीम देखते हैं, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है या फिर आप अपने करियर में कुछ अलग करना चाहते हैं तो आज का सक्सेस मंत्रा आपके लिए है। चलिए अब थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं, उस वक्त जब अमन गुप्ता सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही नहीं थे बल्कि एक यंग प्रोफेशनल थे जो अपने करियर जर्नी में नए पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे आज पूरी डिटेल में इनकी जर्नी को, पर उससे पहले अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ अरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं अमन गुप्ता की जर्नी के साथ, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने ना बहुत कम एज में ना बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़े ब्रांड को इतना बड़ा नाम दे दिया, इतनी बड़ी कामयाबी तक पहुँचा दिया। दोस्तों अभी हमने बात शुरू की थी कि एक ऐसे ब्रांड की जो आज के बहुत यंग इंडियंस की डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है और उसका नाम है बोट। लेकिन हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है और किसी भी एंटरप्रेन्योर की कहानी को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस जाएं। तो चलिए आज के हीरो यानी कि अमन गुप्ता की जर्नी को थोड़ा और क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं। अमन गुप्ता का बैकग्राउंड बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ा रहा। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए की फील्ड में अपना करियर बनाया। उनका प्रोफेशनल जर्नी यही नहीं रुका, उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया और फाइनेंस और बिजनेस की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप भी किया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फाइनेंस बैकग्राउंड वाला पर्सन हेडफोन्स और ईयरफोन्स की कंपनी तक कैसे पहुंच गया। बस यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है स्टोरी का। दोस्तों लाइफ में ना कभी कभी हम जिस फील्ड में काम कर रहे होते हैं ना, जरूरी नहीं कि वही हमारी लाइफ की फाइनल डेस्टिनेशन बन जाती है। कभी एक जॉब हमें एक्सपीरियंस देती है तो कभी कोई फेलियर, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कभी कोई प्रॉब्लम हमें एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ लेकर जाती है। अमन गुप्ता के केस में भी उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आगे चलकर एंटरप्रेन्योरशिप में काफी यूजफुल रहा। बिजनेस को समझना, नंबर्स को समझना, मार्केट को एनालाइज करना और डिसीजन लेना, ये सब स्किल्स उनके अंदर इसी काम की जर्नी के दौरान ही आया। लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना कोई सिंपल डिसीजन नहीं होता है। जॉब में एक सर्टेन स्टेबिलिटी होती है, मंथली इनकम भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियर होती है, लेकिन बिजनेस में आपको खुद डिसीजन लेना पड़ता है। कभी रिजल्ट्स मिलते हैं तो कभी नहीं मिलते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और कभी रिस्क भी लेना पड़ता है। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है कि सक्सेस के लिए सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं होता, बल्कि कभी कभी ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत भी होनी चाहिए आपके अंदर, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो, आपके माइंड में कोई आइडिया हो, कोई सपना हो, लेकिन हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन अगर हम हर बार फेलियर के फियर्स की वजह से अगर रुक जाएंगे ना, तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम एक्चुअली में कितना कर सकते थे और कितना हमने खो दिया उसे ना करके। अमन गुप्ता की जर्नी भी हमें यही रिमाइंडर देती है कि करियर में एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जब हमें डिसीजन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा सेफ ओपिनियन या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी, इन दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा हमें। और अमन गुप्ता ने एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चूज किया, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होने वाला था। एक आइडिया को कंपनी में कन्वर्ट करना, मार्केट में जगह बनाना और कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट तक पहुंचाना, ये काम बिल्कुल इजी नहीं था। तो कैसे हुई इसकी शुरुआत, करेंगे इसके बारे में भी बात, लेकिन अभी लूंगी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं अर्जित स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके मेहनत से, हिम्मत से उस ऊंचाई को छुआ है, अपना नाम को बनाया है और आज दुनिया में वो इतने फेमस है जिनके बारे में हम बात करते हैं। सब लोग उनके बारे में जानते हैं जो कहते थे कि कल को शायद आप कुछ नहीं कर पाओगे, पर आज वो खुद कहते हैं कि क्या काम करा है तुमने। दोस्तों बस ऐसा ही लाइफ में ना आपको भी मोटिवेट होना है और सबसे पहले तो आपको कुछ करके ना उन लोगों को दिखाना है जो शायद आपको डीमोटिवेट करते हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए करिए, हिम्मत जुटाइए और बस आगे बढ़ते जाइए। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अमन गुप्ता की जर्नी के बारे में। अभी तक हम अमन गुप्ता की जर्नी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां पर एक आइडिया ने धीरे धीरे एक बड़े ब्रांड का शेप लेना शुरू किया था। अब तक हमने जाना कि अमन गुप्ता का बैकग्राउंड फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ा था। उन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम किया, एक्सपीरियंस गेन किया और फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव किया। लेकिन अब सवाल ये है कि बोट का आइडिया आया कहाँ से। दोस्तों सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया अक्सर हवा में से नहीं आते, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम, नीड या फिर किसी गैप को ऑब्जर्व करने से आते हैं। और अमन गुप्ता और उनके बिजनेस पार्टनर समीर मेहता ने भी मार्केट में एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी को नोटिस किया। उस टाइम इंडिया में हेडफोन्स, ईयरफोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज का मार्केट ग्रो कर रहा था अभी, लेकिन कंज्यूमर्स के सामने एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। एक तरफ इंटरनेशनल ब्रांड्स थे जिनके प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव हो सकते थे और दूसरी तरफ था अफोर्डेबल ऑप्शंस, लेकिन उनमें डिजाइन और ब्रांड अपील्स हर कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। यहीं से एक सिंपल थॉट सामने आया कि क्या इंडियन कंज्यूमर को ऐसा प्रोडक्ट दिया जा सकता है जो अफोर्डेबल भी हो, स्टाइलिश भी हो और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज भी ना करे। और इसी थॉट ने बोट की फाउंडेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 2016 में अमन गुप्ता ने और समीर मेहता ने बोट की शुरुआत की, लेकिन उनका फोकस सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बनाने पर नहीं था। उन्होंने समझा कि आज के यंग कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो एक्सपीरियंस, डिजाइन और आइडेंटिटी भी देखते हैं। आप खुद सोचिए, जब आप कोई ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स खरीदते हैं तो क्या आप सिर्फ ये देखते हैं कि उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है? नहीं ना, हम उसका डिज़ाइन देखते हैं, प्राइस देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, रिव्यूज़ भी चेक करते हैं और ये भी देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है या नहीं। बोट ने इसी कंज्यूमर माइंडसेट को समझने की कोशिश की। उन्होंने प्रोडक्ट्स को यंग जनरेशन की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग पोजीशन किया, ऐसे प्रोडक्ट्स जो म्यूजिक सुनने के साथ साथ स्टाइल स्टेटमेंट भी बन सके। और यहाँ से हमें सक्सेस मंत्रा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटी वही होती है जहां आप दूसरों से पहले कंज्यूमर की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। दोस्तों कभी कभी हम भी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नोटिस कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर वही प्रॉब्लम देखकर सोचता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और बस यहीं से एक आम लोग में और एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में डिफरेंस पता चल जाता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है और यही डिफरेंस एक नॉर्मल आइडिया और बिजनेस आइडिया के बीच होता है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम अमन गुप्ता की जर्नी के साथ चल रहे हैं और अब तक हमने जाना कि बोट के आइडिया किस तरह मार्केट की नीड को समझने से निकला। अमन गुप्ता और समीर मेहता ने एक सिंपल थॉट के साथ जर्नी को स्टार्ट किया, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अफोर्डेबल हो, स्टाइलिश हो और यंग कंज्यूमर की नीड को समझे। लेकिन दोस्तों, एक प्रोडक्ट बनाना और एक ब्रांड बनना दोनों अलग चीजें होती है। अब बोट की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी यही है। सोचिए, मार्केट में हेडफोन्स और ईयरफोन्स पहले से अवेलेबल थे, कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन की कमी नहीं थी, तो फिर बोट ने अपनी अलग जगह कैसे बनाई? इसका आंसर है ब्रांडिंग। जी हाँ, बोट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमारे ईयरफोन्स खरीदो, उन्होंने यंग ऑडियंस की लाइफस्टाइल को समझना और अपनी कम्युनिकेशन को उसी के अराउंड बिल्ड किया। जी हाँ, म्यूजिक, फिटनेस, ट्रेवल, गेमिंग, कॉलेज लाइफ, ये सब यंग जनरेशन की डेली लाइफ का पार्ट है। बोट ने अपने प्रोडक्ट्स को इन्हीं एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट किया और यहीं से बोट एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से धीरे धीरे यूथ लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में आइडेंटिफाई होने लगा। दोस्तों, ब्रांडिंग का सिंपल मतलब सिर्फ एक लोगो या फिर एक अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, बल्कि ब्रांडिंग का मतलब होता है जब कंज्यूमर अपना नाम सुनते ही एक पर्टिकुलर फीलिंग या फिर इमेज को इमेजिन करने लगे। जैसे बोट का नाम आते ही लोगों के माइंड में यंग, स्टाइलिश और ट्रेंडी इलेक्ट्रॉनिक्स की इमेज आ जाती है। इसके लिए कंपनी ने सोशल मीडिया को भी इफेक्टिवली यूज किया है। यंग ऑडियंस जहां एक्टिव थी, ब्रांड भी वहीं प्रेजेंट रहा। सेलिब्रिटीज, एथलीट्स, इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन ने भी ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ाने में रोल प्ले किया। और अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन लोग उसके बारे में जानते नहीं है, तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है? मुश्किल है ना, क्योंकि जब लोग जानेंगे ही नहीं तो उसे खरीदेंगे कहाँ से। इसलिए बिजनेस में प्रोडक्ट के साथ प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बोट ने इसी चीज को सीरियसली लिया। उन्होंने प्रोडक्ट्स को सिर्फ टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं बल्कि लाइफस्टाइल के पार्ट के रूप में प्रेजेंट किया। आपने नोटिस किया होगा कि आज यंग कंज्यूमर्स के लिए ईयरफोन सिर्फ म्यूजिक सुनने का डिवाइस नहीं है, वो वर्कआउट के टाइम भी उसे यूज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में भी यूज होता है, ऑनलाइन क्लासेस और मीटिंग में भी उसे यूज करते हैं और कभी कभी फैशन एक्सेसरीज की तरह भी कैरी किया जाता है। बोट ने इसी चेंजिंग लाइफस्टाइल को अपने फेवर में यूज किया। और यहाँ से हमारे आज के सक्सेस मंत्रा का एक और इंपॉर्टेंट लेसन निकलता है कि अच्छा प्रोडक्ट आपको मार्केट में एंट्री दे सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रांड आपको मार्केट में आइडेंटिटी देता है। वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए सक्सेस जर्नीज, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं उनकी जर्नी से और आप भी सोचते हैं कि यार अगर ये इंसान कर सकता है, अगर इसके पास कुछ नहीं था इसने फिर भी कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों हम आज चल रहे हैं जिस जर्नी के साथ, उनका नाम है अमन गुप्ता। जी हाँ, अमन गुप्ता एक एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाया। और दोस्तों अब तक हमने अमन गुप्ता और बोट की जर्नी के कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखे हैं। हमने जाना कि एक मार्केट नीड से आइडिया कैसे निकला और फिर एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को यूथ फोकस ब्रांड बनाने पर फोकस कैसे किया गया। लेकिन दोस्तों एक बात हमें अक्सर सक्सेसफुल पीपल की स्टोरीज में भूल जाते हैं कि हम उनकी सक्सेस देखते हैं, स्ट्रगल नहीं। आज बोट एक वेल नोन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, लेकिन जब कोई कंपनी शुरू होती है तब उसके पास आज जैसी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती, मार्केट में अपनी जगह बनानी पड़ती है, कंज्यूमर के ट्रस्ट को जीतना पड़ता है और हर स्टेप पर कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता है। अमन गुप्ता और समीर मेहता के सामने भी ये चैलेंजेस थे। मार्केट में ऑलरेडी कई एस्टेब्लिश्ड ब्रांड मौजूद थे, ऑलरेडी कंज्यूमर्स के पास मल्टीपल चॉइसेस भी थी। ऐसे में एक न्यू ब्रांड के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि कंज्यूमर हमें क्यों चूज करेगा, और इसका आंसर सिर्फ एक लो प्राइस नहीं हो सकता। अगर आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो कंज्यूमर को वैल्यू देनी पड़ती है। बोट ने अफोर्डेबिलिटी के साथ डिजाइन, फीचर और यूथ फोकस ब्रांडिंग पर भी फोकस किया, मतलब कंज्यूमर को ये फील हो सके कि उसे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है बल्कि उसकी नीड और लाइफस्टाइल को समझने वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बिजनेस में हर डिसीजन परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी तो प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कभी कभी तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करती, और कभी कॉम्पिटिशन टफ हो जाता है, और कभी ग्रोथ के साथ प्रेशर भी बढ़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि प्रॉब्लम्स आने के बाद भी सॉल्यूशन को ढूंढना, और यही थॉट हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं, क्या स्टोरी खत्म हो गई? नहीं ना। आप जॉब में किसी अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, क्या आपका करियर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या आपका ड्रीम खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। फेलियर एक रिजल्ट हो सकता है, लेकिन फेलियर को फाइनल डेस्टिनेशन बनाना जरूरी नहीं है। दोस्तों अमन गुप्ता की जर्नी से हम ये समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट चेंज होता है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस चेंज होती है, और टेक्नोलॉजी भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर को भी कंटिन्यूसली लर्न और अडेप्ट करना पड़ता है। और शायद इसी वजह से किसी भी सक्सेसफुल जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं होता कि आप कितनी बार जीते, बल्कि ये होता है कि आप कितनी बार गिरे और कितनी बार गिरने के बाद आप दोबारा खड़े हुए। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट रहा जब आपको लगा कि अब मुश्किल है लेकिन आपने फिर भी गिव अप नहीं किया? अगर आप रेडियो के थ्रू हमारे साथ जुड़े हैं तो आप अपने आंसर को ना दिल में जरूर याद कीजिए। और कभी कभी हमारी अपनी जर्नी भी किसी और के लिए सक्सेस मंत्रा बन सकती है, और आप इसे हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। हम इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, तो हमारा नंबर बहुत ही आसान है 8010781078 पर। इस पर हमें मैसेज करके या कॉल करके हमें अपनी जर्नी बताइएगा, कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपके साथ भी ऐसा हुआ हो पर आपने कभी हार नहीं मानी, तो हमें अपनी जर्नी को शेयर कीजिएगा, हम भी इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ अरजी स्नेहा आपके साथ। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा और अब हम अपनी कहानी के ऑलमोस्ट लास्ट फेस में पहुंच चुके हैं। अब तक हमने अमन गुप्ता की जर्नी, बोर्ड की आइडिया, ब्रांडिंग और बिजनेस चैलेंजेस के बारे में बात की। लेकिन दोस्तों, कभी भी सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उनका माइंडसेट। जी हाँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत लोगों को दिखती है लेकिन हर कोई उस अपॉर्चुनिटी पर काम नहीं करता। अमन गुप्ता की इस जर्नी का एक इम्पोर्टेंट लेसन है कि कस्टमर को समझने की कोशिश करिए। बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्या बनना है, बिजनेस का मतलब ये है कि कंज्यूमर को एक्चुअली क्या चाहिए। बोर्ड के केस में यंग कंज्यूमर्स की लाइफस्टाइल को समझना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा, जैसे कि म्यूजिक, फिटनेस, ट्रेवल, गेमिंग और एवरीडे लाइफस्टाइल। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट और ब्रांडिंग को पोजीशन किया गया, यानी पहले कस्टमर को समझो फिर प्रोडक्ट के बारे में सोचो। दोस्तों, ये लेसन हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले ये समझने की कोशिश करिए कि एग्जाम एक्चुअली डिमांड क्या करता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो अपनी ऑडियंस को समझिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझिए। जब आप प्रॉब्लम को क्लियरली समझ लेते हैं, सॉल्यूशन ढूंढना इजियर हो जाता है। अमन गुप्ता की जर्नी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन। आज के टाइम में सिर्फ अच्छा काम करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है बल्कि अपने काम को सही तरह से कम्युनिकेट करना भी इम्पोर्टेंट है। और अमन गुप्ता को हमने शार्क टैंक इंडिया के थ्रू भी देखा है। जी हाँ, शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसे आपने देखा है, आप इन्हें जानते हैं, टेलीविजन पर आपने इन्हें देख रखा है। एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक इंडिया जिसमें आपने इन्हें देखा है, जहाँ पर ये एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चंस फेस करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं। इससे एक सिंपल लेसन मिलता है कि अपने आइडिया पर कॉन्फिडेंस रखिए लेकिन क्वेश्चन से डरिए मत, क्योंकि क्वेश्चंस हमें अपनी वीकनेस समझने का चांस भी देते हैं। और दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हमेशा परफेक्ट डिसीजन लेना नहीं होता है, बल्कि कभी डिसीजन आपका सही होगा और कभी गलत होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमने अपने डिसीजन से क्या सीखा है और नेक्स्ट स्टेप हम उससे सीख कर क्या बेटर बनाने वाले हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप क्या सेल करना चाहेंगे? फूड, फैशन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या कोई ऐसी सर्विस जो लोगों की डेली लाइफ को इजी बना सके? एक मिनट के लिए सीरियसली सोचिए और हमें जरूर बताइएगा कि आप क्या करना चाहेंगे। नंबर बहुत ही आसान है हमारा 8010781078 पर। और फिर अपने आप से एक सवाल पूछेगा कि मेरा आइडिया लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, जो भी आप करना चाहते हैं। बस यहीं से एंटरप्रेन्योरशिप की थिंकिंग आपके दिमाग में ना खुद आने लगेगी, आप खुद उसे सोचना शुरू कर देंगे। अमन गुप्ता और बोर्ड की जर्नी हमें ये भी बताती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है, उसके पीछे ऑब्जर्वेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, पेशेंस और कंटिन्यूस लर्निंग होती है। तो आज के इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्र है, आइडिया सबके पास हो सकता है लेकिन उस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए एक्शन जरूरी है। और अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइन।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और अब हम अपने सफर के आखिरी सेगमेंट में पहुंच गए हैं। पिछले सेगमेंट्स में हमने अमन गुप्ता की जर्नी को अलग अलग एंगल से समझा, एक फाइनेंस प्रोफेशनल से एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन, बोट का आइडिया, यंग कंज्यूमर्स को समझना, ब्रांडिंग, कॉम्पिटिशन और चैलेंजेस। हमने इस जर्नी के कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखे हैं, लेकिन अब सवाल है कि इस पूरी कहानी से हम अपने लिए क्या सीखते हैं। तो चलिए अमन गुप्ता और बोट की जर्नी से मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्रास को याद कर लेते हैं एक बार फिर से। पहला मंत्रा है अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए। जी हाँ, बोट की जर्नी हमें बताती है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी तब भी हो सकती है जब ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हो, बस उसे पहचानने की जरूरत है। दूसरा मंत्रा है रिस्क लेने से मत डरिए। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, जब तक गिरेंगे नहीं, तब तक सीखेंगे कैसे। तो इसलिए जब कुछ आए ना दिमाग में, उस पर काम करना और सोचना शुरू करिए और उस पर एक्शन लेना शुरू करिए।

देखिए जरूर होगा। तीसरा मंत्र है कस्टमर को समझिए। जी हाँ, जब तक आप कस्टमर की नीड को नहीं समझेंगे ना, जब तक आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो आप सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे। चाहे आप बिजनेस करें या फिर अपने करियर में ग्रो करें, सामने वाले की नीड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा मंत्र है सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि आइडेंटिटी को बिल्ड करिए। जी हाँ, प्रोडक्ट ऐसी चीज है जो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जो ब्रांड होता है, जो आइडेंटिटी होती है, वो आपको कुछ ही चीजों की मिलेगी। क्योंकि हम किसी भी चीज को ना उसके ब्रांड से, उसके इमेज से ही याद रखते हैं कि वो क्या चीज है, क्या करता है और उसकी क्या जरूरत है हमें। तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करिए। पांचवा मंत्र है कि फेलियर से सीखिए। जी हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि फेलियर आ जाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके बोलते हैं कि अब नहीं हो पाएगा। पर नहीं, फेलियर आएंगे और वो शायद आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए आपको ना आगे बढ़ते रहना है, कभी उससे डरना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। एक दिन का मोटिवेशन आपको शायद स्टार्ट करा सकता है, लेकिन रेगुलर एफर्ट्स आपको डेस्टिनेशन तक लेकर जा सकता है। तो दोस्तों, इसलिए हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ना उसके ऊपर काम करिए। आप देखिए, वो चीज आपको जरूर मिलेगी जो भी आप करना चाहते हैं। छोटा स्टार्ट कीजिए, उससे सीखिए, गलती कीजिए, इम्प्रूव कीजिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रांग माइंडसेट, कंसिस्टेंट एफर्ट और अपने आइडिया पर बिलीव आपको बहुत आगे ले जा सकता है। इसी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजी स्नेहा, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें अब मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगी कि सपना चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे रियलिटी बनाने की पहली स्टेप जो होती है वो हमेशा आपको ही लेनी होती है। तो इसलिए उस स्टेप को लीजिए और लाइफ में कुछ करिए, आगे बढ़िए। तो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए खुद पर ना भरोसा करिए, पॉजिटिव रहिए और अपने सपनों के लिए एक स्टेप जरूर लीजिए। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, पर आप जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगरा जधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अब बहुत ही चर्चित गीत था, बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने पैरों पे खड़े हो के दिखलाओ। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी।

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये फिल्म थी नमक हलाल 1982, किशोर कुमार, बप्पी लहरी, अनजान। फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इसको। फनी सॉन्ग था, फिलोसॉफिकल सॉन्ग था, डांस सॉन्ग था। अब राग दरबारी जहां तक मुझे याद है पर ही आधारित था। बड़ा ही जो है वो दिलकश गीत था, अनजान के बोल थे। अब इसकी जितनी भी तारीफ की जाए, अमिताभ बच्चन पे फरमाया गया ये गीत था। बड़ा ही जो है वो हमारे बचपन के टाइम पे बड़ा ही रोमांचित करने वाला ये गीत था, ट्रेंड सेटर था। क्या क्या बात करें, हाँ जी बड़ी सारी बातें करेंगे, शोले की बातें करेंगे। फिर मुझे याद आ रहा है जख्मी 1975 27 जून को ये रिलीज़ हुई थी, इसकी बात भी करेंगे। अब जो हमारी बातें चल रही थी जब साइकिल स्टैंड ही बन गया था अड्डा, किस्से का हिस्सा, हिस्से का किस्सा, उसे भी आगे बढ़ाएंगे और इंस्पायरिंग नोट को भी आगे बढ़ाएंगे, जिसमें जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं असली खुशी और सफलता पैसे या ट्रॉफियों में नहीं, जीवन के संतुलन में है, ये भी आगे बढ़ाएंगे। तो इसी से आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के बाद मैंने सीखा कि असली सफलता पैसों या ट्रॉफी से कहीं आगे। मैं पैसों को लेकर कभी जुनूनी नहीं रहा। हाँ, पैसों की अहमियत है, वो आपकी मदद करते हैं, कई मौके देते हैं, लेकिन जब आप एक स्तर पर पहुंचते हैं तो पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें जीवन में आती हैं। पैसे अच्छे हैं लेकिन वे सब कुछ नहीं हैं। जब मैं छोटा था तब पैसों से सुरक्षा बहुत ज़रूरी लगती थी, लेकिन अब जब मैं 39 यानी 39 ईयर्स का हूँ तो लक्ष्य हासिल कर जो करना था वो कर लिया है। तो मेरे मन में बहुत सालों से था तो जो था वो सबको पता है भाई, उनका लक्ष्य क्या था और उन्होंने क्या हासिल कर लिया था। इसमें तो अगर हम जाएंगे तो एक प्रोग्राम पूरा बन जाएगा। तो चैंपियंस लीग, गोल्डन बॉल, फुटबॉल की ट्रॉफी के साथ ये बिजनेस गोल भी पूरा होना मेरे लिए गर्व की बात है। बिलियनेयर बनने के बाद मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि मैं अपने पोटेंशियल को जानता था, फुटबॉल में और फुटबॉल के बाहर भी। और हमें याद आ रहा है बड़ा ही बेहतरीन गीत था और इसके कुछ ऐसे बोल थे, यानी कि फिर से याराना। फिर से क्यों बोला, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में आपने बैक टू बैक याराना की फरमाइश की थी। हम एक और ले आए इस प्रोग्राम में याराना 1981, किशोर कुमार, राजेश रोशन, अनजान, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह। फ्रेंडशिप सॉन्ग था, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। इसे सुनते हैं और लौटते।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई देखिए ना, वो जो मुझे लग रहा है कि अब हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस एरा में चले गए हैं। तो भाई हमारी जो गीतमाला के कुछ अंश होते हैं, जो आप कहते हैं कि भाई थोड़ा सा सुना दिया करें, तो भाई वो गीतमाला के कुछ अंश लेते हैं। समवेयर अराउंड 70s 80s के आसपास की जो फिल्में थी, उनके जो इंटरव्यूज थे बड़े ही बेहतरीन थे, उसे कुछ सुनते हैं और उस अंश के बाद जो है अपने इस अंश में लौटते हैं।
1: बहनों और भाइयों, आप भी खुश हैं ना? तो अब जरा संभल जाइए, क्योंकि अब आपके दिल में हलचल मचाने वाली बात आ रही है। 1980 के हिट गीत नंबर 19 और 18 में ढलकर। इत्तेफाक से ये दोनों गीत फिल्म सरगम के थे, जो संगीत के लिहाज से 1980 के दो सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी। दूसरी कामयाब फिल्म मेरा ख्याल है थी कर्ज। तो पायदान नंबर 19 पर सुनिए सरगम का वो बड़ा ही सुरीला गीत, जो हमें ले चला था

0: बहन और भाइयों, इस गीत में भी एक आवाज मोहम्मद रफी साहब ही की थी। और अब हो जाइए तैयार, आ रही है मोहम्मद रफी की मौत पर उन्हें दी हुई एक यादगार सलामी। और ये सलामी पेश की थी सरगम ही के एक संगीतकार लक्ष्मीकांत ने, जो अब तो खुद भी नहीं रहे।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से जान निकल गई। रफी साहब आज जब नहीं है तो मैं इस म्यूजिक रूम में बैठ के ये फील कर रहा हूं, क्या हो गया हमको, कुछ सूझ नहीं रहा है मेरे को कि मैं क्या गाना बनाऊं, क्यों बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, कौन है अब। क्योंकि हम जो सोचते थे वो गा देते थे, और ये जब तक चल रहा था सिलसिला तब तक इस चीज की कदर ही नहीं हुई। आज हमको गीत सोचना मुश्किल हो रहा है, खत्म हो गया हमको कुछ, मतलब हमको उनके गले के सिवा कुछ आता ही नहीं था। क्योंकि रफी साहब एक ऐसे वर्सटाइल सिंगर थे कि हम कोई भी धुन या कुछ कोई भी चीज सोचते वक्त कभी दिल में आज तक ये सवाल आया ही नहीं कि इसका रिप्रोडक्शन क्या होगा, क्योंकि इतना होता ही आता था सब। लेकिन आज जब नहीं है वो, तो वाकई मुझे भी कुछ गीत बनाते हुए डर लगने लग गया कि किस टाइप का गीत बनाऊं।
0: इत्तेफाक से लक्ष्मीकांत ही ने प्यारे लाल के साथ रफी साहब की जिंदगी का आखिरी गीत भी रिकॉर्ड किया था, उसके बारे में भी सुनिए।
1: 26 जुलाई को रफी साहब ने अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गाया, और वो भी हमारे साथ ही था। ये गीत था जो रफी साहब ने फिल्म आसपास के लिए 26 जुलाई को सुबह महबूब स्टूडियो में हमारे साथ गाया था। उस दिन जब वो रिकॉर्डिंग रूम से गए थे, अब कोई भी सुनेगा तो कहेगा कि साहब ये तो कहानियां होती हैं और ये घड़त कोई बात मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि जिस दिन वो 26 तारीख को रिकॉर्डिंग करने के बाद रिकॉर्डिंग रूम से जा रहे थे, एक अजीब अंदाज से उन्होंने मेरे को कहा था मैं चलूं। अब मुझे वो याद आ रहा है, मैं आपको सही बता रहा हूं कि मुझे वो जब, मतलब कभी वो जाते हुए हेलो हेलो अच्छा चल ऐसे जाते थे, उस दिन कुछ उनके जाने में और उनके उस बोलने में कुछ अजीब भाव था।
0: और ये रहा मोहम्मद रफी का वो आखिरी गीत, बल्कि पूरा गीत भी नहीं था वो, सिर्फ एक शेर।

और बस फिर वही हुआ जो उस साल की संगीत सीढ़ी की पायदान नंबर 18 पर खुद रफी साहब ने कहा था सरगम ही के इस गीत में।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए, आप लोगों ने जो बात करी उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे थे, और जब हम ध्यान दे रहे थे तो आपने कहा कि भाई अपना नंबर फिर से बताइए। तो भाई हमारा नंबर जो है वो आप सब जो है वो नोट करके रख लें, 8010781078। अपने ख्याल हमें भेजते रहें, किस तरह के प्रोग्राम चाहिए ये भी भेजते रहें, और भाई ये जो है वो आपके जो है सजेशंस हमें जो है वो बड़े ही प्रेरित करते हैं। प्रोग्राम अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो भी बताएं, लेकिन अब हम आपको बताएंगे 27 जून 1975 रिलीज हुई थी जख्मी। अब इसके प्रोड्यूसर थे ताहिर हुसैन, जिन्होंने कारवां नामिका जो है वो बनाई थी, और ये डायरेक्ट की थी राजा ठाकुर ने। 1973 में शुरू हुई जख्मी को यादों की बारात की टीम को लेकर फिर से बनाना था, लेकिन धर्मेंद्र बाहर चले गए और विजय अरोड़ा ने ऐसा ही किया, वो भी निकल गए, और निर्देशक राजा नवहाते ने सुनील दत्त को तब चुना। अब जिन्होंने भाई भाई में उनके साथ काम किया था, रीना रॉय ने जीनत अमान की जगह ली, और आरडी वर्मन जिन्हें ताहिर हुसैन ने जो है वो कारवां में लिया था उनकी जगह आए भप्पी लाहिड़ी जी, और उसके बाद निर्माण हुआ था जख्मी का। और ये जो जख्मी था भाई केवल तारीख रह गए थे अब इसमें, अब इसलिए पटकथा हुमायूं मिर्ज़ा यानी मिर्ज़ा ब्रदर्स ने लिखी थी। हालांकि जख्मी को भप्पी लाहिड़ी के लिए एक बहुत बड़ी मांग वाले और सफल संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए एक उपयुक्त जो है वो लॉन्चिंग पैड मिल गया था। अब इसमें अगर आपको याद हो तो कुछ गीत थे, जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, किशोर कुमार और आशा भोंसले ने जो है इसमें जान डाल दी थी, और जख्मी दिलों का बदला चुकाने जो किशोर कुमार का गीत था, और फिर और भी गीत थे, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, ये प्रत्येक जो गीत था ये सुपरहिट रहा। अपनी तकनीक पर लहरी की पकड़ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर गीत अपनी एक अलग शैली का था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ना हम जो है वो जो है जख्मी का जो है वो ही गीत ले लें, जो कि जो है अभी हम जो है तीनों में से कौन से लें। चलिए मैं उंगली रखता हूँ और अपनी टीम को बोलता हूँ कि ये गीत ढूंढें जख्मी दिलों का बदला चुकाने, जख्मी 1975 किशोर कुमार भप्पी लहरी, इसे सुनते हैं और लौटते हैं। भाई आपको पता है सुनील दत्त पर फिल्माया गया है, बहुत सारी बातें मैं आपको नहीं बताऊँगा, गाने के बाद बात करते हैं और उसके बाद लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ रिसेट के साथ। भाई आप लोगों ने कहा भाई वो रोनाल्डिनो वाला जो लेख था उसे आप ज़रूर बताएं, पूरा करें, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो भाई ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, पर हमारा नंबर है, आपको नंबर तो बता ही दिया था, 8010781078। फील गुड फील लाइफ, और असली खुशी और सफलता पैसे या ट्रॉफियों में नहीं, जीवन के संतुलन में है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब का जो है ये कहना है, और उन्होंने कहा कि भाई फुटबॉल के इतिहास में जहाँ भी रिकॉर्ड्स हैं वहाँ रोनाल्डो का नाम टॉप पर है, लेकिन ये सब मुझे सरप्राइज नहीं करता क्योंकि मैंने हमेशा कड़ी मेहनत और डेडिकेशन से काम किया है। पैसा आपको भौतिक चीज़ें देते हैं और अच्छी हैं, ये बात तो ये अच्छी भी है, लेकिन

अब मेरे जीवन में वो पैशन कम हो गया है। 20-30 साल की उम्र में मैं कार लग्जरी चीज़ों का शौकीन था, अब वो पैशन नहीं रहा। हाल ही में मैंने प्लेन बदला है, लेकिन वो ज़रूरत के लिए है। मैं नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें आराम करने के लिए रखनी पड़ती हैं, लेकिन अब महंगी चीज़ों के पीछे नहीं भागता। मेरे सपने पूरे हो चुके हैं, अब मैं जीवन के अगले चैप्टर को सिंपल और खुशी भरा बनाना चाहता हूँ। कहा जाता है 40 के बाद इंसान असली ज़िंदगी जीना शुरू करता है, मैं भी अब यही फील कर रहा हूँ। पैसा प्राथमिकता नहीं रहे, असली खुशी परिवार में है, दोस्तों में है और फुटबॉल में हर दिन ट्रेनिंग करते समय है। मुझे खुशी तब मिलती है जब मैं गोल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ भाई आप लोगों का वापस इंतज़ार। और ये सुनते हैं गीत कभी कभी 1976, मुकेश खयाम, साहिर लुधियानवी, राखी, अमिताभ बच्चन। रोमांटिक सॉन्ग्स में आता है ये कभी कभी मेरे दिल में। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि बड़ी सारी बातें रह गई हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हम बात कर रहे थे। अब इसकी बात जो है वो इनके इंस्पायरिंग नोट को तो पूरा करना पड़ेगा, तो कंपटीशन में मैं खुद को धकेलता हूँ कहते हैं, मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करता रहा हूँ। फुटबॉल अब मेरे लिए सिर्फ एक घंटे की ट्रेनिंग नहीं है, मैं 24 घंटे इस लाइफस्टाइल को जीता हूँ। सही खाना, सही रेस्ट, सही माइंडसेट, ये चैलेंज मुझे रोमांचित रखता है। अब भी मैं नई चीज़ें सीखता हूँ, ये मुझे बहुत खुश करती हैं। जीवन में अच्छे और बुरे दोनों लम्हे आते हैं, मुश्किल समय में भी आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैंने मुश्किल दौर में भी बेसिक पर वापस लौटकर बैलेंस बनाया है। खुशी आपके अंदर और इस पैशन में है जो आपको हर सुबह उठने पर मोटिवेट करती है। बात तो बिल्कुल सही है। इसके साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो ये जो है वो एडवाइस थी, यानी मैनेजमेंट जो इंस्पिरेशन नोट था, ये होता है ख़त्म। और अब हम आगे जाते हैं फिल्म थी द ग्रेट गैम्बलर 1979, आशा भोसले, अमिताभ बच्चन, शरद कुमार, आर डी बर्मन, आनंद बख्शी, जीना तमान, अमिताभ बच्चन, रोमांटिक सॉन्ग दो लफ्जों की है, इसको सुनते हैं, दिल की कहानी, और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ निशेठ के साथ। अब भाई लोगों ने कहा कि ये जो आप बता रहे थे यानी कि जब साइकिल स्टैंड ही बन गया था अड्डा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी तक तो हम वहाँ पहुँचे ही नहीं थे जनाब। तो हम आपको बता रहे थे राज बब्बर आगरा जिले के टुंडला में पैदा हुए और वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। अभिनय में उनकी रुचि शुरू से थी, थिएटर करते थे, पिता और दादा रेलवे में नौकरी करते थे और हर सरकारी कर्मचारी की तरह उनके पिता भी चाहते थे कि उनकी बेटे की नौकरी रेलवे या किसी सरकारी महकमे में लग जाए। वे सब सरकारी और मिडिल क्लास वाले लोगों की सोच होती थी कि अगर बच्चे की सरकारी नौकरी लग गई तो रिटायरमेंट तक तनख्वाह और उसके बाद पेंशन मिलती रहेगी, इसलिए वे निश्चिंत हो जाते थे। मगर राज भाई ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने पिताजी से झूठ बोला कि वे आगे पढ़ने जा रहे हैं और पटियाला आ गए। वहाँ ड्रामा डिपार्टमेंट में 120 रुपए का वजीफा मिल गया। घर से पैसे भी नहीं मंगाने पड़े तो घर वालों को भी तसल्ली हुई कि लड़का अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। फिर वहाँ से उनका एडमिशन NSD में हो गया। अब राज भाई ने बताया कि जब NSD की छुट्टी होती तो वो घर नहीं जाते थे। वहाँ रविंद्र भवन के साइकिल स्टैंड पर रघुवीर यादव जी और रणजीत कपूर जी के साथ सो जाया करते थे। रघुवीर जी गाने सुनाया करते थे जब लोग खूब मस्ती करते थे और उन्होंने साइकिल स्टैंड को ही अपना अड्डा बना लिया था। फिर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने टैलेंट हंट किया। अब इसके बाद क्या हुआ उसको बताने से पहले हम लौटते हैं अपने गीत के पास, यानी कि ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। किशोर कुमार मुकद्दर का सिकंदर 1978, कल्याण जानन जी अनजान, राखी अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑल टाइम ग्रेट। अब ये इसका जो राग था वो था शिवरंजनी। इस गीत को सुनते हैं और लौटते हैं। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, सुनते हैं लौटते हैं क्योंकि

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ नील सेठ के साथ। भाई अब ये है कि लोगों ने कहा कि शोले पे नहीं जाइएगा और ना ही आप जाइएगा इधर से उधर, यानी जख्मी की तरफ। ये जो आपका इंस्पायरिंग नोट है, जो ये किस्से का हिस्सा जो आप सुना रहे हैं, जब साइकिल स्टैंड ही बन गया था अड्डा, इसे थोड़ा सा और सुनाइए। तो बिल्कुल जी हाँ, आपका जो है वो हुक्म सर आँखों पर। हमारा नंबर है 8010781078। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमें लिखते रहें, हमें सुझाव देते रहें, तो आप हमें ये जो है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। भाई ये बात तो थी कि भाई टैलेंट हंट की बात हो रही थी, तो जब यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने टैलेंट हंट किया, उसके स्क्रीन टेस्ट में राज बब्बर पास हो गए और बीआर चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन भी कर लिया। राज भाई कहते हैं, बीआर चोपड़ा ने मुझे साइन कर लिया, मेरी लाइफ बन गई, मगर वो फिल्म शुरू ही नहीं हुई। इसी बीच सलीम खान और जावेद अख्तर ने मेरा नाटक देखा और वो मेरी परफॉर्मेंस से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने एक स्क्रिप्ट के लिए मेरा नाम जो है वो रिकमेंड कर दिया। अब राज भाई बताते हैं, रमेश सिप्पी साहब टैलेंट हंट वाला मेरा स्क्रीन टेस्ट देख चुके थे। मुंशी व्यास उस समय के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे प्लेन का टिकट भेजा और बॉम्बे बुलाया। पहली बार मैं प्लेन में बैठा और पहली बार 5-स्टार होटल में रुका। मुझे यकीन हो गया कि मुझ पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मतलब ये इस फिल्म में मुझे ये जो है ये फिल्म तो मुझे मिलना तय है। फिर फिल्म के मुताबिक मेरा जो है वो स्क्रीन टेस्ट लिया गया। उस दौर के सबसे बड़े कैमरामैन द्वारका दिवेचा, अब दिवेचा जी की हम बात कर चुके हैं और करते भी आ रहे हैं शोले के अपने मेकिंग ऑफ ए क्लासिक में, तो ये वही जो थे द्वारका दिवेचा जिन्होंने शोले शूट की थी, ने मेरा स्क्रीन टेस्ट शूट किया। रमेश सिप्पी जी, सलीम साहब, जावेद साहब, मुशीर व्यास, सबको मेरा काम बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे पास कर दिया। फिर मेरा

1972, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मजरू सुल्तानपुरी, जया भादरी, अमिताभ बच्चन, रोमांटिक सॉन्ग, बड़ा ही दिलकश गीत था पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, और यही हाल था जो राज बब्बर साहब का हो रहा था उस समय। आगे भी सुनेंगे क्या हो रहा था, गीत सुनते हैं और लौटते हैं, एक नज़र 1972।

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लेकिन देखिए ना, जाने का मन नहीं कर रहा पर घड़ी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। अब हम जो है वो आपको कुछ बातें बता रहे थे, आपने कहा भाई

आप बात तो पूरी कीजिए कि हुआ क्या था कि भाई ये जो फिल्म थी वो उनकी जो है उनके हाथ से निकल गई थी, लेकिन हाँ ये बात तो सही है कि भाई इनका जो है उसका गम तो उनको बहुत हुआ था। अब इसी बात पर अकबर हैदराबादी का एक शेर याद आ रहा है, दिल दबा जाता है कितना आज गम के बार से, कैसी तन्हाई टपकती है दरो दीवार से। क्या बात है अकबर हैदराबादी जी। अब ये राज भाई बताते हैं, मैं फिर दिल्ली आ गया और थिएटर करना शुरू कर दिया, फिर किस्मत की ने उम्मीद के दरवाजे पर दस्तक दी। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का प्रीमियर था जिसके लिए प्रकाश मेहरा साहब दिल्ली आए थे, उन्होंने बुलाया, मैं उनके से मिलने चला गया। उन्होंने कहा मैं एक फिल्म में तुम्हें कास्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जो है वो फ्लाइट का टिकट दे दूंगा और फ्लाइट का टिकट करवा देता हूँ, बॉम्बे आ जाओ वहाँ बात करेंगे। मैंने कहा 31 दिसंबर को नया साल नादिरा के साथ मनाकर 1 जनवरी को आपके पास नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए अब हम आपको जो है वो अगले जो है वो अंक में बताएंगे, यानी कि क्यों बताएंगे, क्योंकि हाँ भाई अब ये जो है वो घड़ी तो बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। अब अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। अब मुझे याद है फिल्म थी 1976 की कभी कभी, आपने कहा था बैक टू बैक, पर थोड़ी सी देर के बाद बैक। अब मुकेश खयाम, साहिर लुधियानवी, अमिताभ बच्चन, राखी, रोमांटिक सॉन्ग था, फिल्म फेयर अवार्ड विनर, बड़ा ही जो है वो रोमांटिक सा ट्रेंड सेटिंग गीत था, मैं पल दो पल का शायर हूँ। सुनते हैं, लौटते हैं अगले हफ्ते, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello, good evening, namaskar, sashrikal, ram ram, jay mata di, assalamualaikum dosto. Main hoon RJ Sagar, aaj ko hoon lekar ke show Satyamev Jayate. Jai Hind, Jai Bharat. ये शो हमारा बहुत स्पेशल इनिशिएटिव होता है, रीजन बीइंग कि यहाँ पर हम अलग अलग एक्ट्स को कवर करते हैं. वी टॉक अबाउट ऑल द लीगल फ्रेमवर्क दैट फॉल्स इन इंडिया, और उसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर बुलाते हैं हर बार एक बहुत ही खास मेहमान जो एक्सपर्ट होते हैं इस डोमेन के. आज हमारे साथ हैं मिस सिमरन सिंह. सिमरन मैम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट स्कूल ऑफ लॉ मानव रत्न यूनिवर्सिटी. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में जो स्मोकिंग को लेकर आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी. अगर आपने सिगरेट के पैकेट्स देखे हैं तो उसके ऊपर कुछ कुछ आपको विजुअल्स नजर आते हैं. क्या है इंडिया का इतिहास स्मोकिंग के साथ? क्यों इंडिया में हम स्मोकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको एडवर्टाइज नहीं कर सकते? भारत सरकार क्या बोलती है, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो कानून के पास क्या प्रावधान है स्मोकिंग को लेकर? विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. लेकिन सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा सिमरन मैम का. हाई मैम, वेलकम टू आवर शो.
2: थैंक यू सागर, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: गुड.
1: पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे, इंडिया में स्मोकिंग और टोबैको की जो हिस्ट्री है थोड़ा सा मैं उसको समझना चाहता हूँ कि कितनी पुरानी है, क्या ऑब्स्टिकल्स रहे हैं उसमें.
2: सो इंडिया में स्मोकिंग प्रैक्टिस बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है. सो अगर हम बात करें सन 1200 BC की लगभग, सो अथर्व वेदा में इसका जिक्र मिलता है. आयुर्वेदा में भी इसके अलग अलग फॉर्म्स और प्रैक्टिसेस हमने देखे हैं, जैसे धूप होम में जैसे हम धूप वगैरह जलाते हैं, इस तरीके से भी स्मोकिंग के कुछ यूजेस थे जो हमने देखे हैं हिस्ट्री में. एंड मोस्टली एक मिथ था कि स्मोकिंग को हम यूज़ करते हैं मेडिकल पर्पसेस के लिए, जो कि अब इसके ऊपर डिबेट तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी क्लियर है कि स्मोकिंग जो है हर वे में ही इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. एंड अगर हम बात करें टबैको की, सो इंडिया में लगभग 17th century में टबैको यूजेज काफ़ी बढ़ा था. सो ऐसा नहीं है उससे पहले टबैको यूज़ नहीं होता था इंडिया में. प्योर फॉर्म जो टबैको जो हम आज देख रहे हैं वो 17th century से स्टार्ट हुआ है. एंड अगर हम बात करें आज की, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स, और लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. काफ़ी सारे सर्वेज हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग 15 साल और उससे ऊपर के लोग जो हैं, लगभग 29% अडल्ट ऑफ इंडिया टबैको यूज़ करते हैं. एंड काफ़ी सारे सर्वेज WHO ने भी कंडक्ट किए हैं जिसमें ये पाया गया है कि इंडियन स्मोकर्स लगभग 12% हैं आउट ऑफ द टोटल स्मोकर्स इन द वर्ल्ड. सो हमारा शेयर हर साल बढ़ता जा रहा है एंड टबैको यूजेज के अलग अलग फॉर्म्स भी हम देख रहे हैं
1: अब. ऑलराइट, बट हमें लॉज बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
2: मेजरली हमें लॉज बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता गया और हमने ये देखा कि टबैको यूजेज के फ़ायदों से ज़्यादा नुकसान है, स्पेसिफिकली जब हमारी साइंस ने, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल आप कह सकते हैं रिसर्चेस जब हुई और उसमें पता लगा कि टबैको के ज़्यादातर नुकसान ही हैं. स्पेसिफिक एक नुकसान है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है टिल डेट, दैट इज़ इसकी आदत लग जाना. सो टबैको जो है उसकी जो यूजेज है अगर वो काफ़ी कंटिन्यूस है, पॉसिबिलिटी है कि आपको उसकी आदत लग चुकी है. इस रीज़न से हमने कुछ लॉज बनाए. सो इनिशियली मोटिव ये था कि हमें टबैको की यूजेज को कट डाउन करना है. इवेंचुअली हमने ये भी रियलाइज़ किया कि पैसिव स्मोकिंग इज़ ऑल्सो इंजूरियस. पैसिव स्मोकिंग मीन्स इफ़ समवन इज़ स्मोकिंग नियर यू, पॉसिबिलिटी है कि आप स्मोक नहीं कर रहे हैं फिर भी आपके लिए वो चीज़ उतनी ही हार्मफुल है क्योंकि आप वहीं पर हैं, सेम एयर, सेम रूम में आप, सेम स्पेस में बैठे हैं, तो आपके लिए भी उतना ही हार्मफुल है. जब ये रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सारे जो टबैको रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हैं वो उनमें भी आ रहे हैं, जो लोग एक्चुअली स्मोक नहीं करते बल्कि पैसिव स्मोकर्स हैं, उनके आसपास के लोग जो हैं वो स्मोकर्स हैं और उसकी वजह से उनकी भी हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। उस टाइम पर गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि वी एक्चुअली नीड लॉज टू प्रोटेक्ट किड्स, टू प्रोटेक्ट एल्डरली पीपल, टू प्रोटेक्ट एवरी वन एल्स हु इज़ एक्चुअली नॉट स्मोकिंग, इंक्लूडिंग द पीपल हु आर स्मोकिंग।
1: ऑलराइट ऑलराइट, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि किस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हिस्ट्री रही है हमारी, कहाँ से हम लोग इतिहास को देखते हैं, क्यों हमने लॉज बनाए। आगे फर्दर डिस्कस करेंगे हम कि एक्ट है इसको लेकर के, कॉटपे एक्ट उसका नाम है, ऑफिशियल जो उसका नाम है उसके बारे में बात करेंगे, एग्जैक्टली क्या है वो, उसका मेन काम क्या है, विल टॉक अबाउट इट। बट फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड विद अस, मैं हूं आरजे सागर, शो चल रहा है सत्यमेव जयते।

0: वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो सत्यमेव जयते, रेडियो मार्मष्ट ऑन 107.8 FM का बहुत स्पेशल एक वर्टिकल जहां पर हम लोग बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क की, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉट पैक्ट। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इसी एक एक्ट के बारे में। कॉट पैक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग, कॉटपा इज सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। भारत में एक एक्ट है जो ऑपरेट करता है, फंक्शनल है। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले तो बताइए कि क्या है ये।
1: 2003 में ये एक्ट आया था एंड मेजरली इस एक्ट के कुछ मोटिव्स थे। पहला मोटिव था कि हमें सबसे पहले एडवर्टिजमेंट को प्रोहिबिट करना है। जो भी एडवर्टिजमेंट टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स की होती है, चाहे वो ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रमोशनल एडवर्टिजमेंट्स हैं, हमें उनको रोकना है। स्पेसिफिकली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एक रेजोल्यूशन आया था। उसके बाद ये लगभग हर एक मेंबर स्टेट का मैंडेट बन गया था कि नॉन स्मोकर्स को, सेकेंड हैंड स्मोकर्स को हमें स्मोक से बचाना है और स्पेसिफिकली बच्चों को एडिक्शन से दूर रखना है। तो इसके लिए पहले सिर्फ जो भी हमारे पास लॉज थे उसमें मोस्टली सिगरेट्स को कवर किया जाता था, लेकिन हमने देखा कि इंडिया में सिगरेट्स के अलावा भी बहुत सारे टबैको के यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल बीड़ी एंड स्मोकलेस टबैको, जिसको हम कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, जैसे गुटखा, खैनी, पान मसाला, ये सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पे कवर करनी थी, जिसके लिए हमने ये एक्ट बनाया था, कॉटपा एक्ट 2003। एंड काफ़ी सारी मेजर चीज़ें जो हैं वो इस एक्ट में कवर हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग बैन होना वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ दिस एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडवर्टिजमेंट या प्रमोशन या कोई भी स्पॉन्सरशिप को हर तरीके से बैन कर दिया गया था इफ़ द प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू टबैको। 18 साल से कम के उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए सेल ऑफ टबैको प्रोडक्ट बिल्कुल ही बैन कर दिया गया था। अलॉन्ग विद दैट, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके 100 yard के एरिया में टबैको सेल करना कम्प्लीटली बैंड है, पनिशेबल है। एक और चीज़ है जो हमने इस एक्ट के साथ नहीं देखी, पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग्स। सो हम देखते हैं कि जो भी टबैको प्रोडक्ट्स आते हैं उनके साथ पिक्टोरियल वार्निंग्स आती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कोई एक बहुत ही पिक्चर है जो कि बहुत अनईजी लग सकती है कुछ लोगों को, जिसमें ये दिखाने की कोशिश करी जाती है कि अगर आप टोबैको के कंज्यूमर हैं और आप लॉन्ग टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, व्हाट ऑल हेल्थ इफ़ेक्ट्स यू कैन फेस। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कॉटपा एक्ट ने इम्प्लीमेंट करी इंडिया में आफ्टर 2003।
0: ओके, सो अमेजिंग। अगर कोई इंसान पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग कर रहा है तो क्या कॉटपा एक्ट में इसको एक वायलेशन माना जाएगा, और अगर माना जाएगा तो क्या होगा उस केस में?
1: इस एक्ट में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग बैंड है। हमने देखा है कि काफ़ी लोग हमें आसपास दिखते हैं जो पब्लिक प्लेसेस पे स्मोक कर रहे हैं। इस एक्ट की एक प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि हम शायद इसकी इम्प्लीमेंटेशन उतने अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो अगर मैं आपको लीगली बताऊं तो अगर कोई भी इंसान स्मोकिंग करता हुआ पकड़ा जाता है पब्लिक एरिया में, तो उसको फाइन कर सकती है पुलिस ऑन द स्पॉट। एंड अगर आप कंटिन्यूस डिफॉल्टर्स हैं तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है और काफ़ी हैवी पेनल्टी लगाई जा सकती है। बट हाँ, इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज है, क्योंकि शायद एज अ कम्युनिटी हम एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आसपास कोई स्मोक कर रहा तो शायद हम ही वहाँ से चले जाते हैं, रादर देन रेजिंग द इशू कि शायद जो स्मोक कर रहा है उसको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज इलीगल।
0: ऑलराइट, ओके, लेट्स से इट कि पान की दुकान है जहाँ पर सिगरेट्स बेची जाती हैं। अब वहाँ पर 17 साल का एक लड़का आता है जो कि माइनर कंसिडर किया जाएगा एज पर लॉ, ओके, वो उसको सिगरेट बेच देता है। अब यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि पकड़ा गया अगर ये केस, तो किसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? शॉपकीपर के पास एक वैलिड डिफेंस होगा कि मुझे उसकी एज नहीं पता थी, इस केस में क्या होगा?
1: इंडिया में ही नहीं, काफ़ी सारी कंट्रीज में एक रूल है, एक लॉ है जो कि हम इंडिया में भी फॉलो करते हैं. अगर कोई भी सेलर, रिटेलर, कोई भी छोटी मोटी शॉप, पान शॉप, अगर ये कोई भी टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ये इनकी फर्स्ट ड्यूटी है दैट इफ़ दे हैव एनी रीजनेबल डाउट रिगार्डिंग द एज ऑफ अ पर्सन, तो उन लोगों को पूरा अधिकार है कि वो डिनाई कर सकते हैं इफ़ द पर्सन इज नॉट प्रेजेंटिंग अ वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ टू प्रूव देयर एज. सो अगर कोई भी शॉपकीपर है, पान शॉप्स हैं, उनके पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो पूछ सकते हैं अगर उनको लगता है कि नहीं जो भी परचेजर आया है ये बच्चा हो सकता है, अंडर 18 हो सकता है. तो ये पहली ड्यूटी उनकी बनती है कि अगर उनको 1% भी डाउट है तो वो गवर्नमेंट आईडी मांगे और पूछें कि क्या आप अबव 18 हैं या नहीं. पर ऐसा होता नहीं है एंड इसी रीज़न से देखा जाता है कि काफ़ी सारे अंडर 18 बच्चे होते हैं जो स्मोकिंग शायद सिर्फ ट्राई करने के लिए करते हैं और देन दे गेट अडिक्टेड टू द प्रोडक्ट. इसमें लाइबिलिटी, फर्स्ट लाइबिलिटी तो ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो शॉपकीपर की ही बनती है, क्योंकि अगर कोई बिलो 18 है, एनी हाउ वी आर लॉ डजंट जनरली पनिशेज अ पर्सन हु इज़ बिलो 18. हम उन्हें जुवेनाइल्स बोलते हैं इफ दे आर इफ दे हैव कमिटेड एनी क्राइम. तो पहली लाइबिलिटी बनती है शॉपकीपर्स की. पर प्रॉब्लम यही है, क्या हमारे शॉपकीपर्स या जो लोग टबैको बेचते हैं, क्या उनको इस चीज़ की इतनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या उनको इतनी नॉलेज है कि उनको ये चीज़ भी करनी है या वो कर सकते हैं? दैट इज़ अ प्रॉब्लम.
0: सो अमेजिंग. एंड द आयरनी इज़ कि हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को समझा कि एग्जैक्टली आप टोबैको प्रोडक्ट्स की किसी भी तरीके से मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो. एंड द आयरनी इज़ कि यही सेम कंपनीज अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, कोई इलायची बेचता है, कोई कुछ और बेचता है, और ब्रांड नेम को इतना ज़्यादा फेमस कर देते हैं कि आप बाय डिफॉल्ट वहाँ से समझ जाएंगे कि ये खैनी बेच रहा है, ये पान मसाला बेच रहा है, बट इन इलायची वेरिएंट. सिमिलर टू दैट पार्ट कि मैन विल बी मैन, आपने ये स्लोगन सुना होगा. ओके, सो दैट कंपनी डील्स इन एल्कोहल, लेकिन वो क्या बेच रहे हैं? म्यूजिक सीडीज या पानी जो है उसकी ऐड की जाती है. बट बॉटम लाइन ये है कि इनको अपना नाम आपकी ज़ुबान पर चढ़ाना होता है, दैट इज़ अ मेन गेम. सो आई वुड से दिस इज़ अ बिट डर्टी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग. ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे. मिस सिमरन हमारे साथ हैं और यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा आगे समझेंगे कि बॉलीवुड का क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर, एग्जैक्टली क्या हुआ है हमारे साथ. We'll talk about it. But फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ. Feel good, feel live.

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा,

0: जस्ट होपिंग आपको मजा आ रहा होगा, शो को आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए या सिमरन के लिए तो 8010781078 इस कॉन्टैक्ट नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइए। रिक्वेस्ट करूंगा व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचाइएगा। फिलहाल अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। सिमरन हमारे साथ है और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉट पैक की। एक्ट को हमने समझ लिया है, स्मोकिंग की हिस्ट्री हमने समझ ली है, एक ओवरव्यू हमें मिल गया है, कुछ कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हमने समझी है कि अगर किसी माइनर को सिगरेट बेची जाए तो क्या होगा, कैसे किसको लायबल ठहराया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉलीवुड पार्ट। मैं जानना चाहूंगा कि बॉलीवुड ने कैसे इन्फ्लुएंस किया है हमें स्मोक करने के लिए।
1: एक्चुअली में बॉलीवुड का काफ़ी ही बड़ा रोल रहा है टू प्रमोट स्मोकिंग। सो अगर हम देखें जो हमारी 90s की मूवीज़ होती थी उसमें मोस्टली हम देखते थे जो विलन्स होते थे वो सिगार या सिगरेट्स स्मोक करते हुए दिखते थे। सो हमारा परसेप्शन था कि अच्छा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एक्चुअल में हीरो नहीं करता, ये विलन्स करते हैं। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ मे बी इन 2000s हमने नोटिस करना शुरू किया कि अब विलन्स के साथ साथ हीरोज़ भी जो हैं वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल नाउडेज। सो इससे लोगों का परसेप्शन भी चेंज हुआ बिकॉज वी सी कि बॉलीवुड में कोई भी चीज़ अगर ट्रेंड करती है तो हम कोशिश करते हैं एटलीस्ट व्हाट वी कॉल ससेप्टेबल पीपल, जैसे हमारे बच्चे हैं या फिर जो आजकल की जेनरेशन है, स्पेसिफिकली जेन जी जेन एल्फा, जो कोशिश करते हैं कि जो उन्हें दिख रहा है इफ़ दे आर लाइकिंग इट दे स्टार्ट फॉलोइंग द ट्रेंड। सो व्हेन दे स्टार्ट फॉलो द ट्रेंड तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि दे आर टेकिंग अप हैबिट्स जिनका क्या इफ़ेक्ट होगा वो उन्हें नहीं पता। सो क्योंकि हम अभी स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, सिगरेट्स की बात कर रहे हैं, तो एक केस भी हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि स्मोकिंग को एक्चुअल में मूवीज़ में दिखाना ही नहीं चाहिए। वी शुड नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले जहाँ पर हीरो हो या विलन हो वो स्मोक कर रहा है। एंड देन दिस केस वॉज डिसाइडेड ऑन द ग्राउंड्स कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है अगर हम एक्चुअल में स्मोकिंग को बैन कर देते हैं, क्योंकि स्मोकिंग एज अ होल इज़ नॉट बैंड इन इंडिया। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहता है कि हम अपने मन की बात एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो सैडली ऐसा नहीं हुआ, मूवीज से हम गायब नहीं कर पाए स्मोकिंग को या फिर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल को। सो वी डू सी इट नाउ डेज। हाँ, हम उसके साथ एक वार्निंग ज़रूर देखते हैं, हम गवर्नमेंट ने मैंडेट बना दिया है, नीचे एक छोटी सी वार्निंग आती है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। बट आई थिंक डिपिक्शन ऑफ स्मोकिंग इन बॉलीवुड हैज़ बीन द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ओवर किड्स, ओवर टीनेजर्स टू टेक अप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग।
0: एंड नॉट जस्ट बॉलीवुड, हॉलीवुड में भी सिमिलर गेम आपको नजर में आएगा। वहाँ पर लोग कंपनीज जो है पैसे पे करती हैं बाकायदा डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि आपको स्मोकिंग कैसे दिखाना है। हैव यू एवर नोटिस कि स्मोकिंग जब बॉलीवुड में या हॉलीवुड में आपको दिखाई जाती है तो अलग से एक प्रॉपर मूवमेंट होता है स्मोकिंग का, कि वो उसको जलाएगा, फिर वो बहुत एस्थेटिक तरीके से आपको जलती हुई दिखाई देगी और एक साउंड आएगा ऐसा अजीब सा, जो लाइफ में कभी आप किसी को स्मोक करते देखोगे तो आपको जीवन में वो साउंड कभी आपके कानों तक तो नहीं पहुँच पाएगा, बट यू विल गेट दैट साउंड इन द मूवी जस्ट टू मेक इट लार्जर देन लाइफ। एंड द आयरनी इज कि 60s 70s में कंपनीज ने क्या करना शुरू किया था कि डॉक्टर्स के कॉस्ट्यूम पहना करके मॉडल्स को खड़े करते थे और उनके हाथ में सिगरेट होती थी और उसके पोस्टर्स बड़े बड़े आपको दिखाई देते थे। ये बहुत सारी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स अगर आप उठाएंगे 70s के आपको नजर आएंगी। तो इट शोज कि उन्होंने डॉक्टर्स से एसोसिएट कर दिया कि इट्स अ साइन ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। देन उसके बाद उस टाइम पर सिर्फ मेल्स पीते थे तो फीमेल्स को उन्होंने टारगेट करना था तो उन्होंने फीमेल मॉडल्स हायर करनी शुरू कर दी। एंड दे मेड स्मोकिंग अगेन अ सिंबल ऑफ बोल्डनेस, इफ यू आर स्मोकिंग यू आर बोल्ड गर्ल। सो दैट इज द डर्टी गेम, और ये अब से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, बट फॉर्चुनेटली इतना हो गया है कि अब आप उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। बट आई थिंक जो भी हमारे पास ये चीजें हैं, जिस तरीके से भी आपको दिखाई दे रहा है इनडायरेक्ट वे में जितना सटल इंटीग्रेशन किया जाता है, आई थिंक उसके ऊपर भी काम हो सकता है। एंड वी आर ऑन दैट वे, ऑन दैट जर्नी। ओके, अगला पॉइंट मेरा आपसे रहेगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क इज, कॉट पैक्ट में अगर कोई पैसिव स्मोकर है या माइनर है उनको लेकर के क्या प्रावधान है?
1: ओके, सो इस एक्ट में दो तरीके की प्रोटेक्शन है माइनर्स के लिए. पहली प्रोटेक्शन ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम की उम्र का है तो हम उसे किसी भी तरीके का टबैको प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, चाहे वो गुटखा हो, खैनी हो, सिगरेट्स हो, बीड़ी हो, ये सब कुछ नहीं बेचा जा सकता. दूसरा जो हमने एक प्रोविज़न देखा है इस एक्ट में वो ये है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के 100 yard के रेडियस में टबैको सेल कम्प्लीटली बैंड है. इनफैक्ट ये बोर्ड लगाना भी ज़रूरी है कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए, कि यहाँ पे इस एरिया से अगर हम 100 yard का एक रेडियस बनाएं तो उस रेडियस के अंदर अंदर हमें किसी भी तरीके का टबैको प्रोडक्ट सेल नहीं करना. सो कोशिश करी गई है कि पैसिव स्मोकर्स को भी कम किया जाए. जब 100 yards के रेडियस में कोई स्मोक नहीं करेगा, जब किसी माइनर को टबैको प्रोडक्ट सेल नहीं करे जाएंगे, सो पॉसिबिलिटी है कि बच्चों को बचाया जा सकता है स्मोकिंग से और पैसिव स्मोकिंग दोनों से.
0: ऑलराइट, सो अमेजिंग. आई एम डन विद माय क्वेश्चंस. इज देयर एनीथिंग जो मैंने पूछ पाया और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री.
1: आई वुड जस्ट से कि हम लोग शायद कोशिश बहुत कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ें अपनाएं जिससे हम स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सारे इन्फ्लुएंस स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम स्मोकर्स में कम कर पाएं. क्योंकि फर्स्ट टाइम स्मोकर्स जो होते हैं, अगर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो समहाउ इन फ्यूचर स्मोकिंग पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी. तो अगर आपके आसपास बच्चे हैं तो हमें उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं ये ठीक नहीं है, एंड यू शुड नेवर एसोसिएट देम विद एनी सॉर्ट ऑफ ऑरा जो हम मूवीज़ में देख लेते हैं या फिर किसी को रेस्टोरेंट्स में देख लेते हैं ये चीज़ें करते हुए. तो हमें उसे अट्रैक्ट नहीं होना है. वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट दैट ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हमें नहीं करनी है.
0: सो वंडरफुल, सो अमेजिंग. और इसका एक बहुत इजी तरीका ये भी हो सकता है कि द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज आस्क दिस वन क्वेश्चन कि एक फ़ायदा बता दो सिगरेट का, क्यों पीते हैं? जस्ट वन बेनिफिट, दिस नो सिंगल बेनिफिट. सेकेंड इंपॉर्टेंट कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है, अगर वो ध्यान से अपने आप को ऑब्जर्व करे, अगर वो थर्ड पर्सपेक्टिव से खुद को देख पाता है तो आपको समझ में आएगा कि आपके हाथों में स्मेल रहती है, आपके दांतों का शेड जो है वो येलो हो जाता है, आपके लिप्स जो है वो ब्लैक हो जाते हैं, आपकी ओरल हाइजीन की धज्जियाँ उड़ चुकी होती हैं, आपके कपड़ों में स्मेल आती है. इवन वेन यू आर वर्किंग आउट तो आपके जो स्वेट होता है उसमें भी आपको एक स्टिंकी स्मेल आपको जो है नजर आएगी. तो आसपास के लोगों को वो शायद बोल ना पाए आपको, बट वो फील होता है स्पेशली टू ऑल द नॉन स्मोकर्स. एंड मोर ओवर दैट इज समथिंग जो आपके ब्रेन को हाईजेक करता है. इट बिकम्स अ रिवॉर्ड सिस्टम कि आप स्मोक करते हो, आपको काम से पहले स्मोकिंग चाहिए, काम के बाद आपको स्मोकिंग चाहिए. सो बेसिकली यू आर नॉट फ्री एट ऑल. एंड आई थिंक जो जिंदगी आपको मिली है ये आज़ाद जिंदगी मिली है, इसको आज़ादी से जीना ही एक सबसे सही विकल्प जो है माना जाता है. फिलहाल उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितनी हमने बातें आपको बताई हैं आपको समझ आई हैं. सो जस्ट क्विट स्मोकिंग, प्लीज डू इट. इट इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ एंड लिटरली इट इज़ क्रिएटिंग सो मैनी डिजीजेज जो शायद मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता हूँ आपको, इतनी लंबी लिस्ट है. Just take care of yourself and choose a healthy lifestyle. All right, thank you so much, ma'am. हमारे साथ जुड़ने के लिए it means a lot to us.
1: Thank you.
0: All right, दोस्तों वक्त अपनी शो के पर कंक्लूड करने का. आशा करता हूँ पसंद आया होगा. कोई फीडबैक है तो मेरे लिए सिमरन के लिए तो 8010781078 इस नंबर तक पहुँचाइएगा. फिलहाल चलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए. दिस इज आरजे सागर.

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इसमें जब हम महिलाओं से बात करवाते हैं, उनके सशक्तिकरण की जो पूरी की पूरी जर्नी है वो आपको सुनाते हैं, तो ये कार्यक्रम और भी खूबसूरत हो जाता है। देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हमेशा से इसलिए की जाती है क्योंकि महिलाओं में शक्ति तो हमेशा से थी। महिला या नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है, लेकिन परेशानी ये है कि कहीं ना कहीं उसकी ये शक्ति छीनी हुई है और इसीलिए उससे सशक्तिकरण की जरूरत है। सो आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही डायनेमिक महिला है। जी हाँ, हरमीत सहगल जी। हरमीत सहगल जी डायरेक्टर हैं हरमीत सहगल की और साथ के साथ डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर हैं इनाविल डिस्ट्रिक्ट 301 की, लेकिन ये प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब दिल्ली सैनिक फार्म्स की भी। यानी आप सोचिए कितना सारा कार्यभार इन्होंने संभाला हुआ है और ये सब कुछ इतनी आसानी से ये कर पा रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो करते हैं इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
4: थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर और आपके स्टूडियो में आना और बात करना आपसे, इट्स अ बिग ऑनर, थैंक यू।
3: हरमीत जी, इस कार्यक्रम का, इस प्रोग्राम का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम है हमारे रेडियो स्टेशन का, और इस कार्यक्रम में मैं जितनी भी महिलाओं से मिलती हूँ उनकी कहानी लोगों तक पहुँचाती हूँ, एक सवाल जो मैं हर महिला से पूछती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट। देखिए, महिला एम्पावर्ड है तो हम सबको पता है, हम महिलाएं हैं, लेकिन परेशानी है कि इसकी जो डेफिनेशन है ना वो हर महिला के लिए अलग है। किसी के लिए एम्पावरमेंट पैसा है तो किसी के लिए डेजिग्नेशन, किसी के लिए छोटा सा फ्रीडम तो किसी के लिए अपनी मर्जी की चीज कर लेना एम्पावरमेंट है। आपसे मैं अगर पूछूं तो हरमीत जी, आपको क्या लगता है, आप कैसे डिफाइन करेंगी विमेन एम्पावरमेंट इसको?
4: वेल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से कोई या हाई पोजिशन से कोई भी एम्पावर्ड, कम्प्लीटली एम्पावर्ड नहीं होता। देर इज मच मोर टू इट, और असली एम्पावरमेंट तब होती है जब महिला को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से मतलब चलाने की सक्षमता होती है
3: एक्चुअली,
4: एंड अपने फैसले खुद लेने की, और छोटी छोटी चीज़ों में जैसे आज़ादी अपने डिसीशंस लेने की।
3: लेकिन अगर मैं बात करूँ, देखिए हम ये हमेशा कहते हैं एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण का सही परिभाषा या उसकी सही डेफिनेशन है कि महिलाओं को वो अधिकार भी मिले और महिलाओं के पास ये फ्रीडम हो कि वो जैसी जिंदगी जीना चाहती हैं अपनी शर्तों पे अपने नजरिए से जिएं। लेकिन अगर आप एक महिला का एक पूरा दिन देखें, यानी 24 घंटे जो उसे मिले हैं वो देखें, सो उस 24 घंटे में से मुझे ऐसा लगता है मात्र 5 मिनट या 10 मिनट भी वो अपने लिए तो नहीं बिताती है, और बाकी के पूरा समय या तो वो समाज के बारे में सोच रही है, परिवार के बारे में सोच रही है, बच्चों के बारे में सोच रही है, भविष्य के बारे में सोच रही है, पुरुषों के बारे में यानी उनके परिवार के जितने भी लोग हैं, मेल मेंबर्स या भाई है, पति है, उनके बारे में सोच रही है, या घर के बुजुर्गों के बारे में सोच रही है। आज अगर किसी की बर्थडे पार्टी है तो एक महिला को सोचना है कि उसे क्या करना है, गिफ्ट क्या लेके आना है, तैयारी क्या करनी है, यहाँ तक कि बच्चे और पति कपड़े क्या पहनेंगे, ये भी एक महिला की जिम्मेदारी होती है। सो आपको नहीं लगता है कि सशक्तिकरण तो है लेकिन इस सशक्तिकरण को प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिल पाता है महिलाओं को?
4: नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक स्टेज आती है लाइफ में जब आपके पास टाइमिंग टाइम है अपने लिए।
3: जी,
4: जैसे अब मैं उस एज फैक्टर में हूँ जो मेरी जिम्मेदारियाँ मोस्टली ख़त्म हो चुकी हैं, बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, सो ऐसी भी बात नहीं है। अब ये टाइम जो है भगवान ने मुझे दिया है, इट्स ऑल फॉर माई सेल्फ। सो मुझे लगता है कि अब तो ये जो बोनस टाइम है और मैं अपनी मर्जी से ये सब कर सकती हूँ। इनरवील में मेरे को 20 साल हो गए हैं, लेकिन जो मैं पहले मेरी वो नहीं थी कि मैंने लीडरशिप की पोजीशन लेनी है, एंड ये सिर्फ कोविड के बाद मुझे लगा कि अब मेरे पास मेरी मेन जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं लाइफ में, एंड आई शुड चैनलाइज माई एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। तो इसीलिए मैंने ये डिसीशन लिया कि मैंने डिस्ट्रिक्ट को एंटर करना है और लीडरशिप की पोजीशन लेनी है. और एम्पावरमेंट में लेडीज़ को अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी और इक्वालिटी भी मिलती है.
3: वाकई
4: सो इट इज़ मैं तो वैसे भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं नॉर्थ ईस्ट की हूँ
3: जी.
4: सो मेरी पैदाइश असम की है एंड मेरी शादी मणिपुर में हुई थी
3: जी.
4: सो वहाँ थोड़ा सा वुमेन की रिस्पेक्ट ज्यादा है.
3: ऑब्वियसली मातृ प्रधान प्रदेश है वो तो हमारा. और मैं ये कहूंगी कि बाकी अगर हम जैसे हमारे देश में बाकी जितने प्रदेश हैं जनरली अगर हम साउथ को छोड़ दें तो पुरुष प्रधान है, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, डाउन साउथ की बात करें, तो वो आज भी मातृ प्रधान है. वहाँ पर एक महिला को उसकी इनहेरिटेंस मिलती है, उसके पास ये अधिकार होता है. तो वाकई
4: सो और मैं डीपली कनेक्टेड हूँ टू द नॉर्थ ईस्ट आज तक. और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई थिंक अबाउट, आई लिव इन दिल्ली नो डाउट, बट मुझे एक डीप लव एंड कनेक्ट है विद द कल्चर देयर. और उसमें मतलब मैंने शुरू से देखा है कि जितनी भी मेरी फॉर एग्जांपल क्लासमेट्स हैं स्कूल की
3: जी,
4: उस सब ने काम किया है. इनफैक्ट मैं तो बिजनेस फैमिली से हूँ, सो मैंने शादी के बाद ऐसा कोई जॉब नहीं किया या ये सब नहीं किया, लेकिन सारी मेरी फ्रेंड्स ने गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स जो भी दे हैव ऑल डन आई मीन वर्क
3: ऑन देयर ओन
4: एंड अर्नड

0: their livelihood.
1: Wow.
0: So, I mean, it's really a great feeling because aaj jab, matlab, I'm totally connected to them. And it's a feeling of pride.
2: Yes, आपको बड़ा अच्छा लगता होगा. सही मायने में सशक्तिकरण यही होता है. और देखिए हरमीत जी ने ना एक बड़ी अच्छी बात कही है, डिग्निटी, क्वालिटी और साथ के साथ रिस्पेक्ट. अगर हम इनकी बात करें, तीन चीज महिला की जिंदगी में भी उतने ही जरूरी होते हैं, लेकिन ये आपको तभी मिल सकता है जब आप अपने सशक्तिकरण को प्रैक्टिस कर पाएं, अपनी एम्पावरमेंट को प्रैक्टिस कर पाएं. फिलहाल वक्त एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानवृष्टा 107.8 FM के साथ. आई नो ये गाना आपको बहुत पसंद आएगा, लेकिन वापस आ जाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ. फील गुड, फील लाइक.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। और आज के एपिसोड में हम बैठे हैं हरमीत सहगल जी के साथ। शी इज द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर इन अरविल डिस्ट्रिक्ट 301, प्रेजिडेंट है रोटरी क्लब डेली सैनिक फार्म्स की और डायरेक्टर हैं हरमीत सहगल, एक बहुत ही खास फर्म है। अब बात करते हैं आज के ज़माने की महिलाओं के चैलेंज की। भाई मैं तो ये मानती हूँ कि महिलाएं और चैलेंज हमेशा साथ होता है। सो हरमीत जी, हर युग में, हर एरा में, अलग अलग एरियाज में आप देखें महिलाओं को अलग अलग किस्म के चैलेंज हैं। कहीं फ्रीडम नहीं है, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर हम देखें, एक टाइम ऐसा था जब महिलाएं यानी बच्चियां पैदा नहीं हो पाती थी, कन्या भ्रूण हत्या इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। चलिए कुछ रूल्स बनाए गए, फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं बच्चियां पैदा हो रही हैं, उनकी पहली लोहड़ी मनाने से लेकर उनका नामकरण और उनका वेलकम किया जा रहा है। अब परिवार का इनहेरिटेंस भी मिल रहा है। अगर मैं आज के ज़माने की बात करूं, जहां पर बच्चियों के पास एजुकेशन का मौका है, अपनी पसंद की शादी करने का मौका है, अपनी पसंद की पढ़ाई करने का मौका है, सो ऐसे टाइम पर क्या चैलेंज है महिलाओं को?
1: उनको डबल चैलेंज है, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो घर की भी जिम्मेदारी करें और बाहर भी काम करें।
0: वाकई
1: सो एक्चुअली उनके लिए डबल जिम्मेवारी है आज, और हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। इट वॉज वी वर वेरी लकी। आई वॉज फ्रॉम अ फैमिली जिसमें हम लोग को एजुकेशन की पूरी अपॉर्चुनिटी मिली, जो मेरे भाइयों को मिली वो सेम मेरे को भी मिली
0: जी।
1: एंड हम लोग को बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन मिली, और हमने अपनी मर्जी से काम किया नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। शादी हो गई, हम उस माहौल में एडजस्ट हो गए, लेकिन आज की वुमन को बहुत इट इज़ challenge because she has to juggle between yes. managing the house and also अपना काम ठीक से करने का, and expectations तो बहुत हैं औरतों से, और उनसे मतलब उम्मीद की जाती है कि career में भी excellent हैं और घर की भी। so not only that, there is a lot of gender bias,
0: yes.
1: self doubt और safety also for women.
0: 100%.
1: so ये सब चीज़ों में प्रोग्रेस रुकावट बनती है उनकी, और हमेशा ऐसी एनवायरनमेंट बनाना चाहिए हम लोगों को, हमारे देश को, जिसमें सिर्फ उनकी कैपेबिलिटी के बेसिस पर उनको देखा जाए, नॉट ओनली दैट शी इज अ वुमन।
0: यस, बड़ा ज़रूरी है। आप देखिए ना, मतलब आई टोटली अग्री कि वर्क लाइफ बैलेंस तो है ही नहीं। आप महिलाओं की ज़िंदगी में देखिए, मैं हमेशा कोट करती हूँ इंदिरा नूई जी को, मतलब आप सोचिए कि जिनके पास इतने बड़े स्टाफ, इतना बड़ा ऑप्शन, वो भी ये कहती हैं भाई घर के डिसीजंस, घर का खाना क्या बनना है और क्या होना है, ये आज भी मेरे ऊपर ही है। मतलब आप डिस्पाइट कि आप कितनी ही हाउस हेल्प्स रख लें, एक जिम्मेदारी जो महिला के नाम पर आ जाती है ना, वो हमेशा महिला ही करती है। सो ये जो आज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शिफ्ट हो पाई है, ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। हम चाहे ऊंची उड़ान उड़ लें, लेकिन परेशानी ये है कि उस ऊंची उड़ान में उड़ने से पहले और वापस उड़ान के बाद हमें अपनी सिक्योरिटी का डर लगा रहता है, और ये महिलाओं के लिए वाकई आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है। हम पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंधा समानता का नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। सो ये कुछ आज भी चैलेंज है, और हम मिलकर इन चैलेंजेस को कम कर सकते हैं। सो क्या करेंगे उसके लिए ज़रूर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आप जुड़े रहेंगे मेरे यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आरजे भावना के साथ कार्यक्रम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट में। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के खास कार्यक्रम में आज हम हरमीत सहगल जी के साथ हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर हैं इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 301। बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है। इनरव्हील एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं के बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे काम कर रही है और समाज के बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे काम करती है, और इस पूरे डिस्ट्रिक्ट 301 के डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर हैं हरमीत जी। इसके साथ साथ ये कार्यभार निभा रही हैं प्रेसिडेंट का रोटरी क्लब दिल्ली सैनिक फॉर्म्स। तो आप सोचिए इनके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी है, लेकिन वहीं पर इनकी अपनी फॉर्म उसका भी ये ख्याल रख रही हैं। तो इसे कहते हैं सही मायने में सशक्त यानी डायनेमिक महिला यानी एम्पावर्ड महिला। हरमीत जी, आपकी जर्नी की बात करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के पन्नों को पलट कर देखें, कोई एक ऐसा डिसीशन जो आपने एम्पावरमेंट भरा लिया हो, चाहे उसमें आपको किसी से रिबेल करना पड़ा हो या नहीं करना पड़ा हो, बट आज आप रिग्रेट नहीं करती हैं कि मैंने ये डिसीशन लिया, एंड यू आर हैप्पी कि ये डिसीशन मैंने अपनी लाइफ के लिए लिया।
1: आई हैव टू गो बैक मेनी इयर्स
0: वाओ
1: उसके लिए। एक्चुअली जब मैं मैंने स्कूल ख़त्म किया था, तो मेरा मन नहीं था कि मैं गुवाहाटी में आगे अपनी फर्दर एजुकेशन करूँ। तो मैंने फैमिली को बोला कि मेरे को हॉस्टल जाना है और चंडीगढ़ में पढ़ना है। तो देर वॉज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम द एल्डर्स, नॉट फ्रॉम ऑल, आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑल्सो, ऐसी बात नहीं है। बट क्योंकि मेरे फादर नहीं थे उस टाइम तक, वो गुजर चुके थे, एंड मैं सबसे छोटी थी घर में, तो मेरे को अपने चाचों के से परमिशन लेनी पड़ी। सो वन ऑफ देम ही वॉज सो सपोर्टिव, उन्होंने बोला कि नहीं, इसका मन है, और मेरी भाभी ने बोला कि इसको हम भेजेंगे ही भेजेंगे जो इसका मन है। तो ये एक रिबेलियन था कि मैंने जाना है। जाके मुझे पहले महीना से, एक महीने से ज़्यादा लगा एडजस्ट होने में। मैं तो इतनी पैम्पर्ड थी, घर में यूज्ड टू थी कि स्टाफ, घर वाले सब पैम्पर करते थे। तो वहाँ जाके जब अपने आप सब कुछ करना पड़ा हॉस्टल में, और न्यू पीपल में एडजस्ट होने, मेरी एक भी कोई पहले से फ्रेंड नहीं थी, क्योंकि मैं चंडीगढ़ गई थी पढ़ने असम से। और उस ज़माने में आफ्टर द 10th 1978 की बात है, कोई भी यहाँ वहाँ से मेरी स्कूल से या मेरे शहर से नहीं था। सो इट वॉज़ अ वेरी बिग एडजस्टमेंट। बाथरूम में जाके रोती थी, लेकिन मैंने एक मन में ठान लिया था कि मेरे को एडजस्ट होना है, और आई विल नॉट गिव अप। मैं तो स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी अगर मैं असम में पढ़ती तो, लेकिन मैंने बोला नहीं, आई हैव, मतलब घर से लड़ के आई हूँ, सबसे मतलब वो करके आई हूँ कि मैंने यहाँ पढ़ना है। तो एंड देन आई फेल इन लव विद इट, बट इट टुक मी अ वाइल, इट टुक मी 2-3 मंथ्स। एंड थैंक गॉड उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, और हमारा चिट्ठियों का सिस्टम होता था, जो माँ को लिखते थे हम 2 हफ्ते में एक बार, और टाइम लगता था, और उनको पता ही नहीं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या मेरे को, मतलब मैं होम सिक हूँ। और 2-3 मंथ्स पास्ट, लाइक इट वॉज सो गुड। तो जब मैं फर्स्ट हॉलीडेज में गई, मैं ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी थी सिस्टम में, एंड इट वॉज अमेजिंग, एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट कि मैं, मेरे पास इतनी रेजिलियंस थी कि मैं रुक सकी। एंड अगर मोबाइल फ़ोन होता उस ज़माने में, या ये जो आजकल के एक्सेस होता है अपने यू नो बच्चों के पास, अपने इंटरनेट, मैं आई डोंट थिंक सो आई वुड हैव एडजस्टेड।
0: सच ए ब्यूटिफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द एम्पावरमेंट। वाकई बड़ा मुश्किल होता है, फिर सच्ची बताऊं, करियर के डिसीशंस, मैं तो मतलब अगर ये 1978 की बात करें, सोच कर देखिए हम आज 2024-25-26 की बात करें, तो भी ये डिसीशंस लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस समय पर इन्होंने सोचा, और आज सोचिए कि इन्होंने अपनी जिद से वहाँ पर अपना नाम कमाया जहाँ ये करना चाहती थी, वहाँ पर पढ़ाई की जहाँ ये करना चाहती थी। सो देखिए, शी डिड नॉट चूज द ईजी वे, बट शी चोज द वे विच शी फेल्ट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। सो ऐसी ही बहुत सारे लोगों की जर्नी है, और मैं तो बहुत सारी महिलाएं जो सुन रही हैं उन्हें कहना चाहूंगी कि कितनी सारी चीज़ों में आपने ये सोच के मन मार लिया कि कहूंगी तो पता नहीं क्या होगा, लोग नाराज तो नहीं होंगे। प्लीज जाइए, कहिए, और उसे पूरा कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। उतनी ही प्यारी और उतनी ही खूबसूरत सी हरमीत सहगल जी हमारे साथ बैठी हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर हैं न्यूवील डिस्ट्रिक्ट 301 और प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब दिल्ली सैनिक फार्म्स की। हरमीत जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, बहुत लंबी जर्नी थी जो हमने अब तक अचीव कर ली है, और अगर हम देखें तो हमें कई जगह ऐसा लगता है कि हम पुरुषों के साथ इक्वल हैं एज ए जेंडर, यू नो, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हमें लगता है वी आर नॉट एन इक्वल जेंडर। क्या कहेंगी, मतलब अगर ये जो पूरा का पूरा हमारा पाथ है जो हमने अचीव किया, देखिए मैं ज़रूर थैंक करना चाहती हूँ हमेशा और करती भी हूँ उन सभी महिलाओं को जिन्होंने हमें आज इस स्टेज और स्टेटस तक पहुंचाया जहां हम अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर पा रहे हैं, आवाज़ तक उठा पा रहे हैं, बट एक ज़माना था जब ये भी पॉसिबल नहीं था। सो क्या लगता है ये जो जेंडर इक्वालिटी है इसे अटेन करने में अभी तो और भी टाइम लगेगा, लेकिन कहाँ लैक कर रहे हैं हम, कहाँ है ये गैप?
1: सी, माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, एंड सबसे पहले तो मैं अपने वाहिगुरु को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को थैंक्स करना चाहती हूँ कि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, एंड अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को जिन्होंने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया और मुझे उड़ान करने दी जो मेरा मन था
0: जी।
1: सो आई हैव टू फर्स्ट थैंक वाहिगुरु एंड आई हैव टू थैंक माय फैमिली, माय हस्बैंड, एंड सेकेंडली दिस जो आप कह रहे हैं इट इज़ 100% ट्रू कि देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ये नहीं कि एक दिन में ये अचीव हो जाएगा, और इक्वालिटी आज भी मतलब नहीं है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, देर इज़ अ गैप।
0: यस,
1: बट दैट इज़ बिकॉज लोगों का माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू ब्रिंग अबाउट। द जेंडर इक्वालिटी सिर्फ महिलाओं का इश्यू नहीं है, पूरे समाज का इश्यू है।
0: वाकई।
1: सो जब बचपन से लड़की और लड़का को बराबर रिस्पेक्ट मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, तभी असली बदलाव आता है। और इक्वालिटी का मतलब कॉम्पिटिशन नहीं है।
0: यस,
1: इट इज़ पार्टनरशिप, एंड देर इज प्यार, सत्कार, एतबार, सब कुछ इन्वॉल्व है।
0: बिल्कुल।
1: सो ये मतलब एक समाज की प्रॉब्लम है, एंड आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ इंडिया को कन्फाइंड है, किस कई हद तक पूरे वर्ल्ड में है, बिकॉज वी आर द वीकर जेंडर बट वी आर नॉट वीक, वी आर रेजिलियंट एंड वी कैन मल्टीटास्क फैब्यूलसली। सो आई मीन वुमेन आर वुमेन, दे आर ग्रेट, बट it takes time and it's the acceptance takes time. So ये ना ये एक वो बना हुआ है कि दुनिया में दूसरी countries में women are very progressive and उनको मतलब उनके they are सक्षम, but they are not. It is if you go deep into the thing, वो नहीं है. It's a worldwide issue. आस्ते आस्ते gap is closing, but we should handle it in the correct way. Do not think के लड़के और वो सब करके हम लोगों को मिलेगा। You have to, equality is a different thing, and you know that independence जो है women की, it matters a lot, but also you have to work with the man in partnership. We are incomplete without our men also.
0: Yes, ये बिल्कुल सच कहा आपने, और कई बार पुरुषों को ये लगता है कि जब हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो हम शायद फेमिनिज्म का नारा लगा रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं अकेली महिलाओं के लिए समाज बन जाए, ऐसा कहीं भी नहीं है। दरअसल परेशानी ये है कि जहाँ पर पुरुष और महिला एक साथ हैं वहाँ पर महिला का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी नीचे हो जाता है, और यही ज़रूरत है कि ये माइंडसेट हमारे घरों से शुरू हो, ये डिफरेंस जो है हमारे घरों में खत्म हो। मान लीजिए कि आपके घर में एक गेस्ट आया है और आपके घर की महिला जो है वो सोफे पे बैठी है, वो उन्हें रिसीव करे, घर का पुरुष, घर का बच्चा अगर पानी का ग्लास लाकर उन्हें दे दे, और ये बिल्कुल ओके वाली कंडीशन है, किसी की आईलिड भी ना उठे और कोई आईब्रो रेज ना हो, अरे इस घर में ऐसा होता है, जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा ना तब समझ लीजिएगा कि माइंडसेट बदल रहा है। कोई भी आश्चर्य नहीं कर रहा है कि अरे महिला काम नहीं कर रही है लेकिन पुरुष कर रहा है। होता क्या है ना, महिला काम नहीं कर रही है दैट इज ओके, लेकिन वो या तो वो बीमार है, या उसको कोई परेशानी है, तभी। लेकिन अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक है तो फिर घर के पुरुष बैठे रहेंगे या घर के जो मर्द हैं वो बैठे रहेंगे एंड देन शी इज वर्किंग। ये सारी जो चीज माइंडसेट्स हैं, सिमिलरली रात के 12 बजे या 1 बजे कोई काम है और महिला को बाहर जाना पड़ रहा है तो शी हैज टू टेक अलोंग सम मैन, मतलब सिक्योरिटी के लिए। पर क्यों ना हम एक ऐसा ही समाज बना दें जहाँ पुरुषों को साथ जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई पुरुष महिला को तंग ही नहीं कर रहा है तो फिर परेशानी कहाँ आ रही है। सो समवेयर डाउन द लाइन ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है। वेल, इसके लिए हम निरंतर कोशिश करते रहेंगे और आज जैसे हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एक समय आएगा जब मैं इसी प्रोग्राम में बैठकर ये कह रही होंगी कि जमाना बदल गया है। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। हरमीत सहगल जी आज हमारे साथ हैं और आज हम इनसे ढेर सारी बातें करें। हरमीत जी, एक चीज बड़ी मुश्किल होती है, जहां आपने भी कहा कि महिलाओं को बहुत सारी जिम्मेदारियां होने के कारण वो बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। जब आप पहली बार इनर व्हील में गई या फिर आपने रोटरी ज्वाइन किया, आपके पास अपना काम तो था ही एज अ डायरेक्टर, बट जब आप घर से निकली तो घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं और जिम्मेदारियों से ज्यादा एक एक्सपेक्टेशन का लेवल हो जाता है, चाहे बच्चे हैं, घर के पुरुष हैं या फिर समाज है या रिश्तेदार हैं। सबको ये शायद पता होगा कि एक फ़ोन करेंगे और हरमीत हमारा ये काम कर देगी, लेकिन अब हरमीत शायद किसी मीटिंग में बैठी है, शायद वो क्लब की एक बड़ी लीडर है या फिर वो बहुत सारे डिसीजन ले रही है, आज वो किसी इवेंट में आज स्टेज पर बैठी हैं और वो फ़ोन नहीं उठाएंगी ना वो ये काम कर पाएंगी आपका। सो ये जो टाइम आया, कैसे बैलेंस किया दोनों चीज़ों को और क्या ये स्मूथ था या लगे जर्क्स की लगा परिवार को समझाना मुश्किल था या लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है?
1: नो, आई वॉज वेरी लकी कि मुझे इतना कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। आई कैन इमेजिन कि प्रॉब्लम क्या पता होती अगर मैं मच यंगर होती उस टाइम
0: जी,
1: लेकिन मैंने मतलब काफ़ी एज में ज्वाइन किया, सो मेरे को ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई
0: जी।
1: और पहले मैंने बड़ी सॉफ्ट कंफर्टेबल पोस्ट ली थी इनर व्हील में, मैंने ठीक है प्रेसिडेंट थी 3 बारी क्लब की, सो दैट वाज अ इजी थिंग। बाय द टाइम मैंने डिसाइड किया कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट में जाना है, मैं बच्चों की शादियां हो चुकी थी, ग्रैंड चिल्ड्रन हो चुके थे, सो इट वॉज अ वेरी कम्फर्टेबल टाइम टू ज्वाइन। सो मैं मानती हूँ, बट ये बात गलत है कि सबको इतना टाइम वेट करना चाहिए। नो, जब मन करे उस टाइम करो। अगर आप मच यंगर भी हो तो आप ज़रूर स्टेप इन करो लीडरशिप पोस्ट के लिए एंड अपना डिवोशन दो, एंड आई थिंक सब मैनेज हो जाता है।
0: हाउ नाइस।
1: यू नो, वो एक माइंडसेट होता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, सब कुछ हो जाता है, इट इज़ डिसीजन लेने की बात होती है।
0: हरमीत जी, एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जब कभी भी हम महिलाओं के करियर की बात करते हैं तो उनके करियर में ना जिंदगी में 2 बार ब्रेक आते हैं। पहला ब्रेक तब होता है जब उनकी शादी होती है, और वो ब्रेक इसलिए आता है कि मान लीजिए आप एक्स वाई जेड सिटी में हैं या फिर एक्स वाई जेड कंट्री में हैं और फिर आपकी शादी दूसरी जगह हो जाती है, तो वो ब्रेक तो आएगा ही। सो हालांकि वो ब्रेक शायद 2 महीने 4 महीने 10 महीने या सालों का भी हो सकता है। दूसरा ब्रेक आता है जब उनकी मैटरनिटी यानी आप परिवार एक्सटेंड करते हैं। अब होता क्या है कि इन दोनों के बीच में कभी भी लड़की से उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती, कोई ये नहीं पूछता है कि भाई तुम्हारे करियर का क्या होगा जब हम तुम्हारी शादी करेंगे। पूरा परिवार, पूरा समाज, हर अनमैरिड लड़की से सिर्फ ये पूछता है तुम शादी कब करने जा रही हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आजकल तो एक और नई टर्मिनोलॉजी है, बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रहा है, तो आपको सही समय पर शादी कर लेनी चाहिए। दूसरा सवाल, जैसे शादी होती है बच्चे कब करने वाले, और जब बच्चे होते हैं या परिवार की जरूरत होती है तो एक महिला को कन्वीनियंटली ये कहा जाता है कि तुम अपना करियर छोड़ दो, व्हाट इज द बिग नीड, कोई बात नहीं परिवार है और घर देख लिया जाएगा, आप अपने करियर को सैक्रिफाइस करें। अब देखिए, कुछ भी कहिए, जब एक महिला ने आत्मनिर्भरता दिखा ली है और शी इज फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, कहीं ना कहीं डीप डाउन हर हार्ट, आप कितनी भी महिलाओं से पूछे सबको बुरा तो लगता ही है, भाई आज आप घर पर हैं, आप अपने टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है या परिवार की जिम्मेदारियां कम हो जाती है, तब आपको लगता है आप बहुत पीछे छूट गए। ऐसे में ये गैप को कैसे फिल किया जाए, क्या बैलेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि रिबेल करेंगे तो फिर जिम्मेदारी महिला की है?
1: नहीं, बैलेंस तो बनाया जा सकता है, बट उसमें फैमिली की पूरी सपोर्ट चाहिए होती है
0: जी।
1: जब आपकी आपका परिवार आपके साथ अच्छी तरह मतलब बिहेव करे और पूरी संभाल, मतलब वो आपके साथ व्हाट डू यू कॉल इट,
0: खड़े हो जाए
1: आपको सपोर्ट करें, तो ये पॉसिबल है विदाउट अ प्रॉब्लम। बट अदरवाइज तो ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज द वुमेन जो मैनेज करती हैं बच्चों की जिम्मेवारी, सब कुछ, एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाना, उनको स्कूल ड्रॉप करना, लेना, ये सब बेसिकली तो वुमेन की ही जिम्मेदारी है। बिकॉज
0: आदमी, जबकि तो कहीं डिफाइन नहीं किया गया,
1: कहीं डिफाइन नहीं किया है, बट ये चाहे जितनी, चाहे वो आप एफ्लुएंट फैमिली से हैं, चाहे आप लोअर तबके से हैं, ये औरतों का ही एक मेन काम है। बट मैंने नॉर्थ ईस्ट में देखा है
0: जी,
1: मेरी स्कूल में मेरी फ्रेंड्स के फादर्स आते होते थे कई बार, तो ये डिफरेंस मैंने वहाँ देखा था. रेस्ट ऑफ द कंट्री का आई डोंट नो, बट वहाँ काफी था कि मेन भी इक्वल ड्यूटी जिम्मेवारी लेते थे. बट नॉर्थ इंडिया में तो आई थिंक इट्स द वुमेन.
0: बिल्कुल यस. देखिए ना, कई बार मैं खुद ही ये सोचती हूँ कि एक महिला ये सोच रही होगी कि काश थोड़ा सा, मतलब जो लोड है वो अगर दूसरों पे भी चला जाए, यानी परिवार के दूसरे सदस्यों पे चला जाए, यानी नॉट वुमेन बट पुरुषों पे चला जाए, तो बहुत हद तक वो भी अपनी जीवन की उड़ान को उड़ पाएगी. लेकिन अक्सर, मतलब आज भी मैं अगर बात करूँ तो 90% वुमेन आर सैक्रिफाइसिंग. सही मायने में दो वर्ड्स सिखाए जाते हैं बचपन से ही, एडजस्टमेंट एंड सैक्रिफाइस. अगर आप ये दोनों चीज़ों को करती हैं तो आप जिंदगी की सबसे अच्छी महिला हैं. और इसी चक्कर में ना पूरी जिंदगी वो सिर्फ सैक्रिफाइस करती रहती है, और वो ये मान लेती है कि जितना सैक्रिफाइस करेगी ना उतनी महान और उतनी अप टू द मार्क.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजी भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आज हमारे साथ उतनी ही प्यारी हरमीत सहगल जी हैं। हरमीत सहगल जी से आज हमने ढेर सारी बातें की। हरमीत जी जो कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर है इनविल डिस्ट्रिक्ट 301 और प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब दिल्ली सैनिक फार्म्स, आज हमारे साथ थी और कीमती समय देकर उन्होंने अपने जीवन की पूरी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। तहे दिल से धन्यवाद हरमीत जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। लेकिन जाते जाते क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
1: एक तो महिलाओं को अपनी हेल्थ का और अपनी आइडेंटिटी का दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इट इज़ मेनी टाइम्स वुमेन निगलेक्ट देयर हेल्थ बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड उनको अपना ध्यान देना चाहिए और अपनी आइडेंटिटी को कभी भी लो नहीं करना चाहिए। एंड दूसरी बात वो उनकी मेहनत और खुद पर विश्वास रखना चाहिए उनको, क्योंकि मेहनती तो हैं औरतें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो उनको आत्मविश्वास अपना रखना चाहिए। एंड आज के समय में बेटियों को सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि डिसीशन लेने की कॉन्फिडेंस भी देनी चाहिए। जब हम महिला को सशक्त बनाते हैं तब हम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी परिवार पूरे समाज को मजबूत बनाते हैं। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक दे आर द पिलर्स ऑफ सोसाइटी एंड देयर सक्सेस इज द सक्सेस फॉर द होल कंट्री फॉर द होल सोसाइटी।
0: देखिए ना, जब कभी भी एक महिला सक्सेसफुल होती है तो आप मान लीजिए कि वो पूरा परिवार सक्सेसफुल हो गया, समाज एंड समाज से पूरा देश और देश से विश्व। सो कहीं ना कहीं जरूर

जरूरत है कि हम आज भी जहाँ कहीं जो भी लैक्यूना है उसको जरूर फिल करें और कोशिश करें कि हम महिलाओं को भी एक अच्छा खूबसूरत समाज और जिंदगी दे पाए। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, और आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर रही हूँ अगले हफ्ते मैं आऊंगी आपके पास, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
1: नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपके जीवन से, और हमारा प्रयास रहता है कि हम उस मुद्दे पर बेहतर तरीके से तलाश सकें नई सोच के साथ नई दिशाएं, जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं और हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। और वो मुद्दे होते हैं हमारे आपके जीवन से जुड़े हुए और कहीं ना कहीं हमारे आसपास होते हुए भी हम उन मुद्दों की उन बातों की अनदेखी कर जाते हैं या जाने अनजाने हमसे वो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। ऐसा ही एक मुद्दा आज हम लेकर के आए हैं आपके बीच इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। दोस्तों, हर इंसान एक सपना लेकर के बड़ा होता है। किसी को गाना पसंद होता है, किसी को पढ़ाना, किसी को खेलना, तो किसी को दुनिया बदलने का सपना देखना। और वो दुनिया बदलने का जो सपना देखना है वो उसका स्वयं का अपना सपना होता है, या गाना गाने की हम बात करते हैं या पढ़ाने की या खेलने की बात करते हैं, तो वो उस व्यक्ति का अपना एक सपना होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है या बचपन से हम किशोर अवस्था में कदम रखते हैं, अपनी युवावस्था में पहुँचते हैं, या हम एक सेटल जीवन की तरफ जब चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल हमारे आसपास खड़ा हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है इस बात की कि हम अपने सपनों को जमाने के सपनों की नज़र से देखने लगते हैं, तो फिर शुरू हो जाती है सपनों और समाज के बीच की एक खामोश लड़ाई, जिसमें कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारे जीवन की इसी बात से, यानी सपने अपने या समाज के। बड़ी अपने आप में ज्वलंत समस्या है इस बात की कि जीवन हम जीते अपने लिए हैं, अपने हिसाब से जीने के लिए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस समाज के बीच में रहना और इसकी परवाह करनी शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दबाव हमारे ऊपर आ जाता है कि समाज के जो देखने का नज़रिया है वो हावी हो जाता है हमारे अपने नज़रिए के ऊपर। यानी हम वो बनने की कोशिश करने लगते हैं जो दुनिया हमसे बनवाना चाहती है, ना कि हम वो बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं। तो आज का मुद्दा इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी परिस्थितियों में हमें करना क्या चाहिए, या जब कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में उलझा हुआ होता है तो उसके पास अपने जीवन को और बेहतर तरीके से अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और तलाशेंगे नई सोच के साथ नई दिशाएं। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई सोच नई दिशाएं और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, यानी सपने अपने या समाज के। और कमोबेश ये बात यदि हम अपने जीवन की सारी अवस्थाओं पर अप्लाई करें तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जिसके मन में कोई ना कोई चाहत ना रहती हो। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, जिम्मेदारियां बदलती हैं, समाज में उसके आसपास का वातावरण बदलता है, तो ये जो सपने हैं, जो ये सोच है, वो परिवर्तित होने लगती है और एक प्रकार का दबाव भी कहीं ना कहीं ऊपर आने लगता है। दोस्तों, जब हम छोटे थे, आपको भी याद होगा बचपन का वो समय कि जब सपनों में कोई डर नहीं था, यानी आप कुछ भी सोचते थे तो उसमें भय का कहीं भी कोई स्थान था ही नहीं। कोई बच्चा कहता था कि मैं पायलट बनूंगा, या कोई कहता था मैं डांसर बनूंगी, तो किसी को क्रिकेट भी पसंद था, किसी को पेंटिंग करना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सपनों पर प्रैक्टिकल होने का दबाव भी बढ़ने लगता है। जैसे मैंने बात की पायलट बनूंगा, एक सोच किसी बच्चे के मन में आई कि वो पायलट बनना चाहता है, लेकिन उस समय उसको इस बात को कहते समय किसी प्रकार का भय नहीं था, उसको नहीं पता था कि पायलट बनने के लिए आखिर करना क्या होता है। तो वो एक बड़ी स्वतंत्र इच्छा होती थी, एक सपना होता था जिसको वो बड़े खुले मन से सबके सामने बोल देता था। लेकिन जैसे जैसे सपनों पर प्रैक्टिकल होने का दबाव बढ़ने लगता है तो एक सोच डेवलप होने लगती है समाज की, समाज के आसपास के लोगों की, कि इसमें स्कोप नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, या इतनी पढ़ाई करके भी यही करोगे। जिस प्रकार से मैंने कहा कि किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो एक समाज की सोच, समाज का एक दबाव बन जाता है कि यदि आपने स्टडी बहुत अच्छे से कर ली है, आप एक अच्छे इंजीनियर बन गए हो, तो आप क्या क्रिकेट खेलोगे। या फिर कंपैरिजन, तुलना होने लगती है आसपास के कि फलाने के बच्चे को देखो, फलाने के बेटे को देखो, उसने ये किया। तो इस प्रकार का जब वातावरण हमारे आसपास बन जाता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग अपने सपनों से दूर चले जाते हैं। यानी जो इच्छा उनके बचपन में मन में जागृत हुई, उन्होंने एक सपना देखा बिना किसी भय के, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा बीता, एक उम्र हुई, युवावस्था आई, तो प्रैक्टिकल होने का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं ले जाता है हमें अपने सपनों से दूर। और एक बड़ी ही एक दुविधा वाली स्थिति हमारे सामने आ जाती है कि हम ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का गला घोटने पर या उनको मार देने पर या दबा कर उनको समाप्त करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो एक बड़ी सोचने वाली बात है कि यदि हम आज के समय की एक प्रैक्टिकल बात देखें तो एक बात जो बड़ी तय है कि ख्वाहिशों को अक्सर समझौते पहनाने पड़ते हैं, घर की उम्मीदों में खुद को छुपाना पड़ता है। हर कोई जी तो रहा है यहाँ, पर हर किसी को अपना सपना नहीं मिलता। एक बड़ी ही विषम परिस्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है हमारे जीवन में जब हम इस बात को कहने पर, एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। यानी आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं समाज के, जो आसपास के वातावरण का जो दबाव है, वो मजबूर कर देता है आपको अपने सपनों से दूर जाने के लिए। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel light.

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। और आज हम चर्चा लेकर के आए हैं सपने अपने या समाज के, इस मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे समाज के सभी बच्चों से, बड़ों से और बुजुर्गों से। हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कि जो थॉट हमारे दिमाग में हमारे जीवन, अपने करियर या अपने भविष्य को लेकर के चलते हैं, वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं समय के साथ साथ। और उस परिवर्तन का सबसे बड़ा जो बदलाव का दौर शुरू होता है, वो होता है जब हम अपने करियर और कंपैरिजन की प्रेशर में आने लगते हैं। यानी आज के समय में यदि हम बात करें, करियर सिर्फ एक करियर नहीं रह गया, जिस प्रकार से हम अपने प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं, वो अपने आप में बन चुका है एक स्टेटस सिंबल। यानी आप क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, किस जॉब पर हैं, क्या व्यापार कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल एक आजीविका या पैसा कमाने का साधन नहीं रह गया, बल्कि उसका समाज में एक स्थान हो गया है स्टेटस सिंबल का। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र चुन लेते हैं जिसमें उनका मन नहीं होता, लेकिन वो चुनते इसलिए हैं क्योंकि समाज में उस क्षेत्र को चुनना या उस क्षेत्र में, उस प्रोफेशन में जाना एक सफलता का सूचक माना जाता है। यानी कि सोसाइटी जिस चीज़ को सफलता के मानकों से तोलती है, उससे तुलना करती है और उसको एक्सेप्ट करती है, वो युवा मजबूर हो जाते हैं उस क्षेत्र को अपनाने के लिए, उस प्रोफेशन को अपनाने के लिए, चाहे उनका मन किसी और काम को करने में क्यों ना हो। इंजीनियरिंग हो गया, चाहे मेडिकल, सरकारी नौकरी, इनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल ये है क्या वो जो सपना है इंजीनियर बनने का या मेडिकल का या सरकारी नौकरी का, क्या वो सपना आपका अपना है? क्योंकि अगर मंजिल अपनी नहीं होगी तो सफलता भी कहीं ना कहीं आपको अधूरी ही लगेगी। ये एक बड़ा ही कड़वा सच है हमारे जीवन का, जिसे हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप अपने पास तैयार रखिए और हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे से, जो जुड़ा होता है हमारे सबके अपने सपनों से, यानी सपने आपके या समाज के। तो जैसा कि हमने कहा कि जिस प्रकार से बचपन से लेकर किशोर अवस्था, युवा अवस्था या वृद्धावस्था की हम बात करें, तो जैसे जैसे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होने का दबाव बढ़ जाता है और हम अपने आप को मजबूर पाते हैं अपने ही जीवन के सोचे हुए सपनों से दूर जाने के लिए। तो ये जो अवस्था है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका कारण ये है कि समाज के अंदर हमने जो तुलना का और लोग क्या कहेंगे इस चीज़ का जो एक वातावरण पैदा कर दिया है, वो हमारे दिमाग पर एक तरह का दबाव बना लेता है कि हम वो कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसका हमारा चाहे मन नहीं होता, लेकिन क्योंकि समाज के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि आमतौर पर अगर हम बात करें कॉलेज के, आप छात्रों को कई बार आप जाकर के आपने बात करते हुए सुना होगा कि उन्हें म्यूजिक पसंद था, लेकिन घर वालों ने कहा कि इसमें स्कोप नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है। बच्चे पढ़ते तो जरूर हैं वो, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। और जबकि उनके पेरेंट्स की इच्छा यही रहती है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई उनको जीवन में खुशी प्रदान करे, आने वाले समय में उनका जब करियर बने तो वो खुशी दे। लेकिन कहीं ना कहीं उसी खुशी की, उसी हैप्पीनेस की बलि इनडायरेक्टली वो उस पढ़ाई को करते हुए दे रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी चॉइस नहीं थी। वो केवल इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके घर वालों ने कहा कि इसमें फ्यूचर नहीं है, म्यूजिक में फ्यूचर नहीं है या क्रिकेट में फ्यूचर नहीं है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये कोई किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। बहुत सारे युवा आज के हमारे जो जैन जी की हम बात करते हैं, वो इसी उलझन में रहते हैं कि आखिरकार हमारी चॉइस को हम एक्सेप्ट, या हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको हम कैसे अमली जामा पहनाएं बिना किसी सामाजिक दबाव के। यानी कि उनको कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर एक विरोधाभास पैदा करना पड़ता है, ताकि वो यदि अपनी सोच को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, या वो अपने सपनों के हिसाब से अपना करियर चुनना चाहते हैं, या अपने जीवन में वो सब करना चाहते हैं जो उनको खुशी दे, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक विरोध का सामना करना पड़ता है और उस विरोध को झेलने के लिए उनको तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि सपनों का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि बिना मन के जीवन जीना भी आसान नहीं होता। दोस्तों, साथ ही साथ हम पेरेंट्स की अगर बात करते हैं, तो नॉर्मली हर पेरेंट्स की एक इच्छा रहती है कि जब कभी भी हम इस तरह की बात बोलते हैं कि वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, या आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आप हमारी इच्छा के हिसाब से आप ये करो, तो एक थॉट उसमें कहीं, एक जो अगर हम बात करें कि पेरेंट्स की तरफ से जब इस तरह के थॉट आते हैं, तो वो एक थॉट एक दूसरे थॉट के साथ आता है। जब वो अपनी इस बात को कहते हैं बच्चों से, तो उनके मन में एक थॉट होता है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। मतलब पेरेंट्स की हमेशा से इच्छा रहती है कि उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन एक बेहतर जीवन बने, सफल जीवन बने, और हर माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा और भविष्य ही चाहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि कभी कभी जो सुरक्षा है, जो फ्यूचर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, उसमें और बच्चों के थॉट्स पे कंट्रोलिंग करने के बीच में बहुत ही महीन सी एक रेखा होती है। कभी कभी हम जाने अनजाने उस बेहतरी को तलाशते हुए कहीं ना कहीं उस रेखा को पार कर जाते हैं, और एक तरह का जो पेरेंट्स जो वातावरण पैदा कर देते हैं परिवार में, वो बच्चों के ऊपर नियंत्रण वाली स्थिति में आ जाते हैं। यानी एक बड़ी समझने वाली बात है कि जब कभी भी हम किसी बच्चे के करियर को लेकर के, उसकी सुरक्षा को लेकर के, फ्यूचर की सुरक्षा को लेकर के कुछ सलाह देते हैं, या उसको समझाते हैं कि इस चीज़ में स्कोप नहीं है, क्योंकि वो पेरेंट्स का अनुभव उनको बता रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके कब हम उस रेखा को पार कर जाते हैं और हम एक कंट्रोलिंग वाली स्थिति में आ जाते हैं, वो हमें खुद को नहीं पता चलता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब कभी भी आप बच्चों को, जो पेरेंट्स अगर कोई सलाह कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो जितना समय आप उनको अपनी बात बोलते हैं, उतना ही समय उनको भी दीजिए उनको अपनी बात आपसे कहने का। तो कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता और आपसी जो अपनी समझ वाला जो सुलह और समझ वाला जो रास्ता है, वो हमें अपनाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये बात अब माननी पड़ेगी कि बच्चे यदि अपनी खुशी के हिसाब से कोई भी काम करते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलना है, चाहे म्यूजिक करना है, पेंटिंग, कुछ भी है, आप यकीन मानिए यदि वो खुश मन से उस काम को करते हैं, तो वो उस काम से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे जिसको वो बिना मन के कर रहे हैं। यानी हमें समझना पड़ेगा कि जिस काम को करने में बच्चों को खुशी मिलती है, उसमें वो बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, ना कि उन चीज़ों को करने में जिनको में
उनको करने में खुशी नहीं मिलती। तो ये बात आज के पेरेंट्स को भी समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों अभी लेते हैं छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं लेकर के आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में सपने अपने या समाज के, यानी बहुत सिंपल सा शीर्षक है यदि हम इस टाइटल को सीधे से समझें तो, कितना हकदार है समाज हमारे सपनों को डिसाइड करने का, उसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने बात की कि जैसे जैसे समय बदलता है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी का जो दबाव है वो हमें हमारे सपनों से दूर ले जाता है। जब हम देखने लगते हैं कि इस चीज़ में कितना पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, कितना समय इन्वेस्ट होने वाला है, और हमारी खुशी से ज़्यादा इस प्रोफेशन की या इस जो भी करियर की हम बात कर रहे हैं उसकी सफलता के कितना स्कोप है, यानी खुशी हमें मिलती है ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि समाज के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होने वाली है या ये बहुत ज़्यादा सफलता वाला एक मानक नहीं है, तो हम अपने आप को दूर करने लगते हैं उन्हीं सपनों से। तो यानी कहीं ना कहीं हमारे अपने जो सपने हैं वो हमारे अपने सपने ना रह करके बल्कि हम केंद्रित हो जाते हैं समाज के दिखाए हुए या समाज के द्वारा जो दिखाए जा रहे हैं बताए हुए प्रैक्टिकल सपनों की ओर। तो दोस्तों, समाज हमें दिशा दे सकता है लेकिन पहचान नहीं। अगर हर इंसान सिर्फ वही करे जो लोग सही मानते हैं, यानी हम समाज की अगर हम बात करते हैं, यदि हर व्यक्ति केवल वही करने लगेगी जो और लोगों को सही लगेगा, तो यकीन मानिए दुनिया में कोई कलाकार, लेखक, खिलाड़ी या वैज्ञानिक ही नहीं होता। ये एक बड़ा कटु सत्य है हमारे समाज का। जितने भी लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो लेखन की या कलाकारी की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें या बहुत अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कभी भी केवल और केवल समाज की मान करके उस क्षेत्र में मुकाम हासिल नहीं किए, जबकि उनके अंदर से एक आत्म इच्छा थी, उनका एक सपना था, तभी वो इन क्षेत्रों में मुकाम हासिल कर पाए। ये हर क्षेत्र के जो भी वरिष्ठ स्तर पर बैठे हुए लोग हैं उनकी आप किसी की भी कहानी आप पढ़ सकते हैं, आपको यही पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों, नई सोच केवल जब आती है जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करता है। यानी जब आप तक आप डिफरेंट सोचोगे नहीं तब तक आप डिफरेंट करोगे नहीं, और जो डिफरेंट करने वाली चीज़ें होती हैं वही समाज में आपको एक उच्चतम स्तर पर लेकर के जाती हैं, आपकी एक पहचान अलग से बनाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं, यदि हम प्रैक्टिकल बात करें तो आपने बहुत सारे एग्जांपल हमारी सोसाइटी में ऐसे देखे होंगे कि जो जिनको इनिशियली अगर स्टार्टिंग में बोलें तो उनको अनसक्सेसफुल, फेल्ड और अलग अलग नामों से पुकारा गया, लेकिन आने वाले समय के साथ जब उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और समाज की परवाह नहीं की, तब एक दिन वही लोग सबके लिए प्रेरणा भी बन गए। यानी जिनको हमने फेल्ड और असफल लोगों की गिनती में गिना था, वही लोग समाज में पूजे जाने लगे, समाज उसको फॉलो करने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास किया था, समाज की आवाज पर नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत समझने वाली हमें बात है कि अपने सपनों को किसी भी सूरत में छोड़ देना अपने आप में कोई हल नहीं है। हमें बहुत बेहतर प्रयास करके अपने आप को सिद्ध भी करना चाहिए। केवल सपना देखना काफ़ी नहीं होता, यदि हमें समाज की सोच के अगेंस्ट जा करके अपने आप को प्रूव करना है तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन सपनों पर अपनी मेहनत भी उतनी करें, ताकि हम ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल सेट कर पाएं कि हमारी जो सोच थी वो सही दिशा में थी और इस सोच के साथ हमारा सेटिस्फेक्शन ही नहीं बल्कि समाज के अंदर आने वाला परिवर्तन भी छिपा हुआ था। तो दोस्तों, ये चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं सपने अपने या समाज के, यानी हमारे सपनों पर अधिकार हमारा ज़्यादा है या समाज का, या किस प्रकार से सामाजिक परिस्थितियां जो सपनों को प्रैक्टिकलिटी की तरफ जब हम ले जाते हैं तो किस प्रकार से समाज का जो दबाव है वो हमें कहीं ना कहीं दूर कर देता है। आखिर इस सारी समस्या का जो भी हमने अभी तक चर्चा की उसका आखिर समाधान है क्या, यानी कोई अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें, किसी समाधान की दिशा की हम बात करें, तो आखिर वो हल है क्या? क्या समाज का ऐसा सोचना गलत है? नहीं दोस्तों, समाज का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स की गाइडेंस भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन यानी संवाद। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा था कि बच्चों के अपने एक थॉट्स होते हैं, अपनी सोच होती है, उसको अमलीजामा पहनाने की उनकी तरफ से हमेशा प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वहीं पेरेंट्स की सलाह, उनका अनुभव और उनकी जो गाइडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके सक्सेस होने में। तो यहाँ पर यदि कम्युनिकेशन गैप नहीं है और आपस में आप कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलता है जिसमें आपके सपने भी अपने ही रहते हैं और साथ ही साथ आप जीवन में सफलता भी समाज के हिसाब से ही पाते हैं, यानी आप समाज को अपने आप को एक सफल स्थिति में दिखाने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो उस संवाद की आखिर है क्या बात? बच्चों को समझना, उनकी इंटरेस्ट को सुनना, यानी बच्चे जिस बात में रुचि से इंटरेस्ट से बात करना चाहते हैं उसको सुनना और उसको एक्सेप्ट भी करना कि समाज के द्वारा बताए गए जो सफलता के मानक है, जो स्टैंडर्ड सोसाइटी में सेट हैं, चाहे किसी का इंजीनियर बन जाना, वकील बन जाना या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना या किसी भी प्रकार के अन्य किसी प्रोफेशन की हम बात करें, तो जो समाज ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं वो स्टैंडर्ड्स ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं होते हैं, ये बात भी पेरेंट्स को समझनी चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले कई दशकों से हम इस माहौल को देख रहे हैं कि अब तो कोई क्षेत्र अछूता रहा ही नहीं। आज आप ऑनलाइन अवेलेबिलिटी देखिए, गाना गाने वाले बच्चों ने कमाल किया हुआ है कि अपने अपने फील्ड में अलग से एक्सपर्टीज ले रखी है। कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देता है केवल और केवल अपने इंटरेस्ट के आइडिया के हिसाब से, चाहे वो पेंटिंग का है या हैंडीक्राफ्ट्स का या कुछ भी, उसमें कहीं भी किसी समाज की सोच आड़े नहीं आती। यानी जिस प्रकार से समाज में एक चर्चा रहती है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, तो वो सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। अब जमाना बदल चुका है और इस आधुनिक ज़माने में, इस जो मॉडर्नाइज युग, डिजिटल युग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अलग तरह का एक स्पेस तैयार हो गया है उन सब लोगों के लिए जिनके मन में अपने कोई सपने चलते हैं, अपने कोई विचार चलते हैं और उन विचारों को एक मूर्त रूप वो दे सकते हैं और उन विचारों की एक्सेप्टेबिलिटी भी इसी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट जगहों पर बैठे हुए लोग कर पाते हैं। वो समय और था जब हमारी पहुंच एक लिमिटेड क्षेत्र तक थी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारी जो थॉट है, उसकी एक्सेप्टेंस उस क्षेत्र में नहीं होती थी, तो हमें कहीं ना कहीं लगता था कि हम गलत हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डिजिटल युग आया है, इंटरनेट के माध्यम से जब हमारी सोच, हमारे आइडियाज़ बहुत दूर दूर तक, दूर देशों तक पहुंच जाते हैं, तब हम लाइक माइंडेड लोगों को आकर्षित करते हैं अपने उस थॉट्स के प्रति, तो निश्चित रूप से आपको अपने सपनों के साथ साथ सफलता भी मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें समझने की बात है कि अगर हम इसको दो लाइनों में समेटें इस बात को, तो हर सुरक्षित रास्ता खुशी तक नहीं जाता और साथ ही साथ हर मुश्किल रास्ता गलत नहीं होता। तो इस मुद्दे पर हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हमारे पेरेंट्स का, समाज के बुजुर्गों का या बड़े लोगों का या जो गाइड करते हैं लोग, उनका अनुभव और साथ में हमारे सपने, उनके बीच में यदि संवाद से कोई एक रास्ता, एक कम्युनिकेशन से कोई रास्ता बीच का निकल पाता है, तो आपकी सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी और आपके सपने भी आपके अपने ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे और अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप सुनिए ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और अब हम लेकर के चलते हैं कार्यक्रम को समापन की ओर। आपने आज इस सपने अपने या समाज के जो हमने मुद्दा आज नई सोच नई दिशाएं में आपके सामने रखा, उसमें हमने सारे सेगमेंट्स पे चर्चा की। और कंक्लूडिंग अगर हम एक इसका नटशेल में कोई बात निकालें तो वो ये कि जो समाज का, जो हमारे पेरेंट्स का जो अनुभव है, जो हमारे उनकी गाइडेंस है, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। समाज हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर सपने हैं, जो उनके थॉट्स हैं, यदि हम उनको केवल इस कसौटी पर तय करेंगे कि सफलता का क्या कारण होना चाहिए, एक सफलता मिलती कैसे है, या जो हमने डिसाइड किया हुआ है केवल वही सफलता है, तो आप यकीन मानिए हमारे समाज के अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जिस प्रकार से हमने भी कहा कि अच्छे लेखक, खिलाड़ी, वैज्ञानिक या कुछ भी, जो एक नए तरह का जो परिवर्तन समाज में आता है, वो बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि हम केवल पुराने विषयों पर ही चर्चा करते रहेंगे, उन्हीं को हम स्टैंडर्ड सेट मान लेंगे। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि आपस का जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बेहतर स्थिति में ले जाता है जब हम इस तरह की चर्चाओं को आपस में करते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो बच्चों की सुरक्षा और भविष्य चाहते हैं। लेकिन जैसा हमने कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कहा था कि बच्चों के भविष्य की सुरक्षा और उनके थॉट्स पर नियंत्रण करना, इसके बीच एक बहुत बारीक सा डिस्टेंस होता है। तो पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भविष्य की सुरक्षा की चिंता करते हुए कहीं उनके सपनों पर या उनके ऊपर नियंत्रण ही ना करने लगे। और साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के सभी युवाओं से भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो सपने देखना है, समाज के किसी भी प्रकार के दबाव को ना महसूस करें, अपने ऊपर हावी ना होने दें। और जो वो सपने हैं, केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं होता, जैसा कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो इसका भावार्थ ये रहता है दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ का सपना देखते हो तो केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने में आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास भी उतने ही सीरियस होने चाहिए। और साथ ही साथ किसी भी मोड़ पर यदि हम बात करते हैं कि जो आपके प्रयास हैं, वो कोशिशें भी आपकी इतनी होनी चाहिए कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको ये ना कहना पड़े कि काश मैंने अपने दिल की सुनी होती। तो आपको समझना चाहिए कि जो थॉट भी आपके दिमाग में आते हैं, यदि आप उनको कोई अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो चूँकि वो सपने आपके हैं और उनको अमली जामा पहनाना, उनको सफलता की ओर लेके जाना भी आपकी ही ड्यूटी बनती है, तो

को पूरे प्रयास भी उस दिशा में करने की आवश्यकता होती है, न केवल एक चीज के बारे में सोच लेना पर्याप्त होता है। तो यानी यदि आप बदलाव चाहते हैं, अपने थॉट्स के साथ अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा शिद्दत से करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और सपने अपने या समाज के इस मुद्दे पर जिस प्रकार की चर्चाएं हमने की, उससे निश्चित रूप से आपको जरूर कोई ना कोई नई सोच के साथ एक नई दिशा मिली होगी और आपको लेकर के जाएगी वो एक बेहतर भविष्य की ओर। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। नमस्कार।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ। और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
1: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा? ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने, खुदा झूठ ना बुलवाए, तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताजुब की बात है, इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने यह सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह के चमकते हुए अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए ये जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले, ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम ना मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। वो उसकी तलाश में अंबाला आया जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अंबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी, पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसके सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी, पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में। यहाँ क्या धरा है भाई, होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अम्बाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़िया सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई, चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी।

0: उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी, क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा उसके अंदर हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई, क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
1: डरने की बात ही क्या थी?
0: इस पर सुल्ताना ने कहा,
1: मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए।
0: वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया,
1: तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है।
0: ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया,
1: नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ।
0: चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा,
1: मेरा नाम शंकर है।
0: सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर के बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांची उसने शंकर से कहा,
1: फरमाइए।
0: ये सुनकर वो लेट गया।
1: मैं क्या फरमाऊं?
0: तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं?
1: शंकर ने जवाब दिया,
0: यही जो तुम करती हो।
1: क्या
0: तुम क्या करती हो?
1: मैं कुछ नहीं करती।
0: तो मैं भी कुछ नहीं करता।
1: सुल्ताना ने भन्ना कर कहा,
0: ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना।
1: शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया,
0: तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी।
1: झक मारती हूँ।
0: तो मैं भी झक मारता हूँ।
1: तो आओ झक मारे।
0: मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता।
1: होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे?
0: इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं।
1: सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा,
0: मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ।
1: शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा?
0: नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे।
1: सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी,
0: सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई, तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा।
1: खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा,
0: तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो, मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ।
1: मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं।
0: कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे?
1: अब तुम कहती हो तो मैं हिला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा,
0: तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो
1: और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ, मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता।
0: नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है?
1: शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें मंजूर हैं?
0: कैसी शर्तें?
1: सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
0: निकाह और शादी कैसी?
1: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं, ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
0: बोलो क्या बात करूं?
1: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
0: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
1: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
0: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
1: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए।
0: सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ,
1: तो कहो क्या इरादा है?
0: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
1: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना?
0: हाँ सुल्ताना ही है।
1: शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा, मेरा नाम शंकर है।
0: ये नाम भी उटपटांग होते हैं।
1: चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा,
0: शंकर मेरी एक बात मानोगे?
1: शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ।
0: सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो रुक क्यों गई हो?
1: सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा,
0: बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है।
1: शंकर ने यह सुनकर कहा,
0: तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको?
1: नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो।
0: मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है।
1: बहरहाल मैं कोशिश करूंगा, मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी।
0: लो बस अब खुश हो गई?
1: सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकते हो?
0: सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे।
1: इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी।
0: बोलो देती हो?
1: ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए।
0: सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई।
1: सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था।
0: अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो।
1: अच्छा अब मैं चलता हूँ।
0: शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है।
1: सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई।
0: उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा,

कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बुंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं है। वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जिसके मरा हुआ आदमी लाश पड़ी है। और यही आदमी जीवित था कल तक, शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हों, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हों। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाए। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए।

इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पढ़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पढ़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी ये भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पढ़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था। मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बताना ही पड़ेगा, साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो। मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है। फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्ट के फिरौन का उल्लेख किया लेकिन अल-हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्ट के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध था। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी जिनको मुसलमानों ने सूली दी, और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी, यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे, दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूं भी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि खुदा ही है।
लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया।

और मंसूर को भी सूली लगा दी। अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ? फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे। जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है? मुसलमान नाराज है जीसस पर, क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। ये भी कोई दावा है? हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना? मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। नहीं, ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे? ये सब तो अपराधी हो गए, ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में क्या अर्थ, एक धारणा होगी। संत ऐसा होना चाहिए, धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए, वो कोई संत? नकल होगा। संत की नकल ढांचों में बैठ जाती, तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे। तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है, ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में, एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की, कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे। यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे। तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पथ, और उससे वो बहुत प्रभावित थे। वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी, तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी पर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है। आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी, ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती है? तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम। तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक है, शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जो अपने मालिक है वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह, तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे। वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाए। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना परेशान न हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा। अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है।
क्या संतोष मिलता है कि तो मेरी धारणा ठीक है। देखो ये आदमी सबूत है, अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्म भूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया। भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है। भगवान होना हमारा स्वभाव है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है। उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत। ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने। तो कथा बड़ी प्यारी है, कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो। तब जरा मुश्किल हो गई होगी। पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गए। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा की घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में। कहां करोगे पैर, जहां पैर करोगे वहीं भगवान है, सब ओर भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना। ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या। यही तो अलहिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख ये बात, बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालू। और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तो उनको विदा कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास। गुरु ने कहा कि हम तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता है आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी, तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा।
दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई। जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आईं, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच। इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उन सिपाहियों ने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहा है? उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है यह आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई अड़चन नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होकर बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े। जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े, वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है। इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है। इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है। जो तुम्हारे भीतर हो, कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके? जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है। ये तो तुम्हारे अंतर्तम का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है। इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी। फिरौन को घसीट के लाए, पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5,000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी अलहिल्लाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे हो गए कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं। लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी, अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना? और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सहार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है। मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोक ठोक के मर जाएं, तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो, कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं विदा हो जाते हैं, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है, कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए वो मुसलमान था हिंदू था ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है।
उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना संस्कार, कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते हैं। छोटा बच्चा, कोमल चित्त, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती। फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले। पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो, जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो। सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो। एक ही बस गगन, एक ही बस लगन, डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो। रंग ऐसा भरो, न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी। संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा। और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं। संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं। संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा। रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द गई, सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो, बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो, बासंती देहों को रंगना है कायरता। पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुम्हें। संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें। संत का अर्थ है रंगरेज। संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसने जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे, और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है।
संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का कि ईसाई का कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती है? वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां है? पिंजड़ा है, पक्षी तो नहीं। तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजड़ों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते कि पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते। तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा। ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे सब, होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे। तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं। जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है। उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो, भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में, उसके दरवाजे पर लोहे के शीशों का बना दरवाजा है। एक फकीर, एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के शीशों से अपनी पीठ खुजला रहा है। उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी न थे, पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए। और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई। दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है। वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया। वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था। मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है? वो घसीट के लाए गए। और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना, क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान होती थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले? तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे। वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है,
अकेला बेजोड़ उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका ये अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए, आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई, जिन मित्र ने भेंट की उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया। किताब फेंक दी, किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया, कहां महावीर और कहां मोहम्मद। उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं, मोहम्मद सांसारिक आदमी ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की। दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी उसको भी इंकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करें। हालांकि अज्ञान की अवस्था में कर ले तो हर्ष क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब हुआ उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने 9 विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई काम वासना नहीं है। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही। अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन 4 विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना। मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसरुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली दफा चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, 2 विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती 2 विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये कि मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की 2 औरतें 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी, एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती, एक इसकी टांगें पकड़ी थी एक इसके हाथ पकड़े थी,
ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया कोने में, कभी ये निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता था। इसलिए मैं पकड़ा गया, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो सजा देनी हो दे देना, मगर दो औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो। चार स्त्रियों का साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता। बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर एक इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती, बड़ी उम्र का तो कहना ही क्या। 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोश, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग। उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से, अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और एक दो मूर्ति की नहीं, 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में, एक दिन के लिए एक मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूं बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका, क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, 1000 साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहां घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु
नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है, ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे, और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है, वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है, पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी, थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम्हें बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाए, नहीं, अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा, लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता है, ये बात सच है, लड़खड़ा तो सकता है। और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है, तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा। तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है, मगर अभी अनुभव नहीं, उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं। तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहाँ तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है, तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो। फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती है, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफे बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं, तुम लाख उपाय करोगे, अब तू थक गए, अब तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे हैं। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूँ। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है, आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं, तुम्हारे जैसे आंख कान नाक,
तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते। तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी

तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते, बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है। लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बंधती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिसपे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की कि पैर तो मेरे पास भी है, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूं। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूं। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में बैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है, टूट जाता है हर एक तसलसल यारों, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता लेकिन एक किरण चौंध जाती, लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? हां भी और नहीं भी। हां इस अर्थ में कि झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है। इसलिए हाँ और नहीं इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती, मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी, क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा? अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो, जब पाले नहीं जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग न खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग न खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा,
कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसरुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसरुद्दीन? उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो। झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सद्य इतना अभी अभी नहाया हुआ ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणासी त्युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी, और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षीराज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए। हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी, तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 हैं और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र हैं, उग्र श्रवाद सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पीकर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। ये अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन, बद्रिका आश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। उमा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा, नालियां सब सूख गई है। उनकी उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। विनीता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं, अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है, अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं, आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ, तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञा अनुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। अचुकिन कहा, भाइयों, विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे। हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आदमियां तो दस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके, हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं। इन विचार

पर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदया का ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को शाप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं इस समय जगत में सब बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी डरावने विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं और इस शाप से शूद्र प्राप्ति जहरीले सांपों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्व सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि दयावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक, वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा, वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी, उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुके, मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होना चाहिए और जिस समय दीक्षा के समान पत्नी की याचना करें उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें, यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। लीला पत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित्त से कहा, ठीक है ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ जिसमें वासुकी नाग को लेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरतकारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरतकारु ऋषि विवाह करना चाहे उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना, हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरतकारु ऋषि का नाम लिया उनका जरतकारु नाम क्यों पड़ा और उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? विश्वाजी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा कट्टा था, इसे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, इसी से उनका नाम जरतकारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरतकारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरतकारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे, वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी का विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरतकारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है, कि केवल वायु की कर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं, वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वे केवल वही केवल बच भी रहा था, उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरतकारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं उसे एक चूहा उतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं और अब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे, आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से विपत्ति से बचे तो बताएं, और तो और क्या मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती, तपस्या का फल तो हमारे पास भी है किंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं, वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं, हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरतकारु है, वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी उदार और व्रतशील भी है, तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है उसने, उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं, यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरतकारु तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटका कर गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो
ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने

0: घर की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है, हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं वही उसकी जड़ी हुई कटी हुई जड़े हैं। ये अधकटी जड़ ही जरतकारी है। आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरतकारी से कहिएगा और उससे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरतकारी ने पुत्रों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं, आप लोगों को अपराधी पुत्र जरतकारी हूँ मैं, आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पुत्र ने कहा बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए, मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। जरतकारी ने कहा मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट लिया, अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा, ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आप परलोक आपको परलोक में सुखी सुख से रहने देगा। जरतकारी अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बुरा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरतकारी सोचने लगे मैं पितरों का दुख उठाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त शर्त जरतकारी की बात सुनकर नागराज के पास गए, उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जरतकारी ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूँगा। वासुकी नाग ने कहा मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा, इसके अतिरिक्त एक शर्त यह है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरतकारी ऋषि अपनी पत्नी जरतकारी के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसे करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रह के उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरतकारी ऋषि कुछ खिन्न होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा महाबाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, ये अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरतकारी जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा सर्पिनी तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा भगवान मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धर्म का लोप ना हो मेरी यही दृष्टि थी। जरतकारी ऋषि ने कहा एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता, मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा, मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, सब सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
1: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागलेखा दासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यारा सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागलेखा दासी जी कहानी आप पूरी कीजिए।
0: जी तो ऋषि पत्नी जो थी उसकी पत्नी जो थी जरतकारी की जो पत्नी थी उसका नाम भी जरतकारी था, तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा, आपका और मेरे सहयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरतकारी ऋषि चले गए। समय आने पर वासुकी की बहन जरतकारी ने के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ, उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। समस्या बड़ा होने पर उसने चवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम अस्तिक हो गया। उग्र शवादी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वृतांत सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय उनके पुत्र हैं, तो अब वो जानना चाहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देख कर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। श्रमिक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने सोचा, ब्राह्मण देवता आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वही जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद इस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूँ। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक सम्पन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है, अब जैसा उचित समझे करे। मंत्रियों ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी बस्तियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों के बीच दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी, आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, वे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, पितृकों ने कहा, हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूर्य जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई उसे देखकर ये मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
1: जी जी, बहुत ही सुंदर कथा। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मेजय जो हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण।
1: जी, तो श्रोताओं इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितने भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ, और भी कार्यक्रम तो आप एंजॉय कर सकते हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RMR 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदिशक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदिशक्ति की देखकर उनके